और एंटी क्लॉकवाइज। समय सारणी में इसके अगले पार्ट में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। जैसा कि लिसनर्स आपको पता है कि हम योग की एक समय सारणी को आपके साथ में शेयर कर रहे हैं, तो पहला उसका पार्ट समय सारणी में हो चुका है जो वाय प्राणायाम तक हुआ था। आइए अब अनेक और प्राणायाम ऐसे हैं जिसे हम अपनी समय सारणी में ला सकते हैं। अगला प्राणायाम है अग्निसार, सहायक क्रिया प्राणायाम हम साथ ही साथ में करते रहेंगे। 5 बार फेफड़ों में नाक से श्वास अधिक से अधिक भरें, फिर पूरी श्वास बाहर निकालकर बाहर रोक दें। पेट को ढीला करके अंदर बाहर चलाना है। लाभ जो इससे होने वाले हैं वो है समस्त उदर, मूत्र व किडनी संबंधी रोग दूर होते हैं। अगला है उज्जयी, गले को सिकोड़ते हुए लंबी सांस भरें, गले से आवाज निकलेगी। कुछ समय के लिए हुड्डी को कंठ से लगाएं, फिर गर्दन सीधी करके दाहिनी नासिका को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद कर बाईं नासिका से सांस बाहर निकाल दें। इसका लाभ थायराइड, टॉन्सिल व खर्राटे ठीक होते हैं। सूक्ष्म व्यायाम उज्जयी प्राणायाम के अंतर्गत दाहिनी भुजा व बाईं भुजा को क्रमशः 5 बार सीधा उल्टा घुमाते रहना है। इसी क्रम में दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम आइए करते हैं। लगातार 5 मिनट तक करना है। प्रथम चक्र दाईं नासिका को दाहिने अंगूठे से बंद करके बाएं से श्वास अंदर भरें, फिर बाईं नासिका को मध्यमा व अनामिका से बंद करके बाहर निकालें, फिर दाईं नासिका से श्वास भरकर दाहिने अंगूठे से दाईं नासिका बंद कर लें और फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। सूक्ष्म व्यायाम अनुलोम विलोम के अंतर्गत 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति ही करना होगा। द्वितीय चक्र सूक्ष्म व्यायाम, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर, दोनों हाथ ऊपर ले जाकर आपस में कलाई पकड़कर अंगड़ाई की मुद्रा में दोनों कंधों की तरफ कम से कम 2-2 बार स्ट्रेच करें, फिर दोनों हाथों की उंगलियां आपस में फंसाकर सर के पीछे लगाकर सर का दबाव हथेली की तरफ और हथेली का दबाव सर की तरफ बनाएं। दायां हाथ दाहिनी कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं, बायां हाथ बाईं कनपटी पर रखकर दबाव बनाएं एवं दोनों हाथों की उंगलियां आपस में जोड़कर मत्थे से ले जाकर लगाएं। हाथ से मत्थे पर उसी हाथ को विपरीत बल लगाने पर मेरुदंड में कंपन होने पर छोड़ दें। 3 अभ्यास करें। हाथ घुटनों पर रखकर कंधे का संचालन करें। यह सूक्ष्म व्यायाम बहुत ज्यादा आवश्यक होता है हमारी शरीर की पूरी नस नाड़ियों के लिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 मिनट लगातार प्रथम चक्र की भांति, द्वितीय चक्र, तृतीय चक्र साथ में। सूक्ष्म व्यायाम पैर फैलाकर नी कप सिकोड़ना और छोड़ना, जांघ को नीचे से पकड़कर पैर से साइकिलिंग करना, पैर को गोल दाएं व बाएं घुमाना, तितली आसन करना। लाभ डिप्रेशन, माइग्रेन तथा आंखों के रोगों में अत्यंत लाभ देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियां आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपके स्किन के मुहासे हो, एक्ने हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की,
कंधे की

मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं। ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले

अरे होकर निराश तुम जो मेरे पास आओगे, ये सुन लो कान खोल के सब मारे जाओगे। ये हुक्म सुन के चल पड़ी सुग्रीव की पलटन, सब

लंका में पहुंच करके दिए वाटिका उजाड़, अक्षय कुमार को दिए धरती पे वो पछाड़। आया जो सामने दिए ककड़ी के जैसे फार, दुश्मन के घर में

रावण को बताने लगे वो हाथ जोड़कर। एक कपी ने रख दिए बगिया के सारे पेड़ तोड़कर।

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ, नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात, आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियाँ हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना एफएम।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283686।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गुंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

0: से हमारा रिश्ता खत्म और चलो एक दूसरे के सारे गिफ्ट वापस करते हैं।
1: तो ठीक है, शुरुआत रिचार्ज से करते हैं।
0: अरे जानू, अब क्या मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकती।

क्या बात है। और बारिश आई भी, सुबह सुबह आई। और कहते ना कि जब बारिश आती है तो रहमत आती है। देखिए ना, कल और आज में कितना फर्क है। यानी इस गर्मी के मौसम में जब हम ऐसी सुबह में उठते हैं तो सरप्राइज लगता है। और वैसे भी आज ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कहा कि चलो तुम्हारा संडे सरप्राइज हमने तैयार प्लान किया हुआ है। एंड डेफिनेटली उठने के बाद इतना ज़बरदस्त बदली वाला मौसम, मतलब देख के दिल से खुशी होती है कि भाई वाव क्या बात है, इतना बढ़िया मौसम। सो फिलहाल मुझे लग रहा है मौसम तो आप भी एंजॉय कर ही रहे हैं। और अब चूंकि मॉर्निंग शो में हम आ गए, सो चलिए शुरुआत करने वाले हैं इस शो की और बताने वाले हैं क्या है आज का थॉट ऑफ द डे। लेकिन आइए उससे पहले इस गाने को मुकम्मल कर लें।

0: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
3: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
0: हाँ जी, तो ठीक है, 9 बज चुके हैं और यानी टाइम हो चला है आपके थॉट ऑफ द डे का, क्योंकि मॉर्निंग वाला शो आज हो गया है बहुत ज़्यादा स्पेशल। भाई संडे है और ऊपर से आपने मौसम का मिजाज तो देख ही लिया है, तो जब इतनी सारी चीज़ें हो तो फिर देर किस बात की। चलिए शुरू करते हैं और पहुंचा देते हैं आज के संडे का पैगाम आप तक। भाई आज का ये जो संडे है, आज की ये जो मॉर्निंग है, ये आखिर क्या पैगाम लेकर आई है आप तक?
7: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite, RJ Khan.

सो कुछ थॉट होते हैं जो बहुत बड़ी बात नहीं कहते, लेकिन जिस आसान से लहजे में कहते हैं उससे एक बात तो समझ में आती है कि कहीं ना कहीं जिंदगी बहुत आसान है, बस हम ना जाने क्यों इतनी सारी चीज़ों को लेकर के चलते हैं कि हमको खुद ही मुश्किल लगने लगता है, राइट? और जिस आसानी से बातें होती हैं उससे लगता है कि वाओ इतनी छोटी सी बात थी, लेकिन हम समझ ना पाए थे। ऐसे ही है आज का थॉट ऑफ द डे, बड़ा ही प्यारा है। आज का थॉट कहता है, जिंदगी का जो असल मकसद है वो खुद का रास्ता पाना है, किसी दूसरे को उसका अनुसरण करना नहीं है। जी हाँ, यानी किसी दूसरे को फॉलो नहीं करना है। जिंदगी का जो रियल उद्देश्य कह सकते हैं, वास्तविक उद्देश्य, रियल एम्बिशन या अपना असली मकसद, वो खुद का रास्ता पाना है, किसी दूसरे को फॉलो करना, उसका अनुसरण करना नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अब ये बात तो कहेंगे कि हाँ यार ये तो थोड़ा सा कॉमन सी बात लग रही है, लेकिन जिस आसान शब्दों में दो लाइंस में ये बातें कंप्लीट हो गई, अपनी बात कह दिया इसने, उससे समझ में आता है कि यार कितना सही चीज़ है कि जिंदगी का जो सच में बाद में उद्देश्य होता है वो अपना ही रास्ता पाना होता है, किसी के कहने से या किसी के भी करने से चीज़ें नहीं होती है। एट द एंड आपको अपनी ही राह लेना चाहिए भी, और अगर आप लेने के लिए कोशिश भी कर रहे हैं, सो दैट इज़ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बहुत खूबसूरत बात है। और ये आज का थॉट ऑफ द डे भी कह रहा है। सो मुझे लगता है अपना रास्ता पाना, वाओ मतलब क्या बात है। जब आप अपने विचार रखते हैं तो बड़े ही खुश होते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आप खुद से कर रहे हैं। अच्छा, कभी सोचा है कि अगर आप अपनी चीज़ों को कर रहे हैं और किसी को एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, आप जो हैं जैसे हैं किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद कभी कोई दो अलग लोग बात करते हैं और आपको बाद में सुनने में आता है और कि आपको तो कहा गया भाई ये तो बड़ा मस्त मौला है, भाई ज़िंदगी हो तो इसकी जैसी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तारीफ़ें सुनेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपको आभास हो जाता है कि दूसरे भी शायद जो आप कर रहे हैं वो दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप फील कर रहे हैं उसको, आप उस तरह से जी रहे हैं, आप बिला वजह की बातों में, बिला वजह की चीज़ों में हैं ही नहीं, आप तो बस अपनी कुछ राह तलाश रहे हैं, अपना सुकून तलाश रहे हैं, और वह सुकून आपके चेहरे पर भी नज़र आ रहा है, आपके उठने बैठने पे, चलने पे, और शायद इसीलिए किसी को दिख भी गया तो फिर उसने किसी तीसरे बंदे से कहा कि यार लाइफ हो तो इसकी जैसी हो, या कितना सही बंदा है, बंदी है, इस तरह की बातें। तो ये बातें थोड़ा सा और पुख्ता कर देती हैं कि हाँ आप जो कर रहे हो वो सही है, क्योंकि एट द एंड आपको पता है कि आप जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो और जो भी कर रहे हो वो सही है, तो इसलिए आपको किसी और की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। सच बात तो ये है ना। सो भाई ये संडे मुझे लगता है कुछ ऐसा ही स्पेशल है, कुछ ऐसा ही ख़ास है, और इस संडे में कोई तो बात है। अगर आपको याद होगा तो परसों रात में जो बारिश हुई थी उसके बाद सौंधी सौंधी सी खुशबू आना शुरू हो गई थी, और वो खुशबू मुझे लगता है एक बहुत बड़ा तोहफा। कुछ चीज़ें होती हैं जो कभी हो जाती हैं जीवन में आपके, लेकिन वो याद कई मौक़ों पर आ जाती है और आपको मुस्कुराने का एक मौका दे जाती हैं, एक वजह दे जाती हैं, ये अपने आप में बड़ी प्यारी बात होती है। सो चलिए ऐसे ही एक खूबसूरत से सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि आज काफ़ी रोमांटिक सा मौसम है, संडे भी है, और 10 से 11 आपसे लाइव कॉल इन प्रोग्राम में बात भी करनी है गायका गुंडा विद आरजे अदनान में। सो फिलहाल रेडी रहिए, लाइव लाइव का क्या है, कभी भी बदल सकती है, बस आप अपनी धुन ना बदलिएगा। मस्त जिए, मस्त रहिए और यूं ही एंजॉय करते रहिए।

जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: Now it's time to city update. क्या चल रहा है आपके शहर में? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके ख्यालों के शहर में कुछ ना कुछ चलता रहता है, वैसे ही चलता रहता है गुंडा में. सो क्या कुछ हो रहा है, चलिए आइए बताते हैं आपके अपने शहर की अपडेट वाले प्रोग्राम में. फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम. ये है गोंडा शहर की धड़कन.
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Aajya Khan. Aajya Khan.

हाँ जी, तो शहर की अपडेट में क्या कुछ चल रहा है ये बताते हैं आपको। तो सबसे पहले हम ले चलते हैं रोजगार मेले की तरफ, जो कि 30 को लगने वाला है। सो क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 30 जून को रोजगार मेला लगने वाला है। मेले में हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएट और आईटीआई पास जो कैंडिडेट्स हैं, इनको प्राइवेट कंपनीज़ में रोज़गार पाने का मौका मिलने की बात बताई गई है। सेवा योजन अधिकारी ने बताया कि रोज़गार मेले के लिए कई सारी कंपनीज़ का रोज़गार संगम पोर्टल के ज़रिए उनको इनवाइट किया गया है। सो भी इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं वो पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। सो आपको बताया कि भाई जिस तरह से कल भारी बारिश हुई है उससे काफ़ी ज़्यादा राहत तो मिली है गर्मी के बीच, लेकिन इसी बारिश और इसी तेज़ हवा के चलते कई जगह खंभे और पेड़ भी गिर गए, और जिससे बिजली आपूर्ति में भी काफ़ी इसका असर देखा गया। सो अगर हम बिजली बताएं तो नवाबगंज, उमरी बेगमगंज, गोंडा का जो ये एरिया है, यहाँ देर रात तेज़ आंधी और बारिश की वजह से लोगों को राहत तो मिली, लेकिन तेज़ आंधी की वजह से कई बिजली के खंभे भी यहाँ पर गिर गए हैं। सो नवाबगंज में बिजली गिरने से एक मकान जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त होने की बात सामने आ रही है। हालांकि भाई कहीं ना कहीं इसका राहत तो मिली, इससे आराम तो मिला, लेकिन चूंकि अब हवा भी तेज़ थी सो कई पेड़ गिरे और कई खंभे भी गिर गए। इसके अलावा शहर में कई जगह जब से लखनऊ अलीगंज अग्निकांड हुआ है उसके बाद से बेसमेंट्स में कई सारे ऐसे कॉमर्शियल कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार अब कवरेज की जा रही है और चेक किया जा रहा है सेफ्टी मेजर्स को कि वहाँ पर फायर एनओसी है या नहीं है, सेफ्टी मेजर्स को कितना ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है, चाहे वो कोई शॉप हो या फिर कोई वो हॉस्पिटल हो या फिर कोई वो संस्थान हो, कुछ भी ऐसा हो इस तरह से। इसके अलावा चलते हैं और अगली अपडेट की तरफ। सो अगली जो अपडेट है वो है सुबह 10 बजे से आज ही महिला हॉस्पिटल में पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन करने वाली हैं। इसके अलावा सुबह 10 बजे से जन आरोग्य मेला ज़िले के सिविल लाइंस समेत जो पूरे 55 PHCs हैं वहां पर आयोजन इसका किया जाना है। इसके अलावा आपको बता दें छपिया के टैरवा बाज़ार में मौजूद एक मैरिज हॉल में पूर्व प्रधानमंत्री VP सिंह की जयंती भी आज मनाई जाएगी। एंड इसके अलावा खरगूपुर के भवान दीनपुरवा में कैंडल मार्च करके भरत तिवारी को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। सो ये आज के कुछ इवेंट्स हैं जो कि हमने बताया। इसके अलावा आपको अब हम बता दें कि भाई आज पिलाई जाएगी पोलियो की खुराक ज़िले के 577 बच्चों के लिए। 1977 बूथों पर चलेगा अभियान, यानी 1977 बूथ हैं जहां पर यह अभियान चलाया जाएगा। एंड ज़िले में चूँकि आज से राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान शुरू होगा और अभियान के तहत 5 साल तक के 577,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए दवा पिलाई जाएगी। और कल शनिवार को CMO कार्यालय से निकाली गई जागरूकता रैली को प्रभारी CMO डॉक्टर TP जायसवाल और ACMO डॉक्टर आदित्य वर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। सो ज़िला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर मोइनुद्दीन चश्ती ने बताया कि अभियान के पहले दिन ज़िले में 1977 बूथों पर पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके बाद जो छूटे हुए बच्चे हैं उन तक पहुंचने के लिए 1171 घर घर भ्रमण टीमें लगाई गईं और 75 ट्रांज़िट टीमें बस अड्डों, रेलवे स्टेशंस और जो भी सार्वजनिक स्थान हैं वहाँ पर काम करेगी। सो इस तरह से कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। भारत से तो फ़िलहाल पोलियो जा चुका है, लेकिन चूँकि आसपास के देशों में है तो इससे कोई दो राय नहीं कि वापस से भी आ सकता है और पैर पसार सकता है। इसलिए आज जो ये राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई है, इसमें आप अपने जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को जो है वो ज़रूर पोलियो की खुराक पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो ये कुछ ख़ास खबरें थीं जो कि आप तक पहुंचा दी गई और ये आपके अपने गोंडा ज़िला से ही थी। और इसके साथ ही साथ जैसा कि भाई सहायक उपकरण जो दिव्यांगों को कल बांटे गए हैं उससे कई लोगों के चेहरे पर खुशी भी देखी गई।
सो ये कुल अपडेट्स थी जो कि आपके गोंडा से थी, एंड आई होप कि आपको ज़रूर पसंद आई होगी। सो फिलहाल थैंक यू सो मच प्रीति शुक्ल जी, आपने चैट बॉक्स पर चैट पे लिखा है आज के थॉट को लेकर, प्रेरणादायक थॉट, दूसरों की कॉपी ना करके बेहतर होता है कि अपनी योग्यता अपनी मंजिल पा लेना, जो कि अति सुखदायक होता है। बेशक सही फरमाया आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदाज में अपनी चीज़ों को करते रहें और आप उन नेगेटिव चीज़ों उन नेगेटिव लोगों को भी छोड़ते रहें जो सच में कोई मायने नहीं रखते आपके लिए।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88403395 84 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।

0: हाँ जी सुभाई, पहली नज़र से ही। वैसे चूंकि हम सभी को पता है कि भाई इधर ऐसा लगता है जैसे कि रात में सो और सुबह भूकंप के लिए हम एकदम रेडी ना हो, क्योंकि आजकल जिस तरह लगातार भूकंप आ रहा है, वेनेजुएला का हाल हमने देखा। हालांकि हम उन वहाँ के जो भूकंप में जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उनको लेकर के रेडियो ज्ञानस्थली श्रद्धांजलि व्यक्त करता है, और साथ ही साथ आपको बता दें चूंकि दिल्ली NCR से लेकर अक्सर ये खबरें आती रहती है कि भाई भूकंप के झटके महसूस किए गए, एंड यस ऑफ कोर्स वापस से महसूस किए गए। अगर आपको नहीं पता तो चलिए हम बताते हैं कि आखिर कहाँ से कहाँ तक भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Kota, with your favorite Ajay Khan.

सो भाई दिल्ली एनसीआर से लेकर के पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में भी कल की रात अगर हम बताएं सो सैटरडे नाइट में इसकी शाम में भूकंप के तेज़ झटके महसूस किए गए। इवन रिक्टर स्केल पर 6.2 यानी 6.2 तीव्रता के साथ इस भूकंप का जो केंद्र था वो अफगानिस्तान था। पाकिस्तान, चीन, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में भी इसके झटके महसूस किए गए। सो भूकंप से फ़िलहाल किसी बड़े नुकसान की अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं आई है, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं लगातार ये जो भूकंप आता रहता है बड़ा अजीब सा डर रहता है, क्योंकि जब से वेनेजुएला का भी हमने हाल देखा है इसी हफ्ते आए हुए भूकंप में कितनी ज़्यादा तबाही मची है, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई कब भूकंप आ जाए और कब हमको लगे कि भाई हमारे घर वाले कोई प्रैंक नहीं कर रहा है बल्कि ये रियल का भूकंप है। क्योंकि इससे पहले भी जब भूकंप आया था तो ऐसा लग रहा था कि भाई कोई प्रैंक कर रहा है, कोई नीचे से बेड को धक्का दे रहा है, कोई लग रहा है ऐसा बेड में जो चादर और जो ऑफकोर्स गद्दे होते हैं उसको कोई खींच रहा है, लेकिन जब बाद में ऊपर देखो या एहसास होता लगता है कि वो भूकंप है। सो फिलहाल मुझे लगता है कि फायर को लेकर के तो इधर हम काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे हैं, बट भूकंप की सेफ्टी को लेकर के हमको कई बार मुझे लगता है इस पर डिस्कशन होने चाहिए, क्योंकि हम सभी को पता होना चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन आन भी पड़ती है तो पैनिक होने से पहले आखिर किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि पैनिक तो हम पहले ही हो जाते हैं, बट चूँकि पैनिक होकर के हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, हमारी समझ जो है वो और भी ज़्यादा कम हो जाती है, हमारे लिए मुश्किलें बढ़ जाती है। सो क्या किन किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ऐसे कई देश हैं जहां देखा जाता है कि बाकायदा इसकी आम जन को ट्रेनिंग दी जाती है चूँकि भूकंप आया ही करते हैं। सो मुझे लगता है कि जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार अब भारत में भी इसका असर, इसके झटके महसूस किए जाते हैं, सो हमको भी इसके बारे में कुछ बेसिक्स सी जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई आपदा आती भी है तो हम खुद को और अपनों को और अपने आसपास जितने लोग हैं सबको सेव कर सकें। सो भाई मुझे लगता है इस बात से तो आप भी अग्री करते होंगे। फिलहाल मुझे लगता है कि अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में होंगे तो इस बार फिर लगा होगा कि यार ये चक्कर आ रहा है क्या, क्योंकि सबसे पहली जो गफलत होती है वो ऐसा लगता है जैसे चक्कर आ रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है, ऐसा लगता है सर घूम रहा है, बट जब आप देखते हैं कि नहीं पंखा हिल रहा है तो आपको थोड़ा सा आभास होता है कि बिना चल रहा पंखा हिल रहा है या चलते हुए पंखा किस तरह से राइट लेफ्ट हो रहा है।

0: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: तो बच्चों, आज कोई ऐसा वाक्य बनाओ जिसमें सांप भी आए और सीढ़ी भी आए।
2: टीचर मैं बताऊं?
1: हाँ रोहन बेटा, तू ही बता।
2: कल रात मेरे पापा ना सांप और सीढ़ी खेल रहे थे, फिर वो सीढ़ी से खेलते खेलते नीचे गिर गए और सांप ने उन्हें काट लिया।
3: हम बबलू बालेश्वरगंज से, आप सुन रहे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: मोहन प्यारे जाग जाओ, सुबह हो चुकी है भाई साहब। और आज 28 तारीख हो गई है। इसी 28 तारीख के बीच हम बता दें आपको कि नियम कानून भी चेंज होने वाला है। जी हाँ, अगर अभी तक आपको नहीं पता तो हम आपको बता दें कि 1 जुलाई से बदल जाएंगे कई बड़े नियम्स, जिसमें आधार, पासपोर्ट से लेकर रेलवे तक का जो है इस पर असर पड़ने वाला है, यानी आपके लाइफ से जुड़ी हुई कई चीज़ें। सो 1 जुलाई से आखिर क्या क्या चेंज हो रहा है, आइए आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening, Good Morning Koda, with your favorite, RJ Khan.

फिलहाल अगर आप विदेश यात्रा करने के मूड में हैं तो थोड़ा सा जेब को और भर के रख लीजिए, क्योंकि अब थोड़ा सा भारी और होने वाला है, क्योंकि नया और री इश्यू पासपोर्ट की जो फीस है वो बढ़ रही है 1 जुलाई से, और इसके साथ ही साथ तत्काल पासपोर्ट भी महंगा होने वाला है। जी हाँ, सो आप पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो अब फीस आपको ज़्यादा देनी होगी, और इसके साथ ही साथ जो री इश्यू पासपोर्ट्स हैं उसको भी महंगा किया जा रहा है, प्लस जो तत्काल पासपोर्ट है वो भी इसकी फ़ीस महंगी हो रही है। आधार अपडेट को लेकर के अगर हम आपको बताएं, सो 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक ईमेल अपडेट जो है वो मुफ्त करने की बात कही गई है, यानी ये 6 महीना जो है वो मुफ्त में आपका ईमेल अपडेट हो जाएगा आधार पर। अगर आपका आधार पर अभी तक ईमेल अपडेट नहीं है या कोई पुराना मेल है जो कि अब वर्किंग नहीं है और आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आपके पास जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का मौका है जिस पे आप मुफ्त अपडेट कर सकते हैं ईमेल को। एंड ये फैसिलिटी सिर्फ मोबाइल ऐप पर ही मिलेगी, कहीं और जा कर के आपका काम नहीं होगा। इसके अलावा रेलवे के भी नए नियम आ गए हैं जो कि परसों के बाद से यानी 1 जुलाई से लागू हो रहे हैं। नियम तोड़ने पर इस बार ज़्यादा जुर्माना लिया जा रहा है। इसके अलावा ख़तरनाक सामान ले जाने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना भी है। बिना लाइसेंस सामान बेचने वालों पर भी कार्रवाई की बात बताई गई है, और महिला कोच में जो पुरुष सफ़र करते हैं उनका जुर्माना भी काफ़ी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इनकम टैक्स की बात करें तो RTR को लेकर के भी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 तक आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न कर सकते हैं। इसके अलावा LPG, CNG, PNG के दाम की अगर बात करें तो 1 जुलाई से कीमतों में बदलाव मुमकिन है। नए रेट पर अब चाहे तो बढ़ भी सकता है सिलेंडर का दाम और घट भी सकता है। क्या होने वाला है ये देखा जाना ऑफकोर्स, इसके लिए भी इंतज़ार सब कर रहे हैं कि आखिर नया रेट क्या होने वाला है, ये घट के आने वाला है या इस बार और ज़्यादा बढ़ के आने वाला है। सो फिलहाल ये कुछ चीज़ें हैं जो कि 1 जुलाई से चेंज हो रही हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको, चाहे वो LPG, CNG, PNG हो या फिर टैक्स को लेके ITR की बात हो या रेलवे के जो नए नियम हैं या आधार में अपडेट कराने की बात हो आपके मेल को या फिर पासपोर्ट के नए या री इश्यू या फिर तत्काल पासपोर्ट को लेकर के उसकी महंगी हुई फ़ीस के बारे में हो। सो ये कुछ ज़रूरी जानकारी थी जो कि आप तक पहुंचा दी गई। आई होप कि अब आप तक ये जानकारी पहुंच गई। अब चलते हैं एक छोटे से म्यूज़िकल ब्रेक के लिए, उसके उस पार आएंगे तो वापस से अब आपकी कॉल्स लेने वाले हैं, यानी आप कॉल्स लगातार कर सकेंगे। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी, बेइंतहा बेइंतहा बेइंतहा। आज बेइंतहा सो लिया होगा और बेइंतहा खा लिया होगा और बेइंतहा किसी बात पे हंस भी लिया होगा। पाजी, आप तो बहुत हंसने वाले हैं। फिलहाल आपके चेहरे लाल लाल, आपके कपड़े लाल लाल और आपके बाल काले काले हो रखे हैं। सो चलिए, ऐसी बहुत ही खूबसूरत सी सुबह पे आपका वेलकम करते हैं, क्योंकि वक्त हो गया है अब आपके साथ में बातचीत करने का। 10 से 11 गैगा गुंडा विद आरजे अदनान। सो ऑफ कोर्स आज गाने की भी बात हम करने वाले हैं। आज मौसम भी काफ़ी रोमांटिक सा है और आज आपसे काफ़ी कुछ सुनने वाले हैं। सो फिलहाल वक्त हो गया है आपके कॉल इन प्रोग्राम का और नंबर जो है वो है 6393-316-429। जी हाँ, इस वक्त आप मुझे अपनी फ्रिक्वेंसी में, अपनी कार से, अपने ट्रांजिस्टर सेट से, रेडियो गार्डन से और साथ ही साथ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम की एप्लीकेशन से सुन रहे हैं। सो जो लोग एप्लीकेशन पर नहीं हैं और लाइव प्रोग्राम्स में नहीं आ पाते हैं, उनको हम यही बता रहे हैं कि भाई फ़िलहाल वो भी आ सकते हैं। और नंबर जो है, अगर आप सुन रहे हैं और आपको भी कॉल करना है, बातचीत करना है, तो नंबर है 6393-316-429, यानी 6393-316-429, 6393-316-429 ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। फिलहाल हमारे साथ में कॉलर जुड़ भी गए हैं। आइए देखते हैं कौन है कॉल पर और क्या है उन्हें कहना, और आज उनसे भी हम बातचीत करने वाले हैं और उनको भी हम सुनने वाले हैं। हाँ जी, हेलो।
1: सुबह आई सुकून भरा पैगाम लेकर, सुबह आई है सुकून भरा पैगाम लेकर, खिल गया गुलशन एक नाम लेकर, खुशियों की वर्षा होती रहे आपके ऊपर, मुस्कुराहट की एक दरिया बहती रहे। गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है?
1: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बता बताइए आप।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना नाम बता दिए हमारे श्रोताओं को।
1: अनु पांडे, गोंडा से।
0: अरे वाह। सो अनु, आज का मौसम तो बड़ा अच्छा रहा मॉर्निंग से।
1: सर, आज का मौसम नहीं, मेरे यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है।
0: पिछले 3 दिनों से बारिश लगातार हो रही है?
1: हाँ, मतलब जैसे कि रस्ता को दूसरी टाइम के टाइम, थोड़ा शाम के टाइम,
0: हाँ,
1: ऐसी हल्की बारिश हुई थी।
0: तो सारा गोंडा छोड़ के खाली आपके घर पे ही हो रही है क्या बारिश?
1: हाँ, लेकिन मेरे यहाँ आज भी बारिश हुई और कल भी हुई, तो आज और कल जो बारिश हुई है वो रात में ही हुई है और बहुत अच्छी बारिश हुई है।
0: अरे वाह, क्या बात है भैया, बारिश सारी आपके घर में ही हुई है, तो आज आप नाव लेके निकलने वाले हो बाहर?
1: हाँ सर, लगता है नाव लेकर बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आसपास बहुत सारे पानी जमा हो गए हैं।
0: अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। सो मुझे लगता है एक बढ़िया सा, पहले आप कुछ गाना सुनाइए, उसके बाद एक अच्छा सा सवाल आपके लिए इंतजार कर रहा है। जी,
1: गाना गाना ही पड़ेगा,
0: गाना गाना पड़ेगा।
1: जी,
0: चूंकि अब मौसम बड़ा अच्छा सा है, तो कोई अच्छा सा सूदिंग सा रोमांटिक सा एक सॉन्ग होना चाहिए ना, ताकि इस मौसम को हम भी और एंजॉय कर पाए, राइट?
1: जी सर, रोमांटिक सा सॉन्ग गा दूं या मतलब मौसम को ही डेडिकेट कर दूं एक सॉन्ग? हाँ, तो मतलब मैंने खुद लिखा
0: मौसम
1: है।
0: मौसम को ही डेडिकेट करना, कोई सैड सॉन्ग नहीं गाना है, डोंट वरी।
1: जी सर, मैंने खुद लिखा है, मैं वही सॉन्ग थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूंगी। जब चल पूरे बयार कोयलिया कूके आए बहार, जब चल पूरे बयार मस्त मस्त

0: बाय।
1: क्या बात है, क्या बात है, ये आपने खुद लिखा है?
0: हाँ, मैंने खुद लिखा है। एक दिन मैं ऐसे घर से बाहर निकली और पूर्वा बयार चल रही थी, तो हमने सोचा अरे कितना अच्छा मौसम है, इससे तो कुछ लिख सकते हैं। बस उसी वक्त लिख दिया था।
1: अरे वाह, क्या बात है, बहुत प्यारे लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। सो एक सवाल है जो आपके लिए है।
0: हाँ
1: आपके घर के पास अगर मान लीजिए कोई चौराहा है और उस चौराहे का नाम आपको बदलना है, तो उस चौराहे का नाम आप क्या बदलेंगे और क्यों वही नाम रखेंगे आप, उसकी वजह क्या होगी?
0: सर, मेरे घर के पास एक चौराहा है, मतलब चौराहा तो एकदम पास में ही है, पर चौराहा है विजयनगर चौराहा, तो मैं उसका नाम बदलना चाहूंगी। अगर मुझे मौका मिले तो मैं जरूर बदलूंगी और मैं उसका नाम रखूंगी रेडियो ज्ञान श्री 89.6 चौराहा।
1: रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM चौराहा। चौराहे का नाम कुछ ज्यादा ही लंबा नहीं हो जाएगा?
0: नहीं सर, वो साल में भी बोल सकते हैं ना, रेडियो ज्ञान स्थली चौराहा।
1: रेडियो ज्ञान स्थली चौराहा, अगर और शॉर्ट करना है तो
0: अरे इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं होगा, गुंडा एफएम चौराहा हो सकता
1: गुंडा
0: है।
1: एफएम चौराहा, ठीक है, ये काफी शॉर्ट, लेकिन इससे भी अगर शॉर्ट करना है तो
0: एफएम चौराहा।
1: तो एफएम में ये कैसे पता चलेगा कि आप रेडियो ज्ञानस्थली की बात कर रहे हैं?
0: पूरा स्वाद नहीं करेंगे तो स्वाद में कह सकते हैं, बाकी चौराहे
1: वाओ
0: का नाम तो पूरा रहेगा।
1: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया जवाब
0: और
1: आपने दिया। हाँ जी
0: मैं
1: जी
0: चौराहे का नाम, ये नाम क्यों रखूंगी,
1: हाँ
0: इसे रखूंगी कि जो भी हमारे चौराहे पे इधर से गुजरे ना, बहुत लोग गुजरते हैं, बहुत दूर दूर के लोग गुजरते हैं, अलग अलग स्टेट के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के, तो सब लोगों को पता चले हमारे शहर में कितना अच्छा, कितना खूबसूरत एफएम है। मतलब एफएम अच्छा है पर वहाँ के जो इंसान बैठते हैं वो काफी खूबसूरत है, और खासकर जो सुबह आते हैं मॉर्निंग वॉक में वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, तो सब लोग हमारे एफएम से जुड़ जाए, हमारे एफएम के दीवाने हो जाए।
1: तो ये कैसे पता जो सुबह आते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान है?
0: अरे जब सुनेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। मैं किसी को जोड़ती हूँ तो सिर्फ यही बोलती हूँ, एक बार आप सुन के देखिएगा, और जो एक बार सुनता है ना आपकी आवाज, आपका सुर, वो खुद ही आपका दीवाना हो जाता है।
1: मुझे वो याद आ गया, अरे एक बार आइए तो सही, अजी एक बार खाइए तो सही, गोंडा वाले एफएम की मशहूर नान खटाई। क्या बात है, क्या बात है यार, यही अंदाज तो आपका बढ़िया है, मस्त है। सो सुबह कितने बजे उठे आज आप?
0: सर ये तो मत पूछो आज हम कितने बजे उठे,
1: नहीं पूछेंगे, चलो कितने बजे आज सोना है ये बताइए आप, ये पूछेंगे नहीं कब उठे आप।
0: सोना?
1: हाँ
0: सोना तो लगभग 11:30 बजे के बाद, लगभग 12 बजे,
1: लगभग 12 बजे हो जाता है। कभी 12 बजे के बाद अपने पैर चेक किए हैं आपने?
0: सो गए तो पैर कैसे चेक करेंगे?
1: नहीं, जैसे कभी आप जागे रह गए हो या सोने के बाद अचानक आँख खुली हो, तो आपने अपने पैरों के पंजों को कभी चेक किया है?
0: नहीं अभी तक तो नहीं चेक किया है।
1: चलिए चेक करिएगा, पता चल जाएगा, कंफर्म हो जाएगा।
0: क्यों
1: नहीं समझे? चलिए, हमारे जो श्रोता समझ गए हैं वो अभी चैट बॉक्स पर आकर के बता देंगे कि हम आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है अपने को चेक करने का। हमारे कमल नयन जी अभी कुछ टाइप कर रहे हैं, वो बता देंगे। और लिखते हैं अनु पांडे जी, हस्ती बहुत हैं और बहुत प्यारी बातें करती हैं।
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, तो अब हस्ती हैं बोल दिया तो एक बार हंस के भी इनको सुना दीजिए ना, कैसी हस्ती हैं।
0: जी सर, हस्ती कैसे सुनाए?
1: ऐसी ऐसी ऐसी जबरदस्ती हंसी है थोड़ा सा। हाँ ये सुन रहे हैं कमल जी आप?
0: मैं जबरदस्ती नहीं हंसती हूँ, उसको हंसी सच में लग जाती है।
1: लग जाती है, अरे कोई दाग थोड़ी ना जो लग गया पैंट में या उस तरह से। हाँ हंसी लगी थी है या हंसी हंसी जाती है?
0: हंसी आ जाती है, मतलब मैं ज्यादातर
1: आ जाती
0: ही रहती हूँ।
1: अच्छा, ये हंसती नहीं है, हंसा दी जाती है।
0: ये भी सही है, थोड़ा हंसती हूँ थोड़ा हंसा दी जाती हूँ। जैसे कि मान लो कभी हम नहीं हंसते थे, आप बात कर रहे हैं आपसे तो आपने हंसा दिया, कभी नहीं हंस रहे आपका सुर सुन ले ऐसे बैठे, आपने कुछ ऐसा बोल दिया कि इतनी हंसी लग जाती है, इतनी हंसी आ जाती है कि क्या बताऊंगी, तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाती है।
1: चलिए आपको एक और सरप्राइज दे।
0: हाँ?
1: आज हम अकेले नहीं है स्टूडियो में, हमारे साथ एक और हमारी को होस्ट भी है।
0: कौन है
1: बोलिए भाई, कौन है आप?
2: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग, हाय, कौन हो आप?
2: मेरी आवाज नहीं पहचान पड़ी आज?
0: अभी तो नहीं पहचान पाई, बस थोड़ी सी तो आवाज सुनी हो।
1: अभी अपनी ये तारीफ में, अभी जो इनकी मुस्कुराहट की तारीफ हुई है, अभी उससे बाहर ये नहीं आई, इसलिए पहचान अचान नहीं पा रही कुछ भी।
2: अच्छी बात है।
0: ऐसा नहीं है, अभी थोड़ी आवाज और सुनी तो साथ।
1: कमल नयन जी ने इनके भाव बढ़ा दिए।
0: अरे नहीं सर, ऐसा नहीं है। और वैसे भी कमल नयन भैया जब कॉल करते हैं ना, तो वो भी बहुत अच्छी बात करते हैं, और बात करने का अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगता है।
1: अरे आपने इनकी आवाज नहीं पहचाना, ये मैं बस अफसोस कर रहा हूँ। आप दुनिया भर की आप बात बता रही हैं, आप ये नहीं बता पा रही कौन बैठा है हमारे बगल में।
0: अभी एक ही बार तो सुना है, अभी थोड़ा और बोले फिर पहचानो।
1: कोई गाना ना सुनना है क्या इनसे?
2: कखनो टालीगंज, कखनो बालीगंज, कखनो श्याम बाजारे, कखनो आमी बोली सबै सावधान, आमी कलकाता रसगुल्ला।
1: तो मिल गया आपको कोलकाता वाला रसगुल्ला।
0: हाँ, अभी तो रसगुल्ला मिल गया। और सच सच बताओ तो श्वेता मैम से भी बात मतलब जब इनकी आवाज सुनती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खासकर अच्छा। जब एकदम ही बच्चों जैसी आवाज करके बात करती है।
1: अरे करके नहीं बात करती है बच्चे, वो तो वैसे बड़ी हो करके बना के बात करती है, तो बच्ची ही ये।
0: हाँ ये भी सही है।
1: आज भी फ्रॉक पहन के आई है आराम से कूदते कूदते।
2: आज तो मैं पोलियो पीने आई हूँ, पोलियो।
1: ये लो भाई, अभी 5 साल की भी नहीं हुई है, आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है, तो ये खुराक लेने आई थी, इनको लगा कि आज रेडियो ज्ञानस्थली पे पिलाई जा रही है।
2: नहीं मेरे को अंकल ले जाएगा, नान अंकल ले जाएगा।
1: अच्छा अगर इन छोटी सी बच्ची के लिए आपको कुछ कहना है तो आप क्या कहेंगे, एक प्यारा सा नाम क्या देंगे इन बच्ची का?
0: बच्ची का अगर मुझे नाम रखना है तो मैं क्यूट बेबी रखूंगी।
1: क्यूट बेबी, ये अंग्रेजी नहीं, हिंदी में रखना पड़ेगा
0: जी।
1: हिंदी में? अच्छा अवधि में बताइए कुछ प्यारा सा शब्द, तब तो मजा, नहीं तो ओनली सजा।
0: रसगुल्ला ही रख देते हैं।
1: रसगुल्ला नहीं, रसोगुल्ला।
0: रसोगुल्ला ही रख देते हैं।
1: ये रसोगुल्ला किस तरफ से लगती हैं बताइए,
0: क्योंकि जब भी बात करती है ना तो उनकी बातों में बहुत मिठास होती है, एक रस भरी मतलब बात करती है, जिससे लगता है आवाज जो निकल रही है वो सीधे रसमलाई के साथ ही निकल रही है।
1: अरे देखिए तो कोई दुकानदार ना सुन रहा हो मिठाई वाला, नहीं तो यहीं से आगे कहेगा भैया इनको तो हमको दे जाओ,
2: चींटी भी लग जाएगा।
0: अरे नहीं हम लोग ज्यादा नहीं देंगे, और वैसे हम मैम को जानते हैं।
1: जानते हैं?
0: जानते हैं।
1: अच्छा
0: हाँ,
1: कैसे जानते हैं?
0: मैंने इनको इनके घर से जानते हैं।
1: इनके घर से जानते हैं, तो इनको नहीं जानते, इनके घर को जानते हैं आप?
2: तो
1: ये बढ़िया बात।
0: मैं इनको जानती हूँ, इसीलिए तो इनके घर से जानती हूँ।
1: सविता जी जो आप बताई थी रात में कुछ लोग चोरी करने कोशिश करने आए थे, मुझे लग रहा, मुझे शक हो रहा है मुझे शक हो रहा है कोई आया था जो आपके घर को जानता आपको नहीं जानता, देख रहे हैं आप? एक ही रोड पे है, रोड पे नहीं रहती हैं, घर में रहती हैं, बताया हमसे। आप रोड पे रहते हो?
2: नहीं मैं तो घर में।
1: नहीं नहीं इनसे कह रहा हूँ मैं। आप तो घर पे रहते हो, इनसे मैं पूछ रहा हूँ, अनु से पूछ रहा हूँ।
0: मैं तो रोड पर ही रहती हूँ।
1: ये लीजिए देखिए, रोड पे रहती हैं तभी ऐसी बातें कर रही हैं।
0: लेकिन तो रोड पे मतलब घर के अंदर रहती हूँ, रोड पे ऐसे कौन रहेगा?
1: चलिए कोई
0: रोड पे रहूंगी ना तो फिर पता नहीं कहाँ मैं खो जाऊंगी, मैं गायब हो जाऊंगी।
1: एक अच्छा सा नाम सोच कर बताइएगा मुझे, ठीक है? अवधि में सविता जी का। हाँ अभी नहीं, अब जरा सोच लिए फिर आराम से बताइएगा, मे बी नेक्स्ट वीक बता दीजिएगा, कोई बात नहीं। बट आज पूरे टाइम शो में बनी रहेंगी सविता जी हमारे साथ में।
0: ऐसा करते हैं आज ओपन माइक में भी कॉल लेते हैं,
1: देखते हैं ले लेते हैं।
0: हाँ, मेरी कॉल ले लेना, बाकी लोगों की चाहे नहीं लेना।
1: नहीं ये थोड़ी ना होता है, अब हमारे लिए भाई सभी हैं और क्या।
0: नहीं नहीं सर, जैसे जो लोग आ नहीं सकते बहुत दूर रह रहे हैं ना उनकी कॉल ले लेना, और जो लोग करीब रह रहे हैं उनकी नहीं लेना।
1: जो लोग आ नहीं सकते हैं उनकी चप्पल खो गई और कोई बात नहीं है।
0: मेरे पास बहुत चप्पल है।
1: हाँ,
0: और एक बात।
1: हाँ
0: बार एक बार जब भी मैं कहीं कॉल करती हूँ ना तो खुद तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं मतलब रेडियो की दुनिया की बहुत जानी मानी लिस्नर हो गई, तो इस तरह से बात करूँ।
1: अरे ये किसने कह दिया जानी मानी लिस्नर हो गई?
0: तभी लोग बोलते हैं, मैंने नहीं कहा।
1: नहीं नहीं, गलत फहमी मत पालिए आप,
0: आज तो नहीं करेंगे।
1: अच्छा,
0: और सर जब कोई मतलब कोई दूसरा लिस्नर जब बात करता है, कोई लिस्नर होता है जब कॉल करते हैं बात करते हैं, तो मुझसे सर या मैम पूछते हैं आप क्या करते हो, तो मेरे मुंह से क्या जवाब निकलता है, अरे जब स्लीपर की दुकान, नई स्लीपर के बदले मतलब पुरानी स्लीपर लेते हैं नहीं देते हैं।
1: अरे वाह, चलिए
0: मैं यही पटाख से बोलती हूँ कि स्लीपर की दुकान करते हैं।
1: सविता जी के पास 51 जोड़ी चप्पल है और 21 जोड़ी हमारे पास, हम लोग लेके आते हैं आपके यहाँ चेंज कराने।
0: तो आप लोग आ जाइए फिर आपको इधर से ना नई स्लीपर मिलेगी।
1: चलिए बहुत बहुत शुक्रिया,
0: पुरानी लेकर आना है।
1: बिल्कुल, एंड थैंक यू सो मच अनु की कॉल करके आपने इतने बढ़िया नाम दिए, इतने अच्छे से बताया, थैंक यू सो मच।
0: ओके सर,
1: बाय बाय, टेक केयर। सो भाई ये तो थी हमारे साथ में अनु पांडे, और फिलहाल प्रीति जी ने बहराइच से लिखा है अनु बहुत खूब, और प्रीति जी ने सविता जी को बोला है चुलबुली, ये नाम दे रहे हैं अगर प्रीति जी को देना, क्या बात है, बहुत प्यारा। एंड कमल नयन जी ने एक कदम और आगे बढ़ के लिखा है कि भाई मुन्नी, देहाती अवधि नाम, मुन्नी अगर आपका नाम देना हो। कैसा लग रहा है ये इतने बढ़िया बढ़िया नाम सुन करके आपको?
2: नाम सुन के तो अच्छा ही लग रहा है, पर मेरे साथ एक घटना हुआ था ठंडी के टाइम में, बस में बोला था कि मुन्नी पैसा निकालो, मेरे को बच्चा ही समझ लिया था कि मुन्नी पैसा निकालो। अच्छा
1: आपको अभी अभी इसी ठंड में?
2: जी जी जी, इसी ठंड में मैं शूट में थी और चादर वगैरह था, इसीलिए बोलती है कि मुन्नी पैसा लाओ,
1: मुन्ना मुन्नी पैसा। अच्छा तो हमें मुन्ना कहेंगे कि क्या कहेंगे
2: आपको? तो बोलेगा मुन्ना,
1: दाढ़ी वाला मुन्ना। दाढ़ी वाला मुन्ना कहाँ होता है? So, मतलब आपको मुन्नी समझा, वाओ क्या बात है। मतलब
2: जब मैं आई थी नई नई, हाँ, तब तो ज्यादातर मेरे को ज्यादातर रगरगंज किनबा यहाँ आती थी गोंडा, कालबू बहनी, कालबू बिटिया, बस।
1: अच्छा, क्या लोगे बहनी और क्या लोगे बिटिया, मतलब वाओ क्या बात है।
2: मैं यहाँ का बहन बिटिया ही हूँ, बहुत तो बाद में, आंटी भी बाद में, फिलहाल अभी आंटी हो गई हूँ।
1: अभी आंटी हो गई, नहीं अच्छा लग रहा, आंटी अच्छा ही नहीं लग रहा, हटाइए इसको, हम लेंगे नहीं, खत्म कर देते हैं इसको।
2: इसीलिए तो पोलियो पिनाई ना।
1: तो चलिए भाई देखते हैं अगली कॉल पे कौन सी खुराक पीने आए हैं पोलियो की। अंजी हेलो।
3: हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार नमस्कार, क्या हाल है आपके?
3: जी बहुत बढ़िया है, अभी एक बंगाली गाने आपके केंद्र से सुना तो मुझे भी इच्छा हुआ कि चलिए मैं भी कॉल लगा लेता हूँ, क्योंकि इनकी जो बंगाली है ये मुझे गाना सुनकर बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लग रहा है कि इनको बंगाली आता है।
1: नहीं, आपको बंगाली आता है?
3: जी मुझे तो भोजपुरी भी आता है, बंगाली भी आता है, हिंदी भी आता है, और असमीज भी आता है, और नागालैंड का जो भाषा है लैंग्वेज वो भी आता है, मतलब मुझे सात भर लैंग्वेज आते हैं।
1: तो आपको क्या नहीं आता है?
3: मुझे तो बस अभी और भी भाषा सीखना है, बस यही नहीं आता है। और अभी हमारे अनु पांडे जी जुड़े थे, उनकी बातचीत बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि देखिए इस चैनल से जुड़ने के लिए उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया था, उन्होंने नंबर दिया था, उसके बाद इस चैनल के बारे में जानकारी दिया था, तो उनके जरिए मैं जुड़ पाया हूँ।
1: अनु पांडे जी अपना बिजनेस कर रही हैं, पुरानी चप्पल बटोर के नहीं दे रही हैं, इसलिए उन्होंने कॉल किया था।
2: नमस्ते सर।
3: जी जी है, नमस्कार नमस्कार, आपने कैमन आछेन?
2: आमी खूब भालो आछी, आपनी कैमन आछेन? আমি আপনাকে অনেক দিন ধরে শুনছি, কিন্তু এই চ্যানেলে না, অন্য চ্যানেলে।
3: আচ্ছা, কোন কোন চ্যানেলে বলুন তো?
2: না নাম তো নেব না, নাম নেওয়া মানে নাম নেব না, কিন্তু আমি শুনেছি আপনাকে।
3: আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে তো ভালো, তো আপনি যেহেতু আমাকে চিনেন তাহলে তো খুব ভালো, তো আমি আপনার কাছ থেকে একটা সেই কলকাতার রসগোল্লা গানটা শুনেছি, খুব ভালো লেগেছে আমার, তো আপনি আরো এক দুটো গান যদি শুনে দেন যদি বেঙ্গলিতে, আমি আরো খুশি হব।
2: আসলে আমি এখনো গাইতে পারবো না, কেন আমি বেঙ্গল ছেড়ে দিয়েছি 24 বছর আগে, তো 24 বছর আগে ছেড়েছি বেঙ্গল, তাই আমার এখনো বেঙ্গল গানা অতটা পারবো না ভালো, পরে শুনিয়ে দেবো কোনো দিন।
1: मुझे लगा कि अभी जो लोग सुन रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि अचानक शायद चेंज हो गया है फ्रीक्वेंसी। ये टोटल इसमें जो है वो इस टाइम बंगाली चल रहा है
2: तो
3: बाकी जो इस टाइम सुन रहे हैं उनको उनको लग रहा होगा अरे ये तो हम लोग को लगता है किसी कोलकाता के चैनल का ट्यून कर लिया या फिर त्रिपुरा के चैनल से ट्यून किया या फिर असम का कोई चैनल है जो इसमें बंगाली भाषा बोले जा रहा है।
1: बिल्कुल सही बात है। और देखिए ना, बिल्कुल आप लोग भले ही बात कर रहे थे बंगाली में लेकिन समझ में आ रहा था। आप कहते हैं कि मैंने जब सुना रसगुल्ला के बारे में और आपके बोलने तो मुझे बड़ा अच्छा खुशी हुई, ऐसा कोई बोल रहे थे अभी आप। देखा
3: देखिए जो बंगाली जो लैंग्वेज है ना वो बहुत ही मीठा सा शब्द है, इसमें जो बातें किया जाता है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि हर भाषा सबसे मधुर होता है अपने आप में, जिसका जो मातृभाषा है वो अपने आप में मधुर होता है। और बाकी भाषा भी जो है वो भी अपने आप में ही हम सबके लिए ज्ञान बढ़ता है और हम सबको एक दूसरे से जो अपना बातचीत है तरीका है उसमें समझने में बहुत ही इसमें फायदा होता है। तो हम सभी को कोशिश करना चाहिए कि उनकी भाषा को भले ही हम ना बोल पाएं लेकिन समझने की कोशिश करना चाहिए।
1: तो चलिए, इतनी प्यारी बात आपने कह दी है बंगाली के बारे में, तो कुछ प्यारा सा गीत आप भी बंगाली में ही सुना दिए, दो चार लाइन।
3: अच्छा ठीक है, तो सुना देते हैं
1: जी।
3: हो आहा तुमी जो दी थाके आमी जे की गाने गाई देखो बोरे राते তুমি যদি থাকতে আমি যে কি গান গাই সে খবর রাতে
2: খুব ভালো
3: তে রয়েছো তুমি রয়েছো তিরায় মর্মে রয়েছো তুমি রয়েছো হীরায় জীবন কাটিয়ে দেব আমি যে তোমার ছবি আঁকতে আঁকতে হো হো হো আহা जी।
1: क्या बात है भाई साहब, क्या बात है, बहुत प्यारा गाया। मतलब मुझे वर्डिंग तो नहीं समझ में आई कि आपने क्या बोला, लेकिन मुझे सुर बड़े प्यारे लगे आपके। अब वो सविता जी बताने वाली है।
3: कविता जी नहीं है।
1: आपने भले अच्छा गाया लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सविता जी को आप कविता जी बोल दीजिए।
3: अच्छा फिलहाल कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उनको नहीं, नहीं, समझ में आ गया होगा क्योंकि देखिए इस गाने को हमारे मशहूर सिंगर कुमार सानू जी ने अपनी आवाज इसमें दिया हुआ है। तो वो भी कलकत्ता के हैं और उनका जो निक नेम था उनके घर का जो उनको बोला जाता था केदार भट्टाचार्य, तो उन्हीं के नाम से वो जब कोलकाता में आए इसको मॉडल सॉन्ग बोलते हैं जो बंगाली में आधुनिक गान बोलते हैं, तो इसी ऐसा ही एक गीत है ये।
1: अच्छा अविनाश जी, आपको हिंदी भी आती है कि? हाँ
3: जी जी जी, हिंदी तो मैं देखिए भोजपुरी असल में मेरा मातृभाषा है इसलिए मुझे हिंदी तो बिल्कुल
1: हाँ, और आपको भोजपुरी भी आती है? हाँ।
3: और मैं यहाँ पर त्रिपुरा में रहता हूँ इसलिए मुझे बंगाली का पूरी समझ है और यहाँ पर लोगों से लगाव है इसलिए मुझे बंगाली में।
1: मैं वही कह रहा हूँ कि आपको हिंदी भी आती है, आपको भोजपुरी भी आती है, आपको असमी भी आती है, आपको नागालैंड की भी आती है और आपको बंगाली भी आती है। लेकिन अगर कोई पुरानी मोहब्बत मिल जाए आपको वापस से किसी बाजार में जहाँ पे आप मच्छी खरीद रहे हो, तो आप किस लैंग्वेज में इजहार करना चाहेंगे?
3: जी मच्छी तो ये पहली बात तो मैं खाता नहीं हूँ, मैं जो हूँ शाकाहारी भोजन करता हूँ और
1: अरे वाह
3: मुझे
1: पनीर खरीदते हुए
3: तो
2: आमी बोलो आमी बोलो
3: बोलो ना बोलो।
2: ओ बंधु तुम्ही सुनते कि पाओ ये गाना
3: मार, ये गाना मार, ओ ये गाना मार, तू ये गाना मार, हो ये गाना मार।
1: क्या बात है। अरे ये हम समझ नहीं पा रहे, ये हम समझ नहीं पा रहे। तो किस लैंग्वेज में आप इजहार करेंगे, आपने बताया नहीं
3: जी। एक किशोर का आवाज में है ना कि बंगाली में कहते हैं कि आलो बासी आमी तुम आके, और हिंदी में कहते हैं ऐसे एक गीत है ना पंजाबी में कहते हैं, एरकम सिर्फ अभी ऐसा गान रहे माने ऐसा एक गीत है, तो मैं इस गीत को गुनगुना चाहूंगा उसमें। और अभी तो फिलहाल वो गीत मुझे याद नहीं है लेकिन उसको सुन लूंगा पहले यूट्यूब से सर्च करके, उसके बाद फिर उसी गीत को गुनगुना दूंगा।
1: क्या बात, मतलब आप सारे ही लैंग्वेज में विश मतलब इजहार करना चाहेंगे?
3: जी जी जी, सारे लैंग्वेज में,
1: मतलब कहीं से कोई निशाना चूके ना, मतलब ये हम समझ रहे हैं।
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हो सकता है उनको मेरा एक लैंग्वेज समझ ना है तो दूसरा समझ आ जाए, वो तीसरा समझ आ जाए, इसी तरह से मैं हर एक लैंग्वेज में बोल दूंगा।
1: अरे आपकी जो ये प्यारा अंदाज है ना, यही इंसान को भा जाएगा। आप क्या बात करते हैं, बड़ी प्यारी बातें आपकी होती है। तो जब हम लोग थोड़ा बहुत घायल हो जाते हैं, तो जहाँ घायल करना वहाँ तो हो ही जाएगा इंसान।
3: जी जी, और देखिए लोगों के कमजोर की मतलब कि जो कड़ी होती है उसमें वहाँ पर प्रहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो कमजोर कड़ी होती है उन सभी को हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इंसान का कमजोरी है उस वहाँ पर हम सबको और अपना कमजोरी दिखाने भी नहीं चाहिए कि मेरा इस जगह यहाँ पर ये कमजोरी है, क्योंकि वो लोग जो है वो आपके कमजोरी वाली जगह पे ही प्रहार करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अपना कमजोरी अपने को छुपा के रखना चाहिए।
1: छुपा के रखना चाहिए मतलब कुछ बैग के ऊपर रखे रहे, कपड़ा वपड़ा ढके रहे, कैसे क्या?
3: जी जी बिल्कुल, अब वो तो जो छुपाना चाहेगा उनको समझ आएगा कि कैसे क्या करना है।

0: करता हूँ, तो ये सब कुमार सानू जी की देन है कि उनकी आवाज को मैं कॉपी करने की कोशिश करता हूँ।
1: क्या बात है, So, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले लास्ट एक क्वेश्चन ये कि आज की सुबह इस रेडियो के माध्यम से आप थैंक यू किसे बोलना चाहेंगे?
0: इस रेडियो के माध्यम से जितने भी श्रोता सुन रहे हैं सबको थैंक यू करना चाहता हूँ, और खास करके मैं थैंक यू उस व्यक्ति को करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए आने के लिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ये ऐसा माध्यम यहाँ पर जो है हम सब अपने पे विचार रख सकते हैं, तो अनु पांडे जी के लिए क्योंकि उन्होंने मुझे इस चैनल से जोड़ा, तो उनको ही मैं खास कर थैंक यू करना चाहूँगा सुन रहे हैं सबके लिए।
1: वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके अविनाश जी, और हम लोग कहेंगे कि हमेशा खुश रहिए, हेल्दी रहिए और यूं ही सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच
0: जी, थैंक यू,
1: थैंक यू। सो सविता जी,
2: जी
1: क्या खाया था आज आपने नाश्ते में?
2: मैं तो आज खाई थी कोहड़ा का फूल का पकौड़ा।
1: कोहड़े का फूल का पकौड़ा
2: जी,
1: जैसे कभी हम अगर मन करे तो गुलाब का पकौड़ा खा सकते हैं?
2: हाँ खा सकते, गुलाब का पंखुड़ी।
1: गेंदे का?
2: गेंदे का नहीं, गेंदे का अच्छा नहीं लगेगा।
1: गेंदे का अच्छा नहीं लगेगा,
2: नहीं वो मोटा है ना, वो उसको बनाया नहीं जाएगा ढंग से।
1: अच्छा गुड़हल का पकौड़ा?
2: हाँ उसका भी एक एक पंखुड़ी तोड़ तोड़ के बना सकते हैं।
1: और ये जो कागज वाला आता है उसका पकौड़ा?
2: अरे उसका कौन खाएगा,
1: उसका तल के खा सकते हैं, वो पहले वो बेसन लगा कर कुरकुरा
2: खा लीजिए।
1: चलिए इतनी वाहियात बात करने से अच्छा हम अगले कॉलर को ले लें और देखते हैं अगली कॉल पर कौन है। हाँ जी हेलो,
3: हेलो नमस्कार।
1: अरे नमस्कार, कैसे हैं आप?
3: जी बढ़िया है, बढ़िया, बहुत अच्छे हैं,
1: बहुत बढ़िया। हमारे श्रोताओं को अपना नाम और स्थान दोनों बता दीजिए।
3: मैं राकेश बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश शिमला।
1: क्या बात है, देखिए अभी हमारे पास कॉल जो आई थी वो त्रिपुरा से आई थी, दूसरी कॉल शिमला से आ रही है। ठंडक कैसी है वहाँ पे? देखिए हम लोग पहले यही जानना चाहते हैं।
3: बस आप तक जो है तभी ठंडक भेज रहे हैं फोन के माध्यम से।
1: बिल्कुल, तो हम चाहेंगे कि देखिए इस शो का नाम है गायगा गोंडा विद आरजी अदनान, तो मैं चाहूंगा पहाड़ों की जो भाषा है उसमें दो लाइन एक खूबसूरत सी ठंड की हो जाए जरा, तो शुरुआत अच्छी हो जाएगी प्लीज।
3: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पहाड़ी मतलब मैं समझ गया कि मैं आप चाहते हैं तो मैं अपनी बोली में क्या बोलते ठंड की परिचय बता दूं।
1: जी जी पहाड़ी जी, पहाड़ी गाना, पहाड़ी गाना कोई अच्छा सा प्यारा सा।
3: जी पहाड़ी गाना,
1: जी जी जी जी,
3: ओके ओके ओके ओके ओके, बिल्कुल पहाड़ी गाना मैं आपको सुनाता हूँ। पहाड़ी गाना,
1: अच्छा गाना याद, एक मैंने सुना था, एक मैंने सुना था ना, माई दी मेरी ये शिमले दी राहें चंबा जाना
3: कितनी
1: दूर। हाँ राइट राइट राइट राइट, बहुत बहुत प्यारा गाना है ये, बहुत पसंद आया मुझे, प्लीज अगर ये याद है तो प्लीज इसको सुनाइए आप।
3: जी जी जी जी जी जी जी,
1: वाह।
3: तो ये जो गाना तो था मेरी शिमले राय चंबा कितनी, मेरे को याद नहीं है ना तो इसलिए गा नहीं पा रहा हूँ। चलो मैं एक पहाड़ी गाना सुना देता हूँ।
1: हाँ बिल्कुल,
3: हमारे जो हिमाचल के जो कलाकार हैं हमारे सिंगर क्या बोलते कुलदीप शर्मा
1: जी, जी।
3: वो गाना गाते हैं, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा ओ शिल्पा शिमले वाली, रंग रूप तेरा बड़ा प्यारा ओ शिल्पा शिमले वाली, कब हो रहा मिले ना तुम्हारा ओ शिल्पा शिमले वाली। जी जी जी, इस तरह से गाने हमारे पहाड़ी में जो लोकल पहाड़ी है बिल्कुल शुद्ध गाया जाता है, ये तो चंबियाली गाना गाते थे और बहुत अच्छा, शायद आपको समझ आया होगा तो ऐसी उम्मीद करता हूँ।
1: बिल्कुल समझ में आया और बहुत अच्छा लगा, चूंकि हमारे साथ में बंगाल की ही बैठी हुई है सविता जी, उनसे पूछ लेते हैं कैसा लगा आपको?
2: बहुत अच्छा लगा गाना, नमस्ते सर
3: जी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते,
2: आपको मैंने दो तीन बार सुनी हो फोन पे इस चैनल पे।
3: जी जी जी जी
2: जी
3: जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस चैनल पे दो दो तीन बार जुड़ा हूँ, एक बार अंताक्षरी प्रोग्राम में भी भाग लेता हूँ, और मैं जो मैं कहना चाहता हूँ जो त्रिपुरा से कॉल आया था ना।

0: रहता है ना नाची का
1: जी, वो भी जानती
0: हूँ। उन्होंने मुझे नंबर दिया था, तो आप इस प्रोग्राम में जुड़ी है तो मैं तभी तो मैं उससे दो तीन बार जुड़ा था। और क्या बोलते, मुझे तो इस चैनल का पता भी नहीं था, तो ऐसा मैं सरिया केंद्र को सुनता हूँ, तो इस चैनल का मुझे पता चला, तो मैं सोचा चलो मैं कहा आपके पास ही कॉल लगाया जाए
1: जी।
2: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। और इतना प्यारा आपने गाया है, इतनी प्यारी ये आपकी आवाज है, अंदाज है, इतने प्यारे लोग कैसे मिलते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है।
0: देखो सबसे बड़ी बात ये है, ये जो पहाड़ों के लोग हैं, ये हमारे पहाड़ी की यही खासियत होती है, सिर्फ हम प्यारी बात नहीं करते हैं। देखो ये तो ये है कि अपनी तारीफ करना हम देख जाते हैं, क्योंकि हमारे हिमाचल में एक सिस्टम ये होता है कि हम किसी से भी बात करें, अच्छी से बात करें, और हम जो है रिक्वेस्ट ज्यादा करते हैं, जैसे कि कोई भी आए, चाहे कहीं से भी आए आदमी, चाहे यूपी से आए, चाहे मध्य प्रदेश से आए, चाहे कहीं से भी आए, लेकिन उनको हम आतर आतर और खातर बढ़िया करते हैं, क्योंकि हिमाचल की जो हमारे जो पहाड़ी क्षेत्र का ये है कि हम जो है मेहमानों को पूछते हैं, कहते हैं कि आदित्य देव भाव, क्योंकि हमारे यहाँ मनुष्य में है जो है क्या बोलते भगवान मानते हैं, कि यहाँ जो है देवभूमि के नाम से जाना जाता है, तो इसलिए हम आदमी को बड़े आतर खातर करते हैं। हाँ ये है कि आज की डेट में जो है आदमी जो है भरोसा करने के लायक नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी हम किसी भी तरह से मदद हम उनकी कर देते हैं, भले हम घर में ना रखें, लेकिन हम खाना और पानी और चाय हम जरूर पिलाते लोगों को, चाहे कहीं से भी आए।
2: क्या बात है, मतलब आपने कहा खातिरदारी हम बहुत अच्छे से करते हैं।
0: जी जी जी जी जी, हमारा ये उद्देश्य होता है कि चाहे कोई भी आए, लेकिन ये नहीं सोचना कि ये बाहर से आए कहीं से आए, लेकिन ये है कि हम ये सोचते हैं कि जो भी नागरिक है चाहे कहीं से भी आए, लेकिन स्टेट अलग अलग है तो हम हिंदुस्तानी है।
2: मतलब बिल्कुल हम हिंदुस्तानी है और उससे भी पहले हम इंसान है, तो चाहे बल्कि कोई इंडिया से आए या कहीं दुनिया के किसी भी देश से, क्योंकि यही हमारी पहचान होती है कि हम कितने अच्छे हैं। ये बात बिल्कुल सही कही आपने, सो ये बहुत बढ़िया है। अच्छा आपसे भी अगर मैं कुछ सवाल करूं, उसका जवाब आप देंगे?
0: बिल्कुल कोशिश करेंगे, जवाब देंगे।
2: ऐसी कौन सी अजीब सी आपकी आदत है जिसे आप छुपा कर रखते हैं, लेकिन आज आप रेडियो पर उसको कबूल करने वाले हैं?
0: जी जी जी, ऐसी आदत जो है मतलब ये है कि मैं ऐसी आदत है बचपन में जो है अजीब शरारते हैं, इस चीज जो मैं है अभी तक जो है छुपा के रखा हूँ।
2: जैसे
0: कि कई बार हम क्या करते थे, जैसे कि जो पानी होता है पानी, तो हम पानी को क्या बोलते बचपन में नीचे गिराया करते थे, क्या बोलते, और जो है जो मन की वो पूरा कराना है, और जो है घर के जो है बर्तन है वो खाली करने।
2: अच्छा,
0: और जब खाली करने हैं, लेकिन हम क्या करते थे, जब पूछते थे फैमिली वाले कि जो हमने बर्तन भरा था 50 लीटर का 20 लीटर का, तो ये पानी कहाँ गया, तो मुझे क्या पता कितने का था, आप अच्छी जगह पे रखो जा, गलती नहीं है, लेकिन हम उसको गिराते थे बचपन में।
2: वाह, बचपन की ये शरारत आज आपने कबूल किया जो अभी तक छुपा के रखी थी, वाह क्या बात है।
0: जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही करते थे, क्योंकि मतलब माने कि पूरा पानी ना गिराया, हम एक ग्लास मतलब गिराना ही गिराना है, चाहे कहीं भी गिराए और गिराना ही गिराना है।
2: सही बात है, सही बात है। सो बहुत प्यारे हैं आप, और आपसे बात करके इतना मजा आया, और मुझे लगता है कि अब आप हमारे रेगुलर इस परिवार का हिस्सा बन गए हैं, और आप हर संडे अब यूं ही जुड़ा करेंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा करूंगा, बिल्कुल बिल्कुल।
2: बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए आपका।
0: जी जी धन्यवाद
2: धन्यवाद, थैंक यू सो मच। सो भाई ये तो हमारे साथ में जुड़े थे हिमाचल से, और हमारी सविता जी मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। सविता जी
1: जी बोलिए,
2: आपकी कौन सी ऐसी आदत है जो अभी तक आपने छिपाई थी, लेकिन आज आप रेडियो पर कबूल करने वाली हैं?
1: ऐसे तो बहुत सारी आदत है,
2: एक आदत बतानी है बढ़िया वाली, मस्त वाली।
1: चोरी करके खाती थी।
2: चोरी करके खाती थी। क्या था किस्सा?
1: आमल दूध चोरी करके खाती थी।
2: आम या आंवला क्या कह रही हैं आप?
1: अमूल दूध जो।
2: अच्छा अमूल दूध
1: जी, अमूल दूध।
2: और छोटे भाई बहन का ना
1: जी?
2: अरे ये तो वो सेरेलैक्स करके जो आता था सूखा दूध।
1: नहीं, अच्छा, सूखा दूध ही वही अमूल वाली जो थी, वो चाय बनाने के लिए रखा जाता था।
2: हाँ।
1: मैं खा जाती थी, मम्मी को जब पता चलता तो मेरे को पिटाई भी लगता था, और क्या।
2: तो भैया ये चोरी तो खैर मैंने भी की है, इसको तो मैं कबूल करता हूँ, और शायद आज घर जाऊँ तो इसका मैं ताना भी सुनूँ कि अच्छा भाई आपने मेरे बचपन का जो मेरा सब कुछ मेरा अपना था वो आपने चुरा चुरा के खा लिया। तो ये बात सच है, मैंने सच में काफ़ी चोरियाँ की हैं ऐसे। और चलिए इसी बातचीत के बीच में हम चलते हैं एक म्यूज़िकल ब्रेक के तरफ और बढ़िया सा खूबसूरत सा एक गाना सुनते हैं, चूँकि आज का मौसम बड़ा ही रोमांटिक सा है। और हमारे साथ में आज आप लगातार जुड़ते जा रहे हैं थ्रू कॉल इन प्रोग्राम, और साथ ही साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आज हमारे साथ में सविता दुबे जी फ्रॉम हरखापुर, लेकिन आज स्टूडियो से लाइव हैं गुड मॉर्निंग गुंडा के स्पेशल शो गायक गुंडा वेद आरजे अदनान में।

0: क्या बात है। सो हवाएं न जाने कहां ले जाएं, ऐसा कहा गया है इस गाने में, लेकिन मैंने बताया ये हवाएं आखिर लेकर कहां आई हैं। दरअसल ये हवाएं लेकर आई हमारे कमल नयन जी के पास। चलिए हवाएं तो ले आई। कमल जी आप कैसे हैं?
1: हेलो, गुड मॉर्निंग सर।
0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
1: सर अच्छे हैं।
0: सर तो अच्छे हैं आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप कैसे हैं?
1: नहीं सर, हम भी अच्छे हैं और सर भी अच्छे हैं।
0: तो ये आप अपना बताइए, आपने मेरा कैसे बता दिया?
1: लोगों से सर बैठ रहे आपके एलजी बता रही है।
0: अच्छा बहुत बढ़िया। तो क्या चल रहा है आज संडे कमल जी?
1: हाँ सर संडे है सर।
0: अच्छा आप कहाँ पर हैं?
1: सर हम तो अभी काम पे थे सर।
0: अरे वाह क्या बात है। अच्छा अभी इतनी आपने पूरा शो सुना कि नहीं अभी तक? अच्छा जब से अनु पांडे जी, अच्छा तभी आपने खोलते ही तारीफें शुरू कर दी, कितना प्यारा बोलती हैं। हमारी आपने नहीं करी?
1: आपकी तो सब लोग करते ही है।
0: अच्छा
1: करना चाहिए ताकि वो भी तो खुश रहे।
0: तो आप बैलेंस बना रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो यहाँ पे?
1: राजनीति करने वाली बात नहीं है सर। देखिए हम लोग तो सर हमेशा मतलब जो बात करते हैं तो खुशी रहते हैं, तारीफ होती रहती है, लेकिन जो मतलब बीच बीच में करते हैं तो उनका भी जरूरी, क्योंकि वो भी खुश रहे, बार बार वो भी कॉल करें।
0: क्या बात है, बड़े ही नेक इंसान है आप सच में एक अच्छे नेता बनने लायक है। मजाक नहीं, आप में वो सारे गुण हैं।
1: नेता नहीं बनना सर।
0: फिर क्या बनना है?
1: नहीं सर बस जैसे वैसे अच्छा है।
0: अच्छा जैसे हैं वैसे अच्छा है। अच्छा आपने बड़ा प्यारा एक नाम दिया है सविता जी को, क्या नाम था वो?
1: सर उनका नाम मुन्नी दिया था।
0: मुन्नी, चलिए अब सविता जी से पूछ लेते हैं कैसा लगा, बताइए भाई जी के सामने है आपकी कमल नयन जी।
2: क्या ही बोलूँ, मेरे को तो मुन्नी तो बोला जाता 4-5 साल की बच्ची को। ठीक है तो मैं 4-5 साल की
0: कह रही है, 400-500 साल की बच्ची को बोला जाता है।
2: 4-5।
0: अच्छा 4-5।
1: नहीं सर असल में हमने इनको देखा तो है नहीं, लेकिन आवाज से मुझे लग रहा है कि ये मुन्नी ही है।
0: आपको देखा नहीं लेकिन आवाज से लग रहा है कि आप मुन्नी ही है।
2: जी
0: बताइए आप कौन है?
2: मैं सविता दुबे हूँ।
0: नहीं नहीं दूसरा नाम बताइए जो अभी रखा गया।
1: सर क्या ना, अब आप क्लियर बता सकते हैं कि आपके सामने बैठी है, हमारे सामने तो है, हमने तो अभी इनको देखा नहीं, जब देखेंगे तो हम क्लियर करेंगे कि सबका जी कैसी है, क्या है क्या नहीं। अभी तो हमारे लिए मुन्नी जी नजर आ रही है।
0: भाई साहब
2: आपको इंटरनेट पे भी पता चल जाएगा कि मैं कैसी हूँ इस पे।
0: असल में डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सम्मानित किया था, वही कह रही है इंटरनेट पे आप देखिए सम्मान पता चल जाते हैं।
2: इंस्टाग्राम पे हूँ एफएम का।
0: कितने किलोग्राम पे? अच्छा इंस्टाग्राम कह रही हैं, सॉरी। मतलब हमें लगा अपना वजन बता रही है 7 किलोग्राम, हमने कहा बच्चे ही होते हैं, मुन्नी होती है 7 किलोग्राम।
2: तो मैं आपके गोद में रहती 7 किलोग्राम कहती तो।
1: सविता जी सर से बहुत दूर रहिएगा, क्योंकि ये मजाक नहीं, आपको कह भी देंगे और उधर जाएंगे, हमने कहा भी नहीं कि आप मजाक भी लेंगे।
2: वो तो मैं जानती हूँ, वो तो मैं 2 साल से सुन रही हूँ, अच्छी तरह से जानती हूँ।
0: आपसे पुरानी रिश्तेदार तो हमारी ये हैं।
2: इनको तो मैं
1: अच्छी तरह से, लेकिन हमने देखा है कि सर आप घुमा फिरा के मतलब पटक चीज देते हैं, मतलब जीत अपनी ही रखते हैं।
0: अरे क्या बात करिए, बताइए हम तो हारना चाहते हैं, अपनों और रिश्तों में कौन जीतना चाहेगा?
2: नहीं ना आप भी जीते रहे, वही सही है हम लोगों के लिए, आप सबसे ऊपर ही रहिए, हम ही लोग आपसे, ताकि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और मिले भी।
0: सबसे ऊपर हमारे कमल जी रहते हैं, अक्सर जब काम करते हैं तो बहुत ऊपर ऊपर ऊंची ऊंची बिल्डिंग पे जाके करते हैं, बता दिए इनको।
1: हाँ सर हमारे इंस्टाग्राम पे जाकर देख सकते हैं, 7 बिल्डिंग 8 बिल्डिंग झूला नहीं चलता, झूला उससे झूलते लोग, अभी सावन आ रहे हैं ना, सावन में लोग पेड़ पे डालते हैं, हम उसी में झूलते रहते हैं।
2: नहीं हम तो पेड़ पे झूलते हैं, पेड़ पे झूला डालते हैं।
0: लोग सावन में पेड़ पे डाल के झूलते हैं और ये बिल्डिंग्स पे डाल के झूलते हैं, ये कतलों के खिलाड़ी हैं। तो माउंटेन ड्यू पी के जाते हैं कि बिना पिए पहुंच जाते हैं आप?
1: नहीं सर एक बार क्या हुआ कि मैं यहाँ पे मतलब अमृतसर में सर था, तो वहाँ पे मतलब 24 टन का मतलब जो था 200 टन का सर मकान था
0: जी।
1: तो उसके हाइट पे चढ़ा हुआ था, जो मालिक देखने के लिए आया था वो सबसे ऊपर गया सर के, और छत से चढ़ के नीचे नहीं झाँक सकता था, उसकी मतलब इतनी मतलब वो नहीं थी जो झाँक ले।
0: अरे
1: और हम लोग वहाँ से चढ़ करके नीचे जब उतरते थे झूले पे, तो वो नीचे से जा करके लेकर बोला कि तुम लोग कैसे चढ़ते हो।
0: वाह, ये बात सच में वैसे बहुत अलग बात है कि आप लोग इतने ऊंचाई पे झूलते हुए रस्सी पे आप लोग काम करते हैं, मतलब ये बहुत टफ और बहुत रिस्की होता
1: है। जो थोड़ा सा चढ़ना रहता है ऊपर से, जब उसमें चढ़ते हैं तो थोड़ा डर लगता है, बाकी जब उसमें चढ़ जाते हैं तो मजा आता है कि टंगी झूला नहीं झूलते, टंगी मारते हैं, मन करता है कि उसमें झूलते रहे,
0: मन करता है कि दो चार बिल्डिंग और ऊपर रख देते हैं ऐसे। भैया हमें लगता है कि अगर कोई सुपरमैन में कन्वर्ट किया जाएगा तो आप ही होंगे यहाँ गोंडा से।
1: नहीं सर, गोंडा में कुछ मतलब आइडिया इससे है कि यहाँ पे बुलाया जाता है कि मतलब आप ही के बच्चा आकर के कर दीजिए, जैसे आपने देखा आशीर्वाद हॉस्पिटल सर, उसको हमने ही किया था।
0: अरे वाह,
1: ये जो ज्योति पहले से सर, इसका भी हमने किया था।
0: अरे वाह,
1: ये सर मतलब हाइट वाले जो जानते हैं कि हाइट का काम कर देते हैं तो अक्सर ही बुलाते हैं,
0: हाइट वाले काम जो है वो आपको दिए जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कम्प्लान पीने से हाइट बढ़ती है कि नहीं?
1: और सर अभी ये जो बालाजी मंदिर है इसका जो शिखर है ऊपर वाला, उसको हमने ही करके मतलब जो है दिया भी असल में किए थे, और एक लड़का किसी ने मतलब दूर से वीडियो बनाया था, उसका 2 घंटे के अंदर 6,000 लोगों ने देखा था उसका।
0: आप बताइए, चढ़े आप, मेहनत आपकी, व्यूज उस बंदे को मिल।
1: और सर वो नहीं सर, वो आ करके मुझे से पूछ रहा है कि इससे कौन चढ़ा था, तुमने कहा भैया हम ही चढ़े थे, तो कहता है ये देखो यार वीडियो भी हमने डाला था, 6,000 पहुंच गया।
0: वाह, तो भैया आपने कहा नहीं कि इसमें मेरा शेयर है, दो मुझे भी?
1: नहीं सर, हमने ऐसा लगा कि हमने डाला लेकिन हमारा उनमें गया नहीं था।
0: अच्छा, आपने कहा रुको अभी दोबारा चढ़ के दिखाता हूं, मैं ही था। वाह क्या बात है। So, कमल जी, अगर आपको भी कोई ऐसा, जैसे मैंने पूछा था इससे पहले भी अपने लिसनर से कि आपकी कौन सी आदत है जो अभी तक आपने छिपाई थी लेकिन आज आप कबूल कर रहे हैं रेडियो पे, तो वो कौन सी आदत है?
1: ऐसे तो कोई बात है नहीं।
0: नहीं, देखिए कोई बात होगी आप शायद बताने नहीं चाह रहे।
1: ऐसी तो कोई बात नहीं आ रही नजर में।
0: पक्का? देखिए बात है आपके पीछे ही एक बात है, देखिए आप।
1: और आप बता दीजिए कि हो सकता है कि आ जाए दिमाग में।
0: नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं होगी, बस मैं बस ऐसे ही कह रहा था। बट यह है कि आपने सारी बातें और सारी यादें और चाहे सीक्रेट्स हो, सब हर बार जब भी हमारी आपकी बात होती है तो आप वैसे भी बता देते हैं, तो आप वैसे भी खुली किताब सच में है, इसमें कोई कहने की बात नहीं है, और इसीलिए हमें बहुत प्यारे भी लगते हैं। मैं प्यारा बोलने वाला था अविनाश जी को, लेकिन मुझे याद आया कि भैया कमल नयन जी सुन रहे हैं, गुस्सा आ जाएंगे, कहेंगे हमें जो बोलते हैं वो उनको कैसे बोल सकते हैं। सही किया मैंने?
1: नहीं और मार बच्चा, हम तो जो थोड़े से याद है। गाँव में सर पहले ऐसे जब बुढ़ाने होते थे तो ऐसे बोलते थे, और मोर बच्चा तो कहाँ चले गए वो, अरे तुझे तो मैंने बताया ना, तू कहा खाना बनाया बहू का खाना था, बोले तू कहा ना खा खा तू खाए ना ना ना।
0: देखो भाई, एक ऐसी है जो हमारे बगल में मुन्नी बन के बैठी है, और एक जो है एक मुन्नी की दादी बन के बैठी है सामने से। बढ़िया।
1: पहले की जो है मतलब जो और हो जाती थी सर, ऐसा बोलती थी वो, अभी भी मतलब है वो बोलती तो बड़ा अच्छा लगता है।
0: बड़ा अच्छा वो बोलती है तो आपको मजा आता है? वाह, ये तो गलत बात है, आप मजे।
1: हाँ तो उसको मतलब जब रहते हैं तो उसको सीखते हैं कि बोलती है तो बड़ा मजा आता है, तो उसको प्रैक्टिस करते हैं बोलने की।
0: अच्छा, तो अगर आपको मतलब बूढ़े होंगे तो आप भी चाहेंगे कि आप भी ऐसे ही बोले?
1: हाँ बिल्कुल सर, ऐसे ही बोलने की कोशिश करेंगे, मतलब जैसे हम सोच रहे हैं कि हम लोग जब और ओल्ड हो जाएंगे तो हम लोग के बच्चे सोचेंगे कि हाँ बहुत अच्छा बोल रहे हैं।
0: चलिए अच्छा, तो जरा बोल के फिर इसको धन्यवाद हमारा ज्ञापित करिए जो अभी बातचीत हुई उसको। ऐसे ऐसी बूढ़े के इतना बोल के बताइए कि कैसा लगा अभी बात करके।
1: लेडीज में या जेंट्स में?
0: नहीं नहीं लेडीज में। लेडीज ज्यादा अच्छा कर लेते हैं।
1: लेडीज
0: जी जी
1: ओ भाई यार नान कहाँ चला गया है, तो भाई ने भाई की आवाज नहीं आई, मार दो भाई की आवाज यार।
0: मतलब लिटरली एपिक है भैया, आप बड़ा मजा।
1: और जो सर बीमार होते खटिया पे बैठे रहते हैं वो ऐसा बोलते हैं, ओ भैया
0: कसम से बड़ा मजा आ रहा है
2: आज दिन बन गया मेरा।
0: आ भैया बहुत मजा आया और प्रीति जी ने बोला
1: असल में बात क्या सर जी, जो हमारी आवाज है जो सर मोबाइल से बात करते हैं या ऐसे बात में तो पतली आवाज आती है, जब रियल में बात करते सामने से तो मतलब जब एक्टिंग करते तो लोग मतलब कहते बहुत अच्छा बोलते हो, तो पता नहीं क्यों हम अपने आवाज को जो सुनते हैं बाद में तो बहुत पतली सी हमें लगती है।
0: तो मतलब अगर आपकी आवाज को देखा जाए तो गोंडा की अनजही गली में चली जाएगी वो पतली सी।
1: हाँ हाँ चूड़ी वाली जो गली है कई बार नहीं होगा।
2: अरे मैं चोरी वाली गली से ही निकल के गोंडा आती हूँ।
1: हाँ बस वहाँ पे जाकर के बस सीधे बस वहाँ पे अनार वाली गली जाकर के बस ये जंतर वाला चौराहा वहाँ पहुँच जाती
2: है। जी जी, जी।
0: और प्रीति जी कह रहे हैं आपके बोलने की स्पीड एक्सप्रेस ट्रेन जैसी है। तड़ा तड़ा तड़ा तड़ा तड़ा तड़ा तड़ा बहुत मजा आया, बहुत अच्छे हैं और बहुत प्यारे इंसान हैं आप, और ऊपर वाला चाहे और ये यूनिवर्स चाहे तो आप हमेशा यूं ही खुश रखे आपको, मुझे उम्मीद है, मैं पूरी दुआएं देता हूं आपको, और बहुत प्यारे इंसान हैं आप, लिटरली बहुत प्यारे हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया कमल जी।
1: अगले संडे को कोशिश करके आएंगे सर, आपकी जलेबी जो है आपकी बन के टंगी हुई है अभी तक आपके पास पहुंची नहीं है।
0: अरे दो हफ्ते तीन हफ्ते पहले तलवा के रखवा दिया अभी। चलिए बिल्कुल बिल्कुल
1: थोड़ा सा हो गया सर, लेकिन अगले संडे को आवाज करके।
0: अरे बिल्कुल बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वही पतली आवाज के साथ आइएगा, और जब तक वो बूढ़ी दादी की आवाज में आप मुझे नहीं पुकारेंगे तब तक मैं पलटूंगा नहीं पीछे। ओके थैंक यू सो मच कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। सो भाई ये तो थे हमारे साथ में कमल नयन जी। प्रीति जी ने बताया कि जिस तरह से उनकी सुपर एक्सप्रेस वाली ट्रेन की रफ्तार है हमारी। सविता जी का क्या कहना हमारे कमल जी के बारे में बताइए आप, कैसा लगा आपको बातचीत?
2: आज तो लग रहा है कि मैं हंसते हंसते गिर पड़ रही थी, अब मैं आपको संभाल नहीं पा रही थी उनकी आवाज़ सुन के। और जिस तरह से अवधि में बोला वो तो कमाल का।
0: बहुत बढ़िया मिमिक्री की और बहुत बढ़िया अंदाज है उनका, और मुझे लगता है कि भाई जो कमल नयन जी है, देखिए क्या होता है सविता जी की, जो भी सच्चे लोग होते हैं वो ऐसे ही बढ़िया लगते हैं, क्यों? क्योंकि वो जो करते हैं वो दिल से करते हैं।
2: जी जी, अपना दिल का साफ रहता है और कुछ वो छुपा के नहीं रहता।
0: अरे दिल के बहुत साफ हैं ये, दो टाइम इनके यहाँ झाड़ू इनके दिल में लगती है और तीन टाइम पोछा लगता है, मैं जानता हूँ, मजाक की बात नहीं है, दिल बहुत साफ है इनका।
2: और मेरा
0: आपका तो चार टाइम झाड़ू लगती है, ज्यादा ही है।
2: आपका तो छह टाइम।
0: हमारा लगती नहीं है,
2: छह टाइम लगता है।
0: हमारा फूक फूक के काम चला लेते हैं। चलिए एक और लास्ट कॉल लेते हैं, देखते हैं लास्ट कॉल पे आज की कौन है। हाँ जी हेलो।
3: हेलो
0: जी, क्या नाम है आपका?
3: गुड मॉर्निंग सर।
0: आपका नाम गुड मॉर्निंग सर है? ओके गुड मॉर्निंग सर, कैसी हैं आप?
3: संडे वाला गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हमारे साथ में सविता दुबे जी भी है।
3: जी मैम नमस्कार, सुप्रभात,
2: सुखी रहो, आशीर्वाद दे रही हूँ।
3: थैंक यू।
0: नहीं मैम तो नहीं बोला आप, बहुत बढ़िया है, लेकिन अभी नया नाम आपको शायद पता नहीं है क्या हमारी मैम का?
3: मुन्नी सर, मैं मॉर्निंग से सुन रही हूँ, बट सॉरी मैं कॉल नहीं कर पाई, और अभी तो मैं पहले ट्राई कर रही थी तो बिजी आ रहा था, मैसेजेस नहीं कर पाई क्योंकि अभी मैं किचन में बहुत ज्यादा बिजी हूँ सुबह से।
0: अच्छा हुआ आपने लास्ट कॉल कर ली, नहीं तो हमने 112 पे आपकी कंप्लेन कर भी दी थी पहले ही।
3: एक्चुअली सर आप मेरे घर पे दावत
0: है। दावत है आज आपकी?
3: नहीं दावत है।
0: नहीं आपने दावत ली है कि आपकी दावत है?
3: ली है। अरे नहीं, नहीं, नहीं, नहीं,
0: क्या बात है,
3: बहुत मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आ रहे तो मैं बस किचन में बिजी हूँ।
0: अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक। आज सारी बातचीत में क्योंकि आपने सुन लिया, लास्ट में आपकी कॉल भी आई है, सबसे बेहतरीन पार्ट
3: ट्राई कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया सर बात की हुए।
0: बिल्कुल, सबसे बेहतरीन टाइम कौन सा लगा? मतलब पूरी बातचीत में जब से आप सुन रहे हैं स्टार्टिंग से,
3: बस ये कमल जी जब कॉल करते हैं माशाल्लाह कसम से मजा आ जाता है।
0: क्या मजा आया?
3: इनके हंसाने का जो अंदाज है, मैं तो इनको सामने से मिलना चाहूंगी एक बार।
0: ये लीजिए, अभी वो सामने से आ ही नहीं पाएंगे, अभी तो छत पे चढ़े हुए वो।
3: ये बहुत बहुत प्यारे इंसान है।
0: वही मैंने कहा ना, ये इतने सीधे, मतलब इतना साफ बोलने वाले, इतने साफ दिल के हैं कि इनकी हर एक चीज बहुत क्लियर नजर आती है।
3: और इन्होंने एक बात बिल्कुल सही कही थी
0: जी जी।
3: कुछ समय पहले इन्होंने कॉल किया था, तो उन्होंने कहा था कि जब आपसे बात होती है तो आपसे बात करने के बाद भी आप ही की बातें चलती हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहती है। मेरे साथ भी होता है
0: जब कमल जी से बात होती है।
3: नहीं नहीं, जब आपसे किसी की बात होती है तो वो बात करने के बाद भी आप ही की बात करता है और आप ही की बात पे हंसता है। तो ये बात बिल्कुल उन्होंने सही कही थी।
0: क्या बुराई करता है उसके बाद?
3: मतलब जो बातें कही थी वो हाँ। मैं चीजें समझ गई थी तो मुझे सटीक लगा, क्योंकि मेरे साथ भी यही होता है, जब आपसे बातें होती है तो आपसे बात करने के बाद ही आप ही की बातें होती
0: है। ऐसा
3: तो मुस्कुराहट सी बनी रहती है, तो ये बड़ा अच्छा लगता है।
0: सविता जी, ये सही बात है कि झूठी बात है? अब आप बताइए, आप हमारे साथ बैठी हैं।
3: ये सही बात है, मैम एग्री करेंगे मेरी बात से? क्यों मैम,
2: बिल्कुल सही है। जब तक मैं काम में रहती हूं ठीक है, खाली टाइम
3: की वजह से मेरी सुबह इतनी खूबसूरत बनी है सर कि मैं बता नहीं सकती। थैंक यू।
0: चलिए, बता ही नहीं सकती तो हम पूछेंगे भी नहीं।
3: नहीं, बता नहीं सकते क्योंकि कभी कभी किसी चीजों को ना एक्सप्लेन करने के लिए वर्ड्स कम पड़ जाते हैं।
0: क्या बात है,
3: जैसे कि हमारा वही होता है,
0: जैसे कि हमारी सविता जी की जब हम इज्जत में कुछ बोलते हैं तो सच में हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, हम सोचा करते हैं क्या बोले। और जब आपकी यानी पूर्णिमा की जब स्माइल के बारे में बात करनी होती है तो भी हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। और कमल नयन जी के जब साफ दिल के बारे में, जिसमें तीन टाइम झाड़ू लगती है ना सविता जी,
2: हाँ
0: तीन टाइम झाड़ू और चार टाइम पोछा लगता है, उनके बारे में जब बात करनी होती है तो भी मेरे पास शब्द कम पड़ जाते हैं, मतलब लिटरली।
3: जी सर, तो आपसे बात करके तो मेरे हिसाब से सभी लोग खुश हो जाते हैं, जो उदास भी होते हैं वो भी खुश हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं तो संडे का इंतजार भी इसीलिए होता है कि बस आज जतना से बात करनी ही करनी है।
0: अच्छा। अगली बार से हम भी घोड़े का चना खा के आएंगा ज्यादा ताकत के लिए। और आसान है।
3: तो बच्चे सुबह से पूछ रहे हैं सर के पास कॉल कब करोगी, सर से मेरी बात कब होगी।
0: क्या बात है। तो चलिए भाई, बच्चे भी हैं, मौसम भी प्यारा है, मेहमान भी आ रहे हैं, सविता जी भी, हम भी हैं, तो अब जरा सा एक प्यारा सा कोई गाना दो चार लाइन आप सुना दीजिए।
3: जी सर, गाना?
0: हाँ हाँ, बस दो लाइन।
3: तो पहले गाना तो मैं अब क्या सुनाऊं, तो मैं एक गीत सुनाती हूँ।
0: अच्छा, गाना नहीं, गीत सुनाएंगी आप, हमें तो ये नहीं पता था। अच्छा ओके। मुझे लगा गाना ही गीत होता है।
3: की नवाजी जाके पहुंची फलक से आके, तो जाके पाया तुझको मेरे रहनुमा, ख्वाबों से तेरी मेरी दुनिया नहीं है, रख ली मुझको तू मेरे हमनवा। थैंक यू सर, मुझे इतना ही आता।
0: वाओ, क्या बात है भाई। और जॉन अब्राहम पे फिल्माया गया ये गाना, बहुत जबरदस्त, बहुत प्यारा।
3: जी सर, बेटी से बात कर लीजिए सर, दो मिनट।
0: बिल्कुल बिल्कुल
3: जी सर, ये लीजिए। हेलो।
0: हाँ बच्चे, क्या नाम है आपका?
4: वैष्णवी।
0: वैष्णवी, गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप?
4: ठीक है, आप कैसे हैं?
0: मैं कैसा लग रहा हूँ आपको बात करने में? हाँ, बट मैं आप जितना अच्छा नहीं हूँ, बट आप अगर मिलने आ जाएंगे जिस दिन मुझसे, मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा। तो कब आ रही हैं आप?
4: जब आप बताइए।
0: जब आप आइए। जब मैं आपके लिए काफी सारी चॉकलेट्स लेके रख लूँ ना यहाँ पे और चिप्स, उसके बाद आप आइए। डन? पक्का?
4: पक्का
0: पक्का ना वैष्णवी?
4: हाँ, पक्का।
0: अच्छा, आज सुबह वैष्णवी कितने बजे उठी थी?
4: है?
0: आज सुबह आप कितने बजे उठी थी मॉर्निंग में?
4: 8 o'clock।
0: 8 o'clock उठी थी। है? सबसे पहले किसका चेहरा देखा था आज आपने?
4: नानी का।
0: तभी आज इतनी प्यारी आवाज लग रही। देखा सविता जी, मैं कह रहा था ये बच्ची जो है किसी अच्छे इंसान से मिली है। So, आपको और नानी को बहुत ढेरों सारा प्यार हमारी तरफ से, एंड मैं आपका वेट करूंगा कि आप आइए यहाँ पे।
2: मैं भी मिलना चाहती हूँ।
0: ये देखिए, आपकी एक और फ्रेंड बैठी है छोटी सी।
4: गुड मॉर्निंग मैम।
0: मैम नहीं, मुन्नी नाम है इनका। भाई मुन्नी, अगर ये हमारी वैष्णवी आती हैं स्टूडियो में तो आप क्या दोगे इनको अपनी तरफ से?
2: मैं इनको चॉकलेट दूंगी।
0: अरे वाह, चॉकलेट्स मिलेगी, क्या बात है। सो वैष्णवी, आप सुन रहे हो ना? इतनी सारी चॉकलेट्स मिलने वाली है, तो चलो हम लोग वेट कर रहे हैं, आप बहुत जल्द आना, आपका इंतजार है। ओके बच्चे ख्याल रखना अपना। जी सो
3: जी सर,
0: बिल्कुल बिल्कुल इंतजार कर रहे हैं आप, इन लोगों को जल्दी लेके आइएगा। तो दो दो तरफ से
3: मॉर्निंग में वेट कर रहे हैं, ये जो क्लॉक हुआ है बिल्कुल कब आएंगे सर, कब आएंगे।
0: बिल्कुल, तो हम लोग इंतजार करेंगे इनसे मुलाकात का।
3: जी सर बिल्कुल, मैं जरूर लेकर आऊंगी।
0: पक्का पक्का बिल्कुल, एंड बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके पूर्णिमा, थैंक यू सो मच कि आपने कॉल मिलाया।
3: थैंक यू सो मच,
0: बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। तो सविता जी कैसा लगा, जाने से पहले क्या बोलना चाहेंगी आप?
2: मेरा तो मन भर गया, मेरा शब्द कम पड़ रहा है कि मैं क्या बोलूँ, बहुत खुश हूँ।
0: क्या बात है, बस हमको यही चाहिए भाई, हम संडे में जुड़ते ही इसलिए हैं ताकि खुश हो पाए और अपनी चीज़ों को बांट पाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जुड़ने वाले सभी श्रोताओं का। आप फ्रीक्वेंसी से सुन रहे थे, आप रेडियो गार्डन से सुन रहे थे, साथ ही आप रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से भी सुन रहे थे। सो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और जाने से पहले रोमांटिक सा ये सॉन्ग, चूँकि आज का मौसम काफ़ी रोमांटिक है, सो ये आप सभी को डेडिकेटेड है RJ अदनान की तरफ से।

0: हम अतुल कुमार कश्यप, आप सुनत हो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
2: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: WXYZ. Now I know my ABCs.
1: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गुंडा की अपील।
2: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

जी हाँ श्रोताओं, और भीख में मोती लेनी भी नहीं चाहिए, और अगर मुश्किलों से मिलके आप माला बना सकते हैं तो वही बनाना चाहिए। जी हाँ, आज का दिन है रविवार और शो का वक्त है हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। वैसे तो आज गीता दीदी हमारी थोड़ी सी रेस्ट पे हैं, और इसलिए हमने कहा भाई आज का रविवार हम सजाते हैं आपके साथ में, आपकी उन कहानियों के साथ में जो आपको प्रेरणा देती हैं और कहीं ना कहीं हमारे जीवन की नैतिकता को हमारे बीच में बनाए रखती हैं और बेहद ज़रूरी भी होती है। इससे पहले कि मैं कुछ और कहूँ, हैप्पी हैप्पी हैप्पी वाला संडे टू ऑल ऑफ यू डियर लिसनर्स। हाँ जी, मैं हाजिर हूँ आपके बीच में आपका अपना प्यारा शो लेकर के, जिसका नाम है हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। वैसे तो आज गीता दीदी है नहीं, इसलिए आपकी होश एंड दोस्त आरजे आकांक्षा आप सभी के बीच में मौजूद है। फिलहाल वक्त हो चला है 11:19, यानी कि आपके हम्प्टी डम्प्टी वाले सेगमेंट में प्यारी प्यारी कहानियों का। तो चलिए, आज जो कहानी आपसे साझा करनी है वो मैं लेके आ गई हूँ और आपसे साझा करने का वक्त भी हो गया है। वैसे बोलते हैं ना दोस्तों कि मेहनत ज़्यादा अच्छी चीज़ है या फिर किस्मत, तो आज इसी पे हम आपसे चर्चा करेंगे। बेशक क्योंकि संडे का वक्त भी है, कहीं ना कहीं आलस भी आ रहा है, तो हम थोड़ा जब आलस की मुद्रा में होते हैं तो हम अपनी चीज़ों को किस्मत पे छोड़ देते हैं, और जब हम बाकी दिनों में होते हैं यानी संडे को छोड़ के, तो फिर हम मेहनत में ही लगे रहते हैं। जाहिर सी बात है, 6 दिन हम काम पर होते हैं, 1 दिन छुट्टी पर होते हैं, और फिर उसके बाद में वही सपने देखना आराम की मुद्रा में। चलिए फिलहाल चलते हैं उस ओर जो आज की कहानी हमारी, कहानी का नाम मैंने रखा है मेहनत या किस्मत, ज़्यादा ज़रूरी कौन है ना। हम भी सोचते हैं अपनी लाइफ में कि दोनों में से सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है। चलिए एक कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं कि दोनों में ज़्यादा ज़रूरी है कौन। एक गाँव में दो दोस्त रहते थे, आरव और विवान। आरव का मानना था सब कुछ किस्मत से होता है, अगर भाग्य में लिखा है तो बिना मेहनत के भी मिल जाएगा। वहीं विवान कहता था किस्मत तभी साथ देती है जब इंसान मेहनत करता है। बिल्कुल, कर्म से जुड़ी होती हुई है हमारी किस्मत, और हम कहीं ना कहीं कर्म भूमि पे हैं, और कर्म भूमि पे अगर कर्म नहीं करेंगे तो हमारी किस्मत भी नहीं चमकेगी। जिस तरह से हम कम कर्म करते हैं उसी तरह से, जैसे बोलते हैं ना कि एग्जामिनेशन से पहले हम जितनी मेहनत करते हैं उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट निर्धारित होता है, सेम उसी तरह से जिस तरह से हम कर्म करते हैं, जितना हम मेहनत करते हैं उसी तरह से हमारी किस्मत भी चमकती है, बनती है। तो ये दो मित्र थे जिनका नाम था आरव और विवान। दोनों की सोच एक दूसरे से अलग थी। दोनों ने तय किया कि वे शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाएंगे। भाई अब टेस्टिंग का टाइम आ गया है, तो दोनों ने सोचा कि अब हम अपनी किस्मत को आजमाते हैं। रास्ते में उन्हें एक किसान मिला। किसान बोला, बेटा मेरे खेत में बीज बो दो, बदले में खाना और कुछ पैसे मिलेंगे। आरव ने कहा, अगर मेरी किस्मत में होगा तो बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाएगा। वह पेड़ के नीचे बैठ गया, विवान खेत में उतर गया, दिन भर पसीना बहाया, बीज बोए, खेत तैयार किया। शाम को किसान ने विवान को मेहनताना दिया और साथ में कहा, तुम्हारी लगन देखकर मैं तुम्हें अपने दोस्त की फैक्ट्री में नौकरी की सिफारिश भी करूँगा। आरव खाली हाथ रह गया। कुछ साल बाद विवान उसी फैक्ट्री का मैनेजर बन चुका था। आरव अब भी लोगों से यही कहता फिर रहा था कि अगर मेरी किस्मत खराब है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एक दिन की बात है कि दोनों दोस्त फिर से मिलते हैं। आरव ने पूछा, लगता है तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है यार। विवान मुस्कुरा कर बोला, किस्मत अच्छी नहीं थी, मैंने मेहनत की, इसलिए किस्मत को मेरे दरवाजे तक आना पड़ा। कहते हैं ना कि अगर आपके हाथ में, आपके हुनर में वो ताकत है तो आप पहाड़ को चीर करके भी वहाँ से बिल्कुल पानी निकाल सकते हैं, और कहीं ना कहीं नदी, सागर, सरोवर सब कुछ तैयार कर सकते हैं। तो सारे किस्मत का जो फल है ना, जो राज है ना, जो शुरुआत होती है, वो हमारे मेहनत से, हमारे हाथों से होती है। तो कुछ ऐसी कहानी है आज की। और तभी पास खड़े एक बुज़ुर्ग ने उन दोनों की बात को सुन लिया। बुज़ुर्ग बोले, किस्मत दरवाज़ा खोल सकती है लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता मेहनत ही बनाती है। तो कहानी से ये सीख मिलती है दोस्तों कि किस्मत का अपना स्थान है, लेकिन मेहनत के बिना किस्मत भी अक्सर मौन रहती है। बीज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे बोया ही ना जाए तो फसल कभी नहीं उगेगी। किस्मत पर भरोसा रखिए, लेकिन भरोसे के साथ हाथों को काम में लगाइए, क्योंकि ऊपर वाला भी उसी की तकदीर को लिखता है जो अपने पसीने से अपने सपनों की इमारत को खड़ा करता है ना। तो किस्मत और मेहनत दोनों
एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमको मेहनत करके अपनी किस्मत लिखनी होती है, बस इतनी सी बात थी इस कहानी की। कैसी लगी कहानी आप बिल्कुल से चैट बॉक्स में आके बता सकते हैं। फिलहाल मेरे पास एक और प्यारी सी कहानी है, मन कर रहा है वो भी आप तक पहुँचा ही दें। चलिए तो फिर सुनाती एक और कहानी आपको। बोलते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भाई अगर इतना ही मीठा होता है तो आज तक हमें मिला क्यों नहीं। सब्र जितना रखोगे उतना ही मीठा फल मिलेगा लोग कहते हैं। इंतज़ार करते करते फल तो आज तक हमें दिखा नहीं, तो फिर हम कैसे मान लें कि सब्र का फल मीठा होता है। इसी को लेकर के आज मेरी दूसरी कहानी है। देखिए आज की जो मैंने दोनों कहानियाँ ली थी वो ली थी आपके दैनिक जीवन से ही कहीं ना कहीं प्रेरित होकर। हम आपस में बैठ के जो बात करते हैं, जो चर्चा करते हैं उन्हीं से, और कई दफ़ा होता है इंसान इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाता है और भूल जाता है कि एक्चुअल में वो उसे करना क्या है। चलिए फिलहाल एक कहानी तुम्हारी कंप्लीट हो गई है कि मेहनत ज़्यादा ज़रूरी है या किस्मत। तो भाई ज़रूरी दोनों ही है, कभी भी अधूरी चीज़ से काम नहीं होता। गाड़ी के अगर दोनों पहिए नहीं सकुशल हैं तो फिर गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। उसी तरह से अभी दूसरी कहानी की बारी है। आप शो सुन रहे हैं आपका, जी हाँ, हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, और संडे स्पेशल ये शो है और सेगमेंट है कहानी वाला। दूसरी कहानी है सब्र का फल मीठा होता है। एक छोटे से गांव में रघुवीर नाम का एक माली रहता था। उसे फूलों और फलों के पौधे लगाने का बहुत शौक था। एक दिन उसने अपने आंगन में आम का एक पौधा लगाया। वह रोज़ उसे पानी देता, खाद डालता और उसकी देखभाल करता। कुछ महीनों बाद पड़ोसी ने ताना मारते हुए कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? देखो मेरे घर की सब्जियाँ 2 महीने में तैयार हो गई, तुम्हारा आम का पेड़ तो अभी तक फल भी नहीं दे रहा है। रघुवीर मुस्कुराया और बोला, हर चीज़ का अपना अपना समय होता है भाई। समय बीतता गया, 1 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल। लोग कहते शायद ये पेड़ कभी फल ही नहीं देगा, लेकिन रघुवीर ने कभी सब्र नहीं छोड़ा। वो रोज उसी प्यार के साथ में उस पेड़ की देखभाल करता रहता, जैसे कोई उसका छोटा सा बच्चा हो। होता है ना हमारे घर में भी, अगर हमने कोई भी पौधा लगाया है तो उसको कितने हिफाजत से रखते हैं। धूप हो रही हो, बहुत ज़्यादा तपिश हो, तो उसको हटा के छांव में कर देते हैं, क्योंकि अभी पौधा हमारा नन्हा है, कुमला आ जाएगा। सेम उसी तरह से लगातार 3 वर्षों तक रघुवीर ने उस आम के पेड़ की रखवाली की, उसकी देखभाल की। 5वें साल बसंत आया, पेड़ पर बौर आए, फिर छोटे छोटे आम लगे। कुछ ही महीनों में पूरा पेड़ मीठे और रसीले आमों से लद गया। पूरा गांव उन आमों का स्वाद लेने लगा। तब वही पड़ोसी बोला, तुम सही थे यार, अगर तुम बीच में हिम्मत हार जाते और पेड़ को काट देते तो इतने मीठे फल हमें कभी खाने को ना मिलते। रघुवीर ने मुस्कुरा कर कहा, जो चीज़ जितनी कीमती

0: निराश मत होइएगा, हो सकता है प्रकृति आपकी सफलता को थोड़ा और मीठा बनाने की तैयारी कर रही हो। याद रखिए, सब्र कभी व्यर्थ नहीं जाता, उसका फल सचमुच में बेहद मीठा होता है। उम्मीद है आज की दोनों कहानियाँ जो कि रियलिस्टिक है और रिलेटेबल है आपकी लाइफ से बेहद पसंद आई होगी आपको। चलते हैं आप नन्हे मुन्हे कलाकारों को, बच्चों को और कुछ विचारक महोदयों को, कुछ वैज्ञानिकों को बुला के लाते हैं। तब तक आप गानों के लुफ्त उठाइए और हाँ, शो चल रहा है आपका, बिल्कुल मत भूलिए हम्प्टी डम्प्टी विथ गीता दीदी। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक छोटा नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा होगा। जब तक हम बच्चों को तैयार करते हैं, आप एंजॉय करते रहिए रेडियो गैनेस्ट 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो के खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
2: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
4: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
8: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
9: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
10: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
11: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
10: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे 1 हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88-40-33-95-84। अब बारी है आपकी। भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
3: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: हाँ जी दोस्तों, तो छोटे बच्चों को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। वो ऐसे बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं कि हमको यकीन भी नहीं होता है। मैं वापस से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में संडे स्पेशल गीता दीदी, नहीं हम्टी डम्टी विद गीता दीदी लेके। भाई हम्टी डम्टी यानी हमारी सेहतमंद और नॉन निहाल नौ से ज्यादा प्यारे प्यारे बच्चे। चलिए फिलहाल वक्त हो गया है आपके अपने शो का और हम भाई बच्चों को तैयार करके ले गए हैं, आ गए हैं आप सभी के बीच में। वैसे हमेशा की तरह आज हमारे प्यास में बहुत ही प्यारी सी, क्यूट सी, नन्ही सी, दुलारी सी हमारी सानिध्या जी हैं। और सानिध्या जी ने तो भाई बड़े बड़े कर्तव्य वाले काम किए हैं जो हम भी आज तक नहीं कर पाए हैं। और आज इनके पिटारे में क्या है, आइए जानेंगे इन्हीं से। लेकिन उससे पहले भाई जानेंगे कि आज का इनका संडे की जो शुरुआत रही वो कैसी रही। क्यों सानिध्या, कैसे हो आप?
1: दीदी बहुत अच्छी।
0: बहुत अच्छी हो आप? बहुत अच्छे में कितने बहुत अच्छे?
1: दीदी बहुत
0: में कितनी बहुत? ये तो बताना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए, कल बारिश हुई थी रात में?
1: जी दीदी।
0: आप सो रहे थे, जग रहे थे?
1: सो रही थी
0: तो फिर आपको बारिश का तो आनंद मिला ही नहीं होगा। हाँ आपको पता है हम भीगे थे? हमको तो ये भी पता है कितनी देर बारिश हुई थी। वो कहते हैं ना, जो सोए मतलब वो सब कुछ जान पाता है, और जो नहीं सो मतलब सॉरी जो जगता है वो सब कुछ जानता है, जो सो जाता है उसको कुछ पता ही नहीं चलता है। तो बहुत तेज से बारिश हुई थी, पता है बारिश होना शुरू हुई थी लखनऊ से होते होते जितने भी रास्ते पड़े बीच बीच में, कन्यालगंज, बालपुर सब होते होते फिर हमारे गोंडा तक आया था बारिश। हाँ बारिश गोंडा में जब पहुँचा तो बज रहे थे 1:57 और 1:57 से वो स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में पूरा 2:23 तक पूरी बारिश हुई है।
2: दीदी बहुत ज्यादा जानकारी।
0: भाई जानकारी ऐसे ही नहीं है भाई, मैं रात में जग रही थी और उस वक्त आप लोग सो रहे थे।
2: नहीं दीदी मैं जग रहा थे, सत्यम सो रहा था।
0: अच्छा तो फिर बारिश कितनी तेजी से हो रही थी, फिर रफ्तार बताओ।
2: अरे दीदी क्या बताएं, बहुत तेज हो रही थी और गर्जनाहट तो ऐसी थी मतलब।
0: हाँ ये तो है भाई, बिजली भी गिरी थी।
2: हाँ, बहुत तेज बिजली गिरी थी।
0: हाँ बिजली बहुत तेज और इतनी कस के गिरी थी, ऐसा लग रहा था आस पास में कहीं पर गिरी हुई और 2-4 करवट लेके गिरी है
2: दीदी।
0: हाँ तो ये हाल था। और जब सुबह उठे थे तो कैसा लग रहा था, सड़क उड़क धुली धुली दिख रही थी?
2: अरे नहीं दीदी, हमारे छत पे और आगे पूरा गार्डन में पूरा पानी भर गया था, तो आज फूल नहीं मिल पाए, तो पूरा कीचड़ हो गया था उधर।
0: ओह माय गॉड, तो नंगे पाँव नहीं चलने का मन किया?
2: नहीं,
0: क्योंकि थोड़ा सेफ्टी फर्स्ट, क्योंकि थोड़ा जंगल ज्यादा है तो कभी कभी सांप निकल गए थे ना। ओके ओके, समझ गई समझ गई। इनको देख पाते ना महसूस कर पाते, लेकिन काम तो इतने बड़े बड़े कर लेती है कि हम जो संस्कृत नहीं बोल पाते हैं वो ये हमेशा सुनाने को तैयार रहती है। आज भी ये कुछ खास लेके आई है, चलिए इनसे पूछते हैं कि क्या है आज आपके पास। ओहो तरपूर दौरम है आज। कोई बात नहीं, बहुत ही प्यारी सी तोतली सी आवाज़ है और हम भी सीखना चाहते हैं, इतनी मिठास इनकी आवाज़ में। और ऐसे थोड़ा सा अगर हम भी तुतला पाते तो शायद 2-4 टॉफी चॉकलेट हमको फ्री में मिल जाते। आपको मिलते हैं सानिध्या? देखिए फिर से मुस्कुराहट। भाई एक तो इस मुस्कुराहट पे हम फिदा हैं, उसके ऊपर से तोतली आवाज, उसके ऊपर से क्यूटनेस, छोटे छोटे प्यारे प्यारे खरगोश जैसे दांत। क्या करें हम इस लड़की का, कुछ नहीं करते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं जो हमारी सानिध्य आपको सुनाना चाहती हैं।

0: नमामि।
1: इसका कुछ अर्थ भी मालूम है या संस्कृत में ही समझा के हमको चले जाओगे? हिंदी मालूम है इसका?
0: जो तरपूर जैसे दौर वर्द वाले हैं, तरना दे अवतार है, संसार पे सार है और भुजनों का हार धारण करते हैं, वह भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करे और उन्हें मेरा नमन है।
1: ओह माय गॉड, आज तक तो इतनी लंबी चौड़ी हिंदी, आज तक हम एक शब्द की नहीं समझ पाए संस्कृत की, आप इतना याद कैसे कर पाते हो सानिध्या? माय गॉड, इसके अलावा कुछ और भी है आपके पास में?
0: दीदी,
1: क्या सुनाने वाले हो इसके अलावा आज आप हमें?
0: दीदी, आईगिरी नंदिनी।
1: ओह माय गॉड, आईगिरी नंदिनी सुनाएंगी आप हमें? भाई अब आप श्रोताओं सुनने वाले हैं हमारी सानिध्या जी से महिषासुर
2: मर्दिनी
1: स्तोत्र। चलिए आज सुन लेते हैं, हम तो कह रहे हैं हम भी थोड़ा सीख लेते हैं आपसे, क्या कहती हैं?
2: चलो दीदी।
1: चले सानिध्या बोलेंगी तो चलेंगे। हाँ या ना? ओके भाई, रेडी हैं हम, अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हैं भाई। और आप सो सुन रहे हैं आपका अपना हम्टी डम्टी विद गीता दीदी, और सानिध्या के पास में महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र है। चलिए हम भी ट्राई करते हैं इनके साथ में, शुरू करिए।

0: नमस्ते। क्या बात है भाई, सानिध्या जी ने तो आज हमको भी सिखा दिया कि संस्कृत में स्तोत्र कैसे बोलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सानिध्या जी आपका, आपने हमें सिखा दिया। कैसा लगा, अच्छा गाया था हमने? अच्छा, हमें तो लगा हमसे ज़्यादा आप अच्छा गा रहे थे। हमने तो आपको सुन के सीखा और गाया है। कुछ और भी सुनाओगे या भैया लोग को बारी दें? अब थोड़ा सा रेस्ट कर लो आप, ओके? तो भाई हमारी सानिध्या गई है रेस्ट पे, तब तक हम चलते हैं अपने सत्यम जी और प्रतीक जी की ओर। भाई प्रतीक जी का एक प्यारा सा नाम और है जो कि है अस्तित्व। चलिए देखते हैं आज इनकी पिटारे में क्या क्या है हमारे लिए।
1: दीदी, जैसे कल 27 जून को
2: यानी ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को
1: हिंदू साम्राज्य की स्वराज्य की स्थापना हुई थी।
0: ओके, और किसने की थी? सबसे तो, बड़े सवाल तो ये है यहाँ पे,
2: सबसे छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने।
0: क्या बात है भाई, और इतना बड़ा और इतना मतलब प्राउडी नेम क्यों लगता है आपको? इसके पीछे कहानी मालूम है
1: दीदी? उन्होंने हिंदू साम्राज्य को बचाने के लिए मतलब बहुत सारे कार्य किए।
0: और दूसरी बात, इस पे जिस तरह से एक छत्र छाया रखती है एक परिवार पे, माँ बाप की होती है, वैसे कहीं ना कहीं हिंदू साम्राज्य पे शिवाजी ने वो पताका, वो परचम लहराया और उस पे वो छत्र रखा, इसलिए कहीं ना कहीं इनको नाम उपाधि मिली छत्रपति। ठीक है, तो छत्रपति शिवाजी के बारे में आज हमारे प्रतीक जी और सत्यम जी आप लोगों के बीच में कुछ लाइनें रखेंगे, कविता।
2: आज हम शूरवीर के माध्यम से एक गीत है जिसके माध्यम से हम छत्रपति शिवाजी को श्रद्धांजलि देंगे।
0: बिल्कुल, तो चलिए चलते हैं हम अपने अस्तित्व जी और सत्यम जी की ओर।

0: शिवाजी थे जत लक तलवार शिवाजी हो शंभु रूप अवतार शिवाजी हो धराधन जड़ लाल शिवाजी राखी केसरिया की लाज शिवाजी।
1: क्या बात है भाई, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। और इसी बात पे मेरा तो मन कर रहा है आप लोगों के लिए ये करने का, और ये गड़गड़ाहट हम आपको समर्पित करते हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल से ताली बजाने का मन हुआ हमारा और हमने बजा दी है ताली और मज़ा आ गया सुन के। क्या ही वीर रस का संचार हो गया पूरे स्टूडियो में, और मुझे लग रहा है अगर आपके कानों तक ये वीर रस पहुंचा होगा तो आप भी एक बार प्रोत्साहित हुए होंगे इस प्यारे से कविता, इस गीत के माध्यम से जो हमारे सत्यम जी और प्रतीक जी ने आप तक पहुँचाया। बहुत बहुत ही प्यारी कविता आपकी रही और मुझे काफ़ी पसंद आई, उम्मीद हमारे प्यारे श्रोताओं को भी आई होगी। और अब हम फिर से एक बार रुख करेंगे अपनी सानिध्य जी की ओर, क्योंकि हमारी सानिध्या जी की जो मुस्कान है बड़ी ही मंद मंद प्यारी प्यारी है, और ऐसा ही कुछ ही हमारे लिए लेके आई है। क्या लेके आई है सानिध्या जी?
2: तेरी मंद मंद मुस्तनिया पे।
1: आए हाय, तेरी मंद मंद मुस्तनिया पे तो हम का ही कहें। हमारा तो मन करता है कि एक बार हम कुछ दे दें आपको। कुछ लेंगी आप हमसे? पूछेंगी नहीं क्या देंगी? चलिए कोई बात नहीं, शर्मा रही हैं, हम अकेले में दे देंगे आपको, ठीक है? किसी नहीं बताएंगे, टॉप सीक्रेट हमारा और आपका। चलिए फिर चलते हैं इन्हीं की सॉन्ग की ओर और सुनते हैं आज ये क्या सुनाएंगी।

0: तो भाई सानिध्या जी ने हमको बहुत ही प्यारी सी अपनी मुस्कान वाली एक प्यारी सी संगीता एक भेंट राम जी वाली हम तक पहुंचा दी है। अब एक बार हम फिर से चलेंगे सत्यम जी और प्रतीक जी की ओर, लेकिन उससे पहले भाई आपकी मुस्कान बड़ी प्यारी थी, बहुत बहुत शुक्रिया सानिध्या जी। अब हम चलते हैं एक बार फिर से रुक करेंगे सत्यम जी और प्रतीक जी की ओर, और शो चल रहा है आपका हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। वैसे हमारे नौनिहाल बड़े ही कलाकार हैं और इतनी छोटी उम्र में भाई हमको भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्या सानिध्या जी इसके बाद भी आपको सुनाना चाहोगे?
1: जी दीदी।
0: ओके, तो पहले भैया लोग को मौका देते हैं, फिर आपसे हम दोबारा से रिक्वेस्ट करेंगे। चलिए
1: दीदी, जैसे हमने पिछली बार एक गीत के द्वारा शिवाजी को श्रद्धांजलि दी थी, इस बार हम श्री महाकवि भूषण जी की एक कविता द्वारा
0: जी
1: श्रद्धांजलि देंगे।
0: जी जी बिल्कुल, स्वागत है आपका।
1: साजी चतुरंग सैल अंग में उमंग धरी सरजा शिवाजी जंग जीतन चलते हैं भूषण भनत नाद विहद नगारन के नदी नंद मद गैब रन के रल।

0: वारियों का हालत है।
1: ओहो, कुछ तो हम समझ भी नहीं पाए, लेकिन ऐसा जरूर लगा कि पूरे जोश में हमने अपने दुश्मनों को मार दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम फिर से चलेंगे भाई, जोश और ऊर्जा की अगर बात करें तो हमारे सत्यम जी और प्रतीक जी में बिल्कुल भी इसकी कमी नहीं है, लेकिन हमारे सानिध्या जी भी कुछ कम नहीं है। चलते हैं एक बार फिर से पुनः से अपनी सानिध्या जी की ओर, लेकिन उससे पहले हम पूछना चाहेंगे सत्यम जी, इसके अलावा भी आपके पास में कुछ है अभी और आप कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
2: जी दीदी, एक और कविता है।
1: ओके, तो पहले हम सुन लेते हैं सानिध्या जी के पास में क्या है, फिर आते हैं हम अपने सत्यम जी और प्रतीक जी के तरफ।

0: कृपा कटाक्ष तोरिणी निरुद्ध दर्द नांदिनी
1: क्या बात है भाई। और हमारी सानिध्या जी ने भाई वो भी सुना दिया जो एक बार सुनाते हुए लोग थरथरा जाते हैं, यानी कि शिव तांडव स्तोत्र। भाई इतना सब कुछ आप सीख के कहाँ से आती हैं, हमको भी बताइए ना, हमको सीखना है थोड़ा सा। भाई ये अपनी स्माइल से सीख के आती हैं।
2: नहीं दीदी, ये घर पे माता पिता हमको संस्कार देते हैं तो उसी से सीखते हैं।
1: बिल्कुल, बच्चे तो भाई मम्मा पापा उनका पहला स्कूल होते हैं और वहीं से सीखते हैं। बहुत ही गहरी बात कह दी और हमें लग रहा है कि हमारे सत्यम जी और प्रतीक जी के पिताजी ने भी इनको काफ़ी अच्छी वाली शिक्षा दी। और अभी चलते हैं इन्हीं की ओर और फिर से सुनते हैं इनके पास में क्या है।
3: दीदी इस बार हमारे पास एक और वीर रस की कविता है।
1: चलिए फिर चलते हैं उसी ओर।
4: लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन जब पकता है तो धुन पर खूब खनकता है, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा, अगर नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम उस माँ के बेटे हैं तो क्यों सोचे राह सरल होगी, थोड़ा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा।
1: क्या बात है बार। और इसी कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ में हमें अपने निरंतर रोजमर्रा के काम को भी करना चाहिए कि आज नहीं तो कल हर एक संकट का निदान जरूर होगा। और फिलहाल इन प्यारे प्यारे बच्चों के छोटे मोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे तुतलाते हुए कुछ शब्द हैं, कुछ ऐसे हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये मतलब इतने चुद्दू चुद्दू बच्चे हैं और इतना कुछ कह और कर सकते हैं, लेकिन हाँ इनकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा का सही दिशा में कहीं ना कहीं कार्यरत होना ये हमें काफ़ी अच्छा लगता है। और हर संडे आप इसका लुत्फ भी उठाते हैं आपके अपने शो हम्टी डम्टी विद गीता दीदी में। फिलहाल मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जकांक्षा और डे है संडे स्पेशल। और अभी हम चलेंगे शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर और ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ फीडबैक्स लेना चाहेंगे जो हमारे पास में एज अ मैसेज आए हुए हैं। हमारे साथ में बने हुए हैं अजय कुमार तिवारी जी और लिखते हैं, बहुत अच्छा सानिध्या बेटा, तेरी प्यारी प्यारी बोली पर बलिहार सानिध्या बेटा। क्या बात है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है, आपकी बात हम मान लेते हैं। और इसी के साथ में अस्तित्व और सत्यम जी को ढेर सारा आशीर्वाद भाई, वो तो हम भी देंगे, झोला भर भर के, डग भर भर के और दो चार बाल्टी भी भर भर के अपने बच्चों पर उड़ेल देंगे आशीर्वाद के रूप में। फिलहाल आप एंजॉय करिए इस प्यारे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक को। यूं गए यूं आए, अभी तो हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार थे, इनसे थोड़े से बड़े वाले कलाकार को भी आपके बीच लाते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
1: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: तो चलोगे हमारे साथ मस्ती के सफर में जिंगल टून्स के साथ,
1: कभी रेलगाड़ी में तो कभी
2: नानी के यहाँ,
0: तो कभी शेर और चूहे के साथ जंगल में, और कभी मामा के साथ मस्ती करने।
1: आइसक्रीम खाएंगे,
2: नंदी बैल से सवाल पूछेंगे।
0: तो चलो फिर हमारे साथ जिंगल टून्स की
3: धूम चली रेलगाड़ी।
4: आपको खुश करने वाली कहानियाँ और कार्टून्स आज ही ले आइए आपकी मनपसंद जिंगल टून्स।

0: हाँ जी, तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच में लेके आपका अपना संडे स्पेशल हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी। आज गीता दीदी थोड़ा सा रेस्ट पे हैं, आपके बीच में आपकी होस्ट है दोस्त आज आकांक्षा। और भाई छोटे बच्चों ने तो आपको पूरी तरह से प्रोत्साहित कर दिया है, बहुत ही एनर्जेटिक प्रस्तुति रही आज छोटे छोटे नव निहालों की हमारे। लेकिन हमारे बीच में कुछ बड़े और होशियार और बहुत ही समझदार हमारे प्यारे वाले बच्चे भी हैं, तो चलिए उनकी ओर चलते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि यशराज जी के पास में हमारे क्या है हमारे बीच में। वैसे तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे सबसे पहले कि कल रात में जो बारिश हुई थी उस दौरान आप कहाँ थे?
1: लिटरली मतलब ऐसा है ना कि आप कोई छत के अंदर ही होंगे ना?
0: नहीं नहीं, छत के अंदर तो होंगे क्योंकि हम तो छत के बाहर थे, तो हमें आपसे बस यही जानना था कि छत के बाहर हम ही थे या आप भी थे? हम तो छत के बाहर सड़क पे थे, सच बताएं तो रोड पे। और जिस तरह से बारिश हो रही थी इतनी शानदार, और मतलब पहले तो मेरे को लगा बहुत धीमी बारिश हो रही, लेकिन फिर उसके बाद में इतनी तेज फुहार की पूरा एकदम से जैसे व्हाइट कलर की लाइटिंग नहीं होती है सड़कों पर, बिल्कुल वैसे ही लग रही थी। और बड़ा ही मतलब रूमानी मौसम था, रूमानी मतलब होता है रोमांटिक, ठीक है? तो हवाएं चल रही थी, पत्ते सरसरा रहे थे, और कहीं कहीं एक आध बाइक भी आ रही थी एक दूसरे का चेहरा कहीं ना कहीं कवर करते हुए कि बाइक हम आगे बढ़ा पाए, बहुत ही तेज से बारिश हो रही थी। तो ये हाल था, और मात्र 20 से 25 मिनट ही बारिश हुई थी, लेकिन जो बारिश हुई है बाई गॉड, उसी में बिजली भी कड़की और दो चार करवट लेके गिरी थी, आसपास में कहीं गिरी भी थी, ये हाल था। तो हम आपसे फिलहाल ये जानना चाहेंगे कि आज के संडे के स्पेशल नाश्ते में आप नाश्ता क्या करके आए?
1: ये सवाल प्लीज मत पूछिए।
0: ओह, ऐसा कुछ मतलब शानदार अच्छा वाला है या बहुत ही बेकार है?
1: वैसे मैं सुबह का नाश्ता काफी हल्का और काफी कम करता हूँ, मतलब मन करे तो कर लूँ, नहीं फिर उसके हिसाब से।
0: ओके, तो अभी यहाँ पे मैं अथर्व राज जी से जानना चाहूंगी कि सुबह का नाश्ता हल्का होना चाहिए या फिर भारी?
2: जी वैसे सुबह का नाश्ता हल्का ही होना चाहिए, क्योंकि जैसे क्या रहे कि आपका माइंड से फ्रेश भी रहता है, आप हल्का फील भी करते हैं।
0: ओके, मेरे हिसाब से तो नाश्ता हल्का ही होना चाहिए, लेकिन भर पेट होना चाहिए। मतलब ये कि फल ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लिक्विड में ले सकते हैं, लेकिन क्या है कि एक पूरा डोज लेना चाहिए हमें। पनीर हो गया हमारा, ऐसे कुछ चीज़ें जो हमारी सेहत के लिए और प्रोटीन और फाइबर से युक्त हों, और क्योंकि पूरा जो दिन भर का कार्य है वो हमारे इसी शुरुआती आहार पर निर्भर करता है, इसलिए मैंने नाश्ता सुबह सुबह का पूछा आप सभी से। चलिए अब बढ़ते हैं अथर्व राज जी की ओर ही पुनः से। मुझे लग रहा है कि यश जी से पहले पूछना पड़ेगा। तो यश जी, आज हमारे लिए क्या है आपके पास में?
1: आज हम विज्ञान की एक ऐसी चीज जानेंगे जो कि आपका दिमाग बिल्कुल घूम जाएगा, सोचने पे आप मजबूर हो जाएंगे हुआ कैसे।
0: पहले ये बताइए, घूमेगा या फिर सोचेंगे?
1: अब ये आप डिसाइड करें, ये आपका दिमाग डिसाइड करेगा।
0: ओके भाई, देखते हैं भाई, हमारा दिमाग वैसे ही पहले से घुमा हुआ है, थोड़ा और घुमाने की फिराक में है यश राज जी, तो चलिए घूम ही लेते हैं इनकी बातों से।
1: आज हम बात करेंगे पैराडॉक्स के बारे में।
0: अब ये पैराडॉक्स कौन सी भला है?
1: ये मतलब देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं बताऊंगा तो बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा, शायद हो सकता है मुझे ही खुद ना समझ में आए।
0: हैं? तो ये बला है या फिर गला? नहीं, आम है जो गला है।
3: नहीं नहीं, पैराडॉक्स मतलब होता है ऐसे स्टेटमेंट्स, साइंटिफिक या फिर मैथमेटिक्स के ऐसे स्टेटमेंट्स जो देखने में और सुनने में तो बिल्कुल लगते हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल अनरियल लगते हो, एक लाई लगते हो, सीधा सीधा झूठ, लेकिन वास्तविकता में बिल्कुल सच होते हैं और 100% सच होते हैं। जैसे अगर रामानुजन ने एक पैराडॉक्स दिया था कि हम अगर सारे नेचुरल नंबर को जोड़ दें 1+2+3+4 ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक, तो उसका रिजल्ट आएगा -1/12, -1/12।
0: मतलब तो इतना मेहनत किए हम, यहाँ से निकले गए लखनऊ, लखनऊ से गए फिर थोड़ा सा आगे बढ़े, फिर बरेली, बरेली से फिर ऐसे घूमते घूमते दिल्ली, फिर कर्नाटक, फिर घूम घाम के फिर से वापस आके गोंडा पहुँच गए। मतलब ये क्या था, मेरे को सच में बिलीव नहीं हो रहा है।
3: देखिए असल में ऐसा है कि जब आपको ये पता चलेगा कि 1+2+3+4 ऐसे ऐसे इनफिनिट तक चलेगा, तो ये -1/12 कैसे आ सकता? पहली बात तो ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो माइनस का कोई इंटीजर आने का सवाल ही नहीं होता। और दूसरी एक बात और कि ये सारे तो होल नंबर से, और ये फ्रैक्शन में आंसर कैसे आ गया? तो इसको सॉल्व करने के लिए रामानुजन ने एक बहुत बड़ा सा प्रूफ दिया था, उसकी मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं, और ये हमको बिल्कुल सुनने में बिल्कुल झूठ जैसा लगता है, बिल्कुल मजाक जैसा लगता है, लेकिन ये वास्तविकता में सच है और इसी को हम पैराडॉक्स कहते हैं।
0: क्या बात है भाई, ये तो ऐसा लग रहा है कि हम सपने की दुनिया में हैं, और अभी हम उठेंगे जब सुबह सुबह, मम्मी सुबह मम्मी हमारे बाकी दोस्त कहाँ गए, मम्मी एक तमाचा चढ़ेंगी और कहेंगी बेटा तुम हकीकत में वापस आ जाओ, अभी तुम सपने में हो। कुछ ऐसा वाला है ना। चलिए भाई, अभी हमारे यश राज जी ने भाई आज सोच ही लिया है कि आज ये यश प्राप्त कर लेंगे और हमारे दिमाग पे पूरी तरह से कंट्रोल कर लेंगे, राज कर लेंगे,
1: एनर्जी को हार्नेस करना चाहिए। देखिए सबसे कॉमन पैराडॉक्स जो होता है, आज सबसे ज्यादा बेस्ट एग्जांपल जो दिया जाता है वो होता है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का।
0: ओके,
1: ग्रैंडफादर पैराडॉक्स ये होता है, मान लीजिए कोई एक लड़का है बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है एंड उसने अपनी इंटेलिजेंस से एक टाइम मशीन बना ली और वो टाइम मशीन में बैठ के वो चला जाता है पास्ट में, उस पास्ट में जब उसके ग्रैंडफादर यानी पापा के भी पापा एक छोटे बच्चे थे एंड उस पास्ट में जाकर वो अपने ग्रैंडफादर को जब वो छोटे बच्चे थे तब वो उनको मार देता है। एंड अब आप ये सोचिए कि जब वो पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देता है तो यानी फ्यूचर में उसके पापा भी नहीं होंगे और वो भी नहीं हो सकता, यानी कि उसने कभी टाइम मशीन बनाई ही नहीं और वो टाइम मशीन जो उसने बना के ग्रैंडफादर को मारा था वो ग्रैंडफादर कभी मरे ही नहीं। ये कैसी चीज है, अब आप ही सोचिए।
0: मतलब सीधा बोलेंगे कि सनकी मुनकी ऐसा कुछ है, दिमाग का आपको मतलब दही कर देने वाला।
1: बिल्कुल, आपने टाइम मशीन बनाई, पास्ट में गए, उन्हें मार दिया, अब वो मर गए, फिर उसका बच्चा जो फादर है उनके वो कैसे रहेंगे, फिर आप कैसे रहेंगे, फिर वो टाइम मशीन, मतलब इसका मतलब ये कि वो टाइम मशीन कभी बनी ही नहीं, आपने कभी पास्ट में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मारा ही नहीं और फिर वो सिलसिला ये लूप चल रहा है।
0: बट एक लॉजिक है इसके बीच में जो मुझे समझ आ रहा है, तो मैं आपसे वो डिस्कशन करना चाहूँगी राजी के। कहीं ना कहीं देखिए, जो जिसने मारा वो जिंदा था, ठीक है, उसने मारा तो, लेकिन चूंकि वो जिंदा, वो इस धरती पे आ चुका है, उसका एक अस्तित्व है, फिर जाके उसने मारा, तो जो जिंदा है वो तो जिंदा ही रहेगा ना, उसने तो मारा उसको जो उसका बीत चुका हुआ कल है।
1: देखिए बीत चुका हुआ कल है, लेकिन टाइम मशीन इसीलिए तो कहा जाता है कि टाइम मशीन जो है ना वो बनाना लगभग लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन लगभग लगभग और इम्पॉसिबल भी तो आई एम पॉसिबल ही होता है।
0: हाँ, बिल्कुल,
1: वो देखिए अभी हमारा प्रेजेंट
0: संभावना होती है बीच में,
1: अभी हम पास्ट में जाएंगे और अपने ग्रैंडफादर को मार दिया तो ग्रैंडफादर जब थे ही नहीं, यानी हमने पास्ट में जाके उनको मार दिया तो हमारे फादर भी नहीं थे और हम जिंदा ही नहीं।
0: ये तो वही बात हुई भैया कि हमने दही तो बनाई थी लेकिन बिना दूध के दही बनाई थी, और बिना दूध वाली जो दही थी वो कैसी दही थी, क्योंकि दही बिना दूध के तो बनती नहीं है। माय गॉड, ये बहुत ज्यादा घालमेल हो रहा है और मेरे दिमाग का दही हो रहा है।
1: और एक देखिए, अब चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं
0: जी।
1: एक होता है मंकी पैराडॉक्स। मंकी पैराडॉक्स ये है, मान लीजिए आपके पास एक मोबाइल है,
0: ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, मंकी पैराडॉक्स, कोई फ्रूट पैराडॉक्स भी है।
1: वैसे देखिए दुनिया में बहुत सारे लगभग 50-60 पैराडॉक्स होंगे और उससे ज्यादा होंगे।
0: 50-60 पैराडॉक्स,
1: और
0: भाई एक झेलना इम्पॉसिबल हो रहा है मेरे को, मैं 50-60 कैसे झेलूंगी। अगले ही दिन पता चलेगा मैं आगरा के पागलखाने में मिलूंगी आपको।
3: नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी। और जब आप साइंटिफिक डिस्कवरीज देखते हैं, खासकर की जब आप क्वांटम फिजिक्स या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग की दुनिया में देखते हैं, तो सारी चीजें पैराडॉक्स पे ही टिकी हैं वहाँ पे।
0: ओके,
3: जैसे एक एक्सपेरिमेंट हुआ था स्क्रोडिंगर कैट, उसको हम लोग कहते हैं क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में, तो उसमें यह है कि एक एक बॉक्स है, बंद है और उसमें पॉइजन है।
0: हाँ, ये तो, मंकी वाला पैराडॉक्स तो नहीं है।
3: नहीं नहीं, ये स्क्रोडिंगर कैट वाला पैराडॉक्स है।
0: ये भैया बिल्लू आए गए।
3: हाँ हाँ, तो यहाँ उसमें एक पॉइजन है।
0: हाँ,
3: तो उसके अंदर जब बॉक्स है तो अगर पॉइजन खुल जाता है और बिल्ली उसको चाट लेती है या फिर उसको इनहेल कर लेती है तो बिल्ली मर जाएगी, और अगर नहीं ऐसा कुछ होता तो बिल्ली जिंदा रहेगी, और ये बॉक्स चारों तरफ से सील, हम उसके आर पार देख नहीं सकते। तो इसको स्क्रोडिंगर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि द कैट इज डेड एंड अलाइव एट द सेम टाइम, मतलब कि जब तक हम उसको खोल के नहीं देखते वो एक ही समय पे जिंदा भी होती है और मरी भी होती है।
0: हाँ, क्योंकि हमको मालूम ही नहीं ना कि वो मरी है।
3: हाँ,
0: जिंदा,
3: ये पैराडॉक्स तो आप समझ गए। देखिए
1: यहीं से जो हमारा ग्रैंडफादर पैराडॉक्स था उसका भी एक सॉल्यूशन निकाला गया था कि दो रियलिटीज एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे सेम समय पे एक्सिस्ट कर सकती हैं, कि आपके ग्रैंडफादर मरे थे और नहीं
3: और,
1: भी मरे थे।
3: और इसी तरह से जब हम जैसे हम कॉइन फ्लिप करते हैं ना, तो जब वो कॉइन हवा में घूम रहा होता है तो हमको क्या पता होता है कि क्या वो हेड है या फिर वो टेल है, कुछ नहीं पता होता। हाँ, ना वो एक ही समय पे हेड भी होता है और उसी सुपर पोजिशन में टेल भी होता है। ऐसी कंडीशन को सुपर पोजिशन कहते हैं हम लोग।
0: मतलब इसको हम अगर बोलें कि जो हमारे पैराडॉक्स होते हैं वो एक टाइम पे मतलब संभावनाएं होती हैं, और उसको ना हम रियलिटी में ही लाते हैं और ना ही हम
3: नाम उसको पूरी तरह से स्वीकार कर सकते हैं, ना हम नकार सकते हैं।
0: इमेजिनेशन मतलब उसमें संभावनाएं ढेर सारी होती हैं, और कर सकते हैं और कर सकते हैं और सकते हैं। हाँ, तो ये तो काफी अच्छा है वैसे एक तरह से।
1: अच्छा, अब देखिए आप
3: समझ गई। अभी आप थोड़ी देर पहले कह रही थी मैं घर आके पागल खाने में चली जाऊंगी।
0: हाँ मेरे को लगा था, लेकिन जिस हिसाब से, इसीलिए मैंने कहा ना कि मेरे को आपका दिमाग थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि हम आपकी बातों को आराम से समझ जाते हैं।
1: साइंस की मैजिक है।
0: ओह ये साइंस का मैजिक।
1: बिल्कुल यही चीज
0: है। दिस इज द मैजिक ऑफ साइंस।
3: और इसी पूरे पैराडॉक्स पे आज दुनिया के बहुत सारे क्वांटम कंप्यूटर्स चलते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स, अगर जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि वो क्वांटम कंप्यूटर्स नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। जैसे जितना अगर मान लीजिए कोई एक प्रॉब्लम है और हम उसको एक उस प्रॉब्लम को एक नॉर्मल कंप्यूटर को देते हैं, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने में एक नॉर्मल कंप्यूटर उतना टाइम लगाए जितना हमारे पूरे यूनिवर्स को बने हुआ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो। और अगर वही प्रॉब्लम हम क्वांटम कंप्यूटर को दें तो वो लगभग 2.5 से 3 मिनट में सॉल्व कर दे, इतना अच्छा और इतना फास्ट कंप्यूटर।
1: और हाल ही में अभी पिछले साल सुंदर पिचाई ने अनाउंस करके वो क्वांटम कंप्यूटर सक्सेसफुली टेस्ट करवा दिया। विलो उसका नाम है।
0: देखिए कारण ये भी है इसकी सक्सेस का, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं बहुत सारी हैं। आप हर एक टेस्ट करते जाओगे करते जाओगे, चूंकि आप एक जगह पे ठहर नहीं रहे हो, कोई रियलिटी रियल फैक्ट पे आ नहीं रहे हो, तो आपके पास संभावनाएं हैं। आप ट्राई करते जा रहे हो कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट मिलना ही मिलना है एनी हाउ।
1: बिल्कुल,
0: तो इसलिए बेस्ट है।
1: वही चीज देखिए, अभी मंकी पैराडॉक्स में बता रहा था ये चीज है। मंकी पैराडॉक्स में क्या है, आपके पास मान लीजिए कोई फोन है, उसका पासवर्ड है 4 डिजिट का। आपको पहले उसका मान लीजिए पासवर्ड है 6789, आपको 678 पता है, 9 नहीं पता, तो आप क्या करेंगी? मान लीजिए उस मोबाइल में आप चाहे जितनी बार पासवर्ड डाल लें वो लॉक नहीं होगा, तो आप क्या करेंगी? 6781 6782 ऐसे करते जाएंगे, फिर 9 पे जाकर वो करेक्ट हो जाएगा और आपको मोबाइल खुल जाएगा। अब ऐसा समझिए कि ऐसा कोई मोबाइल है जिसका पासवर्ड 15 डिजिट का है, अब आप क्या करें? और आपको कोई डिजिट नहीं पता, वो मोबाइल कभी लॉक नहीं हो सकता, आप चाहे जितनी बार पासवर्ड ट्राई कीजिए, तो आप क्या करेंगे? पहले 000 फिर 0001 ऐसे करते जाएंगे टू द लार्जेस्ट 15 डिजिट नंबर, जो कि 9 को अगर हम 15 बार लिखें तो होता है। तो ऐसे करते जाएंगे तो कोई ना कोई, आपके मान लीजिए इनफाइनाइट टाइम है, तो कोई ना कोई पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आप उस मोबाइल को खोल देंगे, वो करेक्ट हो जाएगा।
0: बट आपको फिर याद भी तो नहीं रह जाएगा, क्योंकि आपने इतने नंबर ट्राई कर लिए होंगे, एग्जैक्ट नंबर आप
1: वो बात अलग है। लेकिन ये जो मंकी पैराडॉक्स है, ये इस काम को करता है कि आप चाहे जितनी बार ट्राई करें, अगर आपके पास इनफाइनाइट पॉसिबल आउटकम है, तो कभी ना कभी पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा तो आप वहां तक पहुंच जाएंगे। और इसका नाम मंकी पैराडॉक्स इसलिए रखा गया क्योंकि इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है, इसका जो मेन एग्जांपल है वो ये है, आपके पास एक रूम है एंड उसमें 50 बंदर हैं, मान लीजिए 50 बंदर मंकी, और आपने उन्हें टेलीप्रॉम्प्टर या स्क्रिप्ट राइटर या कंप्यूटर।
0: जब आपने बंदरों का नाम लिया, मैं आसपास देखने लगी कितने हैं, वैसे मैं भी उनमें इंक्लूडेड हूँ। हाँ
1: ठीक है, चलिए आपने उनको टेलीप्रॉम्प्टर स्क्रिप्ट राइटर या कंप्यूटर में एमएस वर्ड खोल के दे दिया, अब वो क्या करेंगे? उस पे कुछ भी कुछ दबाते रहेंगे, उन्हें पता है नहीं। लेकिन मान लीजिए उनके पास इनफाइनाइट टाइम है और वो कभी स्टोरेज कंप्यूटर की खत्म नहीं हो सकती, इनफाइनाइट सब चीजें हैं, तो वो कभी ना कभी लाखों करोड़ों सालों बाद भी ऐसा कभी ना कभी कोई पॉइंट ऑफ टाइम आएगा कि वो कोई ना कोई एक बंदर खड़ा होगा और कहेगा, ये देखिए मैंने रामायण वर्ड टू वर्ड, एक एक वर्ड टू वर्ड पूरी लिख डाली। कभी ना कभी ऐसा होगा, कभी ना कभी ऐसा जरूर होगा।
0: मतलब एक तो इसमें संभावनाएं है, दूसरी जो संभावना है वो पॉजिटिव वे में है कि ये होके ही रहेगा।
1: हाँ, ये कभी ना कभी लाखों करोड़ों साल बाद होगा, लेकिन होगा
0: जरूर,
1: ये होगा।
0: तो ये इसका कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वाला रिजल्ट है।
1: एक और चीज पैराडॉक्स, एक छोटा सा मैं जल्दी बोलता हूँ, एक होता है एज पैराडॉक्स। मान लीजिए देखिए हमारे यूनिवर्स में कोई एज नहीं, उसकी कोई अंत नहीं है, लेकिन मान लीजिए हमारे यूनिवर्स में कोई एज है और आप यहाँ से एस्ट्रोनॉट हैं आप मान लीजिए, और आप उस एज तक जाती हैं धरती पे एक पत्थर लेके, उस एज तक जाती हैं एंड आप उस एज पे एक पत्थर फेंकती हैं, तो वो अगर वो पत्थर उस एज को पार करके चला जाए तो यानी कि वो एज है नहीं, उसके पार भी कुछ है ना, तो वो एज है नहीं। लेकिन अगर वो पत्थर टकरा के हमारी तरफ वापस आ जाए तब भी वो एज नहीं है, क्योंकि उधर भी कोई ना कोई चीज फोर्स है, उधर भी कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए, जब उधर कुछ है ही नहीं तो पत्थर टकरा के क्यों वापस आएगा?
0: अच्छा ये ऐसा कहीं ना कहीं आप ध्वनि के रिजल्ट उसमें भी देखते होंगे, आवाज में हमारी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होता है, हम बोलते इधर से लेकिन आवाज में उधर से सुनाई देती है, अपोजिट डायरेक्शन से।
1: बिल्कुल, मतलब देखिए ये एज है कि मतलब एज है ना यूनिवर्स का, मतलब उसके पार कुछ नहीं है, जिसके पार कुछ नहीं है, तो पत्थर टकरा के क्यों वापस आएगा? और अगर नहीं आएगा तो वो उधर चला जाएगा, तब भी कुछ नहीं है, तब भी मतलब ये एज नहीं है, ये है
0: खत्म नहीं हो रहा है, सीधी सी बात है, सीमा इसकी नहीं है, विदाउट सीमा।
1: और इसका सॉल्यूशन यही है कि यूनिवर्स का कोई एज ही नहीं होता,
0: नहीं
1: तो ये सवाल ही नहीं खड़ा होता। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तभी तो ये पैराडॉक्स है,
0: बिल्कुल,
1: तभी तो इसको सॉल्व नहीं किया जाए।
0: क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी हमारे यशराज जी की ओर से, और अभी हम चलेंगे अपने सत्यम जी की ओर और देखते हैं आज इनके पास में आप सभी के लिए क्या खास है, और उसके बाद हम आएंगे वापस से क्योंकि हमारे पास में वक्त की बहुत ज़्यादा कमी है, और हम जब भी आते हैं बच्चों के साथ में भाई इतनी सारी जिज्ञासाएँ होती, सारी बातें होती हैं, इतना सब कुछ होता है, इतनी एनर्जी होती है कि वो वक्त हमेशा से कम पड़ जाता है। पर पहले हम चलते हैं, चलिए सत्यम जी की ओर, फिर आते हैं अथर्वराज जी की ओर, और उसके बाद देखते हैं समर जी के पास में कितना वक्त बचेगा।
4: नमस्कार श्रोताओं, आप सब सुन रहे हैं हम सभी का साप्ताहिक कार्यक्रम हम टीडम टीविच गीता दीदी, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय पर जो हर वर्ष 29 जून को पूरे भारत देश में मनाया जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विश्व सांख्यिकी दिवस के बारे में। यह दिवस भारतीय सांख्यिकीविद प्रशांत चंद्र महान बोस के जयंती के रूप में मनाया जाता है।
0: जी, तो कहीं ना कहीं सांख्यिकी दिवस के बारे में हमारे सत्यम जी आपको बता रहे हैं, और ये दिवस मनाया जाता है प्रशांत चंद्र जी के ऊपर।
2: इंग्लिश में कहा जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे।
0: जी, स्टैटिस्टिक्स, मैं बोल ही नहीं बोल पा रही, मैं नहीं बोल पा रही, स्टैटिस्टिक्स फिर से बोलिए जरा, अथर्व जी बताएंगे।
2: स्टैटिस्टिक्स,
0: स्टैटिस्टिक्स, पूरा हिस्सा है, पूरा भाग है, और कहीं ना कहीं मैंने भी अर्थशास्त्र से पढ़ाई कर रखी है, एमए होल्डर हूँ, तो वैसे मैं मजाक कर रही थी आप सभी से। अभी चलते फिर से सत्यम जी की ओर।
4: जब भी हम देश की जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार या आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इन सभी के पीछे एक महत्वपूर्ण आधार होता है, सांख्यिकी यानी आंकड़ों का विज्ञान। प्रशांत चंद्र जी का जन्म 29 जून 1893 को हुआ था। उन्होंने भारत के आधुनिक सांख्यिकी को नई दिशा दी। उनके द्वारा विकसित महानोविस दूरी का उपयोग आज भी दुनिया भर में डेटा विश्लेषण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और वैज्ञानिक शोध में किया जाता है। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भी उसका बहुत बड़ा योगदान रहा है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस की शुरुआत वर्ष 2007 में भारत सरकार ने की थी। इसका उद्देश्य लोगों को यह समझाना है कि सही विश्लेषणीय आंकड़े किसी भी देश के विकास की मजबूती नींव हो सकती हैं। सरकार की योजनाएं, जनगणना से स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और आर्थिक नीतियाँ, इन सभी का आधार सही आंकड़े ही होते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में हर 10 वर्ष में होने वाली जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी जनगणनाओं में से एक मानी जाती है।
0: लेकिन इस बार जनगणना 10 वर्ष की बजाय पूरे, हमें लग रहा है कि 15 वर्ष पे में भी हुई है, और काफी वक्त लगा दिया जनगणना करवाने में इस बार सरकार ने।
4: जी, करोड़ों लोगों से एकत्र किए गए आंकड़े भविष्य की योजना बनाने में मदद करते हैं। आज के डिजिटल युग में डेटा को अक्सर नई अर्थव्यवस्था का ईंधन कहा जाता है, लेकिन किसी भी आंकड़े का सही उपयोग तभी संभव है जब वह सटीक, निष्पक्ष और विश्वसनीय हो। आइए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस पर हम यह संकल्प लें कि सही जानकारी का महत्व समझेंगे, तथ्यों पर आधारित निर्णय लेने की आदत विकसित करेंगे और देश के विकास में अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। इसी संदेश के साथ मैं आपसे लेता हूं विदा, नमस्कार।
0: बहुत बहुत बढ़िया जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सत्यम जी, और काफ़ी अच्छी जानकारी से अभी आप रूबरू हुए हैं कि कहीं ना कहीं आंकड़ों की जो समझ और ज़रूरत है वो हमारा अर्थशास्त्र का ये भाग पूरा करता है। अभी हम चलते हैं अथर्वराज जी की ओर और देखते हैं इनके पास हमारे लिए क्या है।
2: तो दीदी, जैसे कि आज एक और इम्पॉर्टेंट मतलब टॉपिक के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। आज एक डे मनाया जाता है जो डे हम सभी की बेसिक लाइफ से जुड़ा हुआ है और ये हम लोग की नेसेसिटी सी है।
0: क्या है वो?
2: तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे के बारे में। मतलब कि आज जो मतलब आप इंश्योरेंस आपके पास जितने भी सारे हैं उन सबको लेकर के एक अवेयरनेस ये डे मनाया जाता है।
0: ओके,
2: आप आगे समझ जाएंगी। आप
0: वैसे सबसे बड़ी बीमा तो होती है मम्मी पापा से मिलने वाला धन, और वो भी जिद करके जो आपको मिलता है, तो ये बीमा कितने दिन तक हमें मतलब सुरक्षित रखना चाहिए?
2: वैसे तो अगर आपके पास मतलब आपकी कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है।
0: कंडीशन अप्लाई है भाई, बीमा में कंडीशन अप्लाई ना हो तो फिर बीमा कैसा है? बहुत खूब, मजा आया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
2: तो मैं एक क्वेश्चन के साथ अपना टॉपिक आगे बढ़ाना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लीजिए आपका फोन अचानक गिर करके टूट जाए, या फिर आपके फोन को थोड़ा ज्यादा डैमेज हो जाए, या फिर बाइक, आपके जो बाइक है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाए, या फिर घर में कोई अचानक से मेडिकल इमरजेंसी हो जिसको आपको जरूरत हो वो आ जाए, तो सबसे पहला सवाल क्या आएगा कि इतने पैसों का मतलब इंतजाम कैसे होगा। तो वही वो मोमेंट होता है कि जहाँ पर एक कह सकती हैं एक क्वाइटली आपका काम कर रहा होता है एक वो चीज़ जिसका नाम है इंश्योरेंस, और वो हम सभी से बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग के लिए। तो आज नेशनल इंश्योरेंस अवेयरनेस डे मनाया जाता है आज ही के दिन यानी कि 28 जून को। और जैसे आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा वो है, मतलब कि आपको समझ नहीं आएगा ये टॉपिक, लेकिन जब आप धीरे धीरे इंश्योरेंस के बारे में समझेंगे तो आपको इस डे के बारे में भी समझ में आ जाएगा। अब सवाल आता है कि आखिर ये इंश्योरेंस डे है क्या। तो इस डे का जो मेन पर्पस है वो है कि इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाना, कि जितना हो सके हम लोग इंश्योरेंस अपने जीवन में अप्लाई करें। और क्योंकि क्या है कि इंश्योरेंस हम लोगों की कोई लग्जरी चीज़ नहीं है कि आप इसको अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप लग्जीरियस हो जाएंगे, बल्कि ये हमारी लाइफ का एक प्रोटेक्शन शील्ड होता है, जैसे कि कवच जो हम लोग कवच जो होता है
0: जिस तरह से कर्ण के पास सूर्य देव का कवच कुंडल था उसी तरह से।
2: जी, ये मतलब एक इनविजिबल शील्ड की तरह काम कर रहा है जो कि हम लोग के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ जितनी ब्यूटीफुल है उतनी भी अनप्रेडिक्टेबल भी है।
0: बिल्कुल से, और उसकी तैयारी के लिए कहीं ना कहीं बीमा होना जरूरी है,
2: क्योंकि क्या है कि हम लोग फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, लेकिन उसके लिए प्रिपेयर तो जरूर हो सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा।
2: अब जैसे कि एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि अगर कोई आपसे कहे कि मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुम्हारे कभी जिंदगी में काम ना आए, लेकिन अगर एक बार जरूरत पड़ गई तो लाखों रुपए भी आपके बचा सकती है।
0: बिल्कुल,
2: तो ये वही इंश्योरेंस है जो आपके लाखों रुपए को बचा सकती है। तो क्या मतलब उसको इग्नोर करना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करना चाहेंगे, क्योंकि आपके लाखों रुपए बच रहे हैं ना इसीलिए। तो यही आता है कॉन्सेप्ट इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का मतलब होता है कि सिर्फ क्लेम लेना नहीं, बल्कि इसका मतलब होता है कि जो आप रिस्क है, आपकी जो रिस्क है उसको आप फाइनेंशियली किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, ये वो फाइनेंशियली कंडीशन होती है जब आप इंश्योरेंस ले रहे होते हैं। तब अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपका कोई अनएक्सपेक्टेड लॉस हो जाए तो उसका जो पूरा बर्डन है वो आपके ऊपर अकेले ना है, बल्कि इंश्योरेंस जो कंपनी है वो अपने ऊपर भी बर्डन ले ले, मतलब कि आप अपने बर्डन को इस तरह से शेयर कर रहे हैं। और जैसे कि इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस के कई सारे टाइप्स भी होते होंगे।
0: जी जी।
2: तो सबसे पहला टाइप्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ इंश्योरेंस। और आप एड्स में भी देखती होंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के कितना ज्यादा बातें होती हैं, चर्चाएं होती हैं। अब जैसे कि आज हमारी जो हेल्थ केयर की जो कॉस्ट है वो धीरे धीरे मतलब बढ़ रही है, तो अब क्या है कि एक मेजर सर्जरी हो, चाहे वो हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट ही करवाना क्यों ना हो, तो इन सबको करवाते करवाते कभी पूरे परिवार की सेविंग्स ही खत्म हो जाती है।
0: बिल्कुल।
2: और तब वहाँ पर ऐसे समय में हेल्थ इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस का एक टाइप है, मेजर टाइप है, वो हम लोगों की हेल्प कर रहा होता है।
0: बिल्कुल। और होता क्या है कि कई दफा होता है कि बाकी चीज़ों को हम इग्नोर मार सकते हैं, जैसे लग्जरी कोई चीज़ हो गई या कोई हमारी ख्वाहिश है उसको पूरा करने के लिए अगर कोई बीमा कराते हैं तो वो मतलब सेकेंडरी है, लेकिन जो हमारी प्रायोरिटी पे आता है वो हमारा हेल्थ इंश्योरेंस ही होता है। बिल्कुल सही कहा अर्थल जी ने।
2: और दूसरा जो इंश्योरेंस होता है वो होता है लाइफ इंश्योरेंस। ये भी बहुत ही मेजर इंश्योरेंस है, जो
0: जीवन बीमा,
2: नाम से ही समझ आ रही है आप कि ये लाइफ हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल। और हम रहे या ना रहे हमारे बाद भी जीवन चलता रहता है और चलना चाहिए, इसलिए इस जीवन बीमा को लोग कराते हैं।
2: और जैसे कि आपके ये सिर्फ आपके लिए नहीं है बल्कि हमारे पूरे फैमिली मेंबर में, क्या पता जो भी एक कमाने वाला जो आदमी हमारे परिवार में, क्या पता वो हम ही लोग क्यों ना हो, अगर हम लोग के साथ कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो फैमिली को, हमारी जो फैमिली है उसको एक कह सकते हैं आर्थिक रूप से मदद मिल सके, कि अब जैसे मान लीजिए हम ही एक कमाने वाले हैं और हमारी फैमिली में से कोई नहीं कमाता, तो क्या है कि वहाँ पर इंश्योरेंस हम लोग की मदद कर रहा होता है।
0: कर रहा होता है, मान लीजिए मतलब खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर कोई ऐसे एक्सीडेंटली केस हो जाए कि मतलब हम जिंदा होते हुए भी एक तरह से लाचार हो, तो उस जगह पे हमारे पास में स्टार्टअप के लिए हमें कहीं ना कहीं ये बीमा कुछ धनराशि प्रदान करता है, तो इसलिए भी जागरूक होना इसके लिए हमें जरूरी है।
2: और एक मिथ भी है इंश्योरेंस को लेकर के कि इंश्योरेंस का मतलब होता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट, मतलब कि आप इन्वेस्ट भी करेंगे महीने महीने आगे महीने। तो मैं आपको एक मिथ क्लियर कर दूं कि बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी होती है जो हम लोग को ऑफर भी देती है कि आप अपनी तरफ से कुछ, मतलब आप जो महीने दर महीने आप जो पे कर रहे हैं उसको भी, उसमें भी आप ऑफर पा सकते हैं। तो ये मिथ से आप लोग थोड़ा सा दूर जाइए, और इसको
0: ये तो सबसे ज्यादा जरूरी वाला था भाई मिथ आपने क्लियर किया अथर्व जी। वाकई मेरे मन में बहुत देर से प्रश्न भी चल रहा था कि मान लीजिए अगर हम पैसे जमा कर रहे हैं और हमें वापस से मतलब हमारे साथ में कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड घट ही नहीं रहा है तो क्या हमें पैसे वापस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे?
2: तो ये बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी जो होती है हम लोग को पैसे बाद में रिफंड में दे देती है।
0: पूरे तो नहीं देती,
2: पूरे नहीं देती है क्योंकि अब क्या है कि कंपनी अपना
0: हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, तो कुछ परसेंटेज वो रख के बाकी आपको वापस कर देती है, तो इसलिए आपका घाटे का सौदा नहीं है और आपको बेशक करना चाहिए बीमा। तो ये था आज का बीमा अवेयरनेस डे पे स्पेशल हमारे अथर्व जी की ओर से, बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व जी। अब हम चलेंगे समर जी की ओर और देखते हैं कि आज हमारे समर जी के पास में क्या है। भाई वक्त तो हो रहा है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलते चलते हम समर जी के भी कुछ बातें जानना चाहेंगे।
3: हाँ, तो अभी हमने बात कर ली पैराडॉक्स के बारे में
0: जी,
3: बीमा के बारे में
0: जी, और सांख्यिकी दे
3: सांख्यिकी के बारे में। मेरे लिए भी सांख्यिकी ही सही है, स्टैटिस्टिक्स में भी नहीं बोल पाता
0: स्टैटिस्टिक्स ये देखिए
3: कुछ। तो अब हम बात करते हैं आज की दुनिया के सबसे बड़े इशू के बारे में। सारी दुनिया एनर्जी के पीछे भाग रही है, सारी दुनिया, चाहे वो कोल हो, चाहे वो हम यहाँ पे बैठे हैं, हमारा रेडियो चल रहा है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, बिजली चाहिए, और सारी दुनिया उसी के पीछे भाग रही है।
0: बिल्कुल,
3: कुछ पेट्रोलियम के पीछे भाग रही हैं और कुछ कोल के, जैसे इंडिया अपना सारी बिजली का 80-90% कोल से बनाता है, कोयले से
0: जी।
3: भारत में बहुत सारे NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, वो सारे हमको बिजली कोल से देते हैं। लेकिन आप सोचिए कि हमारे पास प्राकृतिक एक ऐसा स्रोत है जिसको हम चाहे जितना यूज़ कर लें वो बहुत टाइम बाद ख़त्म होगा।
0: कहीं आप सौर ऊर्जा की बात तो नहीं कर रहे हैं?
3: हाँ, बिल्कुल सही बात कर रही हैं आप, सोलर एनर्जी की। और सोलर एनर्जी चलती किस पे है? वो चलती है नाभिकीय विकिरण, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फिजन या फिर न्यूक्लियर फ्यूजन।
0: पर कहीं ना कहीं ये तो हानिकारक भी सिद्ध होता है, घातक भी सिद्ध होता है।
3: आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हानिकारक सिद्ध होता है, इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं
0: जी।
3: लेकिन फिर भी जापान जैसा देश है हमको कुछ भी बिजली या फिर कुछ भी एनर्जी बनाने के लिए हमको कुछ नेचुरल रिसोर्सेज की जरूरत होती है, चाहे वो पेट्रोलियम हो, कोल हो, ऐसा कुछ। लेकिन जापान के पास ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे हर तीसरे दिन सुनामी आती है, हर तीसरे दिन भूकंप आ जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं वहाँ की टेक्नोलॉजी और वहाँ का जज्बा।
0: वहाँ का टेक्नोलॉजी और जज्बा बहुत तेज है,
3: बहुत ज़्यादा। उसको ऐसी वो ऐसी कंट्री है जहाँ पे हमारे बहुत सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी वो इतनी एक्सेस एनर्जी है उसके पास कि वो और सारी देशों को एनर्जी सप्लाई करता है। कैसे? उसके पास न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, वो न्यूक्लियर
0: अच्छा ऐसी ऊर्जा जो न्यूक्लियर ऊर्जा होती है, न्यूक्लियर विकिरण होता है या उसे जो भी होता है,
3: मैं आपको समझाऊं
0: जी। लेकिन मैं आपसे एक सवाल यहाँ रखना चाहूंगी समर जी, क्या हम इसको रोक के रख सकते हैं? अगर नहीं रोक के रख सकते हैं तो फिर जापान की मजबूरी भी तो है कि वो बाकी देशों को उसे दे।
3: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए बात ऐसी है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो किसी भी चीज़ से बन सकती है। न्यूक्लियर एनर्जी मतलब कि एटम से एनर्जी, और एटम से पूरा ब्रह्मांड बना है ऐसा कहा जाता है।
0: ओके,
3: तो वो चाहे कागज
0: मतलब अणु।
3: हाँ हाँ बिल्कुल सही आप कह रही हैं।
0: ओके,
3: तो एक आइंस्टीन ने एक क्वेश्चन दिया था E=mc²।
0: यस,
3: उसका मतलब कि एनर्जी जो है वो मास से बनती है। आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि कितनी एनर्जी मास से बन सकती है, तो उसका अंदाजा आप इससे लगा सकती हैं कि अगर हम 1 किलो लोहा लें और उसके सारे एटम्स की एनर्जी निकाल लें तो दिल्ली जैसे बड़े शहर को हम कई 100 सालों तक चला सकते हैं। इतनी एनर्जी 1 किलो लोहे में होती है।
0: अरे बाप रे, ये तो मतलब अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल।
3: इसीलिए तो ये बहुत अच्छी है।
0: हाउ इज दिस पॉसिबल?
3: इसीलिए बहुत अच्छी है। और आप कह रही हैं रोकने की बात, देखिए न्यूक्लियर एनर्जी बनाना उतना बड़ा कंसर्न नहीं जितना बड़ा उसको रोकना है। आप अगर कहीं सोलर पावर प्लांट देखती होंगी तो उसमें सबसे बड़े कंसर्न होते हैं बिजली को रोका कैसे जाए, बैटरी से कैसे। हमारे पास अभी एक ही टेक्नोलॉजी है बिजली को रोकने की, बैटरी, या फिर हम उसको कंज्यूम कर लें। लेकिन बैटरी बहुत बहुत बहुत महंगी आती है, इसीलिए हम उसको नहीं रोक सकते। और हमको मुझे लगता है कि जापान, और आप कहती हैं, आप कह रही थी अभी कि कुछ नुकसानदेह होता है, बिल्कुल नुकसानदेह होता है, उसमें न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता है
0: जी।
3: आसपास जाने से कैंसर होता है
0: बिल्कुल।
3: और उसको मैं बताऊं कि आज तक जितने सारे पावर प्लांट्स हैं उन सारे पावर प्लांट्स का कंबाइंड न्यूक्लियर वेस्ट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हम एक फुटबॉल के ग्राउंड में रख दें तो आधा फुटबॉल का ग्राउंड भरेगा।
0: ओके
3: तो ये बहुत बड़ा वरदान है और बून है और बर्डन दोनों है एक साथ में।
0: ओके तो भाई जानकारी तो काफी अच्छी थी, लेकिन मैं चाहूंगी कि नेक्स्ट संडे भी आप इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा था। वक्त की कमी के कारण मैं आपको यहीं पे रोक रही हूँ, समर जी माफी चाहूंगी आपसे, लेकिन वाकई विषय बहुत प्यारा है, तो मैं चाहूंगी नेक्स्ट संडे भी आप इसी को लें। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी चलते हैं हम आपके नेक्स्ट वाले शो की ओर, और अब हमें दे इजाजत। शो था आपका हम्प्टी डम्प्टी विद गीता दीदी, मैं थी आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, और अब लेते हैं आप सभी से इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट संडे आपके स्पेशल वाले शो के साथ विथ जी हाँ रेडियो ज्ञान 89.6 एफएम गुंडा शहर की धड़कन।
5: Johnny, Johnny.
6: Yes, Papa.
5: Did you wake up?

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
4: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशन्स ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। 88404095। अब सपने होंगे साकार।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ रविवार शुभ रविवार शुभ रविवार। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेश लेट 9.6 FM, यह है गुना शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM। एक ऐसा पर्व जो हम सप्ताह में एक बार मनाते हैं और आप ही नहीं बल्कि बहुत सारे प्रतिभागी मेरे साथ जुड़ते हैं अपनी अपनी प्रतिभाओं को लेकर। जी हाँ, मैं जुड़ चुका हूँ आपका दोस्त मनु आपके साथ, और हमारे साथ हैं आपके फेवरेट वाले आरजे यानी आरजे
1: अदनान। सो ये संडे का वक्त है और फिलहाल तो मॉर्निंग बहुत अच्छी थी,
0: मॉर्निंग बहुत अच्छी थी,
1: मॉर्निंग चूंकि बदली वाली थी, सुबह बारिश हुई थी रात में भी और मौसम काफी बदला हुआ था, बट अभी मैंने देखा नहीं बाहर का क्या माहौल है।
0: मतलब हल्की सी उमस है,
1: हल्की सी उमस अगर होती तो यूं झरने की तरह पसीना आपके चेहरे से ना बह रहा होता।
0: हाँ, तो ही तुमने कहा
1: हल्के से, थोड़ा सा ज्यादा है,
0: हाँ।
1: थोड़ा सा ज्यादा है। ओके, सो वेलकम टू एवरीवन, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है ओपन माइक अपना टैलेंट अपना FM वाले शो में। एक ऐसा शो जहां पे गोंडा का कोई भी बाशिंदा करके अपना टैलेंट दिखा सकता है, वो आरजे मनु बताएंगे कैसे कैसे टैलेंट दिखा सकता है कोई, बताइए।
0: जी हाँ बिल्कुल, आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, गा भी सकते हैं, शायरी लिखते हैं, कविताएँ लिखते हैं, गज़ल लिखते हैं, गीत लिखते हैं, या बजाते हैं कोई वाद्य यंत्र,
1: या फिर करते हो आपकी तरह कॉमेडी।
0: जी मिमिक्री, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: या हो कोई आपका अपना किस्सा,
0: किस्सा
1: जिसको आप बताना चाहे, हम सभी से साझा करना चाहे, तो आप भी आ सकते हैं एवरी संडे। टाइमिंग बता दीजिए हमारे श्रोताओं को।
0: समय है 1 से 2, हम आपके साथ एकदम लाइव हो जाते हैं।
1: हाँ, लेकिन 12:30 बजे आना पड़ेगा।
0: हाँ, ना आपको 12:30 बजे पड़ेगा, हाँ, लाइव हो जाएगा,
1: पसीना रहेगा, पोछेंगे, पानी पियेंगे, आराम से थोड़ा सा चिल होंगे, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे। सो ऑफकोर्स आज हमारे साथ में दो बहुत प्यारे हमारे मेहमान हैं, दो बहुत प्यारे बच्चे हैं जिनकी तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले हम जानना चाहेंगे आरजे मनु से कि आज क्या खास है।
0: आज पता नहीं क्या खास है, मैं तो नहा करके बस चला ही आया, समाचार पत्र नहीं पढ़ा है, आपने अच्छा पढ़ा होगा।
1: नहीं, वैसे तो अलग अलग डेज होते हैं, लेकिन आज का दिन अपने आप में खास है क्योंकि आज की सुबह बहुत खास थी।
0: अच्छा, सुबह खास है,
1: इसलिए
0: हमको लगा कुछ खास है आज।
1: हाँ, सुबह खास होने से पूरा दिन हो जाता है ना, जब शुरुआत एकदम मोमेंटम बन जाता है बढ़िया सा, तो ऐसे ही होता है। देखते हैं हमारे साथ होता है या बच्चों के साथ ऐसे ही होता है, बच्चों के लिए हर दिन बहुत बढ़िया रहता है, ये बच्चा ही बताएगा। बच्चे पहले अपना नाम बताइए आप।
2: सानवी तिवारी।
1: सानवी हमारे साथ में है, और हमारा दूसरा जो प्यारा सा बच्चा हमारे पास में बैठा है वो भी बताएगा अपना नाम। बेटा क्या नाम है आपका?
2: निमिषा तिवारी।
1: निमिषा एंड सानवी बैठी हमारे साथ में, तो ये बताइए आप लोगों के लिए भी सुबह जब बदली होती है तो मजा आता है, या आपके लिए हर दिन मजेदार होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कैसा मौसम है?
2: हमारे लिए तो हर दिन मजेदार होता है, लेकिन ये है कि हाँ, जिस दिन बदली होती है फिर बारिश हो रही होती है तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है।
1: अच्छा, तो बेटा हम तो अपने बचपन में नाव बनाकर खेलते थे, आपके पिताजी भी और आरजे मनु भी, हम सब लोग। आप लोग जब बारिश होती है तो उसको कैसे एंजॉय करते हैं? हम लोग तो बड़े कांड किए हैं, मतलब छत पे पतनाले को बंद कर देना, पूरा स्विमिंग पूल बना देना छत को, उसमें कूदना, बहुत कुछ है। आप लोग कैसे, आप दोनों बच्चे कैसे एंजॉय करते हो?
2: हम लोग बारिश में भीगते हैं।
1: बारिश में भीगते हैं छत पे जा करके,
0: मतलब अच्छा। रोकता नहीं है कि मत भीगो नहीं तो ठंडक लग जाएगी।
2: रोकते हैं लेकिन चुपके से चले जाते हैं, भीग के आ जाते
1: हैं। देखते भाई निमिषा इसको लेकर क्या बताती है। निमिषा बेटा आप कैसे बारिश को एंजॉय करते हो, क्या करते हो आप बारिश में?
3: जैसे वो बताइए वैसे ही हम ही करते हैं यार।
1: क्या? अच्छा।
0: दोनों एक ही काम करते हैं।
1: तो ये बताइए जैसे अगर आप करते हो, ये आपकी बड़ी दीदी है ना, राइट निमिषा? ओके, तो शानवी आपकी दीदी हैं, तो जब कभी कोई आप ऐसा करते हो काम जो मम्मी और पापा ने रोका है और आप वो करते हो और दीदी देख लेती हैं, तो दीदी आपको बचा लेती हैं या मम्मी पापा से जा करके शिकायत कर देती हैं?
3: बचा लेती हैं, कभी कभी शिकायत कर देती
0: हैं। 50-50।
1: और यही चीज़ जब उल्टा निमिषा देख लेती हैं और दीदी को जो मम्मी पापा ने मना किया है वो निमिषा करती हैं, तो फिर सॉरी शानवी करती हैं, तो निमिषा क्या करती हैं?
3: थोड़ा बता देती हूँ पर
1: थोड़ा बचा लेती हूँ।
2: बीच बीच में बचा लेती है, और कभी कभी हुआ तो अगर मैंने इसे मतलब उल्टा बोल दिया फिर ऊंची आवाज में बात करी तो गई जाके बता देगी।
1: हाँ, तो बात तो सही भाई, ये तो गलत बात है, डिसरेस्पेक्ट तो किसी को भी नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है निमिषा आपको वहां बचाती होगी जो सेम हरकत आप लोग करते होगे कि आज मैंने आपको बचाया कल हम भी करेंगे तो मुझे भी मत बताना, मुझे ही बचा लेना। हाँ? तो ऐसे ही क्राइम पार्टनर्स बन जाती हैं दोनों बहनें, राइट?
0: मतलब एक दूसरे की गलतियां छुपा लेती हैं आप?
2: नहीं, मतलब हर गलती नहीं, जो छुपाने लायक होती है वही छुपाते हैं। हाँ। बाकी जो बताने लायक होती है बता देते हैं।
0: बहुत, तो ये कैसे डिसाइड करती हैं कि ये छुपाने वाली है ये बताने वाली है?
2: वो तो मतलब मुझे तो लगता है वो कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि इसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो जो अच्छा होता है तो जिसे कोई दिक्कत नहीं होती वो तो छुपा लेते हैं कि अगली बार से मत करना, अब वरना बता देंगे, ये इतना बोल के बस मतलब ये बचाती हैं।
0: जैसे कोई एग्जांपल दीजिए इसका कि आपने बताया कि ये मत करना नहीं तो बता देंगे।
2: कई बार हुआ है, मतलब एक बार इसने मेरी कॉपी में मेरी टीचर की साइन के ऊपर गलती से, उसको लगा पुरानी कॉपी है, उसने गलती से अपनी पेंसिल से चढ़ा दी, क्योंकि पेंसिल से था इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ बोला नहीं, मैंने इरेज कर दिया, लेकिन उसके बाद इसने उसी चीज़ को पेंसिल चढ़ा दिया तो मैं गई बता दी।
0: अच्छा, ये बात
1: देखिए कितना सटीक एग्जांपल है कि पेंसिल से गलतियां मिट जाती है तो वो माफ कर दिया,
0: माफ कर दिया,
1: फिर जब दोबारा इन्होंने किया और पेन से किया,
0: पेन से किया,
1: ये गलती नहीं मिटेगी, इसकी तो शिकायत होगी।
0: ये क्या बात क्या है, बहुत ही मतलब फोरसाइटेड है आप।
1: अच्छा, लेकिन ये बात देखिए, इन्होंने एक जो शब्द का इस्तेमाल किया कि जो निमिषा यानी छोटी बहन के लिए अच्छा होगा वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है जो उसके लिए रिस्की हो सकती है, उसको नुकसान पहुंच सकता है इन फ्यूचर, तो उसको लेके ये कंसर्न रहती है और उसकी शिकायत करती हैं ताकि मारे डर के ही सही लेकिन मेरी बहन सेफ रहे।
0: भगवान ऐसी दीदी सबको दे।
1: बिल्कुल, है ना, जो झगड़े भी करे बट प्यार भी बहुत ज़्यादा
0: करे।
1: चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, इन लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। वैसे आज आपका दिन कैसा रहा, आज आपकी
0: बहुत शानदार, 12 बजे सोकर उठे हैं, यहाँ
1: 12 बजे सोकर उठे हैं।
0: हाँ।
1: तो AM से PM हो गया था,
0: AM से PM हो गया था,
1: ये डेट तो नहीं चेंज हो गई थी?
0: नहीं, डेट नहीं चेंज हुई थी।
1: अच्छा, सोते कब हैं आप? जैसे आज की तारीख आपको पता नहीं कौन सी तारीख है आज?
0: नहीं, तो एकदम नहीं पता है।
1: 28 तारीख।
0: अच्छा, 28 तारीख।
1: आपको सच में नहीं पता था?
0: हाँ, नहीं पता था, एकदम नहीं पता था।
1: सो आप 28 तारीख में ही सोए थे?
0: नहीं, हम 27 तारीख में सोए थे।
1: ये कैसे पता?
0: 11:50
1: 11:50 मतलब 10 मिनट से इन्होंने एक दिन को सेव कर लिया। हाँ। नहीं तो सेम डेट लग जाता।
0: हाँ, वही तुमने कहा, कम से कम एक दिन तो सोएं।
1: एक दिन तो सोएं, सही बात है।
0: एक दिन मिलता है हफ्ते में, सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए?
2: सोना चाहिए।
0: और इसमें सो तो सोना बहुत महंगा है, इसलिए जितना ही सो लीजिए।
1: हाँ, उस सोने से इस सोने को आप मिला रहे हैं।
0: मिला रहे हैं।
1: जिस तरह से पेट्रोल में एथेनॉल मिल रहा है,
0: मिल रहा है। और एवरेज कम हो रहा है।
1: ऑलराइट, तो चलिए बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ में दो प्यारे बच्चे हैं। सो शुरुआत हमेशा हम लोग म्यूजिकल करने की सोचते हैं और आज भी हम वही करेंगे। शानवी हमारे साथ में है और शानवी कई बार हमको बहुत प्यारे प्यारे गीत नगमे और कई बार भजन सुना चुकी हैं, कई बार कई सारी बड़ी प्यारी प्यारी बातें बताई है, बट शुरुआत आज कैसे करने वाली शानवी आप बताइए?
2: वो भजन,
1: भजन से, भजन। राम भजन है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, राम भजन से शानवी आज के इस शो की शुरुआत कर रही हैं, यानी परफॉर्म करके। तो अब अगली आवाज़ भजन के रूप में शानवी की।
2: राम को देख कर

सखी छोटी देखन में है भोली दूजी सखी छोटी देखन में है पर चमत्कार इनका नहीं जानती पर चमत्कार।

राम देखे सिया माँ सिया राम को चार वखियाँ लड़ी की लड़ी रह गई राम को देख कर श्री

0: बहुत बढ़िया और शुरुआत इतनी अच्छी इतनी प्यारी रही। बड़ा मेहनत किया आपने, लग रहा था कि किस तरह से सुरों को ऊपर की तरफ आप ले जा रहे थे। कितना इजी था या कितना टफ था इसको, भजन को गा पाना?
1: मतलब बहुत इजी भी नहीं कहेंगे, बहुत टफ भी नहीं कहेंगे, मॉडरेट था।
0: मॉडरेट था क्योंकि कहीं ना कहीं आपने इससे पहले भी कई बार इसको गाया होगा।
1: हाँ, मैंने कीर्तन में कई बार गाया।
0: हाँ, नहीं तो फिर वो बहुत टफ लगता अगर फर्स्ट टाइम होता तो। डेफिनेटली काफ़ी टफ था, बट थैंक यू सो मच कि आपने इसको सुनाया और हम सभी लोगों को बहुत पसंद आया।
2: बहुत पसंद आया। और ये अखिया जो है वो मतलब पलक नहीं झपकी। अच्छा, ऐसा कितनी देर हो सकता है कि आपकी पलक न झपके?
1: वो मुझे भी नहीं पता है।
2: कभी एक अंदाज़
0: कभी ऐसे कंपटीशन नहीं हुआ जैसे पलक ना झपकने वाला? हम लोग अक्सर
1: बैठे हुआ है मेरी बहन में, मेरे दोस्त में, मतलब इस तरह से हुआ है। लेकिन उस टाइम पे हंसने के चक्कर में आँख मतलब पलक झपकी जाती है।
2: अच्छा, ये क्या कारण था कि जब भगवान राम ने माता सीता को देखा और उन्होंने उनको देखा तो दोनों की पलकें नहीं झपकी, अपलक हो गई? कोई रीज़न होगा ना इसके पीछे, कोई कारण रहा होगा ज़रूर।
1: मतलब राम जी ने
2: सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा और उसके बाद दोनों की पलक नहीं झपकी, एक तक देखते रह गए, तो इसके पीछे कोई कारण है क्या?
1: हाँ, कह सकते हैं क्योंकि मतलब प्रेम,
2: हाँ
1: एक प्रेम की जो मतलब बॉन्डिंग होती है, तो हर जैसे कहते नहीं भगवान ने हमें हर जगह मतलब वो कर रखी है, सेट कर रखे है सबको। तो हो सकता है मतलब राम जी और सीता जी के भी यही बॉन्डिंग ही हो।
2: अब मैं आपको बताऊँ इसका सत्य क्या है।

0: वहाँ पर देखे और निमि से कहा कि जब मैंने तुमसे कहा था कि यज्ञ मैं कराऊंगा तुम्हारा जीवन रहेगा, तो फिर क्यों इतनी जल्दबाजी की तुमने? उन्होंने कहा प्रभु हमको लगा कि ऐसा ना हो कि मेरा जीवन समाप्त हो जाए। उन्होंने कहा अगर ठीक है जाओ अब तुम्हारा जीवन मैं समाप्त कर देता हूँ। तो उन्होंने उनको जो है वो श्राप दिया, आप देखते होंगे, और उनको राख में तब्दील कर दिया। तो जब उनको राख में तब्दील कर दिया तो उन्होंने जब बाद में ये हुआ कि देवताओं ने कहा, सबने कहा कि आपने क्रोध में आकर के श्राप दे दिया, ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हम कुछ हमको वरदान दीजिए। तो ये हुआ वरदान मांगा जाएगा, तो वरदान मांगा गया। तो निमि ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम सबकी पलकों पर निवास करें। कहाँ? पलक पर। इसीलिए जब इंसान पलक झपकाता है तो उस पलक के झपकाने को निमिष कहा जाता है, मतलब एक पलक से दूसरी पलक झपकती है तो उसे क्या कहते हैं?
1: निमिष।
0: तो उन्होंने कहा, और दूसरी बात और एक वरदान और चाहिए कि लोग जो है वो आपके बेटे का हाथ मांगने आते हैं, आपके यहाँ का बेटा जो सूर्यवंशी है वो मेरे यहाँ हाथ मांगने आएगा, यानी राम जी। तो जब राम जी आए तो ये जनक के पिताजी थे, तो यानी माता जो जानकी हैं ये इनकी क्या हुई?
1: पोती
0: हुई। और इधर राम जी खड़े हैं, राम जी कौन हो गए? उनके लगभग दामाद हो गए। तो जब देखा, आपने देखा होगा बड़े बुजुर्ग जब होते हैं और जब शादी वगैरह की बात चलती है तो कहते हैं भाई आप लोग दो लोग आपस में बात कर लो और हम लोग यहाँ से हट जा रहे हैं। तो जब निमि ने देखा कि मेरी पौत्री पर पौत्री इनको देख रही है, तो उन दोनों ने जब एक दूसरे को देखा तो जो निमि थी, मतलब जो पलक का झपकना था, वो वहाँ से चले गए। अगर न जाते तो वो अपलक न होता। नहीं सुन में
1: आ गया?
0: ये बहुत ये मिथोलॉजी है इसमें कि ऐसा हुआ था।
2: बिल्कुल। क्या
0: मतलब
2: बात
0: ये
1: है? अच्छा मुझे एक डाउट है, उनका नाम निमि था कि निमि था?
0: निमि राजा निमि। अच्छा। और उसी क्या गेशा लगाया गया, तो निमिष। निमिष मतलब पलकों का एक प्रकार से झपकना और उठना, इस प्रक्रिया को निमिष बोलते हैं।
1: मैं बता दूं इसका नाम निमिषा है, उसके घर का नाम निमि है।
2: जैसे निमि आरजे मनु ने कहा वैसे ही आपका और आपके फादर का दोनों का फेस निमिषा की तरफ गया। मैं समझ गया कि
0: इसीलिए मैंने एक मिथोलॉजी बताई ही थी, क्योंकि निमिषा तुमने कहा, बता दें कि निमिष इसी को कहते हैं, पलक के झपकने और उठने की क्रिया को निमिष कहते हैं।
2: बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है, और इसी के साथ ही साथ हमारी निमिषा भी मौजूद हैं, उर्फ निमि। तो बच्चे आपका जिक्र हो रहा था, आप मुस्कुरा रहे थे, आप बहुत प्यारा मुस्कुराते हैं। आपको किसी ने तारीफ किया आपके मुस्कुराने की, कि आप बहुत प्यारी स्माइल करते हैं?
0: नहीं,
2: अभी तक नहीं की थी।
0: ओ,
2: अरे अरे,
0: पहली बार नॉन सुनने का थी, थैंक यू बोल दो।
2: बाकी लोग कैसे देखते हैं भाई? थैंक यू। तो ये छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी हमारे लिए एक राइमिंग लेकर आया है, एक पोएम लेकर आया है। तो बेटा क्या सुनाने वाले हैं आप हमारे लिसनर्स को?
1: तितली उड़ी पोयम।
2: तितली उड़ी पोयम, पूरा नाम इसका है तितली उड़ी पोयम। अच्छा, पोयम है तितली उड़ी। ठीक है, तो चलिए तितली उड़ा दीजिए। वैसे ये जो तितली है ये कौन से रंग की है, ये आप पहले बताइए।
1: पिंक
2: रंग की क्यों तितली है?
1: कहानी में तो पिंक ही दिखाते हैं।
2: अच्छा, कहानी में पिंक दिखाते हैं। अगर निमि को अपने अकॉर्डिंग उस तितली का रंग चेंज करने का मौका मिले तो आप कौन से रंग में करेंगे?
1: येलो।
2: येलो क्यों?
1: मेरा वो फेवरेट कलर है।
2: क्या बात है, क्या बात है। तो इसके बाद मतलब आप चावल के साथ कढ़ी खाना पसंद करते हैं, येलो है ना? और येलो दाल भी होती है ज्यादातर।
1: हाँ,
2: अरहर की दाल और चने की दाल, सही बात है। चलिए तो तितली को उड़ाइए अपनी पोएम में आप।
1: तितली उड़ी उड़ ना सकी, बस में चढ़ी सीट ना मिली, सीट ना मिली तो रोने लगी, सीट ना मिली तो रोने लगी। ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास, ड्राइवर ने बोला आजा मेरे पास। तितली बोली हट बदमाश मेरा घर है पास, हट बदमाश मेरा घर है पास।
2: अरे वाह, क्या बात है, गा गा के मतलब सुनाया, मतलब बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा।
0: अच्छा, बदमाश किसको बोलते हैं निमिषा जी?
2: वही ड्राइवर को।
0: किसी बदमाश का नाम बताइए आप।

0: कोई बदमाश है आपकी जानकारी में? नहीं, आप अदनान सर को मत देखिए।
1: वो देख तो आप ही रही है। लगातार आप ही को देख रही है।
0: नहीं, वो हमको देख रही है कि ये शरीफ इंसान है सर।
1: हाँ, ये शरीफ इंसान का जो चोला ओढ़े हुए हैं ये कैसे?
0: किसी बदमाश का नाम नहीं बताएंगे आप? कि बताएंगे?
2: है ही नहीं।
0: है
2: ही नहीं कोई, तो क्या
0: कोई बदमाश नहीं है दीदी?
2: अरे खोल के बता दो, कोई कुछ नहीं।
0: हाँ, कोई कुछ बोलेगा नहीं।
2: नहीं, गुस्सा करती है, बदमाश नहीं है।
1: अच्छा, गुस्सा करती है बट बदमाश नहीं है। वाओ, क्या बात है। बदमाश मैं बताऊं कौन होता है? बदमाश वो होता है जो रोड पे लेफ्ट की जगह राइट चलता है। बदमाश वो होता है जो बिना इंडिकेटर दिए मुड़ जाता है। बदमाश वो होता है जो जैम में भी ज़बरदस्ती हॉर्न ब्लो करता है। मतलब आप ऐसा कोई भी काम करें जिससे दूसरे को कोई दिक्कत हो तो वो बदमाशी कहलाता है।
0: इन्होंने अपनी आत्मकथा आपके सामने रखी है।
1: बिल्कुल। तो क्या मानना है आपका? ऐसे ही लोग होते हैं? अच्छा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एंड फिलहाल मुझे लगता है कि अब एक म्यूजिकल ब्रेक ले, क्योंकि हमारे साथ में और भी पार्टिसिपेंट जुड़ गए हैं बीच शो में ही, वो भी आ गए हैं, उन तक भी हम चलने वाले हैं। और फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है अपना गोंडा FM 89.6 FM और आप सुन रहे हैं संडे स्पेशल ओपन माइक, अपना टैलेंट अपना FM।
3: हेलो
4: भाई यार, मानो कल खबर सुनी?
3: ओ हाँ यार, खबर तो सुनी।
4: सुन सुन भाई, मेरे शाम का प्रोग्राम कैंसिल
3: यार। उधर पिंडो मनाल गया भी तो रहा है।
4: हाँ यार, मुझे फिर की बनू
3: इधर। हल तो हम बड़ा भाई ही कर सकता
4: है।
3: मतलब तुसी
5: पहुंचो, मैं आ गया।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गुंडा की अपील।
1: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
2: अरे आरजी मनु, आपने क्या मिस कर दिया?
3: क्या मिस कर दिया?
2: आपको नहीं ध्यान है क्या मिस कर दिया आपने?
3: पोलियो ड्रॉप नहीं पिया।
2: एग्जैक्टली, जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को आज पोलियो ड्रॉप पिलाई जा रही है, आपने क्यों नहीं पिया?
3: तो 28 तारीख को पिलाई जाएगी।
2: 28 तारीख आज ही है।
3: अरे ये तो गड़बड़ा गया। अच्छा अभी जाके पी लेंगे।
2: हाँ
3: आपकी कराए ना।
2: हाँ
3: हाँ चलिए भाई, इन्होंने अपने हिस्से का पी लिया, हमको अपने हिस्से का पीना है।
2: बिल्कुल। तो भाई जिन भी श्रोताओं को, यानी जो भी सुन रहे हैं और जिनके भी बच्चे जन्म से 5 वर्ष तक के बीच के हैं, सो आज 28 तारीख है, 28 जून है और आज राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि हमने बताया है कि इस वक्त भारत देश में पोलियो नहीं है, लेकिन आसपास के देशों में पल्स पोलियो अभियान इसलिए चलाया जाता है क्योंकि वहाँ कई केसेस है। सो ख़त्म हो गया है लेकिन वापस ना पैर पसारे, इसलिए पोलियो का ये अभियान चलाया जा रहा है। सो आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने छोटे बच्चों को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पर ले जा कर के पोलियो की खुराक ज़रूर पिलाएं। चलिए बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था कि भाई एक सरप्राइज़ है क्योंकि एक बच्चा और आ गया है पोलियो की खुराक पी करके, आइए उससे आपको मिलाते हैं। बेटा आपने अभी पोलियो की खुराक पी थी, कैसा लगा आपको, कैसा टेस्ट था आपको?
4: टेस्ट तीखा।
2: तीखा था? पोलियो की खुराक पिलाई थी कि बताशे का पानी पिलाया था?
4: डोसे का।
2: अच्छा डोसे का सांभर।
3: हमने कहा डोसे का पानी कहाँ होता है।
2: सो वैसे ये हमारे साथ में सृष्टि जुड़ गई हैं, जो कि पूरे सृष्टि में गुंजायमान रहती हैं और इनको पूरी दुनिया में क्या हो रहा है कोई खबर कहीं ना मिले तो सृष्टि से पूछिए, क्योंकि सृष्टि सृष्टि हैं।
3: हाँ ये पीपी बहुत बढ़िया कर लेती हैं।
2: पीपी? अच्छा हॉर्न निकाल लेती मुझसे?
3: नहीं, नहीं, पीपी मतलब पदपंच।
2: अच्छा ओ मुझे लगा पीपी मतलब हॉर्न। पोपो पीपी पेपे।
4: बाइक चलाते तब।
2: अच्छा कभी किया किसी ने, मतलब मैं पूछना चाहूँगा चाहे वो शानवी हो, निमिषा हो या सृष्टि हो या आरजे मनु आप हो, कि उस टाइम बाइक ना काम कर रही हो या साइकिल से वो जो घंटी है वो फंस जाती थी ना कई बार चलाते चलाते, तो क्या मुंह से भी उसका प्रयोग किया गया इस तरह?
3: नहीं, हमारे पिताजी ने इसका इस्तेमाल हमारे ऊपर किया।
2: वो बता चुके हैं आप दो। हाँ, कई बार
3: तो बारा फिर जो है
2: पीछे से जब कमान वो संभालते थे तो फिर आपको आप शुरू हो जाते थे। वो तो लगातार वो हॉर्न है, वो तो बस वो तो ट्रक वाला है, पों पों पों पों पों पों पों वाला नहीं, पों पे पे ऐसे वाला शहर के अंदर जो हॉर्न बजता है।
4: अचानक से मैं बाइक चलाती हूं, अगर मेरे हाथ में नहीं आता हॉर्न तो मुझे मुंह से ही बोलना पड़ता है।
3: सृष्टि जब आईसीएस बनती हैं तब बजाती हैं।
2: आईसीएस?
3: हाँ, आइसक्रीम सेलर।
2: आइसक्रीम सेलर
3: जो देखिए आप बजाते नहीं है पोपो?
4: नहीं सर, बाइक चलाते हैं तो पीपी बोलते हैं।
3: नहीं पीपी नहीं, वो पोपो बता रहे थे।
4: नहीं हम पीपी बता रहे हैं।
2: क्या फर्क है? देयर इज बिटवीन पीपी एंड पोपो।
3: पीपी मतलब बहुत ही हल्का सा, पोपो मतलब भारी भारी, पोपो।
2: अच्छा कैसे ट्रैफिक के लिए पीपी होगा और कैसे के लिए पोपो होगा?
3: हाँ
4: अभी सर बता, अभी वो भी पोपो कर रहे हैं।
2: सर तो सारे रास्ते पोपो करते हुए आते हैं।
3: हाँ मतलब हमारे लिए पीपी कुछ होता ही नहीं है।
2: जब ये घर में जब इनका सुधारने का अभियान चलाया जाता है इनके लिए तो भी इनके पोपो ही निकलता है।
3: हाँ, अभी आप सुधारी जाती हैं?
5: हम लोगों ने भी ये पोपो पीपी वाला गेम खेला है कई बार।
2: अरे
5: जब पापा मतलब पापा की जब बाइक स्टार्ट नहीं होती है मतलब स्टैंड पे लगी रहती है तो मैं बड़ी हूँ, मेरा पैर पहुँच जाते तो मैं आराम से बैठ जाती हूँ, इन लोग को पीछे खड़ा कर देती हूँ।
2: अच्छा
5: कि खड़े रहेंगे बैठेंगे तो सब गिरेंगे एक साथ। तो ये लोग खड़े रहते हैं, मैं बैठती हूँ और स्टार्ट तो है नहीं तो झूठे घुमा के वो उसके बाद पीप पीप पीप मतलब मैं करती हूँ, फिर जब इसकी टर्न होती है तो ये करती है, ऐसे ही मतलब बारी बारी से करते हैं। लेकिन जब बाइक नहीं रहती है पापा की तो घर में एक स्टडी टेबल है हम लोग का, छोटा सा हम लोग स्टडी टेबल तो नहीं कहेंगे उसे क्योंकि हर चीज़ काम आता है।
2: अच्छा
5: तो छोटा सा टेबल है, ये छोटी है तो इस पर बैठ जाती हैं कि हम बैठेंगे तो टूट जाएगा, तो ये बैठ जाती हैं और ये बन जाती हैं ड्राइवर, वो बस ड्राइवर और ट्रक ड्राइवर, मतलब ये बन जाती हैं और मैं पीछे मतलब उसके ये टेबल और यहाँ मैं बैठी रहती हूँ और मुझे खिसक खिसक के जाना पड़ता है अपने टेबल से, अपना आराम से आती हैं तो ये फिर वो ये करती हैं पी पी पी पी पी, कई बार तो मम्मा को ठोक भी देती हैं।
2: अरे चालान नहीं काटा मम्मा ने कभी इनका?
5: चालान तो नहीं काटा लेकिन
2: अभी तो इन्हीं से पूछेंगे। भाई निमिषा आप कैसे हॉर्न ब्लो करिए, चलिए हॉर्न ब्लो करिए, कैसे बोलती हैं आप?
3: अच्छा आप तो हॉर्न ब्लो करने वाला कुछ ट्रकों में ऐसा आता है जो फिल्मी धुन पर कचरा दे उसमें मतलब कितना अच्छा लगता है।
2: अरे वो आप ही जैसा कोई खुराफाती ड्राइवर होता हो।
3: नहीं नहीं मतलब ये म्यूजिकल हॉर्न भी बजता हुआ कभी देखा सुना होगा आपने ना? कौन सा सुना है?
5: मैंने तो मतलब किसी वो गाने का नहीं सुना, फोन पे सुना है, बट वो मैंने मतलब जैसे रियल लाइफ में देखा है कि अगर कोई कार ड्राइवर है तो मतलब वो कोई हॉर्न बजाता है तो ट्रक उधर से रिप्लाई देता है उसी मतलब उसी टोन के 2-3 टाइम्स उसको मतलब रिपीट करके
2: रिस्पॉन्ड करता है।
5: मतलब लेकिन मजा आता है सुनने में।
2: वाओ क्या बात है।
5: अच्छा बताइए दान सर, आप मनु सर को ड्राइवर करना चाह रहे हैं मतलब क्या?
2: मतलब हम लोग नहीं भी लड़ रहे हैं तो ये लड़ा रही, देखो
3: नहीं नहीं
2: ये देखो इतनी बड़ी हो गई, ये देखो मतलब हद खत्म है।
5: मैं लड़ा नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि आप वो मनु सर को ड्राइवर बोलना चाह रहे हैं जो कि अभी आपने बोला।
2: बच्चे हमने बोला ही नहीं है कैसे।
5: अभी आपने बोला है कि आपके जैसा कोई खुराफाती ड्राइवर होगा।
2: आपके जैसा कोई खुराफाती ड्राइवर होगा, ये ड्राइवर नहीं है।
3: ड्राइवर नहीं,
2: जैसे ये खुराफाती है वो ड्राइवर खुराफाती होगा।
5: आपको खुराफाती कहना चाहिए ना, उसके बाद आप थोड़ी देर बाद बोल देते वो आपको जो कोई खुराफाती होगा वो ड्राइवर।
3: अब आया
2: पहली बार। हाँ मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैंने गलत बोल दिया क्या, मतलब लिटरली
3: ये विश्लेषण बहुत बढ़िया है।
2: ये क्या बताएं भैया, ये तो मतलब सुधार देंगी। चलिए ठीक है, अभी मैंने बोल दिया है कि खुराफाती, बाद में थोड़ा रुक के फिर बाद में बोले
3: ड्राइवर।
2: ठीक है, जब तक रुके हैं तब तक के लिए हमें लगता है सृष्टि को इनवाइट कर लें इनकी परफॉर्मेंस के लिए। सो सृष्टि क्या लेकर आई है हमारे श्रोताओं के लिए?
6: कभी कभी तो
2: है?
6: कभी
2: है?
6: कभी तो
2: क्या? कभी कभी तो
6: इसका लाइन का नाम है।
2: लाइन का नाम
3: उन्वान मतलब शीर्षक।
2: अच्छा वही मैं सोचा ये कभी कभी तो क्या है मतलब।
3: मेरा वाला अच्छा आपके पास आ गया।
2: नहीं ये पीके वाला है। अच्छा हमें समझा रिया है। अच्छा अच्छा अच्छा तो इंडियन जो लैंग्वेज है मतलब हमें स्पेशली हम हिंदी की बात करें तो बहुत सारे एक्सप्रेशन पे काम होता है, कीवर्ड को अलग अलग जगह यूज कर लिया जाता है। आंख फाड़ के कब कह रहे हो, कब नॉर्मल कह रहे हो, कब जल्दी कह रहे हो, कब खींच के कह रहे हो, कब हंस के कह रहे हो, तो ये सारी चीजें चलती है। सो फिलहाल क्या लेकर आई हैं आप?
3: कभी कभी तो।
2: कभी कभी तो चलिए आज कभी
6: है। जैसे चारों तरफ लोग हैं पर कोई अपना नहीं, दिल के अंदर तूफान है पर होठ अब भी चुप हैं, कितना कुछ कहना चाहते हैं पर डर लगता है कोई समझेगा भी या नहीं, हर बार आंखें भर जाती हैं तो नजरें झुका लेते हैं हम क्योंकि लोगों को आंसू नहीं मुस्कान पसंद है और इसीलिए अपने दर्द को दिल में कैद करके हम अक्सर मुस्कुरा देते हैं क्योंकि मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है।
2: वाह क्या बात है, मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है।
3: तेरी मेरी
2: मेरी तेरी
5: प्रेम कहानी है मुश्किल दो लफ्जों में बयान ना हो पाए।
2: क्या बात है
3: जी। और इसी के साथ भाई मेरे साथ कोई कॉलर भी जुड़ चुके
2: हैं। अरे वाह
3: कौन है मेरे साथ? हेलो
7: हेलो नमस्कार
3: नमस्कार
2: नमस्कार, नमस्कार।
7: जी तो मैं अभी जुड़ चुका हूँ आपका कार्यक्रम में, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
3: अच्छा ये तो अच्छा लगना ही चाहिए, इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है।
7: जी आश्चर्य वाली बात ये है कि ये कार्यक्रम हम सबको इतना भाता है कि हम जब भी चाहें मतलब कि कोशिश करते हैं तो खास करके जुड़ ही जाते हैं और अच्छा भी लगता है आपका कार्यक्रम। और ये जो गोंडा शहर का जो बेहतरीन एक पेशकश है 89.6 FM वो हम सबके लिए बहुत ही मन भावन कार्यक्रम लेके आता है।
3: आपका गुड नेम जानना चाहते हैं?
7: जी मेरा गुड नेम है त्रिपुरा से है अविनाश तेरी।
3: त्रिपुरा से?
2: जी हाँ त्रिपुरा से सुनते हैं अविनाश जी, सुबह हमारे पास कॉल आई थी मॉर्निंग शो में।
3: क्या बात है।
2: और
7: जी,
2: अभी फिर वापस से जुड़ गए हैं तो कुछ सुनाना चाहेंगे अविनाश जी आप भी? टैलेंट का शो है, इसमें टैलेंट हम लोग शोकेस करते हैं।
7: जी तो आपका मेरे टैलेंट की बात अगर करें तो देखिए मुझे क्रिकेट कमेंट्री का ज़्यादा शौक है और गाने गाने का शौक है।
2: अच्छा, तो मान लीजिए कि आरजे मनु और उनकी वाइफ में क्रिकेट हो रहा है और आपको कमेंट्री करनी है
7: किसके बीच?
2: आरजे मनु और उनकी वाइफ के बीच में।
7: अच्छा अच्छा।
2: हाँ, आरजे मनु जो हैं वो बैटिंग कर रहे हैं और वाइफ उनकी बॉलिंग कर रही हैं, तो उसको लेकर के आप कमेंट्री करिए, देखते हैं क्या है।
7: जी ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। जी हाँ, तो सभी हमारे सभी श्रोता अभी एक बेहतरीन मैच की को देखा सुनने के लिए बेहद उत्साह से भरे हुए हैं और सभी रेडियो में अपने कान लगा कर बैठे हुए हैं। चलिए तो मैच का आंखों देखा सुनाने के लिए हमारे बीच आ रहे हैं हमारे कमेंटेटर त्रिपुरा से अविनाश जी। तो आज आरजे मनु जी का और उनकी वाइफ का आज क्रिकेट मैच होने जा रहा है। तो देखिए आरजे मनु जी बैटिंग करने के लिए अपने क्रीज पे तैयार खड़े हुए हैं और उन्होंने विराट कोहली का जो एमआर बैट है वो उसी को बैट को अपना बैटिंग करने के लिए उसी बैट को लेकर के चले आए हैं। और इधर से अंपायर के उस दूसरी ओर से उनकी जो वाइफ है वो गेंदबाजी करने के लिए तैयार खड़ी है। और चलिए अब उन्होंने अपना गेंद हाथ में लिया और दौड़ना शुरू किया। इस बार अंपायर का क्रॉस क्या उनकी ये गेंद और इस बार मनु जी ने लगा दिया है बैकफुट पंच और ये गेंद सीधे चला से जा रहा है। बहुत ही अच्छे यहाँ पर फील्डर ने रोक लिया है, बल्कि फिर भी उन्होंने दो रन अपने बहुत ही अच्छा से दो रन कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए अब मनु जी का स्कोर दो रन हो चुका है और इस बार अब उनकी वाइफ इस बार गेंदबाजी करने के लिए तैयार है और अंपायर का क्रॉस किया। इस बार गेंद को एक कदम आगे निकल के हवा में शॉट खेला गया है। इस बार हो सकता है कि कैच आउट हो, लेकिन नहीं, इस बार तो सीमा पार कर गई गेंद छह रन के लिए और अब जा खड़ा हुआ है आठ रन। और उनकी वाइफ बहुत ही परेशान है क्योंकि मनोज जी ने छक्का लगा दिया है तो उनकी परेशानी उनके मुखड़े पर नजर आ रहा है। इस बार चलिए तीसरे गेंद पर देखते हैं क्या क्या होता है। इस बार चलिए उनकी वाइफ इस बार वहां पर क्रॉस किया उनकी गेंद और इस बार पूरी तरह से मिडिल स्टंप उखाड़ फेंक दिए।
2: ये तो होना था, ये तो कंफर्म था। कमेंट्री कोई भी करे ये पता था कि ये लाइन लास्ट में आएगी कि मिडिल स्टंप उखड़ गया है, ये तो कंफर्म था। वाह क्या बात, क्या बात,
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपको अविनाश जी।
2: चलिए
3: मतलब आपने मतलब मिडिल स्टंप उखाड़ा, भगवान आपका तीनों उखाड़े, मतलब मुझे लाभ हो ले।
7: मैंने नहीं बल्कि आपने आपके वाइफ ने उखाड़ दिया है।
2: बहुत सही बात है,
3: हमारी पत्नी ने मिडिल स्टंप उखाड़ा और हम कामना करेंगे कि कभी आपकी पत्नी बाल निकले।
7: आपका आपका भी प्रदर्शन कोई गलत नहीं है, आपका प्रदर्शन देखिए आपने एक छक्का भी लगाया था उनके गेंद के ऊपर और एक बार आपने डबल भी लिया था, मतलब कि आठ रन बनाए थे लेकिन तीसरी गेंद पे आउट हो गए थे। लेकिन आपका स्ट्राइक रेट जो है वो अगर बताएं तो आपका स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं लेकिन 277% ऐसा।
3: हाँ हाँ, लगभग 300 के स्ट्राइक रेट से खेला हमने।
7: बिल्कुल
2: जो इनका प्रदर्शन कभी खराब नहीं होता, बस खराब जगह होता है।
3: बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
2: बहुत शुक्रिया अविनाश जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये हमारे साथ में त्रिपुरा यानी नॉर्थ ईस्ट से जुड़ गए थे हमारे साथ में हमारे अविनाश जी। और चलिए भाई, इतनी प्यारी बातचीत हुई, इतना मजा आया और देखा कमेंट्री क्या होती है। आरजे मनु देख लिया आपने?
3: हाँ देख लिया, मतलब शानदार कमेंट्री की, 300 के स्ट्राइक रेट से हमको जो है बैटिंग करा दी।
2: और क्या, 300 के स्ट्राइक रेट से आपको बैटिंग करा दी। वैसे बताया ना कि आप इतना बुरा भी नहीं खेल पाते, पता नहीं क्यों आपको अपने पे सेल्फ डाउट्स आते हैं, क्यों ऐसा होता है?
3: नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो पता है कि हम अच्छा खेलते हैं।
2: पक्का?
3: हाँ पक्का।
2: चलिए तो अच्छी बात है। एंड फिलहाल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गया। हाँ जी हेलो।
8: हेलो
2: जी, क्या नाम है आपका?
8: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
3: जी मुमताज जी, अस्सलाम वालेकुम।
8: वालेकुम सलाम,
3: कैसे हैं आप?
8: आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है, आप दोनों की दुआ है,
2: दोनों की साझा दुआ,
3: दोनों की साझा दुआ, ऊपर वाले की मेहरबानी और हम सभी का, हम सभी की शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं।
2: रहन्दी रहन्दी, आप दुआ देते नहीं इसलिए अभी इतना अटक रहा है।
3: नहीं ठीक है, अटक रहे हैं, हम कुछ सौ सोच रहे थे और जो है वो बहुत बुलंद आवाज में मुमताज जी गाते हैं।
2: वही तो, अब टैलेंट वाला शो है तो मुझे लगता है मुमताज जी भी दिखाने वाले अपना टैलेंट। तो प्लीज हम चाहेंगे कि एक गाना जरूर आप सुनाइए आप सबको।
8: जी सर, जी सर।
2: आप हैं आगे?
8: हैं अच्छा।
2: मुझे लगा गाना लेने चले गए आप।
8: नहीं नहीं मौजूद है।
2: अच्छा जी सुनाइए।

हर खुशी है, तू ही प्यार तू ही चाहत तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। पहली मोहब्बत का एहसास है तू, पहली मोहब्बत का एहसास है तू, कुछ कह जो कुछ ना पाई वो प्यास है तू, तू ही मेरी पहली ख्वाहिश तू ही आखरी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है। हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, हर जख्म दिल का तुझे दिल से दुआ दे, खुशियाँ तुझे गम सारे मुझको भूला खुदा दे, तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी।

0: क्या बात है,
1: क्या
0: क्या बात
1: बात
0: है।
1: हो।
0: आरजे मनु को लेकर इतना प्यार, मतलब किसी और मर्द में मैंने पहली बार देखा है। मतलब लिटरली बहुत प्यारा गाया आपने। और चूंकि आप इनका शो भी सुनते हैं काफी ज्यादा, आप मानते भी हैं, और आज इन्हीं की रिक्वेस्ट पे आपने सुनाया, ये बड़ा अच्छा लगा।
1: हाँ, मतलब आज ये अदनान को बहुत प्रेम करते हैं, कहते हैं
2: दोनों को मानते हैं, ऐसी बात नहीं है।
1: हाँ, मतलब ऐसा गुड मॉर्निंग गोंडा आपके बिना होता ही नहीं है उनका।
0: अच्छा, तो बुधवार फिर कैसे होती है?
1: बुधवार को किसी तरीके से काट लेते हैं बेचारे।
0: बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया गाया आपने। और अच्छा लगता है कि आप कितने भी बड़े हो जाए, कौन सी भी उम्र है, लेकिन जब FM के साथ जुड़ते हैं तो आप जैसा महसूस करते हैं उतने बड़े आप हो जाते हैं, और वो सारी चीज़ें आप गाते हैं, कह पाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारी अचीवमेंट है।
2: जी सर, 57 है बस,
0: बस
2: नहीं है।
0: अरे अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई आपकी। 57
1: साठा तब पाठा, मतलब 60 साल के हो जाए तब जानिए कि जवान हुए। हाँ, कहावत
0: जैसे 59 इनका भी है।
1: हाँ, इसीलिए भी हम जो है युवावस्था में हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच मुमताज जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: फी अमान अल्लाह।
0: तो चलिए भाई, अब चलने का भी वक्त आ गया है।
1: अरे, लेकिन तो आज का शो कैसा? कुछ सुन लिया जाए, चल रही ना, कैसा क्या लगता है?
3: सही है।
1: हाँ, कुछ सुन देते हैं।
0: ये बच्चा तो मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे पता है। ये शुरुआत से मेरे पीछे है भैया, इनको तो पता होगा कि इनको फंसाना कैसे है। है ना? ऑलराइट, तो हिंदी में तो बहुत सुना होगा आपने, बंगाली में दो लाइन सुन लीजिए।
1: अच्छा,
3: वो बंगाली आती है?
1: अरे, वो विश्व भ्रमण
0: कर चुकी, थोड़ी थोड़ी आमाची, तो पता नहीं क्या बोला मैंने भी नहीं पता। कैरी ओ। अच्छा, মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তোমাকে, মনে পড়ে রুবিরায় কবিতায় তোমাকে, তোমাকে তো বলো ভালো আনেছি আজ ভাই রুবিরায়, তুমি আমাকে আমাকে তোমাকে বলে আয় বলেছি। मोने पोरे रूबी राय।
1: अच्छा, मेरी बीगी से क्या बात है। वास्तव में आपने ये बंगाली में गाया है?
0: नहीं, पता नहीं क्या बंगाली मिला के और अपने मन से कुछ डाल के कुछ गा दिया।
1: अच्छा, तो मैं सोच रहा था कि आपको वास्तव में आप बंगाली।
0: नहीं, मैंने ये गाना किशोर साहब ने बंगाली में भी गाया है।
1: अच्छा।
0: किशोर दा का है और बहुत प्यारा, इवन अरिजीत ने भी गाया है, बंगाली प्लस हिंदी में गाया है। तो अगर आप देखेंगे, आप YouTube पे भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको।
1: अरे वाह, क्या
0: आप पसंद आएगा।
3: अच्छा सर, आपको कितनी लैंग्वेजेस आती हैं?
0: बस एक ही आती है, इंसानियत की भाषा।
3: हाँ। वो तो सही है।
1: हाँ।
3: वो तो सबके अंदर होती है।
0: हाँ।
3: लेकिन मैं इंग्लिश, हिंदी और फिर फ्रेंच,
0: सारी आती है। जैसे फ्रेंच हम कैसे बोल के दिखाएं?
3: बोलिए
0: फ्रेंच। चाइनीज बोल के दिखा है?
3: फ्रेंच लैंग्वेज में, चाइनीज लैंग्वेज में बात करिए।
0: नहीं, अब जैसे होता है कि इंसान कहता बोल के बताइए, तो फ्रेंच, लो फ्रेंच बोल दिया। कोई कहे जर्मन तो जर्मन,
1: स्पेनिश। अब आप आंसर दीजिए।
0: इसमें तो आपको दमा की फिर वो फुसफुस लेनी पड़ेगी, इतना नहीं बोलना चाहिए। तो मुझे लगता है भाई ये लैंग्वेजेस लोगों को पसंद आई होगी। और जाने से पहले हमारी छोटी सी जो बच्ची है, आज की सबसे प्यारी गेस्ट निमिषा से पूछते हैं। बच्चे, आज आपको कैसा लगा आज का शो, बताइए जरा।
4: बहुत ही अच्छा लगा और मजेदार लगा।
0: अरे वाह, और हमें आपकी स्माइल बहुत प्यारी लगी, हम फिर से तारीफ कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। एंड आपकी दीदी बहुत प्यारा गाती हैं, आप लोग का बॉन्ड बहुत प्यारा है, ऐसे ही बना रहे। और आपके पापा बहुत प्यारे हैं, क्योंकि आप लोग को चाहते हैं, एवरी वीक यहाँ लेकर आते हैं, और आप लोग की मुलाकात हमसे और आपकी मुलाकात हमारे लिसनर से होती है रेडियो पर। सो हम थैंकफुल हैं पापा के भी, थैंक यू सो मच। एंड ऑफ कोर्स मज़े देते हैं बहुत सारे आरजे मनु, इनके भी हम थैंकफुल हैं, क्योंकि इस शो को आगे जो मज़ा आता है वो इन दो लोगों की वजह से आता है। सो थैंक्स टू यू मेरे को होस्ट आरजे मनु, बहुत बहुत शुक्रिया। सो फिलहाल हमारे श्रोताओं से भी हम पूछ लेते हैं, कैसा लगा हमको कमेंट सेक्शन में आकर के बता दीजिएगा। फिलहाल इजाजत दीजिए, क्योंकि अभी तक आप सुन रहे थे रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
5: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए CMO गोंडा की अपील।
8: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिला। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।

0: 89.6 FM रेडियो ज्ञान असली पर आप सुन रहे हैं आपके अपने गोना शहर की धड़कन आवाज है मेरी यानी कि उन्नति की। नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सभी। हेलो हाय गुड आफ्टरनून, आप सुन रहे हैं इंडिया टॉप 20 आफ्टरनून का स्पेशल वाला शो जो लेकर आती है आपकी अपनी फेवरेट वाली आरजी उन्नति। फेवरेट का टैग मैं खुद ही लगा लेती हूँ क्योंकि आप तो लगाने आते नहीं, इसलिए भाई हम खुद ही खुद को फेवरेट बोल देते हैं बिकॉज मैं तो अपनी फेवरेट हूँ। फिलहाल इस डायलॉग पर बिल्कुल मजा आएगा क्योंकि आज की प्लेलिस्ट थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी डिफरेंट होने वाली है क्योंकि इस फ्राइडे ही मैंने आपको कुछ ऐसी दुख भरी खबर सुनाई थी जिसको सुनने के बाद कई लोग परेशान, कई लोग हैरान और कई लोग मेरी तरह दोनों सोच में पड़े हुए थे कि क्या ये ठीक हो जाएगा कि क्या ये ठीक नहीं होगा। फिलहाल हम आपको बता दें कि आज की प्लेलिस्ट होने वाली है आपकी अपनी पसंदीदा सिंगर की, पसंदीदा सिंगर फीमेल सिंगर जिनकी आवाज़ आपको कुछ ना कुछ एहसास ज़रूर कराती है। एहसास आपको मोहब्बत का, एहसास आपको इश्क का, एहसास आपको इबादत का, एहसास आपको पार्टी का, एहसास आपको आपके होने का। किसी स्पेशल के लिए कुछ डेडिकेट करना हो, अपने दिल की कुछ बात कहनी हो, कुछ सुनना हो और अगर बहुत सैड हैं तो उसको एंजॉय करना हो, हर एक जॉनरा में उन्होंने अपने सॉन्ग्स को दिए हैं, इतने सारे गाने दिए हैं और कहने को वो एक बंगाली लड़की हैं लेकिन अपनी आवाज़ से उन्होंने लाखों लोगों का दिल जीता है। इवन पाकिस्तान में कुछ लोग उनके बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं। जी हाँ, अब आप गेस कर लीजिए कि आज हम किसकी बात करने वाले हैं, किसकी आवाज़ में गाने सुनने वाले हैं क्योंकि एंड ऑफ 20 की 20 सॉन्ग्स होने वाले हैं, उनके नाम, उनके स्पेशल वाले हिट गाने जिसके साथ होंगे आपके बॉलीवुड के न्यूज़ गॉसिप क्योंकि इसके बिना तो हमारा एंड ऑफ 20 अधूरा है ना बॉस। फिलहाल हाल फिलहाल में काफ़ी ट्रेंड में चल रही हैं, अपनी बीमारी से लड़ भी रही हैं, आई होप वो जल्दी ठीक हो जाएं और आई होप जो मैंने न्यूज़ सुनी है वो गलत हो जाए, मुझे वो न्यूज़ सच नहीं चाहिए। बट आप गैस कीजिए कि वो कौन सी सिंगर हैं। आइए चलते हैं 90s की तरफ, यानी कि 2026 से उड़ाकर सीधे ले जाऊंगी मैं आपको 1990 की दशक में और वहां से आप एंजॉय करने चाहेंगे आज की प्लेलिस्ट। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर यानी कि इस गाने के उस पार। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 89.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 20।

0: भाई 2002 में आई थी ये फिल्म, ये दिल आशिकाना फिल्म। भाई कैसी भी रही हो, लेकिन इसका एल्बम इतना ज्यादा हिट गया है, इतना ज्यादा हिट गया है कि लोग आज भी इसके एल्बम को एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, ये वो एल्बम है जिसके सारे के सारे गाने हिट गए हैं। 2002 में बॉलीवुड ने झड़ी लगा दी थी फ्लॉप फिल्मों की, लेकिन उस वक्त एक महाराज ऐसे थे, यानी कि एक एक्टर ऐसे थे जिनका नाम बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा था, जो एक से बढ़कर एक फिल्में बैक टू बैक दे रहे थे, और उनका नाम था विवेक ओबेरॉय। लेकिन इस फिल्म में वो नहीं है। फिलहाल आप सुन रहे थे अलका जी और उनके साथ आपके फेवरेट वाले सिंगर उदित नारायण की आवाज़ में ये दिल आशिकाना, और इस गाने को हमने बचपन में सुना था और आज भी सुनते हैं। फिलहाल आप बताइए, आपने गेस किया था कि आज हम अलका जी की बात करने वाले हैं, क्योंकि भैया अलका जी ने हाल फिलहाल में ही जो न्यूज़ सामने रखी है उसको सुनकर मेरे दिल में तो बहुत बुरा लगा है। मतलब बाय गॉड, एक ऐसी सिंगर जिनकी आवाज़ मुझे हमेशा से पसंद है, जिनकी आवाज़ सुनने के बाद लगता है हवा का रुख बदल गया है, हवा अचानक से रोमांटिक हो गई है। नॉर्मल हवा मुझे परी कथाओं में ले जाती है और एक रोमांटिक दुनिया में ले जाती है, जिसने बॉलीवुड की इतने खूबसूरत, इतने बेहतरीन, इतने शानदार गानों को गाया है, इतने शानदार गाने पेश किए हैं, और आज वो सुनने में आ रहा है कि वो गाने नहीं गा सकती, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो अब सुन नहीं सकती इसलिए गा नहीं सकती। और ये मेरे दिल के लिए काफ़ी बुरी बात है। मतलब मैं काफ़ी उदास हुई थी बात सुन करके, और मुझे कुछ पल के लिए यकीन नहीं हुआ था। और जिसको भी बताती हूँ कि अलका जी के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ है, उनके कानों में कुछ दिक्कत आई है, हियरिंग इश्यूज़ आए हैं, वो भी ये कहता है अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बट ये सच है। फिलहाल खुशी की बात यह है कि उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और एंजॉय करते हैं हमारा नेक्स्ट सॉन्ग जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, सॉन्ग नंबर 19 लज्जा फिल्म से, बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल, गोरे गोरे मखड़े पे काला काला तिल। और ये वो गाना है जिस पे मेरे स्कूल की लड़कियां तो एनुअल फंक्शन पे बहुत डांस करती थी। आपने कभी डांस किया इस गाने पर तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। स्टे ट्यून्ड,
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 19.

0: अलका जी की आवाज में आप सुन रहे हैं बड़ी मुश्किल बाबा बड़ी मुश्किल बोल हैं समीर साहब के, फिल्म का नाम है लज्जा और संगीत जो है वो है अनु मलिक साहब का। अब आपको भी पता है भाई अनु मलिक साहब के गाने बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं, उनके गाने सोते हुए लिरिक्स को भी जगाने का हुनर रखते हैं। ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनके लिरिक्स अगर अनु मलिक साहब के म्यूज़िक के बिना होती तो वो म्यूज़िक सोता ही रह जाता और आज आप उसे याद नहीं करते, आज आप उसे सुन नहीं रहे होते, आज आप उसे कहीं इंजॉय नहीं कर रहे होते। बट जब अनु मलिक साहब ने अपना तड़का दिया है और उसके बाद जब वो म्यूज़िक कंपोजर के सामने आया, जब उसको रिलीज़ किया गया है, लोगों के दिलो दिमाग पर वो गाने छा चुके हैं। और अब मैं आपको बता दूं भाई, वो गाने रिमेक हो रहे हैं, वापस से बन रहे हैं और लोग उसको इंजॉय कर रहे हैं। अनु मलिक साहब को लोग न जाने क्या क्या कहते हैं, बहुत सारी बातें कही जाती हैं उनसे, कहते हैं कि भाई अनु मलिक साहब एक गाने को न जाने कितनी बार रिपीट करते हैं, उनके लिरिक्स कई बार रिपीट हो जाते हैं। ऐसे हिमेश रेशमिया को भी सुनाया जाता है, लेकिन ये वो संगीतकार हैं जिन्होंने जब भी म्यूज़िक कंपोज किया है किसी गाने के लिए तो वो इतना हिट कंपोज किया है कि आज वो आपकी प्लेलिस्ट में शामिल हैं, आने वाली जनरेशन को पसंद आ रहे हैं। जो जनरेशन इस वक्त चल रही है, चाहे वो जेन जी हो या फिर जेन अल्फ़ा हो, दोनों लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। लोग अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में उसे लगा रहे हैं, अपने इंस्टाग्राम की रील्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और बॉलीवुड उन्हें दोबारा से रीमेक करने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये वो कंपोज़र्स हैं जिनको सल्यूट तो बनता है। फिलहाल आपने इस गाने को एंजॉय किया और आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और उससे उसके बाद हम आपको बताएंगे अलका जी के बारे में कुछ बहुत ही बेहतरीन सी बातें जो शायद आपको ना पता हो। आपको पता है क्या कि अलका जी ने कभी आकाशवाणी में भी काम किया है और वो आकाशवाणी के लिए गाने गाया करती थी। अगर आपको नहीं पता है तो हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन इस गाने के उस पर आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 18 की तरफ और आप सुने जा रहे हैं चाइना गेट से वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग और इसका रीमेक वर्जन भी उतना ही पॉपुलर है जितना पॉपुलर ओरिजिनल वाला गाना है। उर्मिला पर फिल्माया गया सॉन्ग आप सुनने जा रहे हैं चाइना गेट से छम्मा छम्मा। आपके लिए पेश करते हैं स्टे ट्यून्ड
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 18

हाँ जी, और ये आप सुन रहे थे अलका जी की आवाज में, शंकर महादेवन विनोद राठौड़ की आवाज में आपने इस गाने को एंजॉय किया। चाइना गेट से बोल हैं समीर साहब की और म्यूजिक डायरेक्टर एज यूजुअल हमारे अनु मलिक साहब है। भाई ये वो गाना है ना जिसको सपना अवस्थी जी लेकर आई थी असम से ढूंढ ढांड के, और उन्होंने कहा था भैया ये वाले गाने को थोड़ा सा चटपटा बनाकर लोगों के लिए सुनाया जाए, आपको ये गाना बनाना ही पड़ेगा। समीर साहब ने कहा कि आए ये गाना नहीं हो पाएगा क्योंकि इस गाने में वो बात नहीं है जो हमारे जो लिसनर्स हैं, जो हमारे ऑडियंस हैं, जो हमारे संगीत सुनने वाले लोग हैं, वो उसे कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। आप सपना जी तो भैया जिद पे पकड़ गई थी, नहीं नहीं नहीं करना तो आपको पड़ेगा। और समीर जी ने भैया सोचा कैसे करूँगा मैं ये, आपको भी पता होना चाहिए भाई जो लोग बोल लिखते हैं उन्हें बड़ी मेहनत लगती है। वो अलग बात है कि कुछ गाने बड़े मिनटों में तैयार हो जाते हैं।

0: जैसे कि एक गाना है जावेद अख्तर साहब का जो बहुत जल्दी तैयार हुआ था, ऐसा ही एक गाना और भी है जिसे आपने सुना कई दफ़ा है बट आपको याद अभी फिलहाल नहीं आएगा, लेकिन वो गुस्से गुस्से में लिखा गया था और बहुत जल्दी लिखा गया था और इतना जल्दी लिखा गया था और राइटर को लगा था कि पसंद वसंद तो आने वाला है नहीं, लेकिन इसके बाद भी डायरेक्टर ने कहा था वाह अप्रूव्ड, गाना अप्रूव हो चुका था। ऐसे ही कुछ और भी गाने हैं जो बहुत जल्दी लिखे गए हैं बट हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ गानों के लिए बहुत सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, सही शब्द चुनने पड़ते हैं। और उनमें से ही एक गाना ये भी था जब सपना बस्ती इसको लेकर आई थी और वो जिद पकड़ के बैठ गई थी कि अब तो तुमको बनाना ही पड़ेगा, नहीं बनाओगे तो कहीं जाओगे भी नहीं। तब जाकर कहीं समीर जी ने सोचा कि भैया क्या करूँ मैं इसका, अब कुछ तो करना पड़ेगा ना, गाना आ चुका है, बोल आ चुके हैं, लेकिन बाकी के बोल और उसके लिए म्यूज़िक चाहिए। और म्यूज़िक के लिए वो पहुँचे थे अनु मलिक साहब के पास अपनी परेशानी बताते हुए कि देखो भैया ये गाने को बनाना तो है लेकिन ये गाना लोगों को पसंद आना चाहिए, ये गाना बहुत सोता हुआ है, लोगों को सुला देगा थिएटर के अंदर। अनु मलिक साहब ने कहा हाँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, जब तक मैं हूँ तो किस बात का तुमको गम है, आओ मैं तुमको म्यूज़िक देता हूँ। और उन्होंने इतना शानदार म्यूज़िक दिया जिसको अभी आपने एंजॉय किया और इस सोते हुए गाने के अंदर जो उन्होंने एनर्जी का तड़का लगाया है वो आज भी लोगों को नाचने पे मजबूर कर रहा है, इसीलिए इसका रीमेक वर्जन भी तैयार किया गया था। फ्रॉड सैया नाम की फिल्म में इसका रीमेक वर्जन आया है और वो वर्जन भी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो आपने एंजॉय किया सुपर डुपर हिट गाने को, हर गाने के पीछे अपनी एक कहानी होती है, अपने कुछ किस्से होते हैं, अपने पूरा एक प्रोसेस होता है जिसमें से कुछ बातें मैं आपको ज़रूर बताती हूँ आपके इंटर टॉप 20 में। और आइए चलते हैं आपको बताते भाई अलका जी के बारे में अब कुछ, तो हम आपको बता दें कि अलका जी ने अपनी माँ की तरह ही क्लासिकल म्यूज़िक की ट्रेनिंग ली हुई है, जी हाँ, और साल 1972 में उन्होंने आकाशवाणी कोलकाता के लिए भजन गाना शुरू कर दिया था। तब वो मात्र 6 साल की थी, मतलब 6 साल की उम्र में अलका जी भजन गा रही थी, वो भी किसी ऐसे वैसे के लिए नहीं, आकाशवाणी के लिए। और जब उनकी मुलाकात होती है राज कपूर साहब से जिन्होंने उनकी ज़िंदगी पलट दी, जिन्होंने उनकी ज़िंदगी बदल दी, वो बदलाव, वो कहानी, वो ट्विस्ट, वो क्लाइमेक्स मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इस गाने के उस पार तो एंजॉय करते रहिए आपका सॉन्ग नंबर 17। जी हाँ, सॉन्ग नंबर 17 हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं अलका जी की आवाज़ में ही आपका सबसे फेवरेट वाला सॉन्ग अगर मैं कहूँ। आपने ये गाना सुना होगा राज फिल्म से, राज जी हाँ एक बहुत डरावनी सी फिल्म आई थी, इसको देखने के बाद मैं बहुत डर गई थी। फिलहाल आप एंजॉय कीजिए ये वाला गाना, रात से कितना प्यारा है ये चेहरा, और आप मुझे बताएं कि आपका पसंदीदा कौन सा है। कहीं वो डायलॉग आप भी तो नहीं मारते हो कि मेरे इतने करीब मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगी, क्योंकि ये डायलॉग बड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, स्पेशली दिवाली में बड़ा पॉपुलर हो रहा है सॉन्ग, मतलब डायलॉग। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं टॉप 20 आपकी अपने एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर। स्टे ट्यून्ड,
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 17।

0: कितना प्यारा है ये चेहरा जिस पे हम मरते हैं। उदित जी और अलका जी की आवाज़ में आपने इस गाने को सुना। राज फिल्म जो कि 2002 में आई थी, बिपाशा के ऊपर फिल्माया गया गाना है और ये वो फिल्म थी जिसने लाखों लोगों को डरा कर रखा हुआ था। उनमें से एक मैं भी थी। एक वक्त था जब मैं भी हॉरर मूवी को देखकर न जाने क्यों लेकिन महीनों तक उसकी भूतनी को अपने दिमाग में लेकर घूमा करती थी, और जैसे ही मुझे रात में किसी चिड़िया की आवाज़ सुनाई पड़ जाती थी, स्पेशली जब हम गर्मियों के दिनों में छत पर सोया करते थे, तो उस वक्त मेरे अंदर का जो खौफ होता था ना, वो जग जाता था कि अरे नहीं नहीं नहीं ये पक्का वही है जिसको मैंने देखा था। बचपन से हॉरर फिल्म देखने का शौक तो बहुत है, लेकिन उसके बाद जो डर लगता था उसका अलग ही मज़ा हुआ करता था। नानी जब कहा करती थी कि जाके गेट बंद कराओ, और हम चार चार सीढ़ियाँ कूद जाया करते थे क्योंकि हमको डर लग रहा है क्या पता पीछे ही खड़ी हो मेरे और मुझे पकड़ के ले जाए। हालांकि आज तक पकड़ के ले नहीं गए, और अब मैं चाहती हूँ कि कोई मुझे डराए और हॉरर मूवियाँ आएँ, लेकिन अब नहीं आती हैं। अब हॉरर मूवी से डर नहीं लगता, लेकिन एक वक्त था जब एक थी रायन, राज और ऑफ कोर्स 90/20 जैसी फिल्मों को देखकर मेरे दिल में इतना खौफ बैठ चुका था कि मुझे हर एक जगह भूतनी दिखाई पड़ रही थी, हर एक जगह दिखाई पड़ रही थी। एक थी रायन देखने के बाद वो जो लहराती हुई चोटी थी मुझे वो नज़र आ रही थी हर जगह अपने पीछे, स्पेशली जब मैं छत पर जाती थी गेट बंद करने के लिए, और उस वक्त मेरी स्पीड और शक्तिमान की स्पीड में कोई फ़र्क था नहीं। मैं वैसे ही कूदती थी जैसे शक्तिमान कभी कूदा करता था, लेकिन वो अलग बात है वो छत से कूदता था, मैं सीढ़ियों से कूदा करती थी। फिलहाल आइए हम आपको बता देते हैं अलका जी के बारे में कुछ और सी बातें, और हम आपको बता दें भाई कि एक बार राज कपूर ने जब छोटी अलका जी को गाते हुए सुना, उनकी आवाज़ को सुना, तब उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के पास उन्हें भेज दिया था। उन्होंने अलका जी को दो ऑफर दिए थे, या तो वो डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर तुरंत शुरू करें या फिर सिंगर के तौर पर ब्रेक का इंतज़ार करें। तब अलका की माँ ने कहा था, जी हाँ, अलका जी की माँ ने कहा था कि डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर नहीं, तुम एक सिंगर के तौर पर सामने आना और इसलिए ब्रेक का इंतज़ार करो। और अपनी माँ की बात मानकर अलका जी ने ब्रेक का इंतज़ार किया था, और उसके बाद उनकी एंट्री हुई थी उस धमाकेदार गाने को लेकर के जिसने अलका जी के साथ साथ बदल दिया था माधुरी दीक्षित का भी करियर। उस गाने ने अलका जी और माधुरी दीक्षित को वो ऊंची उड़ान दी जो आज उनके करियर में आपको नज़र आती है। वो गाना जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ वो था तेजाब फिल्म का। तेजाब फिल्म से अलका जी ने अपना पहला गाना डब किया, उन्होंने अपने गाने को गाया और वहाँ से उनकी किस्मत पलट गई। वहीं से उनको फिल्मों में गाना गाने की शुरुआत हो चुकी थी। उससे पहले भी कई बार उन्होंने गाने गाने की कोशिश की थी, लेकिन जो असल शुरुआत मानी जाती है वो उनके इस गाने से मानी जाती है। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। जैकलीन ने भी इस गाने को परफॉर्म किया है, उनके ऊपर फिल्माया गया है, डांस किया है, लेकिन उस वक्त जब इस गाने का जो क्रेज़ था वो इतना ज़्यादा था और डायरेक्टर साहब ने उस वक्त गाने के लिए लोगों को बुलाने के लिए बाहर खड़े होकर, स्टूडियो के बाहर खड़े होकर जो आते जाते लोग थे उनसे बस इतना कहा था कि क्या तुम्हें फिल्मों के अंदर आना है, और उनको पकड़ पकड़ के उठा करके सारा स्टेडियम भर दिया गया था जिसमें माधुरी दीक्षित नाचने वाले। वो जितने भी लोग आपको दिखते हैं वो कोई तैयार किए गए नहीं थे, वो असल लोग थे जो रोड पर गुजर रहे थे। बस डायरेक्टर के पास दिमाग में थोड़ा सा आइडिया आया, उन्होंने लोकल लोगों को पकड़ा, उनसे कहा चलो तुम्हें फिल्मों में एंट्री देते हैं, और इसके बाद वो पहुँच गए थे उस स्टेडियम में माधुरी दीक्षित का डांस देखने, उस गाने की परफॉर्मेंस देखने। और उसी दौरान किसी एक इंसान ने अपनी शर्ट उतार कर उस एनर्जेटिक सॉन्ग के बीच में स्टेज पर फेंक भी दी थी। लोगों को लगा था कि डायरेक्टर बोल देगी कि कट, बट ऐसा नहीं हुआ। डायरेक्टर का होने दो, दिस इज़ अ नेचुरल रिएक्शन, यही तो हमको चाहिए, लोग इतने खुश होने चाहिए। और वहाँ से ये गाना सुपर सुपर हिट हुआ था। गाने का नाम है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 16।

0: नमस्कार।
1: कहिए क्या सुनेंगे आप?
0: अरे पहले ये कहिए कहाँ थी आप?
1: मैं कर रही थी किसी का इंतजार।
0: कौन है वो?
1: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।

0: आप सुन रहे हैं अलका जी और अदित की आवाज में अखिया मिलाऊं कभी अखिया चुराऊं, बोल हैं समीर के और संगीत सजाया है नदीम श्रवण ने। राजा फिल्म से आपने इस गाने को एंजॉय किया और मुझे आपको कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर करनी है आज जो कि बॉलीवुड से नहीं है लेकिन हमारे भारत के लिए बहुत बड़ी बात है। इस बार क्योंकि काफ़ी सारे गेम्स चल रहे हैं और उन गेम्स को ज़रा साइड भी अगर हम कर दें, सिर्फ बात करें योगा की, योगा जी हाँ, योगा कॉम्पिटिशन जिसमें भारत ने 114 मेडल जीते हैं जिसमें से 102 गोल्ड हैं। और मैं आपको बता दूं भारत नंबर वन देश रहा है योगा में जीतने के लिए, सेकंड नंबर पे जापान आया है और थर्ड नंबर पर अर्जेंटीना। ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। वो अलग बात है कि आपको इन बातों को बताने के लिए अलग अलग सोर्सेज की ज़रूरत पड़ जाती है, आप कई बार चीज़ों तक पहुंच नहीं पाते हैं। जहां हम हमारी नज़र सिर्फ क्रिकेट पर होती है, जहां हमारी नज़र सिर्फ इस पर होती है कि छक्के कितने लगे, चौके कितने लगे, कितने पे आउट हो गए, हमने क्या जीता, क्या हारा, क्या खोया, वहीं पर लड़कियों की टीम हल्ला मचा रही है। वहीं पर कुछ ऐसे रिकॉर्ड हैं जो तोड़े जा रहे हैं, जहां पर इंडिया ने कभी मेडल नहीं जीता वहां मेडल जीता जा रहा है। कुछ ऐसी जगह है, कुछ ऐसे देश हैं जहां पर इंडिया उनके घर में जाकर के, यानी कि उनके देश में जाकर के, उनके ज़मीन पर उनके लोगों को हराकर अपने देश का नाम, अपने देश का झंडा लहरा रहा है। फिलहाल मुझे बताना तो था आपको ये कुछ दिन बाद यानी कि वेंसडे को, लेकिन अब मुझसे रहा नहीं जा रहा तो मैंने सोचा क्यों ना आज योगा के बारे में आपको बता ही दें, क्योंकि भाई ये आपके लिए काफ़ी बड़ी बात है, हमारे लिए काफ़ी बड़ी बात है। जहां हम आए दिन कुछ ना कुछ अलग सुन रहे हैं, जहां लोग इंडिया से भाग रहे हैं, जहां हमारे खिलाड़ियों को एक पहचान नहीं मिल पा रही है, वहीं हमारे खिलाड़ी अपनी मेहनत से आगे निकल कर भारत के लिए 114 मेडल जीत के आ रहे हैं जिसमें से 102 गोल्ड है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिया में गोल्ड आए तो भैया सपोर्ट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये खिलाड़ी वो हैं जो आपके सपोर्ट के लिए अभी भी पीछे हैं, आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर चाहे वो हमारी हॉकी टीम हो, चाहे हमारी वॉलीबॉल टीम हो जिसने अभी तक अपना नाम बनाकर रखा हुआ है और वो हमेशा सेमीफाइनल में बाहर हो जाती थी, लेकिन अब फिलहाल वो फाइनल में जा रही है। हम आपको बताते रहेंगे और भी बातें, लेकिन फिलहाल क्योंकि ये बॉलीवुड का शो है तो आइए बॉलीवुड पे वापस चलते हैं और इन्जॉय करते हैं आपका अपना सॉन्ग नंबर 14। सॉन्ग नंबर 14 ये वो गाना है जिसको आकाशवाणी और बाकी जगहों पर बैन कर दिया गया था क्योंकि गाना काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव लगा था, काफ़ी ज़्यादा अलग लगा था, तो लोगों ने कहा था भाई इस गाने को नहीं प्ले किया जाएगा आकाशवाणी में, बिल्कुल भी प्ले नहीं किया जाएगा, इसके शब्द अच्छे नहीं हैं, व्हाट इज़ दिस चोली के पीछे क्या, ये गाना बहुत वाहियात है। बट जैसे ही ये गाना रिलीज़ हुआ, भले ही इसको रेडियो पे बैन कर दिया गया, भले ही इसको डीडी नेशनल पे बैन कर दिया गया, इसके बाद भी ये गाना धूम मचा रहा था। रिलीज़ होते ही करोड़ों में इसकी कैसेट बिक गई और हार कर आकाशवाणी और दूरदर्शन को इस गाने को अपने प्लेटफॉर्म पे प्ले करना ही पड़ा। तो आइए सुनते हैं वो गाना जिसने अलका जी को शर्माने पे मजबूर कर दिया था। अलका जी जब इस गाने को गा रही थी तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी। गाना है चोली के पीछे क्या है फ्रॉम खलनायक। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेश कर रहे हैं आपके लिए तो टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 14 चोली के पीछे क्या है। आप सुन रहे हैं मेरे साथ यानी उन्नति के साथ आपकी अपनी एफएम रेडियो 89.6 एफएम पर।
1: Radio Gana 89.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 14.

0: हां जी, तो आप सुन रहे थे सॉन्ग नंबर 13 ऐसी दीवानगी। भाई शाहरुख खान की वो पहली फिल्म जिसमें उन्होंने डेब्यू किया था, और ये फिल्म उन्होंने की थी भाई उस वक्त की सबसे पॉपुलर, सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन अदाकारा के साथ, जिनका नाम था दिव्या भारती। भाई ये वो वक्त था ना जब दिव्या भारती को हर कोई पसंद कर रहा था, उनकी करियर पीक पे चल रहा था, उनकी फिल्में हिट पे हिट हो रही थी, और उस वक्त उन्होंने दिव्या भारती के साथ इस फिल्म में अपना रोल अदा किया था। हम आपको बता दें, जिस डायरेक्टर के साथ काम किया था शाहरुख खान ने, दिव्या भारती के मरने के बाद उस डायरेक्टर के साथ दोबारा काम करने के नाम कभी नहीं सुना गया। कहते हैं लोग कि भाई ये दिव्या भारती के लिए एक ट्रिब्यूट था, उनके लिए एक जस्टिस था, क्योंकि ये केस बहुत ही ज़्यादा पेचीदा था। दिव्या भारती की मौत कैसे हुई, इस बात को लेकर आज भी रहस्य बना हुआ है, और इस बात को लेकर कि उन्होंने उस डायरेक्टर के साथ कभी दोबारा से काम नहीं किया जिस डायरेक्टर ने इस फिल्म में उन्हें डेब्यू दिया था। अब आप बताइए कि क्या ये बात सही थी या फिर ये थोड़ी गलत थी। फिलहाल आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, लेकिन उससे पहले लेकर चलते हैं हम आपको आपके बॉलीवुड की तरफ। बॉलीवुड में हाल फिलहाल में एक नई फिल्म आई है जिसको कहते हैं वेलकम टू द जंगल। इसमें जैकलिन की एक लाइन है जिसको आपने सुना होगा कि भोजपुरी इज़ बेटर देन हॉलीवुड, यानी कि भोजपुरी हॉलीवुड से ज़्यादा अच्छा है। अक्षय कुमार ने बताया कि ये लाइन उन्होंने खुद जैकलिन को दी थी। इसके पीछे की वजह ये थी क्योंकि अंग्रेज़ों को कभी पता ही नहीं चला, यानी कि हॉलीवुड एक्ट्रेस को कभी पता ही नहीं चला कि भोजपुरी गाने कैसे बनते हैं। उन्होंने कभी भोजपुरी गानों को देखा ही नहीं था, उस तरह के गाने उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किए थे, और इसीलिए मैंने एक अंग्रेज़ के नज़रिए से, एक ऐसे इंसान के नज़रिए से जो भारत से बाहर रहता है, मैंने ये लाइन जैकलिन को दी थी कि तुम बोलो भोजपुरी इज़ बेटर देन हॉलीवुड। भाई आप बताइए आप क्या क्या ख्याल हैं और आप क्या सोचते हैं। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ, और चैट बॉक्स में हमारे साथ मनीष शर्मा जी जुड़ गए हैं, दीपक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो लिख रहे हैं हाय हाय कैसे हैं आप, एंड गुड आफ्टरनून आरजीती मैम जी, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं द टॉप 20 में। आप सुन रहे हैं आपकी सुपर डुपर हिट वाली प्लेलिस्ट, और 40 मिनट के अंदर भैया 12 गाने और बाकी हैं। अलका जी की आवाज़ में कब इतना वक्त गुजर गया पता भी नहीं चला, तो इन्जॉय करते रहिए। आपका अगला सॉन्ग तो शायर है मैं तेरी शायरी आपके लिए पेश करते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।
1: रेडियो गैरासली 9.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स, सॉन्ग नंबर 12।

0: इसलिए सिंपल सतना से कहा है कि मुझे अलका जी के गानों से बे इंतहा मोहब्बत है और आई थिंक आपको भी हो, इसीलिए तो लिखा गया है ब्यूटीफुल सॉन्ग, थैंक यू सो मच। और फिलहाल आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ। अगला गाना जो हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉन्ग नंबर 10 बाजीगर फिल्म से, आप सुनने जा रहे हैं आवाज में प्लस आपकी अपनी अलका जी की आवाज में ऐ मेरे हमसफर ऐ मेरी जान। पेश करते हैं आपके लिए जो टॉप 20 का सॉन्ग नंबर 10।
1: Radio Garasari 9.6 FM presents India Top 20 Songs. Song number 10.

सलाम के साथ और अलका जी की आवाज में आप सुन रहे थे चलो इश्क लड़ाएं। और अब बारी हमारी अगले गाने की तरफ चलने का, यानी सॉन्ग नंबर 8 की तरफ चलने का। आप सुन रहे हैं टॉप 20 आपके अपने एफएम रेडियो 91.6 एफएम, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आइए चलते हैं हमारे सॉन्ग नंबर 8 की तरफ। सिर्फ तुमसे आप सुनने जा रही हैं वो गाना जिसका रीमेक वर्जन जब नेहा कक्कर की आवाज में आया था, नौरा फतेही पे फिल्माया गया था, तो बहुत पॉपुलर है। आई थिंक आपने गेस कर लिया होगा हम किस गाने की बात कर रहे हैं। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं उस वक्त का सबसे पॉपुलर गाना दिलबर कक्कर।

भाई जिस आवाज को आप इतनी शिद्दत से एंजॉय करते हैं कि आपको पता है उस आवाज को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है। जी हाँ, अलका जी ने ये रिकॉर्ड पहली बार 2020 में बनाया था, इसके बाद 2021 और 2022। अलका जी बन चुकी थी उस वक्त, तीन बार अपना नाम उन्होंने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया था और सबसे ज्यादा सुनी जाने वाली सिंगर थी। बॉलीवुड में इतने सारे सिंगर हैं, हॉलीवुड में इतने सारे सिंगर हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में इतने सारे सिंगर हैं, और उन सारे सिंगर्स में से जो सबसे ज़्यादा सुना जाता है, जिनकी आवाज़ सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है, वो एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार इस खिताब को जीतने वाली और उस रिकॉर्ड को बनाने वाली अलका जी थी। लाल, ये बात आपको पता थी क्या? चलिए आइए चलते हमारे अगले गाने की तरफ और इन्जॉय करते हैं सॉन्ग नंबर 7 उदित जी और ऑफकोर्स अलका जी की पसंदीदा जोड़ी में, हम यार है तुम्हारे, दिलदार है तुम्हारे। स्टूडियो रेडियो 99.6 FM प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स।

तो मनी शर्मा जी हमारे साथ वापस से जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं हाय हाय कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं हम इन द टॉप 20 में वंस मोर। फिलहाल आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 6 की तरफ और आप सुनने जा रहे हैं अंदाज फिल्म से कुमार सानू और अलका जी की आवाज में किसी से तुम प्यार करो। वक्त बहुत कम है और गाने बहुत खूबसूरत, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं अगले गाने पर अभी बीट पर।

0: आपने सुना एतराज तुम से। आइए चलते हैं हमारे अगले गाने की तरफ और घड़ी में वक्त होता जा रहा है आपसे विदा लेने का, तो ऑलमोस्ट हमारे पास हैं चार गाने और अभी हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सा गाना जिसमें दो बहुत ब्यूटीफुल सिंगर्स हैं, दो नहीं तीन, दो फीमेल एक मेल। दिल का रिश्ता फिल्म का नाम है, ऐश्वर्या राय पर फिल्माया गया गाना है, अलका जी की आवाज है और साथ में किसकी आवाज है जरूर मुझे बताइएगा। एंजॉय कीजिए साजन साजन स्टेडियम
1: रेडियो 99.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स सॉन्ग नंबर 4।

0: जी, और उसी के साथ आइए चलते हैं सॉन्ग नंबर थ्री की तरफ। सॉन्ग नंबर थ्री हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी फिल्म से जिसने सबका दिल दिखाया है। कोई भी इस फिल्म की एंडिंग के लिए तैयार नहीं था, सबको लगा था हैप्पी एंडिंग होने वाली है, पोस्टर्स इतने खूबसूरत लगे थे, लेकिन जैसे ही फिल्म का अंत हुआ लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे। फिल्म का नाम है क्योंकि इट्स फेट, और उसमें सलमान खान की एक्टिंग इतनी उम्दा थी कि लोगों को लगा कि शायद गलत हो रहा है कैरेक्टर के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। फिलहाल वो गाना कौन सा है आइए आपको सुनाते हैं, एंजॉय कीजिए और याद कीजिए वो वाली लाइन जिसमें सलमान खान कहते हैं माया।
1: रेडियो 89.6 एफएम प्रेजेंट्स इंडिया टॉप 20 सॉन्ग्स। सॉन्ग नंबर थ्री।

हां जी, और आइए चलते हमारे सॉन्ग नंबर 1 की तरफ, और इसी के साथ हम मुझे दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं आपसे अपने अगले वाले शो के लिए निकी अनसली में, तब तक के लिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए, आपको छोड़ के जा रहे हैं हम अपने सॉन्ग नंबर 1 के साथ।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
3: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिला। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
4: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
5: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
4: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
5: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
4: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूँ और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
6: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
7: जी, हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
6: जी।
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
6: जी, बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी, हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते, क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
6: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
6: जी, तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीबी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी, जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
6: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
6: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
7: जी आज दीदी
6: है? क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ, टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
6: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है। जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है, उसकी उनको जानकारी देती हूँ
6: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
6: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
6: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीबी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
7: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीबी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
6: तो दोस्तों, टीबी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
8: स्वागत है श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना कम्युनिटी रेडियो।
9: हाँ जी, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आए हो बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है अब आपके अपने क्लिनिक ज्ञानस्थली का, यानी कि आपके सेहत वाले कार्यक्रम का, जिसको हम लेकर आते हैं सेहत सही लाभ के बैनर के तले। स्मार्ट एनजीओ रेडियो ज्ञानस्थली की एक खूबसूरत सी पहल जिसमें बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की, आपके सेहत की। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त स्टूडियो में हमारे हेल्थ एक्सपर्ट, जो हर संडे आपसे मुलाकात करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, सॉल्व करते हैं और आपको बहुत सारी बातें बताते हैं, जिनका नाम है राहुल विश्वकर्मा, जो कि हमारे हेल्थ एंड मेडिसिन एक्सपर्ट है।
10: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके साथ साथ हमारे सभी लिसनर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बनने के लिए और हमें ये अवसर प्रदान करने के लिए, ताकि हम उनकी सेवा कर पाएँ। और जैसा कि हम हर संडे उनकी सेवा करने के लिए आते हैं, तो जल्दी से अपना मोबाइल फ़ोन उठा लीजिए, हमें टेक्स्ट मैसेज करिए या फिर हमारे चैट बॉक्स में हमें मैसेज करके या फिर सीधे हमें कॉल करके भी आप अपने सवालों को हमसे पूछ सकते हैं।
9: जी तो भाई, आज वैसे आपको पता है कि पल्स पोलियो का शुरुआत हो चुकी है?
10: जी बिल्कुल, इस अभियान के तहत तमाम तरह के ऐसे कैंपेन चलाए जाते हैं अक्सर करके, और इस समय भी देखने को मिल रहा है कि पल्स पोलियो ये इसके अभियान के तहत मुझे लग रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे जो टीकाकरण होता है, वैक्सीनेशन होता है, वो किया जा रहा है। और मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में हमारा, आपका और हम सबका फेवरेट कम्युनिटी रेडियो भी बहुत सारी अवेयरनेस लोगों को फैलाता रहता है।
9: जी, तो आज हम बात करने वाले हैं इसी पोलियो के ऊपर, क्योंकि भाई आज भी लोग, वैसे आपको पता है पोलियो की वैक्सीन लोग लगवा ही नहीं रहे थे एक टाइम पर।
10: बिल्कुल, और मुझे याद है जब मैं छोटा था, बच्चा था, लगभग ये 4-5 साल का या 6-7 साल का, तो मुझे ऐसा मतलब सुनने में आता था, हमारे पेरेंट्स या कुछ लोग बात करते थे कि बहुत से गाँव में जब जाते हैं वैक्सीनेशन के लिए तो लोग बच्चों को छुपा लेते हैं घर में, और बच्चे भी डर के छुप जाते हैं, बच्चों को तो खैर क्या ही पता है, तो छुपा लेते हैं और वो वैक्सीनेशन नहीं करवाते हैं, और ये समस्याएं भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इनका सामना करना पड़ा है।
9: जी वेल, मुझे भी याद है बचपन में जैसे ही खाना खाने हम बैठा करते थे और वो दो बूंद जिंदगी की जो आते थे
10: जी,
9: हमारी मम्मी मेरे हाथ से खाना लेकर पहले हमें पोलियो पिलाने पहुंच जाती थी कि चलो दवा भी कराओ, और उसके बाद खाना देती भी नहीं थी।
10: जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इन सभी चीज़ों के ऐसी यादों से हमारा बचपन गुजरा हुआ है, और हम लोग तो उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं।
9: फिलहाल आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं और जानेंगे कि पोलियो वैक्सीन क्या है, किस लिए लगवाई जाती है, कौन कौन लगवा सकता है और अगर आप नहीं लगवाते हैं तो किसका खतरा ज्यादा होता है।
10: बिल्कुल,
9: ये तो एक टाइम था जब भारत में बहुत ज्यादा पोलियो के मरीज नजर आ रहे थे
10: जी।
9: उसके बाद सरकार ने कोशिश की कि भाई भारत को पोलियो मुक्त किया जाए, जिस तरह से अभी सरकार कोशिश कर रही है कि भारत को टीबी मुक्त किया जाए।
10: जी बिल्कुल,
9: तो इसके लिए सरकार ने दो बूंद जिंदगी की शुरू किया और अमिताभ बच्चन जी भी कहा गया था कि आप कुछ एडवर्टाइजमेंट कीजिए। पहले वो बहुत प्यार से कर रहे थे एडवर्टाइजमेंट, लेकिन लोग नहीं आ रहे थे।
10: जी जी बिल्कुल,
9: फिर एडवर्टाइजमेंट का अंदाज बदला गया,
10: थोड़ा सा अंदाज बदला गया और बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट के मीम्स भी बन गए जो कि
9: बिल्कुल
10: अभी भी देखने को मिलता है।
9: उसके बाद अमिताभ बच्चन जी काफी गुस्से में आकर बोले कि पोलियो की दवा पिलाई जाए और हम आपको बता दें कि 70% लोगों की आबादी बढ़ गई थी तुरंत उस एडवर्टाइजमेंट के बाद।
10: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसका प्रभाव पड़ता है। सरकार अगर ऐसी कोई कैंपेन चलाती है जो कि एक स्वास्थ्य कल्याण में और जनहित के कल्याण में जो योजनाएं जारी होती हैं उनमें ऐसे लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हमें लगता है हम जैसे लोगों का भी ये कहीं ना कहीं कर्तव्य बनता है कि हम अपने इस प्यारे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों को अवेयर करें, उन चीज़ों के बारे में बताएँ। और इसका प्रभाव लोगों पे पड़ता है जब समाज के जिम्मेदार लोग, समाज के प्रचलित प्रतिष्ठित लोग आकर के और ये बातें समाज में रखते हैं तो इनका संदेश कहीं ना कहीं जो हमारी एक आम जनता है उनके ऊपर एक गंभीर इम्पैक्ट पड़ता है।
9: जी, तो सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पोलियो किसे कहते हैं।
10: जी हाँ बिल्कुल, चलिए हम आज बहुत अच्छे से जानते हैं। अब पोलियो मुक्त भारत के तमाम अभियानों के तहत हम हमारे आज इस शो का टॉपिक भी हम पोलियो ही लेकर के चलते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि देखिए पोलियो एक बीमारी है जो कि हमारे हड्डियों को टारगेट करती है।
9: हड्डियाँ?
10: जी, हमारे हड्डियों को, हमारी बोन्स जो बड़ी हड्डियाँ होती हैं, लॉन्गर बोन्स होती हैं, उनको टारगेट करती हैं ये बीमारी। और ये एक प्रकार के वायरस की वजह से होता है जिस वायरस का इटसेल्फ नाम ही पोलियो वायरस होता है।
9: पोलियो वायरस सर ये मौजूद कहाँ होता है?
10: जी अब वैसे तो देखिए मतलब इस वायरस की तमाम तरह के सोर्सेज हैं, बट जो घोड़े होते हैं घोड़ों के मल में और ऐसे जो दूसरे जानवर होते हैं उनके मल में, खेतों वगैरह में, मिट्टी में, ठीक है, किसी ऐसे नेचुरल रिजर्वायर्स वगैरह में, इन सभी जगहों पर ऐसे वायरसेस पाए जाते हैं। और ये जो वायरस होता है जैसे तमाम तरह के एक जो HIV वायरस होता है, इम्यूनो वायरस होता है, उसी तरीके से ये भी एक तरह का वायरस है। लेकिन जैसे हर तरह के वायरस की अपनी अलग विशेषताएं होती हैं, वो अलग अलग बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन्स को प्रभावित करता है, उसी प्रकार से ये जो वायरस है ये हमारी हड्डियों को प्रभावित करता है और हड्डियों में विकृति उत्पन्न करता है।
9: जी, वैसे टिटनेस का वायरस जो होता है वो भी शायद घोड़ों के अंदर से ही पाया जाता है।
10: जी बिल्कुल, और मिट्टी में भी, मतलब ये क्या है कि चूंकि ये जानवर जो है वो डायरेक्ट मतलब मैदान से, खेतों से भोजन करते हैं, घास खाते हैं, तो इन सभी चीज़ों में पाया जाता है, इनके मल वगैरह में इनके मतलब उपलब्धि रहती है और वहाँ से कहीं ना कहीं कंटामिनेशन होकर मिट्टी में, मिट्टी से कहीं ना कहीं जैसे टिटनेस का वायरस है वो, इसीलिए मतलब कहते हैं कि कभी भी ऐसी चोट लग गई हो जहाँ पे मतलब खुली चोट हो जो मिट्टी वगैरह के कंटामिनेशन में या कांटेक्ट में आई हो, तो टिटनेस का वैक्सीन लगवा ही लेना चाहिए। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आपका मतलब किसी लोहे से या फिर जंग लगे हुए लोहे से ही हाथ पैर में कहीं कट लगे तो ही टिटनेस का वैक्सीन लगवाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
9: बल्कि होता इसका उल्टा ही है, जब लोग टिटनेस का इंजेक्शन तभी लगवाते हैं जब किसी लोहे से चोट लगी होती है।
10: और उसमें भी मतलब चूंकि हमारे प्रैक्टिस के दौरान ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं, कई पेशेंट्स हमको कॉल करके ये पूछते हैं कि सर मतलब हाथ में थोड़ा सा कट लग गया है लेकिन वो चक्कू एकदम फ्रेश था, चमकता हुआ है, उसमें जंग वगैरह नहीं लगी है, क्या अब भी लगवाने की ज़रूरत है? तो हम उनको एडवाइस करते हैं जी हाँ, अब भी लगवाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये बैक्टीरिया, जैसे ये ज़रूरी नहीं कि लोहे में या जंग लगे हुए लोहे में ही माइकोबैक्टीरियम टिटैनी उपलब्ध हो, ये आपको मिट्टी में भी उपलब्ध हो सकता है। तो कभी भी किसी भी तरह का कट लगा है और अगर वो एक्सपोजर में आया है मिट्टी, पानी या इन सब चीज़ों के, तो वहाँ पे टिटनेस का वैक्सीन मतलब उस केस में लगवाना आवश्यक होता है।
9: जी, और ये कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं अगर ये अपने लास्ट स्टेज तक पहुंच गई, वैसे सारी बीमारियां लास्ट स्टेज तक पहुंचने के बाद खतरनाक हो जाती हैं,
10: बिल्कुल,
9: बट ये थोड़ी अलग होती है। और टिटनेस का जब मैंने देखा था लास्ट स्टेज तो बहुत डरावना लग रहा है।
10: बिल्कुल, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि टिटनेस जो है ये टिटनेस हो गया, रेबीज हो गया, ये कुछ बीमारियां स्टिल ऐसी हैं जो हो जाने के बाद 98% डेथ इज मतलब कन्फर्म्ड होती है। 98% आपकी मृत्यु होना कन्फर्म है, 2% में चमत्कार कहीं हो जाए तो वो नहीं कह सकते।
9: बिल्कुल, मैं देखा था उसकी पूरी बॉडी बेंड हो गई।
10: बिल्कुल, चूंकि ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन्स रिलीज करते हैं जो ये बैक्टीरियाज होते हैं, माइकोबैक्टीरियम टिटैनी, तो ये इनके द्वारा रिलीज किया गया जो न्यूरोटॉक्सिन्स होता है वो हमारे नर्वस सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, यहाँ तक कि हमारी नर्व जो है वो बहुत ही एक्स्ट्रा सिग्नल्स जाने की वजह से जल जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं, और हमारी पूरी बॉडी की जितनी मसल्स होती हैं वो सारी एक्सट्रीम रिजिड हो जाती हैं। ये जो कर्वेचर, मतलब आपको देखा होगा वीडियो में बेड पर लेटा हुआ पेशेंट जो सर और पैर के बल में अपने पेट का पूरा हिस्सा उठाए हुए रहता है, बिल्कुल ये ऐसा टिटनस के केस में होता है, और ये मसल रिजिडिटी के वजह से होता है, और इसी के वजह से पेशेंट की जान भी जाती है, क्योंकि लास्ट में ये जो रिजिडिटी होती है ये उसकी कार्डियक मसल्स तक जाती हैं और कार्डियक अरेस्ट होने की वजह से पेशेंट की डेथ हो जाती है।
9: ओह माय गॉड, मतलब एक छोटी सी चोट किस हद तक आपको नुकसान पहुंचा सकती है, और एक दो बूंद जिंदगी की किस तरह से आपको राहत दिला सकती है, ये भी जान ही लेते हैं।
10: जी बिल्कुल, जरूर वापस आते हैं अपने टॉपिक पर, और हमारा टॉपिक था पोलियो क्या होता है, और हम ये जान चुके थे कि पोलियो वायरस नाम का एक वायरस होता है जिसके वजह से हमारे शरीर में हड्डियों से संबंधित बीमारी और हड्डियों से संबंधित विकृतियां उत्पन्न होती हैं, और उस बीमारी का नाम होता है पोलियोमायलाइटिस।
9: अच्छा सर, पोलियो पैरों में होता है, हाथों में हो सकता है, बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है?
10: देखिए, चूंकि ये हड्डियों से संबंधित बीमारी है तो शरीर में उपस्थित किसी भी हड्डी को विकृत कर सकती है, लेकिन चूंकि जो मेजर हड्डियां होती हैं बड़ी, जैसे हाथों पैरों की हड्डियां, हमारी रीढ़ की हड्डी, कूल्हे की हड्डी, कंधे की हड्डी, इन सभी हड्डियों को सबसे पहले टारगेट करता है, और इसके बाद में दूसरी हड्डियां भी आ सकती हैं।
9: मैं आपसे एक और बात जानना चाहूंगी, अगर किसी को पोलियो होता है तो उसके हाथ पैर हो कैसे जाते, क्या वो विकसित नहीं होते, क्या वो टेढ़े हो जाते हैं, या उनमें कुछ और कमी आ जाती है?
10: बिल्कुल, अब देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो पोलियो होता है वो एक हड्डियों की ज़्यादातर बीमारियों को मतलब इनिशिएट करता है, और इसमें हाथ पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो विकृत होने लगती हैं, मतलब वो छोटी रह जाएंगी, अनडेवलप्ड रह जाएंगी, टेढ़ी भी हो जाएंगी, उनमें मतलब बेंड हो जाएंगी हड्डियाँ, और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगी वो हड्डियाँ, मतलब उनमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। जो जॉइंट्स होते हैं हड्डियों के बीच में, वो जॉइंट्स ठीक से डेवलप नहीं हो पाते हैं, सम केसेस में वो जॉइंट्स जो है वो जैम भी हो जाते हैं।
9: ओके
10: जी,
9: क्या ये जन्म के बाद होता है या प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा कुछ हो सकता है?
10: प्रेगनेंसी के दौरान भी ऐसा हो पाना बिल्कुल संभव है, लेकिन कई बार केसेस में ये जन्म के बाद भी पाया जाता है, और ये मतलब जीवन के किसी भी स्टेज पे ये वायरस हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है, बट इसको काउंटर करने के लिए बचपन में ही हमको वैक्सीनेट कर दिया जाता है ताकि हमारा शरीर उस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप कर सके।
9: अच्छा, मैं जब वैक्सीन की बात करती हूँ, जो बचपन में टीकाकरण होता है, इस दौरान मैंने एक चीज़ नोटिस की कि सभी के हाथों पे वो एक छोटा सा निशान होता है जो पहले के ज़माने में काफ़ी बड़ा हुआ करता था।
10: जी,
9: आप मुझे बता सकते हैं वो किस चीज़ का निशान होता है?
10: जी, बचपन में कुछ टीके लगते हैं, जैसे एक BCG वैक्सीनेशन होता है, तो स्पेशली वो जो कंधे वगैरह पे आप देखते हैं वो निशान, वो BCG वैक्सीन का ही होता है।
9: ओके, और ये क्यों लगवाना जरूरी है?
10: देखिए, ऐसी बहुत सी बीमारियां होती हैं जो कि बहुत ही घातक होती हैं, और बहुत बड़े पैमाने पे किसी समय में इनसे बच्चे प्रभावित भी होते थे, और उन्हीं बीमारियों को काउंटर करने के लिए, उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए कुछ, जैसे कुछ वैक्सीन्स ऐसी होती हैं जो आपको एक सर्टेन एज पर ही देनी है, उसके बाद वो वैक्सीन्स काम नहीं करती हैं। अब जैसे इसमें पोलियो वायरस भी आता है, तो ऐसी ही बीमारियाँ होती हैं जिनसे काउंटर करने के लिए बचपन में ये टीकाकरण हमें किया जाता है, और जिनका एक निर्धारित समय होता है कि इतने वर्ष के भीतर ही इनका टीकाकरण हो जाना चाहिए।
9: अच्छा सर, मैं अब आपसे एक ऐसा सवाल करने चाह रही हूं जो शायद बहुत सारे लोगों की सोच को बदलने वाला है।
10: जी,
9: एक्चुअली कई बार जब हम बीमारियों का बात करते हैं, बीमारियों से सुनते हैं कि किसी इंसान को ये फलाना बीमारी रही थी या है,
10: जी,

0: से प्रभावित हैं, उनको उसका इलाज किया जा चुका है, उसके वैक्सीनेशंस वगैरह किए जा चुके हैं, तो इसकी संभावनाएं काफ़ी हद तक घट जाती हैं कि उनके आगे जो बच्चा पैदा होगा या ऐसी चीज़ें हैं तो वो ठीक होगा। बट चूंकि ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो पोलियो वायरस होता है ये हमारे शरीर के नर्वस सेल्स को, स्पाइनल कॉर्ड को, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है उसको भी विकृत कर देता है, तो कई केसेस में क्या होता है कि स्पेशली अगर कोई महिला है तो वो मतलब अपनी प्रजनन क्षमता भी खो देती है ऐसे गंभीर बीमारी की वजह से। बट ये हर केसेस में ऐसा ज़रूरी नहीं है, और अगर कोई पोलियो से ग्रसित है, मान लीजिए पोलियो से विकृत कोई पैर हाथ है और बाकी का शरीर सही है, प्रजनन क्षमता भी सही है और उनके बच्चे भी होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसको भी पोलियो जैसी गंभीर बीमारी हो जाएगी जेनेटिकली। और दूसरी बात यह है कि अगर आप उसको
1: मैं आपको एक मिनट रोकना चाहूंगी।
0: जी जरूर।
1: हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी आपका नमस्ते।
2: अरे डॉक्टर साहब से थोड़ा बात करना था।
1: जी बेशक, अपना नाम बता दीजिए प्लीज।
2: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ।
1: ओके मुमताज जी।
0: जी मुमताज जी, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके वाले शो क्लिनिक ज्ञानस्थली में। बताइए क्या प्रश्न है आपका।
2: प्रश्न ये है सर कि मतलब जैसे घुटने में ज्यादा दर्द होता रहता है, तो इसके लिए क्या करें?
0: जी देखिए, अगर घुटने में ज्यादा दर्द रहता है, क्या आप जिनकी बात कर रहे हैं उनकी उम्र बताएंगे?
2: 57।
0: देखिए लगभग 40-50 साल की ऊपर की आयु में घुटनों में दर्द रहना, जोड़ों में खटखट करना, ये आवाज़ आना, ये समस्या बहुत ही साधारण मानी जाती है। कई सारी चीज
2: तो आ रही है।
0: जी आपकी मेरी आवाज़ स्पष्ट आ रही है। हेलो, हमें लगता है कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से हमारी कॉल इनसे डिस्कनेक्ट हो गई है, और हम चाहेंगे कि क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी हमें लग रहा है कि इन्हें हमें दोबारा
1: आप प्लीज दोबारा से कॉल कर लीजिएगा मुमताज जी।
0: जी दोबारा से अवश्य हमें कॉल करें और आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पर और जानते हैं उन्नति मैम क्या जानना चाह रही थी।
1: जिस पर हम बात कर रहे थे, यानी कि अगर किसी को पोलियो है एंड अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, तो क्या ये उनके बच्चों में ट्रांसफर हो सकता है?
0: हाँ देखिए, अगर किसी को पोलियो की हिस्ट्री रह चुकी है।
1: वापस से कॉल है।
0: ठीक है जी।
2: हेलो
0: जी, क्या अभी आपको हमारी आवाज आ रही है?
2: जी सर आ रही है।
0: जी देखिए, आपने पूछा कि घुटनों में दर्द रहता है।
2: जी सर।
0: देखिए ऐसी समस्या, क्या एक ही घुटने में दर्द रहता है या दोनों में रहता है?
2: नहीं सर, दोनों में रहता है और चलने फिरने में मतलब तकलीफ ज्यादा होती है।
0: घुटनों के अलावा और किसी जोड़ों में, कंधे, हाथ, कलाइयां या फिर छोटी उंगलियों के बीच में?
2: कंधे में भी दर्द रहता है और हाथ पैर मोड़ने पर भी दर्द होता है सर।
0: ठीक है। देखिए अंसारी जी, ऐसी समस्याएं यूजुअली कई कारणों से होती हैं। कई बार कैल्शियम की कमी से, साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाने की वजह से, जो हमारे जोड़ होते हैं उनमें घर्षण होता है और उसकी वजह से दर्द होता है। इसके लिए तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ते हैं, और कई बार समस्या ज़्यादा होने पर हमें कुछ जाँचें करा कर देखनी पड़ती हैं, जिसमें कि हमें आपका यूरिक एसिड भी चेक करना होता है, यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा है, कैल्शियम का लेवल चेक करना होता है, और इसके बाद एक अर्थराइटिस पैनल की जाँच होती है, मतलब जिसमें ये देखा जाता है कि आर ए फैक्टर यानी जोड़ों की एक बीमारी होती है जो जोड़ों को ख़राब करती है, तो वो आर ए फैक्टर या ऐसी कोई बीमारियां तो नहीं है, ये हो गई जांचें। इसके अलावा दवाइयां हैं, दवाइयों को आप कुछ सेवन करके इनका दर्द में थोड़ा आराम पा सकते हैं। फिलहाल के लिए ल्यूब्री जॉइंट नाम की एक दवा आती है, ल्यूब्री जॉइंट। हाँ ल्यूब्री जॉइंट, LUBRIJOINT, इस नाम की दवा जो है ये हमारे जॉइंट सप्लीमेंट्स के लिए दिए जाते हैं। हाँ तो फिलहाल तो आप इन दवाओं का सेवन करें, और इसके अलावा भी अगर आपका घुटनों का दर्द नहीं जा रहा है तो बेहतर होगा कि एक बार हमसे मिलकर कंसल्ट करें और हम इसकी कुछ जाँचें करा करके घुटनों की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाएंगे।
2: जी सर।
0: जी इसके अलावा और कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं?
2: सर ये टेबलेट जो खानी है तो 3 टाइम खानी है कि 2 टाइम?
0: 2 टाइम खानी है, सुबह शाम, और 10-15 दिन खाने के बाद फिर 24 घंटे में सिर्फ एक बार कर देनी है।
2: जी सर।
0: जी इसके अलावा और कोई प्रश्न जानना चाहेंगे आप?
2: सर बताने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपके फेवरेट वाले शो में कॉल करने के लिए।

0: और इसी के साथ हमारे एक प्यारे से लिसनर हमारे साथ जुड़े हुए थे, घुटनों में कुछ दर्द से संबंधित शिकायत थी इनकी। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई सलाह इनको इनके लिए कुछ हेल्पफुल साबित हो। और वापस आते हैं अपने पॉइंट पर, और हम बात कर रहे थे पोलियो नाम की एक बीमारी पर।
1: जी, अब मेरा सवाल आपसे सर ये है कि जिस तरह से कैंसर के टाइप होते हैं, क्या पोलियो के भी टाइप होते हैं?
0: जी बिल्कुल, पोलियो मुख्यतः तीन तरह का होता है, और इसमें से कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो वर्ल्ड वाइड पाए जाते हैं, कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो स्पेसिफिक कुछ एरिया में पाए जाते हैं। बट पोलियो का जो गंभीर समस्या है, जो हमको ज़्यादा प्रभावित करती है, वो स्ट्रेन ज़्यादातर पोलियोमाइलाइटिस, यानी कि हमारे हड्डियों में सूजन, विकृति, हमारे रीढ़ की हड्डी और हमारी स्पाइनल कॉर्ड में विकृति उत्पन्न करती है।
1: ओके, और बाकी की अगर बात करें तो
0: जो पोलियो का मुख्य स्ट्रेन होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब गंभीर होता है, और इसको यूजुअली पोलियो टाइप 1, 2 एंड 3 के तौर पे हम लोग जानते हैं। इसके दूसरे भी नाम होते हैं, और ये जो दो बाकी के दो टाइप्स होते हैं, मतलब एक टाइप होता है जो थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है, और जो मतलब दो बाकी के दो टाइप्स होते हैं वो थोड़ा सा कम केसेस मतलब देखने को मिलते हैं, उनसे जो प्रभावित केसेस हैं, पेशेंट्स हैं, वो कम देखने को मिलते हैं।
1: अच्छा, मैं आपसे एक और बात पूछूं। जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी कि अगर किसी को पोलियो हो भी गया है
0: जी
1: तो क्या वो उसे कभी ठीक किया जा सकता है?
0: जी देखिए, अगर किसी को पोलियो हो चुका है और उसकी मतलब बोन डिफर्मिटीज़ हो चुकी हैं, जैसे हड्डियों में विकृति हो चुकी है, तो उस विकृति को तो सुधारा नहीं जा सकता है। बट अगर किसी को पोलियो, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको हम वैक्सीनेट कर रहे हैं, तो हम वैसे ही चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं पोलियो का मतलब समस्या को आगे और डेवलप करने का। बट यदि इसके बाद भी अगर पोलियो किसी को हो जाता है, वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, तो अगर हम इसको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर ले जाते हैं, तो फिर हम इसको मतलब रोक सकते हैं, इससे होने वाली समस्याओं को बचा सकते हैं। बट यदि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो फिर वो हड्डियों को जो विकृत कर देता है, उन हड्डियों को वापस से रिवर्स करना, उनको वापस से ठीक करना, ये पॉसिबल नहीं होता है।
1: ओके, तो पोलियो से बचाव का एकमात्र तरीका क्या है?
0: देखिए, इससे जैसे कुछ बीमारियों के बारे में कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज द क्योर, मतलब
1: यानी कि
0: इसको
1: पहले, होने से पहले ही अगर आप उसको रोक सकें तो।
0: बिल्कुल, इसको होने से पहले ही यदि आप इसको रोक सकें तो यही इसका इलाज है। और पोलियो के केस में भी ये बात कहीं ना कहीं लागू होती है। और ऐसा भी होता है कि जैसे पोलियो मतलब किस लेवल तक और कितनी हद तक लोगों के हड्डियों को इसने डैमेज किया है, बहुत से पेशेंट आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत ही माइल्ड एरिया प्रभावित होता है, पैर का पंजा या हाथ का कोई अंग। बहुत से मतलब इंडिविजुअल्स ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिनका पूरा का पूरा पैर, इनफैक्ट मतलब दोनों पैर उनका पोलियो से ग्रसित होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो वो बीमारियां हैं, जो डिफर्मिटी हो चुकी है, उन डिफर्मिटीज़ को रिवर्स करना ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर अर्लियर स्टेज में डिटेक्ट हो जाता है, तो हम उसको वहीं पर स्टॉप कर सकते हैं। ऐसे टेक्नोलॉजीज़ और ऐसे मेडिकेशंस अवेलेबल हैं।
1: ओके, सर मैं आपसे एक और सवाल करूंगी कि जो पोलियो की दवा होती है वो कितने उम्र तक पिलाई जाती है, और अगर जो वैक्सीन लगती है वो किस उम्र में लगाई जाती है?
0: देखिए, ये एक कोई अमूमन 5 साल के आसपास के जो बच्चे होते हैं, उनसे नीचे की उम्र को ये वैक्सीनेशन दिया जाता है।
1: जीरो से
0: और
1: पांच
0: जी, और ये एक मतलब ये सिंगल डोज वैक्सीनेशन नहीं है, ये मल्टी डोज वैक्सीनेशन है। मतलब हर कुछ समय पर ये पोलियो वैक्सीन वाले आते हैं और वो वैक्सीनेशन करके जाते हैं। तो ये मल्टी डोज वैक्सीनेशन है, और ये अमूमन 5 साल के जो नीचे के बच्चे होते हैं, इनको कराना चाहिए, ज़रूर कराना चाहिए, क्योंकि पोलियो जैसी बीमारी के लिए वैक्सीनेशन ही इसका सबसे बड़ा क्योर है।
1: और जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे, जो ड्रॉप्स दे रहे हैं, क्या वो भी सेम असर करती है?
0: एक्चुअली मैं बिल्कुल यही बताना चाहूँगा, मुझे लगता है अगर ये क्वेश्चन आप पूछते नहीं तो शायद ये क्लियर भी नहीं हो पाता। देखिए, वैक्सीनेशंस का क्या है कि कुछ वैक्सीनेशंस ऐसे होते हैं जो हमको ओरली ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं, एक्चुअली वो भी वैक्सीन ही होती है।
1: ओके, मतलब जो हम पीते हैं वो भी वैक्सीन ही है,
0: जी
1: और जो
0: बिल्कुल,
1: हम लगाते हैं वो तो है ही।
0: वो तो वैक्सीन है ही। तो स्पेशली पीडिया केसेस में, पीडियाट्रिक केसेस में, बच्चों के केसेस में वैक्सीन्स को ऐसे डेवलप की जाती हैं। कोविड के वैक्सीन को भी डेवलप की जा रही थी कि इसका ओरल ड्रॉप्स अवेलेबल हो, और बच्चों को ये वैक्सीनेशन इंजेक्टेबल फॉर्म में ना दे करके ये ड्रॉप्स के फॉर्म में ये वैक्सीनेशन किया जाए।
1: अच्छा, बचपन से मेरा एक सवाल था कि कि जब भी कोई पोलियो की दवा पिलाने आता था वो हमेशा यही क्यों कहता कि दो बूंद जिंदगी, कि हम चार या पांच बूंद क्यों नहीं ले सकते, एक बूंद में भी काम क्यों नहीं हो रहा, सिर्फ दो ही बूंद क्यों?
0: ठीक है, अच्छा सवाल है आपका ये भी। देखिए हर दवा जो होती है, कोई भी मेडिसिन होती हैं, वो डिपेंड करती हैं डोज पे
1: जी,
0: एंड वैक्सीन्स एंड सम टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो उनका जो डोज होता है वो आर्मर्ड यूनिट्स पे होता है, मतलब जैसे आप एमजी वगैरह में इनका डोज नहीं पाएंगे, 1,00,000 आर्मर यूनिट, 50,000 आर्मर यूनिट, 4,00,000 आर्मर यूनिट, ऐसे करके इंटरनेशनल यूनिट IU लिखा रहता है। तो जो मतलब उसका प्रॉपर डोज होता है, डोज का कैलकुलेशन जो पीडियाट्रिक केसेस में होते हैं, ड्रॉप वाइज भी करते हैं, जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं और स्पेशली जो बहुत छोटे बच्चे, नए बच्चे होते हैं, उनकी जो दवाइयाँ होती हैं वो ड्रॉप्स में ही कैलकुलेट करके दी जाती हैं, दो बूंद, चार बूंद या पाँच बूंद। तो वैक्सीनेशन के लिए जितना डोज जाना ज़रूरी होता है उसके लिए दो ड्रॉप्स इनफ होते हैं। तो इसीलिए मतलब इसको, ये जो दो ड्रॉप है, इसको एक स्लोगन भी बनाया गया हमारे समाज में लोगों को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए कि सिर्फ दो बूंद आप नहीं पिला रहे हैं, जिंदगी की दो बूंद है फिर भी आप नहीं पिला सकते हैं, ऐसे करके।
1: अच्छा, मैं कल किसी से पूछ ही रही थी क्योंकि मैं डिसाइड कर रही थी टॉपिक, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने पोलियो की दो बूंद जिंदगी की पी है, तो मुझे कह रहे हैं जब मैं दवा पीने गया था तो पूरी बॉटल ही मेरे मुंह में खुल गई थी।
0: हाँ, ऐसा भी कुछ घटनाएं हो सकता है, बिल्कुल किसी के साथ पॉसिबल।
1: एंड मुझे लगा कि दो बूंद का तो डोज है समझ में आ रहा है, लेकिन पूरी बोतल में तो यार कितनी सारी बूंदें होंगी और आप एक साथ सब ले गए हो, ये कहीं रिएक्ट ना किया हो।
0: वैसे देखिए इसकी संभावनाएं कम होती हैं क्योंकि जो अभी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं, यदि ऐसी कोई घटना हो जाती है वो तो तुरंत बच्चे को उल्टा करके वो सारी दवा डिस्कार्ड कर सकते हैं। बाकी यदि भाई माउथ में पूरी शीशी गिर गई है तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ डोज तो उसका अंदर जाएगा ही, बट उससे कोई बहुत विशेष ऐसे प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ, एक दो दिन के लिए थोड़ा फीवर का आना या ऐसी कुछ समस्याएँ हो सकता है कि सामना करना पड़े।
1: चलिए सर, अब इस बात पे बात कर लेते हैं कि जो ये दो बूंद जिंदगी की पिलाई जा रही है या फिर लगाई जा रही है, इसे कितने वक्त के अंतराल के अंदर पिलाना चाहिए?
0: बिल्कुल, देखिए अब जो चूंकि वैक्सीनेशंस होते हैं, जो इंजेक्टेबल वैक्सीनेशंस होते हैं वो थोड़े से ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं।
1: ओके,
0: इसके अलावा बहुत से वैक्सीनेशंस होते हैं जो कि हमें स्पेशली बच्चों के केसेस में हमको दिया जाता है, तो बच्चों के केसेस में जो वैक्सीनेशन दिए जाते हैं हम उनको प्रयास करते हैं कि इसको हम ड्रॉप फॉर्म में करके इसको बच्चों को पिलवाते हैं, और स्पेशली वो वैक्सीन जो मल्टी डोज होती है
1: जी।
0: अब जो इसका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल होता है, पोलियो के जो वैक्सीन्स होते हैं ये स्पेशली हमें लग रहा है कि एक 6 मंथ पे, जिनका मैं आपको एक करेक्ट शेड्यूल भी बता सकता हूँ, तो इन चीज़ों को आपको लगवाना चाहिए और कैसे लगवाना चाहिए मैं ये भी बताता हूँ। जैसे आप देखिए, जो बच्चों में पहला वैक्सीनेशन होता है
1: जी,
0: बर्थ के टाइम पे एक बच्चों को पोलियो का वैक्सीन उस समय भी दिया जाता है, मतलब ये 1-2 दिन के अंदर में दे सकते हैं।
1: Okay.
0: दूसरा पोलियो का जो वैक्सीनेशन होता है ये फिर 6 हफ्ते पे कराते हैं
1: जी।
0: फिर नेक्स्ट कुछ और इसके अलावा भी वैक्सीनेशंस होते हैं, जैसे डिप्थीरिया वैक्सीनेशंस होता है, HBV होता है, ठीक है, और BCG जो होता है वो बैसिलस कैलमेट का वायरस होता है, ये बर्थ पे ही लगता है। इसके अलावा जो पोलियो का वैक्सीनेशंस है फिर ये 10th वीक्स पे, और फिर उसके बाद ये 6-6 महीने पर वैक्सीनेशन 5 साल की आयु तक बच्चों को करवाते हैं।
1: और सर जो ओरल दी जा रही है उनका क्या?
0: ये ओरल वैक्सीनेशन की ही बात कर रहा हूँ।
1: ओके, मतलब 6 महीने के अंतराल में इनको पिलाना होता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपको स्पेसिफिक टाइम और वो जो एक अंतराल दिया गया है कि इसके अंदर ही आपको पिलाना है, वो क्यों जरूरी है, क्यों हम आगे पीछे नहीं कर सकते इन डेट्स को?
0: बिल्कुल, अब देखिए जो इन डेट्स को आगे और पीछे करने की बात है, जैसे हर एज में हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप की जो इम्यूनिटी है वो डेवलप होती है
1: जी।
0: जैसे फॉर एग्जांपल जो BCG का वैक्सीन है, ये हम अगर मतलब लेटर एज पे लगाते हैं तो ये उतनी अच्छी इम्यूनिटी डेवलप नहीं कर पाएगा
1: जी।
0: इसी के साथ साथ जैसे आप इस चीज़ को भी ध्यान दें कि जब कभी भी किसी बच्चे की डिलीवरी होती है तो उसको कहा जाता है कि जो माँ का पहला दूध होता है वो बच्चों को ज़रूर पिलाना चाहिए
1: जी।
0: क्योंकि जो फर्स्ट 3-4 दिनों तक और 5 दिनों तक जो माँ के ब्रेस्ट से मिल्क सेक्रेशन होता है, उसमें तमाम तरह के इम्यूनिटी सेल्स, इम्यूनाइजेशन हमारे मदर से बच्चे में ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब तमाम तरह की बीमारियों से लड़ने की क्षमता वो दूध के ज़रिए, दूध के माध्यम से वो हमारे बच्चों में पहुँचती है। इसलिए माँ का दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वो उसी टाइम पर डेवलप हो सकता है। मतलब उसको यदि हम चाहें कि वो बच्चा साल भर का हो जाए उसके बाद हम वो उसको इम्यूनाइज़ करें और उसकी इम्यूनिटी डेवलप करें, तो उतनी अच्छे से उसकी इम्यूनिटी डेवलप नहीं की जा सकती है जितना कि एक न्यू बॉर्न बेबी, क्योंकि उसके बॉडी में जो बेसिक हमारे कुछ बीमारियों से लड़ने का क्षमताएँ होती हैं उसको डेवलप करने की एज जो है वो 6 महीने के अंदर ही होती है।
1: ओके
0: उसके बाद कई ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिनसे लड़ने की क्षमता वो बाद में डेवलप करता है धीरे धीरे, बट 6 महीने के अंदर अंदर जो शुरुआती 6 महीने होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। और इसीलिए ये जो वैक्सीनेशंस होती हैं जो बीमारियों से, BCG, पोलियो, खसरा और मिसल्स जैसे तमाम टीके लगते हैं, ये 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनको लगते हैं, क्योंकि इस समय पर जो वो उनका इम्यूनाइजेशन होता है वो बहुत ही सिक्योर, बहुत ही सेफ और मतलब बहुत ही ट्रस्टफुल होता है।
1: सर मैं आपसे एक सवाल करूंगी क्योंकि आप ग्राउंड लेवल पे ज़्यादा काम करते हैं
0: जी,
1: क्या आज भी आपको ग्राउंड लेवल पे पोलियो की दवा पिलाने में थोड़ी सी हेजिटेशन लोगों के अंदर देखने को मिलती है?
0: देखिए अगर मैं थोड़ा सा अपना बचपना याद करूं तो मुझे लगता है कि उस समय में ये चीज़ें थोड़ी ज़्यादा कॉमन थीं।
1: हाँ
0: अब के समय में ये चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉमन नहीं रह गई हैं, जिसके पीछे सरकार, बहुत से दूसरे सरकारी और गैर सरकारी प्राइवेट संस्थाएं, NGOs और बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियर्स हैं जिन सभी का एक मिला जुला योगदान है कि वो लोगों को इतना अवेयर कर पाए हैं कि मुझे लगता है कि मोर देन 95% ऑफ पॉपुलेशन पोलियो वायरस के बारे में जानती है, पोलियो के टीकाकरण के बारे में और जो 2 बूंद जिंदगी की होती है पोलियो की इसके बारे में लोग जानते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम, लगभग 1% के आसपास से भी कम जो है ऐसे लोग बचे हैं जहाँ पे पोलियो का ड्रॉप पिलाने से लोग आनाकानी करते हैं। अदरवाइज़ लोगों में इतनी जागरूकता हमारे ऐसे तमाम संस्थाएं, तमाम वॉलेंटियर्स, NGOs के माध्यम से अब तक पहुँचाई जा चुकी हैं।
1: बिल्कुल, तो भाई अगर आपके पास भी कोई आता है और कहते हैं कि वो आशा है, ANM है या किसी भी हेल्थ समुदाय की तरफ से आ रहे हैं, स्वास्थ्य समुदाय की तरफ से आ रहे हैं और आपके बच्चे को पोलियो की दवा देनी है, तो प्लीज़ उन्हें उन तक आप लेकर जाइए। और अगर वो नहीं घर तक आते तो आई थिंक ज़िला अस्पताल एक ऐसी जगह होती है जहाँ आपको हर वो वैक्सीनेशन और हर वो दवा मिलती है, वो भी फ्री में, यानी कि आपके लिए निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।
0: और मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारे जो अभी रिसेंटली एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ है और उसमें एक फॉरेनर आया भारत में जिसको एक कुत्ते ने काट लिया।
1: जी, रेबीज की बात चल रही थी कि इंडिया में तो फेक रेबीज की वैक्सीन लग रहे हैं
0: जी, और मतलब ऐसे तमाम सी अफवाहें, लेकिन उस फॉरेनर ने अपना कैसा रिव्यू रखा, उस फॉरेनर ने बताया कि ये हमको कुत्ते ने काट लिया और इसके वैक्सीनेशन के लिए हम यहाँ के हॉस्पिटल में गए और वो शॉक हो गया ये देख करके कि इसकी वैक्सीनेशंस फ्री में हो रही हैं
1: जी।
0: और उसने ये शेयर किया कि अमेरिका में इस वैक्सीनेशन का जो चार्जेस होते हैं वो अप्रॉक्स मतलब एक 1,000-1,200 रुपये के आसपास में, मतलब वहाँ की करेंसी के हिसाब से ये चार्जेस होते हैं और भारत में ये फ्री हो रहा है। तो मैं यहाँ के लोगों को भी बताना चाहूँगा कि सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान को, सरकार के द्वारा चलाए जा रहे इस मुहिम को आप लोग साकार बनाएं और भारत को पोलियो मुक्त करने में आप भी अपना योगदान दें।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, भारत में मेडिकल की सेवाएं हैं वो आपको बहुत निःशुल्क मिलती हैं। इवन जो फॉरेन से या इंडिया में आते हैं अपना चेकअप कराने, उन्हें यकीन नहीं होता इस बात को कि इतनी जल्दी हमें रिपोर्ट्स मिल कैसे रही हैं।
0: बिल्कुल,
1: हम 1 घंटे के अंदर जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, शाम तक रिपोर्ट आ जाती है, डॉक्टर हमें तुरंत 5 मिनट के अंदर देख भी लेता है, वेटिंग ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है।
0: बिल्कुल,
1: और ये चीज़ें अमेरिका या बाकी देशों में नहीं हो रहा। अगर आप उनकी बात करें तो हाँ, उनकी मेडिकल फैसिलिटीज़ हो सकता है हमसे अच्छी हों, बट उनकी फीस भी हमसे बहुत अच्छी होती है।
0: बिल्कुल, और मैं देखिए, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से, भारत का एक बहुत जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं बताऊंगा कि जो बहुत हायर ग्रेड के, जो बहुत ही ज्यादा पैसे वाले लोग हैं वो बेशक मतलब फॉरेन कंट्रीज चूज करते हैं, थोड़ा सा
1: फॉरेन कंट्रीज इंडिया चूज करते
0: हैं, और जो फॉरेनर्स हैं मतलब बहुत बड़े बड़े भी कंट्रीज से, वो भी भारत में आकर के और अपने बहुत बड़े बड़े, मतलब छोटे मोटे सर्जरीज नहीं, बहुत बड़ी बड़ी जो मतलब हार्ट ट्रांसप्लांट, किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट, ट्रांसप्लांट और ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऐसी गंभीर सर्जरीज, बड़ी बड़ी सर्जरियां, ऑपरेशंस जो हैं वो भारत आके कराते हैं। और वो इसका कारण ये बताते हैं कि भारत में ये इसका उपचार दर, इलाज दर बहुत ही सस्ता है,
1: प्लस जल्दी होता है,
0: जल्दी होता है, और मतलब क्वालिटी ट्रीटमेंट यहाँ पे भी मिलता है।
1: बिल्कुल। और ऐसा ही मुझे एक किस्सा और भी याद है, जब एक फॉरेनर ने अपनी ही बातों में कहा था कि मुझे अपने पापा की सर्जरी करानी थी, एंड मैं बहुत डरा हुआ था ये सोच कर कि सर्जरी करने वाला कौन होगा। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल गया और देखा कि मेरा जो डॉक्टर है वो एक इंडियन है, मुझे कंफर्म था कि मेरे फादर को सर्जरी के दौरान कुछ भी नहीं होने वाला है।
0: जी बिल्कुल, देखिए ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, हमें हमारे लोग से, हमारे राष्ट्र से वो प्रेम, वो लगाव होता है, और कहीं ना कहीं वो ट्रस्ट भी होता है।
1: बिल्कुल। तो भाई वो फॉरेनर जो थे उन्हें अपने डॉक्टर से ज़्यादा एक भारतीय पर यकीन था, और ये बात सच है कि भारत में जो कैंसर की दवाएं आपको आधे पैसों में मिल जाती हैं वही बहुत महंगी मिलती हैं बाहर की।
0: बिल्कुल। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भारत में जितनी ऐसी दवाइयां हैं जो बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल जो हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस जैसी बीमारियां हैं,
1: टीवी के वैक्सीन, हाँ, निःशुल्क लगते।
0: बिल्कुल, ऐसी जो बहुत ही महंगा ट्रीटमेंट है, महंगा इलाज है, भारत सरकार खुद उन दवाइयों को कंपनियों से खरीद कर उनका पूरा पैसा भुगतान करके और निःशुल्क में हमारी जो पॉपुलेशन है, हमारी जनता है, उनको सर्व करने के लिए ये सारी चीज़ें करती है।
1: तो बस आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो अगर आप HPV की वैक्सीन, ट्यूबरक्लोसिस की वैक्सीन अगर आपसे कोई कहता है लगवा दीजिए, या फिर जिला अस्पताल में जाके लगवा लीजिए, तो ये मत सोचिएगा कि निःशुल्क है इसका मतलब वो असर नहीं करेगा। निःशुल्क है इसीलिए वो अच्छा है, आपके लिए अच्छा है
0: जी,
1: वो बाहर आपको नहीं मिलने वाले हैं। और कई दवाइयां तो ऐसी होती हैं जो भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी की जाती हैं और वो आपको कहीं और मिलती भी नहीं है।
0: बिल्कुल। और मिलती भी है तो बहुत ही हायर प्राइसिंग पे मिलती है।
1: बिल्कुल, मैंने ऐसी बहुत सारी दवाइयां देखी हैं जो स्कूल्स में अक्सर आशा या ANM आकर देती हैं, उस पर लिखा भी होता है नॉट फॉर सोल,
0: जी
1: बिकने के लिए वो नहीं है, वो भारत सरकार द्वारा जारी की गई है स्पेशली आपके लिए। और उस पे भी दुख की बात ये है कि लोग उस दवाई को फेंक देते हैं ये सोचकर कि ये तो
0: बिल्कुल,
1: बेकार।
0: बिल्कुल, बिल्कुल। और इस चीज पे भी हमने बहुत बार इन चीजों को कवर किया है, लोगों को ये बताया भी है कि वो दवाइयां बिल्कुल फेंकिए नहीं, वो बिल्कुल कारगर होती हैं। बहुत से लोग उस पे थोड़ा सा ट्रस्ट नहीं करते हैं, उन्हें लगता है कि पता नहीं ये काम भी करेंगी या नहीं, वो दवाइयां काम करती हैं, वो दवाइयां तमाम तरह के टेस्ट से होकर के, तमाम तरह के ऐसे जो है पैमाइश से होकर के गुजरती हैं, और वो सारी मतलब अपने तमाम क्वालिटी चेक्स को कंप्लीट करके ही आती हैं।
1: बिल्कुल। और पल्स पोलियो अभियान चल रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगी कि आप हमारे लिसनर्स से कुछ तो कहें जिससे वो इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें।
0: बिल्कुल, देखिए मैं यही कहना चाहूंगा कि पोलियो नाम की जो बीमारी है, पोलियोमाइलाइटिस, ये हमारे हड्डियों को, हमारी रीढ़ की हड्डी को, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को विकृत करती है, हमारा जीवन ख़राब कर सकती है, पूरा का पूरा जीवन तबाह कर सकती है, और हमें आजीवन के लिए, पूरी उम्र के लिए अपाहिज बना सकती है। इस बीमारी का उपचार संभव है, इस बीमारी से बचाव संभव है, इस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी सरकार इतने सारे एफर्ट कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, निःशुल्क में टीकाकरण भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा भी कर्तव्य है कि हम अपनी पीढ़ियों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को एटलीस्ट ऐसी किसी बीमारी के चपेट में आने से बचाएँ और उनको एक स्वस्थ जीवन प्रदान करें, ताकि वो भी अपने जीवन में तमाम तरह के सुख समृद्धियों को देख सकें, उनका लाभ ले सकें। आज भी हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दिव्यांगजन आते हैं जिनको आप देखते हैं कभी साइकिल बटती है, कभी वो बैटरी वाली साइकिल बटती है, रिक्शा तीन पहिए वाली साइकिल उनको बांटी जाती है, उसमें से मतलब मुझे लगता है कि 60% से अधिक केसेस पोलियो के ही होते हैं, जो पोलियो के वजह से ही दिव्यांग हो जाते हैं, और उनको फिर जो है आगे मतलब चलने के लिए, फिरने के लिए, सभी चीज़ों के लिए इन चीज़ों का सहारा लेना पड़ता है, और आजीवन मतलब उनके साथ एक टैग लग जाता है कि वो दिव्यांगजन है। तो मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चों को, अपने आने वाली पीढ़ियों को, अपने आसपास के लोगों को, अपने जो देशवासी हैं उनको इस बीमारी से बचाना चाहिए, इस बीमारी के बारे में बताना चाहिए, और पोलियो का जो पोलियो पल्स पोलियो अभियान के तहत जो दो बूंद जिंदगी का जो पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, इसको ज़रूर पिलाना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बच्चा था तो मैं एक दो साल मैंने एक्स्ट्रा ही पिए हैं ये पोलियो की बूंदें।
1: क्या बात है
0: जी।
1: फिलहाल इसी मैसेज के साथ अब आपसे लेंगे विदा। हमें इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना क्लिनिक ज्ञान असली, आपके अपने एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम पर। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
2: बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी उतराला रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गोंडा की अपील।
4: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिला। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
2: स्वागत है श्रोताओं, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, और मैं हूं आपका अपना दोस्त आरजे अदनान। आपके अपने प्रोग्राम सेहत सही लाभकारी की इस श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, यानी कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा। जी हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि बच्चे पैदा होते ही अचानक बीमार पड़ जाते हैं और परिवार जो है वो घबरा जाता है। कुछ लोग घर के नुस्खों में लग जाते हैं तो कुछ देरी कर देते हैं। कई बार ये देरी बच्चे के लिए खतरनाक हो जाती है। इसीलिए आज हमने बुलाया है अपनी गांव-गांव की ज्ञान की पिटारी, हमारी टीकन भाभी को। स्वागत है एक बार आपका वापस से इसी प्रोग्राम में जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई।
5: धन्यवाद आरजे भैया, और धन्यवाद रेडियो के सभी श्रोताओं को। बहुत ही जरूरी विषय उठाया आज आपने। नवजात बच्चा जो जैसे कि कच्ची मिट्टी होता है और उसको जरा सा भी खतरा लगे तो तुरंत ही विशेषज्ञ इलाज की जरूरत भी होती है।
2: बिल्कुल सही कहा भाभी, सही जानकारी हो तो परिवार बच्चे की जान बचा सकता है। इसीलिए आज हम बात करेंगे SNCU पर। यानी SNCU ये है क्या और क्यों जरूरी है, शायद ये हमारे श्रोताओं को नहीं पता, लेकिन ये आज हमारी टीकन भाभी जरूर बताएंगी।
5: बिल्कुल भैया, SNCU का पूरा नाम है स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट। ये एक खास यूनिट है जो जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल सेंटर में होता है। यहाँ 24 घंटे डॉक्टर और नर्स, खास मशीनें और बच्चों की निगरानी की सुविधा होती है। ये यूनिट उन बच्चों के लिए है जो समय से पहले पैदा हों और कम वजन के हों, सांस नहीं ले पा रहे हों, पीलिया, संक्रमण, दौरा या तेज बुखार से ग्रसित हों, दूध ना पी पा रहे हों या बहुत ज़्यादा ठंड या गर्म हों। SNCU को ऐसे समझो जैसे नवजात बच्चों की ICU, जहाँ हर बच्चा विशेषज्ञों की निगरानी में सुरक्षित रहता है।
2: अच्छा, मतलब गांव के लोग जिसे नाजुक बच्चा कहते हैं वही बच्चा SNCU में ले जाना चाहिए।
5: हाँ बिल्कुल, और नाजुक का मतलब सिर्फ छोटा होना नहीं होता है। कई बार बच्चा बिल्कुल ठीक लगता है पर लक्षण अंदर ही अंदर बढ़ रहे होते हैं, यही सबसे खतरनाक बात है।
2: तो टीकन भाभी, ये तो परिवार को जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा लक्षण दिखे तो तुरंत अस्पताल दौड़ना चाहिए। अब जरा इन लक्षणों के बारे में बताइए।
5: बहुत जरूरी है, मैं साफ साफ बात बता देती हूँ कि नवजात में मैं जो बताने जा रही हूँ उनमें से किसी भी एक लक्षण को हल्के में मत लेना, तुरंत SNCU ले जाए। जैसे दूध ना पीना या बहुत कम पीना, बच्चा बहुत सुस्त, हाथ पांव ढीले हो जाए उसके, उसकी सांस तेज चली हो, मतलब 60 से ज्यादा प्रति मिनट, सांस लेने में मुश्किल, छाती का धसना, लगातार रोने लगे या उल्टी बहुत ही ज्यादा हो और सोना भी उसका बहुत ज्यादा बढ़ जाए, दौरा, फिट्स, शरीर बहुत गर्म या बहुत ठंडा पड़ जाए, नाभि में पस आने लगे।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: भारत पोलियो मुक्त है, लेकिन कुछ देशों में पोलियो अभी भी है। इसीलिए 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत जन्म से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक जरूर दें। सुनिए सीएमओ गुंडा की अपील।
2: सभी अभिभावकों को सूचित किया जाता है कि 28 जून 2026 को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत 0 से 5 वर्ष तक के अपने सभी बच्चों को नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर पल्स पोलियो की 2 खुराक अवश्य पिलाएं। स्वस्थ बचपन की यही पहचान, पोलियो मुक्त हो हिंदुस्तान।
3: और चटपटाओ
4: ले, आई गई दोपहरिया, मामा दोपहरिया बिगाड़े।
3: देखो तनी अंदर बस बड़बड़ावत ही है, दोपहरिया है, वल्ली हुई है, हम जान ही था।
4: चलो आओ अंदर आओ, यहाँ काहे खड़ी।
3: चटपटाओ,
4: अरे काहे खड़ी हो, धुपुआ मंदिर आए जाओ।
3: पल्लवा अपन खोलाओ, कुकुरवा बांधो,
4: धकियाओ ना, धकियाओ पल्लवा।
3: नहीं पहले कुकुर बांधो, भोकत है।
4: नहीं नहीं बंधा है, आ तो तुम
3: बांध दे कुकुरा पहले।
4: अरे धकियाओ दरवाजा अंदर और मार कुकुर, बड़ा नीक हो भाई, अब नजर ना लगाओ हमरे कुकुर का।
3: धकियाई थे,
4: हाँ धकियाओ,
3: हाँ खुली गवा, कुछ खुली गवा। ये देखो आएगा, देखो बस सुन है लागो में,
4: जेका जानत पहचानत है वह एक लगे आवत
3: है। भैया जाओ तू अपने इनके चटपटों के लगे जाओ, जाओ इन्हें सुंघाओ, जाओ हम मैं ना सुंघियो। भैया
4: आओ छोटू, आओ भागी, आओ भागी, आओ
3: हाँ
4: बैठो
3: बला लो अपने, हमारे लगे उनका नाव। आओ राम राम बहनी,
4: राम राम। तू बताओ कैसे आई गई, होता ना दोपहरिया में काहे निकल पड़ती हो।
3: अरे बहनी देख
4: लाग जाए लूक, बस ठिकाए जाइयो।
3: तू पहले अपन ठंडवा चलाए दो,
4: ले ई चलाए दिया,
3: हाँ अब तनी ठंड हो जाए, जुड़ाई तो,
4: हाँ थोड़ी देर
3: खाई ले तब बदुआई
4: पड़त है।
3: हाँ
4: अब ऐसे हमें आवत नहीं ठंडवा चला, बे तू कहियो बंद करो तो हमसे बंद नहीं हुई।
3: अरे ई बटनिया दाब दो धैके,
4: अब कौन सा बटनिया दाब दे,
3: ई जोन तार वो है का कहा जाते का अमोट अमोटवा डाल दो
4: भाई, अतने हम तो ये डराए थे कि कोनो गलत न
3: दाब। अरे हरे हरे की बटनिया दाब दो धैके,
4: तो जानत हो का।
3: हाँ हमारे घर में कलिया हमें सिखाई नहीं हुआ कि ऐसे हरियर की दाबो तब चले लागी, और ललकी दबो ला हम में देव तू बूढ़ा
4: बिगड़ जाए ना ही राह दे, सिवा बहुत चिल्लात है नाराज होता
3: है। बहनी सुनी ले, हरियर की दबो तब मशीनिया चल दे, और ललकी दबो तब रुक जाई।
4: तो ललकी तो इमा बने नहीं है ना,
3: लड़की नहीं तो हम बना रहे।
4: देखो लड़की नहीं बना
3: तो हमारे यहाँ लड़कवे जो बंद कीन जाते है, बुतावा जाते है, वो का लाल लाल रंग दीनी।
4: ये जान लो सबका जो है सब अलग अलग होत है, तो पता नहीं कौन हमसे दबवाए दो। हाँ। अब बिगड़ जाए तो उसी मम्मो आए कहा कि महतारी तू ही बिगाड़े तू ही बनाओ,
3: तब हम यही घमो मान है मर जाई।
4: नहीं तो देखो हम चलाए दिया है, अब बंद करे के लिए तू तुरते जुड़ते जड़ा दियो, जुड़ते जो है
3: गर्मी आ जाती हूँ
4: छिटक जाती।
3: तो ये बताओ पहले हम यही नाते आए हैं कि हमारे घरे वो आए हैं
4: के,
3: अरे हमारे मेहमान।
4: अच्छा मेहमान
3: नंदोई, नंदोई आए
4: आवत है। अरे दोपहरी दोपहरिया माँ
3: ना कहो, नंदोई हमारे आए हैं और हमारे नंद आई हैं, उनका दवाई करावे जाए के दूरे।
4: अच्छा।
3: कहाँ जाती हूँ कहाँ जाती हूँ, दिल्ली।
4: दिल्ली जा, दिल्ली से होता है इलाज
3: उनके, दिल्ली में उनका दिखावे है। हमारे नंद के तबियतवा बहुत बिगड़ का है,
4: का हुई गा
3: बगदी गा है
4: का हुई
3: उनका, शायद पेटवा में यहाँ फलसर होते कुछ। फलसर?
4: फलसर तो ना ही सुना, अल्सर सुना,
3: बेरामी हो थी फलसर
4: ना ही, फलसर ना ही, हम अल्सर सुना है। तू कला सुन लियो,
3: उहे होई उहे होई।
4: हाँ
3: रतियम बतवात रहे पाड़े से, तब मैं सुना रहा फलसर फलसर कहा
4: ना ही, हमरे भैया आए रहा है।
3: हाँ
4: अर्मिका से,
3: हाँ
4: तो ही हमें बताई ना है कि अल्सर जौन है एक बीमारी होत है, उन आतन में बड़ा बड़ा फोड़ा हुई जात है।
3: अच्छा
4: हाँ तो फोड़ा हुई गा उनके,
3: वह तो वह जाती वो करावे दवाइया करावे जाती।
4: अच्छा अच्छा तो हमें ठीक है, दिल्ली में ठिकाए जाइए।
3: हाँ तो हमें तू 5,000 रुपया दे दियो उधार उधार।
4: अब तू कब वापस करियो ये हमें बताओ,
3: ई हम तू है आज कौन कौन तरीकिया है आज
4: आज आज कौन तरीकिया है
3: आज वो है दुई और नौ
4: 29 तारीख
3: हाँ वो है
4: अच्छा
3: तो आज देबो हमें
4: हाँ
3: ठीक और हम काल तू है काल होई सोमवार मंगल बुध बिफाइयक दे देबे लाइके
4: अरे भाई देखो अब का बताई हमें अबे लोटन चाचा दिन नहीं है कुछ गेहूं हुआ हमार जब बिकाए जाए
3: हाँ
4: तब हमरे पास पैसा हो
3: तू अपने लग से हमका दे दियो 5,000 रुपया गिन के
4: हाँ
3: अब बहाना ना करो
4: नहीं बहाना नहीं भरे जब कटैया पड़ी रहा है तो मजदूरन का देखा हम पैसा रखा है
3: देखो हम जानी नहीं
4: पाइप तू कहीं जान लो
3: हम जानी तो है तोरे रुपया रहते दू दिन नहीं चाहते हसाओ ना अब देबो करबो हम जानी थे हम तुम्हें बिफैया कहीं लाके नगद तुम्हें पकड़ा देवे
4: अब तुहार तो वे दूध दूध बिकात नहीं है
3: बिकाई बहनी काल से सब आ जी है गाहकी सब गए रहा घरे छुट्टिया रहना गर्मिया की
4: हाँ तब वहा तो कही थे कि दुधुआ तुहार ऐसे धरा
3: रहा है तो अब वो हमसे रतिया मुहा खोल के कही कि हे भौजी हमें 5,000 रुपया दे दो अब जब दूधो नहीं बिकाते कहाँ दे 5,000
4: चलो हम दही देव हमरे हमें वापस कह दियो ना लोटन चाचा हमार बार उखाड़ डरी है
3: ऐसे वैसे बार झरिगा है और जो झरा है तो उन बचा है तो उन उखाड़ लिए हैं
4: वाह है तो कही था
3: काहे को उखाड़ लिए दादा हम तुम्हें लाई दही जब दे पाई है
4: हाँ तो दही दियो टाइम से और नहीं वो हमका जो है नचाए मारी डरी है कहे तो हमसे बिना पूछे कहा है दही
3: जब तक तो का मरी हो नहीं है तब तक हम रुपए वाला घाट हम दही
4: हाँ तब यहाँ कहो कि तुम हम विश्वास पर देते हैं
3: बस तो ठीक है चुप्पाई हमें दे दो हम चुप्पाई लायक तो रहते हम दबा दे दे
4: तो बहनी ये बताओ कि देखो ये आई हैं
3: कोई मेहमान है
5: तो हाल हमारा नाम चुलबुली है
4: चुलबुल आई हैं भाई
3: मारानी का नाम है चुलबुली
4: तो न बहनी
5: हाँ
4: माँ तारी ठीक घर माँ
5: माँ तारी ठीक ही तनी एक घुटना में दिक्कत थी
4: ये आजकल ये बिरामी
3: बहुत बिरामी है
4: बहुत बेकार
3: गुड़वा बहुत पीरा
4: झुका नहीं
3: चाहिए ना गुड़वा झुक नहीं पाओ तुम
5: भैया
3: हमारे सबके वहाँ हाल है
4: तो बहनी हम एक दवा बताए दी
5: बताए दो चाची
4: जो रंडी के पत्ता होता है
5: अच्छा
4: जानियो कि नहीं
3: या बहनी अरंडी कहा जाते है उनका अरंडी गरियाओ ना पतावक ना गारी बक्को बहनी
4: हम पढ़ा रहा है ना वो
3: अरंडी
4: अरंडी हो चलो
3: हाँ
4: तो अरंडी पत्ता ले लियो और उका जो तवैया गरम होए ऊपर तनिक तेल ना दियो
3: कड़ूक बहनी
4: कड़ूक कड़ूक तेल कड़ूक तेल और तनिक हल्दी ना दियो और तनिक नून ना दियो
5: ठीक है
4: और ऊपर पाता धे दियो और जब खूब गर्मा जाए पाता तो ऐसे सहज सहज जो है महतारी घुटना बांध दियो और ऊपर से कपड़ा लपेट दियो हाँ
5: ठीक है
4: तब बस ऐसे 2-3 दिन करिए वो ठिकाए जाई है
5: ठीक है चाची
4: ये जो दर दवाई है ना घरेलू वाली
3: हाँ, हाँ, हाँ।
4: ये बहुत फायदा करत
3: बहुत है। बहनी बहुत ये एक समय से समझ लो कि आयुर्वेद है
4: हाँ
3: है ना आयुर्वेद
4: आयुर्वेद है हाँ आयुर्वेद हाँ। तो है ये
3: तो ये कुल दवाई पहले कीन करो और बाकी दवाइया खाओ देखो देहिया भर सूझ जात है बहनी सुन
4: अब देखो हम खाई तरह देहन सब सुहान है
3: सुहाएगा देहिया
5: हाँ वो केमिकल हुए थे ना यही हाँ, मारे
3: तो यही आयुर्वेद अगर तू सुन दवाइया कई लो आयुर्वेद
5: हाँ,
3: तो तुहार तबियत ठीक हो जाए नीक हो जाए
5: अच्छा चाची
3: हाँ
5: तो बतायू है आज तो हम आज घरे जेबे
3: हाँ जब अपने घरे जायो तो आयुर्वेद के यह कुल जो ये बतावा थी चटपटो बहनी
5: हाँ,
3: यह कुल दवाइया जो है खाई रही हो बस तबियत उनका कराए दी हो उनका बंद
4: हाँ पर... रोजे बांधे हो 3-4 दिन बांधे हो बस ठिकाए जाइए मातारी तोहार
5: ठीक हाँ, है आज हम घरे हाँ। जाइबे तो अपने मम्मी को बताइबे
4: भाई हम लोग जो घरेलू हुई ना छोट मोट डॉक्टर हुई डॉक्टर हुई छोट मोट की नहीं
3: हाँ हाँ हम सब डॉक्टर हुई छोट मोट
4: तब नान मोन जब लड़के में है इधर उधर ढोलक फिरत है लूक लगत है कहूँ कुछ लगत हम तो प्याज पियाए दे थे खवाए दे थे सुन लो बहनी तू सुन लो सब आई हो जाऊन पियजिया होत है ना
5: हाँ
4: तनी तनी ऐसे काट डालो और काट के एक शीशी में डाल दो
5: अच्छा
4: काचे की हो शीशी नहीं प्लास्टिक में नहीं डायरेक्ट है
5: अच्छा
4: हाँ काचे में डाल दो ऊपर से सहतिया डाल दो
5: ठीक
4: और अब लड़के जो है धुपुआ में दौरत है पनिया पियत है सबके जो को खोखी रखे है जुकाम धरे है तो ठिकाए जाए वह सहतिया उठा निकाल के और उन्हें पिया दो अब विक्स तो जनते हो विक्स आवत है बजरिया मिलत है
5: कौन
3: बिकिसिया बिकिसिया बिकिसिया
4: बिकिसिया
5: जो सूंघा जा नीला रहा था।
4: हाँ नीला नीला वह शिशिया में रहा था।
3: हाँ हाँ सूंघा जाते खूब जोर लागत है।
4: हो तो रतिया मोई का मल के सुआ दे लड़कवन का।
5: अच्छा
4: ठिकाय यही है सब।
3: और ये चटपटाओ ये देखो एक दिन हमारे बहनी आई।
4: अरे इनका जानी थी रंजना बहनी हो।
3: हाँ, हाँ, पूरा से अयोध्या से
4: मिला तो रहा मिला गया रहा है ना हम लोग।
3: हाँ, हाँ, मिला गया रहा।
4: हाँ, हम तो जानी था यार हम भुलक्कर थोड़े ना होई। नमस्ते नमस्ते खुश रहो। और ई बहनी ना पहचाने नहीं कर
3: हम नहीं पहचान। ई बहनी किए हुए
5: ये बहनी हमारे साथ है रहा।
4: अच्छा तोहरे साथ तोरी अच्छा इनकी सखी
3: इनके सखी हो। हाँ, हाँ, तो दोनों जने एक कई छदिया पढ़ाती हूँ।
5: हाँ हाँ
3: पढ़ाती हूँ। कौन है सकुलियम
5: सकुलिया ये यहाँ जो नारी ज्ञान स्थलीय है
4: गोंडा में। सब नारी ज्ञान स्थलीय
3: पढ़ाते देखो वो रचना रही अर्चनिया रही
4: सेवानी रही
3: सब रही जया बहनी रही सब यही पढ़ात रही। अब
4: स्कूलिया तो निकल है ना।
3: हाँ हाँ
4: स्कूलिया भाग भाग वो है स्कूलिया हम जात है सब।
3: हाँ,
4: है
3: तो हूँ बहनी कहा हाल का हाल है
6: ठीक है।
3: अच्छा तो आज कसके आए गए।
6: अरे हमारे दीदी के लड़का के तबीयत खराब रहा वही देखे
3: हैं। अच्छा अच्छा तो जन है
4: रबीवा के यहाँ रबीवा।
3: हाँ हाँ
4: जानित है भाई तोरी दीदी का हम जानित है अच्छे से तोरे जीजा का हम जानित है अच्छे से और तेरे खानदान भर का हम जानी थे अच्छे।
3: हाँ हाँ पूरे कहो पूरे कहो।
4: हाँ सबका जानी थे हो।
3: हाँ अरे घर तोरे नहीं लेके आए ना चीनी ना
4: तब तो परिचय भा रहा।
3: हाँ,
4: है,
3: हाँ,
4: है
3: पूरे पूरे
4: तो
3: कहो
4: सबका जानी बहनी तो चिंता ना करो।
3: हाँ तो ये बताओ
4: बताई थे कि परसों बहनी का हमार फोन आवा।
3: हाँ, हाँ,
4: तो हम कहा बहनी और सब ठीक हो।
3: हाँ
4: तो कहे इनकी हाँ अम्मा सब ठीक है तो हम कहे कि जो दमदा है तो हर ख्याल रखत है।
3: हाँ।
4: तब बतावे लगी अब तू का बताई तो तू दंग रह जाइयो और हम तो कही थे हे भगवान सबका ऐसे दमदा मिले।
3: हाँ
4: हाँ सबेरवा कहीं इनकी मम्मी उठा तो हमरा सर में बहुत दर्द होत रहा है।
3: हाँ।
4: तो आपके जो दमाद हैं वो हाँ। तेल लाए के धरिन
3: मुड़ो।
4: हाँ खूब कसके ज्यादा तेल लगा के ठोक दिन।
3: अच्छा
4: उसके बाद कहीन की हमार हलुक हुई गा सरा।
3: हाँ।
4: और फिर हमका गर्मी बहुत लागत रही
3: तो कैसे ठोकिन लोढ़ा सुलोढ़ा ठोक दी
4: अब हथुए ठोकिन हो ये हो।
3: अच्छा हम जानी लोढ़ा उठा ले
4: तो बरवा उठाए के कहीन के एकदम कपार के ऊपर जो है बरवा बांध दीन।
3: हाँ
4: बरवा बांध दीन।
3: हाँ
4: और फिर हमें गर्मी नहीं लगा।
3: हाँ
4: और तू का बताई जब हिया रही हमार बहनी।
3: हाँ
4: तो उके तो जुआ पर जात रहे ढेला।
3: अरे दादर छी छी
4: तो हम बिहा दिया।
3: हाँ।
4: का करी भाई जब शादी ठन गा तो ठन गा।
3: हाँ।
4: तो एक एक हमार दमाद का सराफत देखो।
3: हाँ।
4: एक एक ढेलवा एक एक लीख निकार के चका चक कई दी सुखी खपड़िया।
3: हाँ
4: साफ कई दिन।
3: अरे ये दमदा करी।
4: हाँ
3: बहुत अच्छे दमाद है आपके भाई बहुत अच्छे दमाद।
4: और सुनो सवेरे उठत है।
3: हाँ।
4: और खैका बनाए डाल बहनी सोवा कर थी खैकुआ बनाए के धर के जावत है।
3: हाँ।
4: और उके बाद अपन लिए बांध लीन जब कामे जात है तो बांध लेते हैं बेचारे चले जाते हैं।
3: हाँ।
4: और कही जात है कि खैकुआ धरा है तो खा लियो और दोपहर के लिए दरिया चौरुआ बनाए की धई जाते।
3: अरे बहनी सबका यही मेरा दमाद।
4: हाँ। और सुनो वही तो वैसे रही तू तो देखे रहो ना।
3: हाँ,
4: भकबेल हाँ, टाइप की रही भकबेल।
3: हाँ,
4: उन्हें कौनो
3: पगल रही
4: सिंगार पटार का कौनो सौके नहीं रही
3: पगल।
4: तो जैसे कहूँ जाय होता है तो दमदा हमार लिपट टिकिया लगाई देते है।
3: हाँ रे मोरी मैया लिपट टिकिया।
4: हाँ, हाँ उनके मुँह पर लगाई देते है।
3: हाँ
4: होठो पर घिसर देते है और का लिपट
3: टिकिया। अरे मेरे फूहर।
4: हाँ, और नेल पलसिया लगाए देते है नेल पॉलिश लेके।
3: हाँ,
4: रंग देते है उनके हथोआ
3: दादा।
4: तो उनका लगा था कि हमार जो बीबी सबसे नीक लागे।
3: अच्छा
4: और बहनी तो देखा तो सूरत सकल की तो है ठीक ठाक
3: बहुत ठीक ठाक।
4: हाँ। काहे हमार बिटिया खराब होए का
3: ना ही हम काहे काम कहन बहुत ठीक ठाक है बहनी।
4: हाँ तो देख तो है हमार बिटिया और का तो बस तनिक का सिंगार पटार ना ही आवत है।
3: हाँ।
4: जो हमार दमदा मिलगा।
3: हाँ।
4: बढ़िया से कही देते उनका श्रृंगार कर देते सुंदर मुंदर बनाए देते तब अपने संगे ले जाते।
3: तो दमदा अपना काम धंधा नहीं करते खाली थोड़े बिटिया के बैठ के लीपत पोतत है
4: ना ही कमियो करत है।
3: हाँ,
4: अरे ना ही
3: खाइको बनावत होई
4: बड़ी
3: धोवत होई
4: बहनी बड़ी कोई कंपनी में काम करत है। हाँ पैसा बहुत कमात है।
3: हाँ।
4: पर अब का बताई, अब उनकी किस्मत ये ऐसे रहे हमार बिटिया।
3: बहनी तुम्हारे बिटिया किस्मत
4: फिर जिले ना।
3: हाँ। नहीं
4: तो हम तो भैया है कही था कि तुहरे जो बिटिया है ऐसे दामाद मिले, सब मिले ऐसे दामाद जैसे हमार दामाद इतना लायक मिला, ऐसे हम कही थे तोहरो दिमाग और रंजना तोहरो दिमाग ऐसे आवे।
7: हाँ, यही आशीर्वाद दो आप।
4: और का बढ़िया मिले, बिटियो देखे
7: सुखी रहे
4: और घरों देखे भाले, अपन सब काम करे, बर्तनों माज ले।
3: तो चलो आज कुछ गौनाई कही डारो बिटी वे को। हाँ, तो कुछ इनका गौनाई करके सुनाई दो कि अपने दम देख बखान कर बैठ के बस। जब से आए तब से दम देख बखान।
4: बिटिया हमार बतावे लगी हमका बड़ी।
5: हाँ हाँ चाची, हाँ। सुनाई दे एक गौनाई हमू का।
4: बड़ी किस्मतदार हो तू।
3: हे चटपटाओ, तो ढोलिया कहाँ ही
4: धरी है देखो, वह दिन से वैसे पड़ी है।
3: हाँ, तो वैसे धरे रहा।
4: ई हाल होए हमार घर का दुलारी।
3: हाँ।
4: पतोहिया उतरी ना नीचे की ढोलिया हिया पड़ी है।
3: हाँ।
4: तो ले जाए की का ढंग से धई दे। ई हाल है घर घर की कहानी सुन लो जाने। तो बहनी ये बताओ।
5: हाँ चाची
4: बताओ। बप्पा तो हाँ ठीक हो?
5: बप्पा बप्पा सब ठीक है, सुखी परिवार बढ़िया है।
4: अच्छा तो चलो भाई निक है सब।
3: चलो चटपटो कुछ सुनाई दो आज।
4: का सुनाई दे अब हम तो, हमका तो लगा था कि भाई अब बचा पहले बतिया तो सुन ले।
3: बताओ।
4: हमका बस खाली लगा था भजन करी, जब से हम दिल्ली से आए हन हमार मन जौन है भजन में रमा है।
3: संत के बाबक लगे चली गई मंत्र मंत्र जान पड़े कुछ ठोक मार दे सदुआई गए हुआ गाँव को भजनिए गाँव चलो और मना भजने में लगे तो चलो
4: तो भजनिए गाओ तो सुनाई थी
3: भजनिए सुनाई दो दादा।
4: हुआ भाई देखो इतना बड़ा दिल्ली शहर है।
3: हाँ। दिल्ली जाए जाए तू बर्बाद हूँ चटपटो।
4: तो जाए तो पड़ता है भाई ना। हाँ। तो बात रिश्तेदार हुए सब बसा है तो देवरो तो हुआ बसा है जाए। हाँ, तो पड़ता है भाई
3: सब बसा है हुए। हाँ। भाई सब बसा है। अब चलो गाय दो तू बिना कुछ बोला गाय डालो
4: तो गाय दीप बजाए दिए तो है पुरवा। हाँ। लियो बहनी तू लोग भी आए
3: तो तू लोग पुरवा लियो।
5: ठीक है चाची।
3: रंजना तू पुरवा लियो।
4: ठीक है। आज रंजना सुनाई है, रंजना नीक गावत है।
3: हाँ अब उन्होंने कही दे सुनाए दे है।
4: हाँ रंजना बहुत नीक गा, हम तो सुना है ना।
3: हाँ
4: रंजना बढ़िया गाना गावत है।
3: तब गाओ हो मैंने तुम्हार का न हुआ है
5: नंदनी नाम है मेरा।
3: भनभनी
5: नंदनी नहीं
4: नंदनी कहीं हो।
3: अच्छा हम जानी
4: तुहार कनवा बहुत बाजे लाग है आजकल।
3: हम ना ही हाँ। सुनाई पर हम जानी कहीं नहीं भनभनी
4: अखरोट खावा करो अखरोट
3: अखरोट।
4: हाँ तो सुनाई दे पड़ी
3: अखरोट काय के अखरोट ना हो है।
4: हाँ नंदनी होए भाई ना चिढ़ाऊ का।
3: अच्छा अच्छा अच्छा
4: तो चलो गनवा गाई थे बढ़िया बजाए दियो। अच्छा
3: यहाँ कहा तू गावत नहीं कहा तू
4: गाई थे राम का भजन हो।
3: हाँ,
4: सब लोग पुरवाए लियो
3: बिल्कुल बिल्कुल जय श्री राम।

0: बहुत सुंदर
1: हुआ रहो ना तो एकदम मतलब इतना सुंदर सुंदर गावत ही हुआ कहे तो दिल्ली हो फैशन परेड होता है हुआ
2: लेकिन दिल्ली में बहुत
1: लेकिन दिल्ली में भक्ति भाव बहुत है ये तू जान लो
2: हाँ बड़ा सत्संग कथा होता
1: है बहुत होता
2: है दूर दूर जाती हूँ
1: हमें नीक लागत है ये सब
2: हाँ
1: अपने गवन में देखो गवन ही नहीं करी है पीछे बैठ जाइए है परपंच करी है और बदनाम तू का और हम का करी है क्या रे चटपटी तो बहुत बदनाम हम तो खैर बदनाम होई तुका तो बताए रहा ना तोहरे पीठ पीछे कतनी साजिश चलत है
2: चली हम नखलऊ का चली गए
1: हाँ
2: कि हमारे पीछे साजिश
1: चला हाँ तो ऐसे हमारे पीछे चला करत है
2: हाँ।
1: ये कौनो सगी नाई है चाहे वही
2: पूरे की हो
1: हाँ दुबाइन हो चाहे सरमाइन हो चाहे मिसराइन हो सब वैसे है एक गौनो जनती है हम लोग तो गाय ले थोड़ बहुत
0: आपके आवाज भी बहुत अच्छी है
1: हाँ नीक लागत है
0: हाँ चाची बहुत सुंदर आवाज ही
1: हाँ अरे बहनी तब तो जियत रहा भाई जब हमारी तारीफ कह दे थे ना हमें वो बहुत नीक लागत
2: हाँ,
1: है
2: बहुत खुश हो जाती चटपटो बहुत खुश बहुत हाँ, अब पूछो हाल अच्छा ये बताओ आमे के कौन कौन चीज बनाए हो
1: आमे के
2: हाँ।
1: अरे हम तो बहुत बनाए के धई दिया यह टाइम है
2: कहाँ बनाए
1: यही टाइम बनाए के धई लो खटाई वटाई नहीं बरसात लग जाए तो सब खुखुआ जाए तुहार
2: खटाई कैसे बनाई हो
1: हम तो अचार बनाए डाल रहा है
2: अचार तो हम बनाए हाँ। अचार
1: और हम वहो का अचार बनाए है का कहा जात है वो छोट छोट होता है हरा हरा
2: हाँ
1: वहो का अचार बनाए डाल रहा है
2: ये क्या होता है छोट छोट हरा हरा
1: अब नमुआ तो याद है नहीं हमारे याददाश्त चला गया है
2: वो तो नहीं अंबरवा
1: अंबरवा कहा जाता है
2: अंबार कहा
1: जाता हाँ एक जने आए रहे तो दही गए रहे फिर फंड माह में तो हम बनाए डाला को अचार धई दिया बनाई के
2: अच्छा
1: और
2: वो अचरवा वो किर बनत है
1: हाँ,
2: कमरखो
1: बनत है
2: हाँ,
1: और हम तो वो बना के रख दिया मीठी चटनिया
2: किसके बनाई हुए हो
1: आम घिसी डारा
2: हाँ।
1: छील छाल के दौन वो लड़के में उठाए लाए रहे हैं वो आम सब हम छील डाला
2: हाँ।
1: और उसका कद्दू कस से कसी दिया और उसके बाद उमा सब मिलाए दिया वह मसलवा जो अचार वाला होता है
2: हाँ।
1: सब मिलाए के और का धूप धई दिया गुड़ मिलाए के चीनी हाँ। नहीं बनाए
2: हाँ।
1: गुड़ वाला फायदा करत है
2: अच्छा
1: अब वो खराब नहीं होगी जब पूड़ी बनाओ पराठा बनाओ सुंदर खा लो बढ़िया तो बनाए डालो टाइम ना अपन पास करो ही हम देखा रहा है तू बैठी रहो उनके सरमाइन खिया
2: बैठ रहे सरमाइन पकड़ ली ना तो पकड़ के बैठाई ली ना हमका
1: तो अपन टाइम काहे बर्बाद करती हूँ के लगे बैठ के
2: बता
1: हम तुका बता दिया ना कतनी खतरनाक मेहरारू हो
2: हाँ, हाँ, हाँ, पूरे कहा तू बहनी
1: हाँ
2: लेकिन अब पकड़ ली
1: हम तो कहती की बैठे के रंजना बताओ तुहार बहुत बुराई इनकी करती सरमाइन और नहीं के लगे जाए जाए बैठी थी
0: बहुत गलत करत थी
1: हाँ ना बैठे
2: अरे तब का करी बहनी जात रहे रस्तवा में है वही
1: हथौड़ी तो
2: पकड़
1: ली तो उन्हें तो बस
2: पटाओ आज लो तू बजाइबो ढोलिया हम गावे जाई थक टुकम नहीं हमें आज बजाओ तू ढोलिया तू बहुत भागे थी
1: हमसे बजवाए बजवाए ढोलिया हमार हाथ पिरवावत हो अपना भागी रहा थी
2: अपने हाथ में जोर ना ही लागा थे
1: नहीं अब चाहे बजाइबो तू ही आज चाहे जोन होई
2: तो चलो
1: दुनिया भर परपंच करत थी और हमारे जब इनके दाई तो हम बजाए दे बहनी और जब हमार दाई आई तब ये ढोलिया ना बजाई
2: है हम ऐसे में भड़बड़ भड़बड़ बजाए
1: नहीं तू भड़बड़ाई दे तू भड़बड़ाए दे लेकिन आज तू ही बजेबो चलो बहनी पुरवाई लियो का न वो बताई बहनी भन भना देवी
0: चुलबुली
1: अच्छा तू चुल तुहार का न हुआ बहनी अच्छा तू ही भन भनी कहना अच्छा नंदनी देवी हो चलो गाँव जैसी बनी पुलवा लियो
0: ठीक है चाची
1: रंजना बनी तुम पुलवा लियो
0: ठीक फूल वब्बर

0: सीखन है हम ये गनवा
1: नाई बहुत नीक रहा
0: ये गनवा हम बहनी सीखन है रंजना बहनी तुम तो गावत हूँ गना गौनैया गौनैया तू तो करत हूँ अरे डुआम गावत हूँ
2: हाँ थोड़ बहुत गायत है
0: तब कोनो एक ठो बहनी सुनाई दो
1: रंजना बहनी बहुत नीक गावत थी
2: आप लोगन के इतना अच्छा हम नाई गए थे आप ढोलक भी बहुत अच्छा बजाओ बहुत
0: अरे गाय दो बहनी महफिल हो हमार सबके हम चटपटी तो रोजे गाई
1: थे चौपाल हो हिया बहुत मजा आवत है सब यहाँ हाँ। से तो जुरात है हिया जुड़ जात है सब है
0: हाँ
1: हाँ
0: तो ये चौपाल हो चौपाल में यहाँ गाय दो कुछ या आद आ जाए तो गाय दो तब तक हम दूजे ने बतवाई थे
1: अब आई है रंजना तो खवावे कोई ना कुछ न कुछ
0: तो ब्रेक कह दो बिचवा में है तनी
1: हां तो यहां कही तो तनी ब्रेक ले ली
0: हां ब्रेक ले ली
1: दे भाई मेहमान आए हैं अब देखो चुनरी
0: हां हां देखो भनभनी देवी आई हैं हां
1: इन्हों को कुछ खवा दो तू आई हो सबसे बड़ा तो तू अब्बा जो मंगियो बांध के ले जइयो
0: तब हम तो
1: सारी खइया तू तो बांध के ले हां
2: अरे ना ही चाची हम मुख दे दियो बच्चरवा
0: और देखाओ देखाओ देखाओ
1: तो वो हाय कही थे कि देखो हम तो तनी मनी खाइबे
0: हाँ
1: हमारा चार ऐसे बटीपट चला जाए
0: जब तो तुहार कामा यहाँ रहे
1: फसल आए हाँ की तब तक हमार उराए जाए
0: तो और तुहार कामवा यहाँ है चटपटाओ
1: हाँ बनाए बनाए बांटो
0: तब बहनी सुनो अब हमरे लाग गए भूख बहुत बहुत अबेरक निकले हैं बहुत अबेरे हैं
1: तो भाई
0: छोटे ब्रेक ले लो ब्रेक मार दो
1: हाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं तब तक के लिए आप लोग भी ब्रेक ले लीजिए
3: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई थीम बेस्ड क्लासरूम ऑडियो वीडियो विजुअल्स कंप्यूटर स्मार्ट क्लास वाहन की सुविधा CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है एडमिशन ओपन पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर पटेल नगर गोंडा अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123 मॉडर्न पब्लिक स्कूल निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य
4: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा क्या करें
5: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल गुर्दे दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज
6: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO INO वेंटिलेटर फोटोथेरेपी डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है
3: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ संपर्क करें 0522 2711 827
7: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन
8: शर्मा जी आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है अरे भाई सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है जहाँ योग ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी
9: बिल्कुल इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है वेदम इंटरनेशनल स्कूल नियर न्यू सब्जी मंडी तुरारा रोड गोंडा आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए कॉल करें 8881009400
3: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर एडमिशंस ओपन जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 अब सपने होंगे साकार

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: तो पानी पियो रंजना बहनी।
4: हाँ हाँ पानी।
5: अच्छा ये बता, हमारा फरवा कैसे बना रहा है?
4: बहुत अच्छा, यह मेरे फरा तो हम आज तक खाबे नहीं की है।
5: अरे भाई देखो कितनी तारीफ करते थे। हाँ। तू है खाए खाए जौन बस खा मुटाओ, और हमारे कब्बो जो ही तारीफ ना करी है, अपने मुंह से तारीफ का शब्द इनके से सुने ना हम।
3: ये चटपटाओ,
5: ये बस खाली का बताई लोटन जो तुम्हारे चाचा हो उनका बस पिछुआए हैं, ये जान लो। उनके लिए कुछ बनाए की धई दे, ये ना कही बंदा की बहुत नीक बना है। हाँ
3: अब तू बनाई है,
5: रोते रहिए रोते रहिए। तू का तू कुछ होते नहीं, तू का कुछ होते नहीं। बताओ रंजना कम कहाँ की सराफत हो।
4: एक बार हम आपके यहाँ गहना तो आप हमें चाय पिया, वो चाय भी बहुत अच्छी रही।
5: अच्छा अच्छा, तुम दूध तो दुलरिये का।
3: अरे दुलरिया दूध का है रहा, दूध भैंसिया गायवा का रहा कि दुलरिया कौन दूध देती बुढ़ापा में। अरे कहो दुलरिया भैंसिया दूध हुआ रहा, गायवा दूध रहा, दुलरिया कौन दूध है बहनी? अब हाथ धोएगा चटपटाओ जुआन बतुआ थी। जोन कहा थी ओके,
5: यहां कहे जाए तरह तो गलत लेंगे हम। तो ही कहे कि दुलारी दूध तुरे घर पैदा हो ना दूध,
3: तो ये कहती हूं कि दुलारी के भैंसियन के जो है दुलारी घर से जो दूध आउत कहा तू दुलारी एक दूध हवा
5: तब तोरे दूध एक रोजगार हो तो यही से। हां हां हां कि दुलारी दूध।
3: हां वहां
5: और हमार और कोनो असल मतलब ना आई रहा
3: नहीं तो दूधवा तो नीक इनका देते हैं बहनी दूध।
4: तबे चाय, तबे चाय इतनी अच्छी।
5: ये अगर मिलाए दिन हमरे पानी, पानी अगर मिले कि हमका दूध मिला तो मैं इनका एक को इनका करनी बनाई।
3: ये बता बहनी कोनो कोनो गाय में होत नहीं ही पातर दूधवा होत है। हां
4: बिल्कुल।
3: तबे कहती कि तू पानी मेरा वत हूं हमरे दूधवा में बताओ,
5: तब क्रिया खवाई ली थी इनसे
4: तो बेईमानी करत थी है। तब
3: बेईमानी का हम दूधवा में पानी नहीं मिलाई थे। और बात रही फरा के, तो फरवा के इनके हम तारीफ यही ना इतना ही करी था कि इनसे नीक फरा तो हम बनाई थे। तो अब हम काहे
5: अपने मुंह में नीक बनायो फरा,
3: हमारे हथवक फरवा खाबो तब यही से लोटन भैया का दुई बाजी खवाए बहन है। यही से वह तोहरे फरा के तारीफ ना ही करत है, कैसे वह हमारे घर फरवा खाए है
5: तो पता नहीं। तू अब हमें तो नहीं खवाए हो भाई,
3: अब तुम्हें कोनो एक खवाए है, तुम्हें खवाए
5: हमें नहीं खवाए हो। हमारे तो रोवत रात्रि दरिया के हमरे पीसी हम हमरे चौर कांटा खत्म
3: हमरे नाई यार
5: खत्म होएगा।
3: हमरे बहनी चेतना आओ थे कि हमें बुझाते कि हम एक बार एक दाई खवाए ने हो,
5: एक दाई खवाए हो जब बनत है फरा।
3: हां हां
5: जाने करवा चौथ में खाए रहा।
3: हां कितना नीक बनाए रहन बताओ।
5: सब उस दिन तो सब नीक बनत है ना।
3: हां
5: हम देखो बेमौसम के मौसम बनाए डाली थे।
3: हां अरे अब तू फुर्सत में रहा, तू जब चाहो तब तुन बनाए डारो।
5: तो कोनो काम है
3: नहीं तोरे कोनो काम नहीं, जोन कहो तुन कह दे। बहनी हमारे सुनी लियो, हमारे भैंसिया ही चाटो उनका देखो, ओकरे बाद फिर नतीवे पतवा है उनका देखो, पतोहिया कुछ तरते नहीं है।
5: तो हमारे पोते पतोहिया तो पूरा घर जो है उजारे पर ही
3: है। तो बहनी तोरे घरे टहलिया हमारे बाहर टहलिया रहते है, खेतवक जाए परत है बहनी, का करी बताओ।
5: ए बहनी रंजना एक काम नहीं टारा थी, ऊपर रही बन जाए नीचे तुरंत आई कही कि मम्मी परस के ले आए, बस अतना करत है
3: बनावत, कुल
5: बनावत नहीं है, कुल बनाई थे बस। हाँ। खाए ताई जो है लाए के हमका थरिया भले पकड़ाए दे, और एक को काम नहीं जाना थी।
4: अब बहू है पूरा घर के काम करे चाहिए, आपके सेवा करे चाहिए।
5: अब उतर, अब देखो तू आई हो उतर के आवे चाहिए कि नहीं आवे चाहिए।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
5: पर ना ही कहिए हमें पता ही नहीं। आप बताती नहीं है, सब आते
3: हैं। अरे बहनी अब आजकल के सब
5: चले जाते हैं,
4: पता ही है इसे
5: आप बताती। अब हम बताइए मतलब घुटना लाचार आदमी है, कमरिया लाचार, कब कैसे चढ़ के जाए कोठवा पे। अब नीचे से आवाज दी तो कहीं हमने सुनाई नहीं पड़ा।
3: अरे बहनी हर घर के आए
5: बहुत चालाक हो दुलारी, तू तो जानत ही ना बहुत चालाक हो,
3: बहुत चालाक हो, कुल टहलिए करती घर के, कुल टहलिया खायक बनावे, जेके आओ तो चाय वो पियावे, हमारे हम उसका नाश्ता पानी कुल करावे। वो झांके ना आई कि देखी मम्मी जी का करती,
5: लेक होई सुकुवार
3: कुछ लेक होई तब आई मम्मी जी। हाँ, मम्मी जी करी
5: तब करी
3: बस वो है हमारे घर खान
5: बस इनकी पतुहिया हमार पतुहिया
3: एकई मेरी। लेकिन अब का करी जोन करमो हम रहा तोन पाएन,
5: चलो ठीक है भाई ऐसे चली जैसे लिखाए आए हैं करमुआ।
3: हाँ वैसे
5: ऐसे चली
3: कैसे चलबे करी, का कहा जाए भैया कुछ कहा नहीं जाए सकते। हाँ।
5: खपड़ी तो चढ़ी है तो चढ़ी रहो तू, हम उतारा भी जानी थे।
3: हाँ अरे जस जे के मर्जी तस्ते रहे, अब आजकल के जमाना यही मेरे है चटपटाओ कि कोहे कुछ कहे लायक नहीं है।
5: तो यही तो बतिया हम करी थे। हाँ। चुप्पे रही थे,
3: कोहे कुछ कहे लायक नहीं है जान लो।
5: अब ऐसे गौआ माँ अतनी बात हो अतनी हुई जई है, कहा थे रत्ती भर बिया एक हाथ ककड़े और नौ
3: हाथ बिया, ये है हुआ था। और बहनी
5: तो रहता है। हाँ रंजना बताए
3: तो अयोध्या का हाल कहो का है।
4: हमारे अयोध्या के हाल बहुत अच्छा है, हमारे अयोध्या एकदम दुल्हन घस लागत ही सजी रहा थी 24 घंटा।
5: यहाँ से तू आयु ना तो मैं सुध हुई का, हम कहा तो तुका राम का भजन सुनाई दी।
4: हाँ बहुत अच्छा भजन बहुत ही।
5: यहाँ से जब अयोध्या जायत है हम तो हमें बड़ा नीक लागत है,
3: बड़ा नीक लागत है। चलो टहर की आवाज आए।
5: हाँ तो बस चलब तनी बस
3: यहाँ जीते चलो
5: गेहूं तनी ठिकाने लगाए।
3: हाँ हाँ गेहूं हुआ कट जाए हमरो घरा तब चलो
5: चुराए जाइए बहनी तनी को, अगर हम लापरवाही करें तो चुराए जाए हमारा।
3: हाँ गेहूं काट ले जाते लोग, मने चुअर लोग काट ले जाते लगा खड़ा गेहूं काट ले जाते।
5: वहाँ तो कही थे देखे पड़ता है ना।
3: हाँ
5: तू कहा तो हमारे कोनो काम है नहीं।
3: अरे तो हमारे ज्यादा काम तोहरे नाई चटपटो, तू चाहे जितना चटपट चटपट।
5: अब देखो छल्ली लगी है सब बाहर, बोरे बोरा लगा है। अब ना देखी तो रतिये रतिये पता चला दो चार बोरा निकल जाई है, चुराए ले जाई है। बड़ा गाँव हमारा चोर हुए। हम बहुत तारीफ करी थे दूसरे से, तो हम तारीफ करी थे लेकिन हम जानी थे कि आदमी आदमी यहाँ सब ऐसे है चोर
3: चोरे बसा है सब पूरे। कहा तू बहनी सब चोरावे बसा है, कब चोराए ले जाए
5: अखिया काजर निकाल ले जाए।
3: हाँ,
5: ये जान
4: तब
5: लो।
4: तो सब बहुत भयंकर हैं सब।
5: हाँ बहुत है वैसे देखो आजकल बहनी संस्कार की कमी।
4: हाँ, संस्कार हाँ, की कमी है।
5: अब ये के चुरावत है जे पियक्कड़ है। हाँ। तो अटल जुड़त है ये नहीं
4: बिल्कुल।
5: तो निकाल ही से एक बोरा निकाल के लेगा, दो दिन पी है अपन बड़बड़ाए, इधर नरिया में पड़ा रही उधर किचड़े में पड़ा रही, और के बाद फिर खत्म
4: फिर चोरी
5: फिर। हाँ कोई घर फिर सेंध लगाई। यहाँ सब चलत है
4: बस पिए के लिए चोरी। हाँ, करत है सब।
5: छोट छोट लड़के हैं, छोट छोट लड़के पियत है आजकल।
4: हाँ
3: सब तो पियत है भाई।
5: हाँ भाई तो कहते का करत है, महतारी बात दिखता है ना ही, तनी संस्कार देख चाहिए। हमारा लड़का चाहे जस हो, हमारी बिटिया चाहे जस हो, लेकिन ये सब नाई है,
4: गुण नाई है।
5: हाँ ये सब नाई है।
3: अरे का करे लड़के में बहिरे निकलत है, कुछ आई फैल जाते है, लई लेते हैं आई बवा और का किन जाए। हमारे सबके बस के कौन महतारी बाप चाहते हैं हमारे लड़के खाए पिए।
5: वहा तो कही थे कि भाई संस्कार बहुत जरूरी है और जो सुनत हो वो हम यहाँ कहा चाहते कि अपन अपन लड़का नजर रखो,
4: बिल्कुल
5: उनका देखो
4: सही संस्कार
5: दो, उनका बढ़िया संस्कार दो, और संस्कार बुढ़ापे में नहीं दिया जाते,
4: बचपन से
5: दे। हाँ छुटपन से दो,
3: छुटपन से
5: दो, उनका सिखाओ उन्हें ना वही कोई का आदर सत्कार जाने, ना कोई से ढंग से बातचीत जाने, और चोरी चकारी पहले सीख गए।
4: बिल्कुल पैर तो छुए नहीं चाहते हैं आजकल तो बच्चे।
5: तो जब बताई है ना ही मातारी बात तो काहे छुई है भला बताओ, सब संस्कार खत्म हो जाते हैं।
4: बिल्कुल।
3: तब बहनी सुनाओ कुछ रंजना बहनी।
5: हाँ सुना
3: कही दो एक ठो
5: सुनाए दो। हम लोगों का परपंच ऐसे चला करी, हम लोग तो परपंची हुई गए।
4: तुम भी
3: बजाओ।
5: हाँ चलो बजा, अब तो दहीन दियो ना तो बजेबे कर अब।
3: हाँ बजाओ नीक बजाओ,
5: तो हमार पिरात है
3: बजा चटपटाओ।
5: चलो गा दो रंजना बहनी। हाँ। गाओ
4: चलो।

0: बहुनी गाय और रंजना बहिनी।
1: चलो भाई आज तो बहुत केकर मुँह देख के हम उठे रहे, इतना सुंदर सुंदर भजन। और सबसे बड़ी बात तो अयोध्या से हमारे घर जो है रंजना पधारी हैं, इसे आपका बहुत खुशी मिल रही है।
0: हाँ। जय श्री राम बोल दो।
1: अरे जय श्री राम, जय श्री राम,
2: जय श्री राम, जय श्री राम।
0: हाँ तो जन है भाई,
1: अब चले का समय भी होत है और चलत चलत जो है ये पूछा चाहित रहा है कि रंजना तुहार लड़कों ठीक है?
2: हाँ लड़का ठीक है।
1: हम जो दवाइया बताए रहन
2: बहुत फायदा की हिस,
1: फायदा की हिस ना।
2: हाँ
1: तो वैसे देखो हम कही थे कि जो ये खरखुदवा वाली दवा होता है ये लाग जात है और हमारे जो रसोईया है वह खुदा एक मेडिकल स्टोर हो।
2: हाँ,
1: है कि नहीं?
0: हाँ, और का
1: जीरा जवाइन लवांग
0: मेथी
1: मेथी
0: हींग
1: ये सब दवाइये तो
0: गाला नुनवा।
1: हाँ
0: कुल दवाई बाटे हो दालचीनिया।
1: हाँ तो अब ये देखो लोटन चाचा के लाग गई रहा है का अब हंसी हो?
0: हाँ
1: हाँ पुरपुरी लाग गई रहा है पातर पातर हो लगा। हाँ। तो फिर अब मेथी उनका फका दिया।
0: हाँ तो मेथी
1: मेथी हाथे पर रखा गया नहीं का है।
0: हाँ।
1: हम कही पूछो ना ये सब फुरफुरिया बंद कर दे तो जो दौड़े हो। हाँ। इसे से बंद हुई।
0: हाँ।
1: तो फका दिया उनका पानी पिया दिया तनिक सा हींग डाल दिया और तनिक काला नमक डाल दिया फका दिया बंद सब।
0: वो तो हाँ। हाई है छोटी मोटी चीजें के लिए ना ही दौड़े चाहिए डॉक्टर लगे जुड़ता
1: है बंद दस्त वस्त सब गायब होगा कहीं तो बड़ा नीक दवा तू दियो दोबारा हम ना ही गए और नहीं टांगे दर्द करी रहे भागत भागत उनके रतिया पर भागे कहे मैं गुड़वा पिरात है
2: कमजोरी हुई।
1: हाँ
0: तो चलो चटपटो अब तरी तो, चले बेरिया
1: हो गए तो बता दिया एक दवा देखो चलो चलो सब फिर बता दिया है कि अगर कोई के ये सब दस्त वस्त आवे लगे आजकल गर्मी बहुत लगा
0: बहुत
1: है। एक तो
0: हाँ।
1: नवा गेहूं हो और अक्सर सबके बहुत है।
0: हाँ।
1: गेहूं अगर रात भर भिगुई है ना ही ऐसे धोए धाए के
0: पिसाई
1: खाई ली तो लगीबे करी सब व्याधि। तो यह से कहते कि भाई देखो गहुआ है उसका तनी ढंग से धो लो और रतिया भर भिगो दो फिर सुखा लो तब आटा पिसाओ। हाँ एक तो जानकारी तू दे दिया करो तो बहुत जानकारी।
0: अरे जानकारी हम भी दे दी कि जैसे इस समय गर्मियां बहुत होत है और पेटवे बगदत है जैसे तुरंत है मुड़ से मेरे पता लागत है मुड़ हुआ पिराए लाग बहुत जोर का।
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: तो रात में सोए लागो तो चार दाना जवाइन फाके कर पानी से।
1: हाँ।
0: और सोए जाओ।
1: हाँ।
0: कोनो दिक्कत है ना
1: बिल्कुल नहीं। सवेरे उठो
0: सवेरे उठो आराम से मजे मजे अपन सब काम करो कोनो दिक्कत है ना। दालचीनी केर दालचीनी तनिया हरदी और तनिया गुड़ और दुठो लौंग डाल के काढ़ा बनाए डारो
1: तब और का सवेरे सवेरे खाली पेट। हाँ। पी लो निहारे।
0: अब देखो मने वे का करते सवेरे में सवेरे उठे नाई कि चाह चढ़ाए दिन
1: चाह तो बहुत नुकसान
0: हाँ।
1: करत है
0: और चाहवा चढ़ाई नो खाली पटवे सबका चाह पिया। हाँ। जारिन
1: और चाह पिए खो तो भाई देखो तनी चीनी कम पियो
0: कम चीनी पियो।
1: अब दुधुआ ना नाओ
0: या बहनी तू बिना चीनी एक पिया थी।
1: हाँ तो ये तो नीक है भाई।
0: हम तो सवेरे काढ़ावा पी लेते नींबुआ गार दिए थे।
1: हाँ।
0: और बढ़िया काढ़ा
1: बढ़िया रहा थे बढ़िया रहा
0: थे यह बढ़िया रहा थे
1: तो
0: तब अब मिला जब अगले है
1: चीनी ना पियो भाई बहुत कम है पियो आजकल सबका शुगर हुई जात है।
0: देखा देखो सबका शुगर।
1: हाँ जेका देखो वही के शुगर
0: बच्चे का शुगर छोटके छोटके
1: छोटके छोटके नार ना लड़के हुए बेचारे शुगर से।
0: तो यही नाते से सभी भैया स्वस्थ रहो।
1: हाँ।
0: नीके रहो जब तक जिंदगी मिली है तब तक।
1: और हम यही कहें कि चुस्त रहो दुस्त रहो मस्त रहो। और हमारी प्रोग्राम 89.6 FM ये है गोंडा शहर की धड़कन हमेशा सुनते रहिए
0: और कमेंट भी करते रहिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। जय श्री राधे।

0: डिलिशियस
1: है ना। लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
0: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक्यू, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
0: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: सफर से। और आइए पहला गीत आपको सुनाते हैं, मोहब्बत के नाम ये प्यारा सा गीत, और मिलेंगे संगीत में अंतराल के तत्काल पश्चात। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्लेट 9.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो, एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: डिलीशियस
2: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास,
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड गोंडा, कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
4: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
4: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416, जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

जी हाँ जी हाँ जी हाँ। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM। यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है गोंडा मैसेज मसाला ओल्ड इज गोल्ड के सेगमेंट वाला। तो कुछ ऐसे नगमे जिनको हमने कभी नहीं सुने या सुने और कई दिन हो गए सुने, तो ऐसे ही गीतों की बरसात लिए मैं मनु उपस्थित हूँ आप सभी के समक्ष। जी हमारे साथ मेरे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री के गुप्ता जी उपस्थित हैं। गुरुज प्रणाम, कैसे हैं सर जी? जी आपको भी प्रणाम, शुभ संध्या। आप बताइए आप कैसे हैं? और बताया बहुत ही अच्छे अच्छे सॉन्ग चल रहे हैं। क्या बात है, क्या तुम्हें पता है गुलशन भाई, गीत मेरी वफाएं मेरी कसम, क्या बात है, मैं सेहरा बांध के आऊँगा, सारे गीत पसंद आ चुके हैं भाई। और अभी प्रकाश दुबे जी हैं, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, क्या बात है भाई, बिल्कुल हमने तो दिल को चुरा ही लिया है और हमको लगता है कि आपने हमारा दिल चुरा लिया है। और इत्तेफाक से अच्छी बात यह है कि आपने कहा और ये गाना हमारी प्लेलिस्ट की अगली गीत में, अगली श्रृंखला में शामिल है। कायनात जी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। कायनात जी कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी जी। और ओहो क्या बात है, और आते ही लिंक भी भेज दिया कायनात जी ने। देखते भाई, तो पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना। अच्छा क्या बात है, पा लिया है प्यार तेरा अब नहीं खोना, मतलब सही बात है ये तो भाई है कि इंसान अगर प्यार पा ले तो खोता नहीं है। लेकिन फिलहाल चली चलते हैं एक प्यारे से गीत की ओर और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

0: यही मौका है उस्ताद, अगला पिछला सब हिसाब बराबर कर लो।
1: ये गाना तुम्हारा है नीरज, मैंने सुर छेड़ दिया है, अब इसे पूरा तुम करोगे। तुम नहीं गाओगे तो ये गीत अधूरा ही रह जाएगा।
2: हम यहां मोहब्बत की दास्तां सुनने नहीं आए हैं, तुम्हारा गाना सुनने आए हैं। क्यों भाइयों?
1: तुम मेरा नाम आसमान पर लिखा देखना चाहते हो ना? अगर तुम चाहते हो कि मैं शौहरत हासिल करूं तो आज तुम गाओगे नीरज, तुम गाओगे।
2: अरे हम इसका गाना नहीं, तुम्हारा गाना सुनने आए हैं लैला, गाओ। नहीं गाती, मारो पीछे।
1: नीरज, इसलिए कि अगर तुम नहीं गाओगे तो मैं भी नहीं गाऊंगी। आज आवाज तुम्हारी आवाज के साथ गूंजेगी। अभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो मैं भी नहीं गाऊंगी। मैं भी अपनी आवाज को हमेशा के लिए बंद कर दूंगी।
0: छोड़ दीजिए ऊपर वाले पे, वो इतना संग दिल नहीं हो सकता।

नहीं जीना नहीं जीना तेरे बिन नहीं जीना, क्या बात है भाई। अलग अलग फिल्म का ये प्यारा सा गीत भाई। कायनात जी ने तो वास्तव में हमारे इस महफिल की शोभा बढ़ा दी। जिंदगी है साहब, बहुत तेज रफ्तार से भी भागती है तो डर लगता है। कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि ज़रा आहिस्ता आहिस्ता चले, आहिस्ता आहिस्ता चल जिंदगी। अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। जरा धीमे धीमे चलिए, कई सारे कर्ज हैं, कई फर्ज हैं, कई दर्दों को मिटाना है। आहिस्ता आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है, कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए, रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता चल जीवन, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जुड़ते जुड़ते छूट गए, उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता चल जीवन, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ कुछ हसरत तभी अधूरी है, कुछ हसरत तभी अधूरी है, कुछ काम और भी जरूरी है। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता चल जीवन, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को ये बात बताना बाकी है। आहिस्ता आहिस्ता चल जीवन, कुछ कर्ज चुकाना बाकी है। जी हाँ, जिंदगी के कुछ कर्ज होते हैं जो सभी को चुकाने होते हैं। हमारे साथ में शास्त्री जुड़ चुके हैं भाई। चरणस्पर्श दादा, चरणस्पर्श आप करते हैं, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और श्रीमती सविता शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शुभ संध्या सर जी, चरणस्पर्श आपको भी प्रणाम करते हैं। कैसी हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी होंगी। आइए फिर चलते हैं एक बार आपको बहारों की दुनिया में लेकर चलते हैं, नगमों की दुनिया में लेकर चलते हैं, और फिर लौटते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। लेकिन फिलहाल तो कुछ चुरा लिया है। क्या चुराया है ये हम नहीं, ये गीत बताएगा। जी बिल्कुल, फीमेल वाइस आशा भोसले की है, और मेल वाइस तो कायनाती गले के मालिक कौन है ये तो आप सभी जानते हैं।

जी, रफी जी कहकर चले गए थे कि मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, और आज तक ऐसा हो रहा है। हम शायद दूसरा रफी नहीं ढूंढ पाए। कोशिश लोगों ने की, लेकिन शायद उस पायदान तक पहुंच नहीं पाए, या हो सकता है हमारे कान वहां तक न पहुंच पाए हों। उन्होंने कहा था, मुझको मेरे बाद जमाना ढूंढेगा, और जमाना वास्तव में ढूंढ रहा है। जी, ये उन्होंने कहा था, जो बात एकदम सच हो गई। अब चलते हैं भाई, मेरे साथ अनिल वर्मा जी हैं सदापुर से। शुभ संध्या सभी सुनने और सुनाने वालों को। अनिल वर्मा जी प्रणाम करते हैं आपको, और लिखा है बहुत ही सुंदर गीत। मेरे साथ हैं वायुनंदन द्विवेदी जी, आपको भी प्रणाम करते हैं, और रवि प्रकाश दुबे जी, आपका भी नमन है। अब चलते हैं साहब एक गीत के पश्चात, पुनः फिर आपकी फरमाइशों का दौर शुरू करेंगे। आइए एक प्यारी सी गज़ल आपको सुनाते हैं, और इस गज़ल के बाद जो जीवन का सच है, आजकल के ज़िंदगी का सच है, वो है

जिंदगी में कभी कभी होता है कि अगर आपने वो दृश्य कभी महसूस किया हो कि आपके सामने से ही डोली जा रही हो और कभी सोचा ये गया हो कि ये डोली मेरे घर पे आएगी। रफ्तार जी मेरे साथ हैं भाई, गुड इवनिंग, आप शुभ संध्या आपको भी। और लेकिन ऐसा हो ना पाया हो इत्तफाकन। वैसे भी इश्क मुकम्मल कहाँ होता है, लेकिन इंसान अपने माजी को छोड़ नहीं पाता, अपने बीते हुए समय को याद करता ही करता है। गजल है कि

रास्ते की तरफ देखता रह गया। और अगली पंक्ति इस समाज के सभी उन लोगों के नाम है जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ गए, झूठ वाले आगे निकल गए।

थे ये दिया कैसे जलता हुआ रह गया। जी हाँ, जिंदगी में एक दौर आता है कि जब झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ जाते हैं और सच वाले वहीं रह जाते हैं। जी हाँ, और अब भाई वो घड़ी आ चुकी है जिस घड़ी की आपको प्रतीक्षा है। जी हाँ, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, अजीब सी ऊप शामिल हो गई है रोज़ जीने में, पलों को दिन में दिन को काट कर जीना महीने में, महज मायूसियाँ जगती हैं अब कैसी बियाहट पर, हजारों उलझनों के घोंसले लटके हैं चौखट पर, अचानक अचानक सबकी सब ये चुप्पियाँ एक साथ पिघली हैं, उम्मीदें सब सिमट कर हाथ बन जाने को मछली हैं, मेरे कमरे के सन्नाटे ने अंगड़ाई सी तोड़ी है, मेरी खामोशियों ने एक नगमा गुनगुनाया है, तुम्हारा फ़ोन आया है। जी हाँ, अब हम इंतज़ार करेंगे आपके फ़ोन का। आपका कॉलिंग नंबर वही है साहब, 6393316429, 63 93 31 64 29। और पहली फरमाइश हमारे पास अनिल वर्मा जी की है सैदापुर से, तो आइए फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम करते हैं प्रारंभ। पहला गीत श्री अनिल वर्मा जी सैदापुर का, ये रहा आप सभी के लिए।

जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा गीत हमने भाई इंजॉय किया, और फरमाइश थी अनिल वर्मा जी की, श्री अनिल वर्मा जी की। सदा पूछे चलते हैं भाई श्री प्रबल जी की ओर, हमारे बहुत ही प्यारे और हनुमान भक्त श्रोता हैं, और आज गीत सुनेंगे, दिल देना है तो दीजिए वरना हम चले। जी हाँ, रुकने का नाम प्रबल मिश्रा हो ही नहीं सकता, देना है तो दीजिए नहीं तो चल रहे हैं भगवान।

जी हाँ, आप चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर, जिसकी फरमाइश हमारी बहुत ही प्यारी श्रोता अनु जी, जो हमको सुनती हैं बेलसर से। बहती वासा था वो, फिल्म का नाम थ्री इडियट, बहुत ही प्यारा गीत, आप सभी को सुना।

आप चलते हैं आपकी अगली फरमाइश। और भाई हमारे बहुत ही प्यारे श्रोता श्री राजेश सिंह जी, जो बहुत ही जानकार श्रोता भी हैं, उनकी फरमाइश है हमको तुम्हारे इश्क ने, बहुत ही प्यारा सा गीत ये श्री राजेश सिंह मालवीय नगर की फरमाइश पर, हमको तुम्हारे इश्क ने।

जी हाँ, आप चलते हैं अपने एक ऐसे श्रोता की ओर जिनकी आवाज अभी तक हमने नहीं सुनी। फिलहाल नाम है लवली सिंह। अपने सारे दर्द दे दो, अपने रंजो गम दे दो, बहुत ही प्यार सा गीत ये है। देखिए लवली सिंह जी की प्यारी सी

जी हाँ, इस प्यारे से गीत के बाद अब आइए चलते हैं थोड़े से चुलबुले गीत की ओर। सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश है, हम तुम पिक्चर देख रहे हो, बहुत ही प्यारा सा गीत। जी हाँ, हल्के से चुलबुले अंदाज का।

आखिर टूट जाता है। जी हाँ बिल्कुल टूट जाता है। और आइए अब चलते हैं भाई गोरखपुर से अपने रोमांटिक कुमार अर्थात अनिल दद्दा जी की तरफ, जिन्होंने रफ़ी जी को काफ़ी कुछ टच कर लिया है। लेकिन आज किशोर कुमार का गीत सुनेंगे, अमर प्रेम का कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत ही प्यारा गीत ये, श्री अनिल शास्त्री जी की फरमाइश पर, जो हमको सुनते हैं गोरखपुर से।

जी हाँ, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बहुत ही प्यारा सा गीत ही हमने एंजॉय किया और बहुत ही प्यारे इंसान की फरमाइश। तो अब चलते हैं भाई। कहा जाता है, माया जब नहीं ब्रह्म कैसा, जब ब्रह्म नहीं माया कैसी, छाया तो सदा धूप से है, जब धूप नहीं छाया कैसी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जी हाँ, वह उनमें से एक रिश्ता पति और पत्नी का भी होता है। तो आज पति के बाद पत्नी भी उपस्थित हैं, श्रीमती सविता शास्त्री जी हम सभी के साथ। और बहुत ही प्यारा गीत शायद इस FM पर हम पहली बार बजाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है वंदना, आपकी इनायत है आपके करम। लता मंगेशकर की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गीत देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सविता जी।

जी हाँ, ये आप चलते हैं भाई अपने बहुत ही प्यारे श्रोता श्री संतोष जी की तरफ। उनकी फरमाइश है, लोग जहाँ पर रहते हैं उसे प्यार का मंदिर कहते हैं। वास्तव में जहाँ पर लोग प्यार से

जी हाँ, आप बढ़ते हैं अपने बहुत ही प्यारे श्रोता भाई, हंसमुख श्रोता है हमारे और बहुत ही राज दुलारे हैं, करीबी मित्र हैं, और श्री के गुप्ता जी, उनका नाम है कृष्ण कुमार गुप्ता जी, और गीत बहुत शानदार चुना है, ओ मेरे सनम, ओ मेरे सनम, बहुत ही प्यारा गीत श्री के गुप्ता जी की फरमाइश पर।

0: जी भाई, चैट बॉक्स में हमको दिखाई पड़ रही हैं हमारी बहन जी प्रीति शुक्ला जी, चरण स्पर्श करते हैं आपको प्रीति जी, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। और मनी सिंह जी हमको दिखाई पड़ रहे हैं भाई, मनी सिंह, मनी शर्मा जी कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे। और जी हाँ, रफ्तार जी की बारी अब आ चुकी है, आइए अब चलते हैं भाई। मोहम्मद मुशीब जी का गीत भी है और उन्होंने वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग भी बोला है तिरंगा कॉम्प्लेक्स से। के गुप्ता जी ने हमको बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, बहुत बहुत आभार आपका के गुप्ता जी। अब चलते हैं रफ्तार जी की फरमाइश है, धक धक गर्ल न्यू सॉन्ग।
1: उम्र में भी स्लीवलेस ब्लाउज पहने घूम रही हो।

0: देखो जया, कुछ छिपा नहीं पाओगी।
1: सेल्फ डिफेंस में क्यों ना, तो पुलिस को बता दो।
2: मम्मी तुम बोलोगी हिरन शेर का शिकार करने आया था और सब कॉलोनी वाले मान लेंगे।
3: हमको एक आइडिया आया है।

0: जरा सोचिए परदुमन जी।
1: जी हाँ सैया भैया छोड़ना, लेकिन प्रश्न ये है कि पायलिया छनकी कि ना छनकी। जी हाँ, मोहम्मद मुसीब जी जो हमको सुनते हैं भाई, बहुत ही हमारे प्यारे श्रोता हैं, हमको सुनते हैं लखनऊ के पहले बाराबंकी पड़ता है, बाराबंकी से ही सुनते हैं, और गीत उनका बहुत बढ़िया है आज, पायलिया छनकी कि ना छनकी। जी हाँ, ये चलते हैं मोहम्मद मुसीब जी की फरमाइश, पायलिया छनकी कि ना छनकी, रफ़ी जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ इसमें।
2: छनकी छनकी।

फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर

0: संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में यूपीआई भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज यूपीआई को सेशल में लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल्स के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट आवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली, इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
2: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1,000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
3: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मुज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

जी हाँ, आकाशवाणी के समाचार के पश्चात अब आते हैं फिर संगीत की दुनिया में और मनीष शर्मा जी की ये प्यारी सी फरमाइश सनम तेरी कसम। जी हाँ, मनीष शर्मा जी की ये फरमाइश।

0: सनम तेरी।
1: जी हाँ, सनम तेरी कसम के पश्चात अब चलते हैं भाई सुनील शास्त्री जी की फरमाइश है, ये जीवन है, बहुत ही प्यारा गीत, फिलोसफिकल गीत है ये।

जी हाँ, आप चलते हैं भाई जनू जी की फरमाइश और गीत के बोल हैं वफा जिनसे कि बेवफा हो गए। इसके बाद चलेंगे एहसान भाई की तरफ, सत्यम शिवम सुंदरम।

0: सत्यम शिवम सुंदरम। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत है। अब चलते हैं मुस्तफ़ा सूरी जी की फरमाइश, इश्क और प्यार का मजा लीजिए। और अंत में भाई दीपांशी तिवारी जी की फरमाइश है, पग घुंघरू बांध मेरा नाची थी।
1: अल्ताफ मियां, बहुत सालों बाद आज अपनों के साथ खुशियां मना रहा हूँ, इस मौके पर कुछ हो जाए।
2: जरूर जरूर, इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए।
1: वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब।

0: थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का।
1: जी हाँ, इंतजार का मजा लिया। अब चलते चलते भाई, दीपांशी त्रिवेदी जी की बहुत ही प्यारी फरमाइश है, पग गुरुमान मेरा नाचे थी।
2: बुजुर्गों ने

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु, और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त को चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल।

0: 5 43 46।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

जी नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। आप सुन रहे हैं रेडियो गणस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और कार्यक्रम चल रहा है बाहर गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और ख़ास। और आज जिस शायर को हम आपके बीच लेकर आए हैं, उनका नाम है अज़्म शाकिरी। बहुत ही छोटे छोटे शब्दों में, बहुत ही छोटी छोटी पंक्तियों में बड़ी बात कह देने का हुनर, और आसान लफ्जियात में दिल को जीत लेने का हुनर आता है अज़्म शाकिरी साहब को। आज उन पर करेंगे चर्चा, उनकी गजलों पर करेंगे चर्चा, और आइए अब चलते हैं, बढ़ते हैं अज़्म शाकिरी साहब की तरफ।

उनकी छोटी बहन की एक गजल है, वहीं से शुरुआत करते हैं। उनको सुना हमने और छोटी बहन की गजल है, उन्होंने लिखा

तो ऐसी छोटी बहन की गजल कहते कहते लोगों के दिल तक उतर जाने का हुनर पता है अज़्म शाकिरी साहब को। आइए अब आपको ले चलते हैं गजलों की दुनिया में, सुनाते हैं आपको एक प्यारी सी गजल और फिर मिलते हैं आपसे संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए रेडियो गणेश 89.6 FM, यह गुंडा शहर की धड़कन और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गजल आप सभी के लिए।

जी हाँ, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, वंदन, नमन, स्वागत, इस्तकबाल आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में। बहुत अच्छी पंक्तियां हैं कि तेरे दीदार के लिए ये दिल तड़पता है, हर लम्हा बस तेरा इंतजार करता है, खामोश रहते हैं हम इस तरह जैसे हर खामोशी में एक तूफान गुजरता है। क्या बात है भाई कायनाथ जी। और लिखा है कि हर शाम ये दिल उदास होता है, मुलाकात का बस एक एहसास होता है, तेरे बिन तड़पते हैं हम इस कदर जैसे हर पल कोई प्यासा प्यास में रोता है। क्या बात है भाई, तड़प के देखो किसी की चाहत में, पता चले कि इंतज़ार क्या होता है, यूं ही मिल जाए कोई बिना चाहे तो कैसे पता चले कि प्यार क्या होता है। क्या बात है लवली सिंह जी। हमारा नाम MANU मनु है, आप चाहें तो सुधार कर सकती हैं और अगर न चाहें तो यही नाम चलने दीजिए। जी हाँ, शुभ संध्या आपको। बहारों की गज़ल में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपका भी स्वागत है। और कायनाथ जी, जी हाँ बिल्कुल, आइए देखते हैं भाई कौन सी गज़ल आपने खैर भेजी है, तो बहुत अच्छी ही प्यारी सी ही गज़ल होगी जी। तो एक गज़ल आपको जगजीत सिंह की सुनाते हैं और जगजीत सिंह की गज़ल के बाद फिर आप पर लौटते हैं। फिलहाल बात कर रहे हैं अज़म शाकिरी साहब की। उन्होंने कहा कि मुसलसल मतलब लगातार, मुसलसल हंस रहा हूँ गा रहा हूँ, मुसलसल हंस रहा हूँ गा रहा हूँ, तेरी यादों से दिल बहला रहा हूँ, तेरी यादों की बेलें जल गई सब, मैं फूलों की तरह मुरझा रहा हूँ। ऐ मेरी वहशतों मोहब्बत सहरा की जानिब, रेगिस्तान बोलते हैं, ऐ मेरी वहशतों सहरा की जानिब, मुझे आवाज़ दो मैं आ रहा हूँ, किनारे मेरे जानिब, जानिब मतलब अपनी ओर, किनारे मेरे जानिब बढ़ रहे हैं, मगर मैं हूँ कि डूबा जा रहा हूँ, यहाँ झूठों को तमगे मिल रहे हैं, तमगा मतलब मेडल आप समझते होंगे, यहाँ झूठों को तमगे मिल रहे हैं, मैं सच्चा हूँ तो परखा जा रहा हूँ। वास्तव में मतलब कभी कभी लगता है कि जो लोग झूठ के दम पर आगे बढ़ जाते हैं और जो सच्चाई पर रहने वाले लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं ज़िंदगी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत मानना ये है, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, अगर आपकी लगन है तो निसंदेह आपको उस लगन के अनुसार परिणाम मिलता है। हाँ, ये कहेंगे कि आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। तो हो सकता है कभी कभी रिजल्ट थोड़ा सा देर में मिले लेकिन अंधेर नहीं हो सकती, हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे। और कहा भी जाता है सत्य में हो जाते सत्य अंत में जीत जाता है। जी हाँ, आइए बढ़ते हैं मखमली आवाज़ की तरफ। और मखमली आवाज़ से मेरा आश्रय सिर्फ और सिर्फ जगजीत सिंह साहब का होता है। आइए सुनाते हैं जगजीत सिंह की प्यारी सी गज़ल आपको। मिलते हैं संगीत में अंतराल के उस पार, सुनते रहिए और रेडियो गणेशलेट 9.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

जी हाँ, कैसे भूलूंगा। और वास्तव में बहुत ही प्यारी सी गजल ये। हमारे साथ भाई कन्हैया जी हैं। तेरे आने से पहले भी, तेरे जाने के बाद भी तेरी याद मुझे हर पल सताती है। पर सच तो यह है कि जब तू मेरे साथ होता है तब भी तेरे दूर जाने का ख्याल मेरे दिल को दहला जाता है। न जाने मोहब्बत कैसी चीज़ है, तू मेरा अपना है फिर भी तुझे खो देने का डर हर बार मेरे दिल में दस्तक दे जाता है, हर बार मुझे डरा जाता है। जी हाँ, असलियत में जो बेशकीमती चीज़ें होती हैं, अनमोल चीज़ें होती हैं, उनको खो देने का डर इंसान के पास रहता है। जी बात कहते हैं अज़्म शाकिरी की, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, आँख से कोई पर्दा उठा ही नहीं, जो तमाशा था होना हुआ ही नहीं, इश्क तो बस वो पहले पहल का ही था, इश्क तो वो बस पहले पहल का ही था, अब तो दिल टूटने का मज़ा ही नहीं। अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा हैं लोग, अपनी मर्जी से दुनिया में जिंदा हैं लोग, लग रहा है जमीन पर खुदा ही नहीं, उम्र भर साथ रहने से क्या फ़ायदा, उम्र भर साथ रहने से क्या फ़ायदा, जिसको पाया था वो तो मिला ही नहीं। अपने अंदर ही अब सैर करता हूँ मैं, अपने अंदर ही अब सैर करता हूँ मैं, मुद्दतों से मैं बाहर गया ही नहीं, खुद को हर शय में खुद आ रहा हूँ नज़र, और कहाँ हूँ मुझे ये पता ही नहीं। जी हाँ, अज़्म शाकिरी की इस प्यारी सी गज़ल के बाद आइए आपको सुनाते हैं एक और प्यारी सी गज़ल। उम्मीद है ये गज़ल आपको ज़रूर पसंद आएगी, और ये समय भी इस गज़ल को सुनने का है। सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, ये है गुना शहर की धड़कन।

रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। कहीं सुना था मैंने कि अपनी जिंदगी में किसी को इतना मत चाहिए कि वो आपकी चाहतों का कातिल और वफाओं का सौदागर हो जाए। लेकिन जब रिश्ते बन जाते हैं तो फिर इंसान अपने आप को समर्पित कर देता है सामने वाले के समक्ष, और कहीं ना कहीं आकर ये कहना पड़ता है कि अब न रोएंगे हम खुशी के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, एक अच्छी बात आपसे बोल रहा हूं, हो सकता है आपको अच्छी लगे कि सुख की इच्छा करना ही दुख है। अगर आपसे कोई पूछे कि दुख क्या है, एक वाक्य में आप बड़ी बात बोल सकते हैं, सुख की इच्छा करना ही दुख है। अगर आप सुख की इच्छा नहीं करते तो शायद दुख नहीं हो सकता, शायद। लेकिन सुख की इच्छा ना हो ये तो थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है। लेकिन इस कठिन काम को भी कुछ लोग अंजाम दे ले जाते हैं। अजम शाकरी ने कहा कि अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, नहीं चाहिए खुशी, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी के लिए, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, जो हमें जख्म दे के छोड़ गया, हम तड़पते रहे उसी के लिए, जहर भी लग गया दवा बनकर, जहर भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए, कितना मुश्किल है मोतबर, मोतबर मतलब होता है इज्जतदार होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। जी हाँ, इंसान को अच्छी जिंदगी जीने के लिए कहीं ना कहीं अपने आप को दफन करना पड़ता है, और ये कह देना पड़ता है कि ठीक है भाई, अब तक तो साथ रहा, लेकिन अब आपके लिए हम महज एक ख्वाब हुए। जिंदगी में परेशानियां हैं,

लेकिन अगर ईश्वर साथ है तो सब कुछ अच्छा है, क्योंकि सबका यहाँ पर एक वक्त आता है, एक दौर आता है, और उस दौर के बाद वो इंसान अपने दूसरे दौर में पहुँचता है। विभिशाले को मैं पढ़ता हूँ तो वो लिखते हैं, ओ लाइफ ओ वर्ल्ड ओ लाइफ ओ टाइम ऑन हूज लास्ट स्टेप आई क्लाइंब ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर व्हेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम नो मोर ओह नेवर मोर। यानी कभी अपनी ज़िंदगी में बहुत कामयाब था कभी, और ये सोचता है कि वो वक्त उसकी ज़िंदगी में कब आएगा, अंतरात्मा कहती है कि नहीं आएगा। तरक्कियों के दौर में उसी का जोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। कहाँ तो बात कर रहा था खेलने की आग से, जरा सी आँच क्या लगी कि मोम सा पिघल गया, और उरोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमान। इंसान की तकदीर साथ देती है तो वो आसमान छूता है। उरोज पर नसीब था तो छू रहा था आसमान, बिगड़ गया नसीब तो जमीन से भी फिसल गया। जी हाँ, घड़ी की सुइयां बता रही है कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है। शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। एक खूबसूरत नगमे के साथ आपसे लेते हैं विदा। आसमान वाले ने चाहा तो कल 9:30 बजे बाहर गज़ल में एक बार पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सुनते रहिए रेडियो गणेश क्लिक 9.6 FM। ये है

0: हेलो लिसनर्स, मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति।
1: और मैं आपकी आरजे आयुषी।
0: और आप सुन रहे हैं पर्दा। हाय आयुषी।
1: हाय उन्नति।
0: ये तुम क्या कर रही हो?
1: कुछ नहीं, ये देखो, ये कितने क्यूट है ना। ये मैंने कल ही पपीज खरीदे हैं।
0: वाओ, क्यूट तो है, पर इनका नाम क्या है?
1: इनका नाम ना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, पता है क्या?
0: क्या?
1: रंगा बिल्ला।
0: रंगा बिल्ला?
1: हाँ, ये ब्लैक वाला रंगा और ब्राउन वाला बिल्ला। क्यूट है ना नेम?
0: नहीं।
1: क्यों,
0: तुम्हें पता है ये दोनों हैं कौन?
1: पपीज है?
0: नहीं, जो नाम तुमने रखा है ये नाम किसका था पहले?
1: मुझे ये तो नहीं पता, पर मैंने ऐसे काफी बार इस नाम को सुना, तो मुझे इंटरेस्टिंग नाम लगा, तो मैंने कहा यार पपीज का रख देते हैं।
0: आयुषी, अगर तुम्हें पता होता ना ये दोनों नाम किसके हैं, तो आई थिंक तुम्हें नाम रखती ही नहीं कभी।
1: किसके हैं?
0: एक ऐसी जोड़ी की जिसने लोगों के दिलों में खौफ बिठा दिया था। एक ऐसी जोड़ी की जिसकी मौत का इंतजार पूरा देश कर रहा था।
1: रियली?
0: रियली?
1: क्या तुम मुझे बताओगी कहानी है क्या, और भाई क्यों इनकी मौत का इंतजार पूरा देश कर रहा था?
0: जरूर। दिल्ली जितनी ही फेमस है उतनी ही पुरानी है। दिल्ली की हर गली में एक नया किस्सा है, एक अनसुनी कहानी है। दिल्ली के किस्से गानों से लेकर मिर्जा गालिब के शेरों में तक मिलते हैं। उसी दिल्ली में एक ऐसी खौफनाक जोड़ी आई जो लोगों के जख्मों की निशानी बन गई, और एक ऐसी जोड़ी जिसकी मौत का इंतजार हर कोई कर रहा था। और उससे बड़ी बात, जब दोनों को फांसी हुई तो उनमें से एक फांसी पर 2 घंटे लटकने के बाद भी जिंदा था।
1: जिंदा? कौन?
0: नाम रंगा बिल्ला।
1: पर ऐसा क्यों, उन्होंने आखिर ऐसा किया क्या था जो उन्हें मौत की सजा सुना दी गई?
0: तो इसको समझने के लिए तुम्हें पूरा केस सुनना पड़ेगा। यूं तो दुनिया में हर तरह के क्रिमिनल्स आए, और हमने कई तरह के क्रिमिनल्स खुद अपने पर्दा में भी कवर किए हैं। कुछ साइको हैं, कुछ ऐसे जिनकी बैक स्टोरी में कुछ हुआ था जिसकी वजह से उन्हें लोगों को दर्द देने में मजा आने लगा, और कुछ आज की स्टोरी जैसे।
1: मतलब दर्द देने में मजा आने लगा, क्या थी पूरी स्टोरी, मुझे बताओगे क्या?
0: तो चलो कहानी शुरू करते हैं। तुम मुझे सुनकर बताना कि ये जोड़ी साइको थी या थोड़ी हटकर थी। बात है 1978 शनिवार 26 अगस्त, 2 बच्चे जिनकी उम्र थी 16 और 14 साल। आज उनका ऑल इंडिया रेडियो पर शो था। नाम था गीता, जो की थी 16 साल की, और उसका छोटा भाई जिसका नाम था संजय, जो की था 14 साल का। रात के 8 बजे थे, रेडियो ट्यून किया जाता है, ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग म्यूजिक प्ले होती है और एक आवाज आती है, सभी को नमस्कार। इसके बाद जो आवाज आनी थी वो गीता की थी। ना गीता की आवाज आई और ना संजय की। जो आवाज आई वो किसी और की थी। घर वालों में एक निराशा छा गई, जो कि लाजिम भी था। उनको लगा कि शायद

0: ठीक 9 बजे मिलने का वादा था। जैसे ही कैप्टन साहब वहां पहुंचते हैं और देखते हैं चारों तरफ कि वहां तो कोई भी नहीं खड़ा है, कैप्टन साहब को लगता है कि हो सकता है बच्चे थोड़ी देर अंदर ही रह गए होंगे या फिर किसी काम में बिजी होंगे। वो इंतजार करने लग जाते हैं। इंतजार करते करते और अब उन्हें थोड़ी चिंता भी होने लगी थी। चिंता होने का कारण था कि आज तक उनके बच्चों ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। जब भी उनसे बात की जाती थी कि ठीक इतने बजे मैं तुम्हें यहाँ मिलूंगा तो बच्चे वहाँ मिलते थे, पर इस बार बच्चे वहाँ नहीं थे।
1: तो क्या वो उन्हें मिले?
0: नहीं। चोपड़ा साहब ने सोचा क्यों ना अंदर जाकर देखा जाए कि गीता और संजय क्या कर रहे हैं। जब वो अंदर जाकर गीता और संजय के बारे में पूछते हैं तो पता चलता है कि आज तो वो दोनों स्टूडियो आए ही नहीं थे। उनके पापा चोपड़ा साहब घबरा जाते हैं, उनके बच्चे ऐसे कैसे नहीं आए। उन्होंने तुरंत ही घर पर कॉल किया। कॉल उनकी वाइफ ने उठाया। वो अपनी वाइफ से पूछने लगे, क्या बच्चे घर पर आए हैं? उनकी पत्नी ने कहा, नहीं तो वो घर पर तो नहीं आए। कैप्टन साहब अब बहुत परेशान थे।
1: अब आगे क्या होने वाला था? वो दोनों बच्चे कहाँ जा सकते हैं? क्या वो किसी दोस्त के घर चले गए या फिर उनके साथ कुछ?
0: आगे चोपड़ा साहब ऑल इंडिया रेडियो से निकलकर जल्दी से घर पहुंचते हैं और घर पहुंचकर अपने सभी दोस्तों, सभी रिश्तेदारों को, जान पहचान वालों को कॉल करना शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि शायद वो किसी दोस्त या रिश्तेदार के घर चले गए होंगे। पर उन्हें अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि बच्चे ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो अपना प्रोग्राम छोड़कर यूं ही किसी के घर किसी से मिलने कैसे चले गए? चोपड़ा साहब सबको कॉल करते जाते हैं और उनके मुंह पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या गीता और संजय आपके यहाँ आए हैं? और सबका बस एक ही जवाब था कि नहीं, वो यहाँ नहीं आए। चोपड़ा साहब की हिम्मत टूटती जा रही थी। घर में टेंशन बढ़ती जा रही थी। दोनों बच्चे उनकी अचानक से कहीं गायब हो चुके थे। बच्चों को लेकर अभी तक कोई भी खबर नहीं मिल रही थी। घर में एक एक मिनट भारी पड़ रहा था। हर आहट पर, हर कॉल पर एक ही उम्मीद होती थी कि शायद शायद उनके बच्चे आ गए हो या उनके बच्चों की कोई खबर आ गई हो। पर हर बार ये उम्मीद टूट जाती थी और पहले से ज्यादा बुरी तरह से टूट जाती थी। माँ बाप का दिल बैठा जा रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है? उनके बच्चे कहाँ हो सकते हैं? और उससे भी बड़ी बात, क्या वो सेफ हैं या फिर उनके साथ कोई हादसा हो गया है?
1: समझ सकती हूँ मैं। घर पे बिना बताए अगर मैं आज भी कहीं चली जाऊँ तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। तो वो तो बच्चे थे और रात में गायब हुए थे, पर आगे क्या हुआ था? उनकी कोई खबर आई या फिर वो आए?
0: कैप्टन साहब घर से वापस निकलते हैं और इस बार वो दिल्ली के वेलिंगटन हॉस्पिटल में जाते हैं, ये सोचकर कि शायद कोई हादसा हुआ होगा और उनके बच्चे हॉस्पिटल में मिल ही जाएंगे। पर वहाँ भी उनके हाथ खाली रहते हैं। रात के 11:30 बज चुके थे और 11:30 बजे कैप्टन साहब वापस अपने घर खाली हाथ, हताशा के साथ, उदास आ जाते हैं। उस रात दोनों पति पत्नी एक मिनट भी नहीं सोए थे। उन्हें भी शायद एक आइडिया लग गया था कि उनके बच्चे खुद नहीं गए, वो कहीं ना कहीं किडनैप हो चुके हैं। हर गुजरे मिनट के साथ बच्चों का मिलना और मिलने की उम्मीद दोनों खत्म होती जा रही थी। वक्त गुजर रहा था और वक्त गुजरते गुजरते 27 अगस्त आ चुकी थी। 27 अगस्त का वो पूरा दिन यूं ही निकल जाता है और बच्चों की कोई खबर तक नहीं आती। अगले दिन 28 अगस्त को रात के कुछ करीब 3 से 3:30 बजे के बीच कैप्टन साहब का टेलीफोन बजता है। उठाने पर पता चलता है कि दूसरी तरफ से पुलिस बोल रही है और वो बोल रही है कि उन्हें दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्क, जो फिलहाल के लिए उस वक्त में एक जंगल था, वहाँ पर आना है।
1: क्यों, वहाँ क्या था? क्या पुलिस को कोई सबूत मिला था या फिर उससे भी ज्यादा कुछ खौफनाक?
0: तुमने एकदम सही गैस किया। वहाँ पुलिस को मिली थी दो बच्चों की लाशें और पुलिस ने यही बोला कि आप आए और वो आइडेंटिफाई करें कि वो लाशें कहीं गीता और संजय की तो नहीं है।
1: क्या वो गीता और संजय की ही थी या फिर कोई और था?
0: हाँ, वो दोनों गीता और संजय ही थे।
1: ओ माय गॉड, क्या हार रहा होगा जिन बच्चों की तलाश में वो इतने दिन से इधर उधर भटक रहे थे, उन्हें ढूंढ रहे थे। आखिरकार वो बच्चे मिले लेकिन मर चुके थे। आगे क्या होने वाला था? क्या उनका पोस्टमार्टम हुआ?
0: हाँ, दोनों का पोस्टमार्टम किया गया और रिपोर्ट में जो आया उसे सुनने के लिए ना तुम रह रही हो, ना मैं रह रही हूँ, ना कैप्टन साहब और उनकी पत्नी रेडी थे।
1: ऐसा क्या था?
0: गीता की बॉडी पर उसके अंडरगार्मेंट्स नहीं थे। आशंका की जा रही थी कि गीता के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ है। कंफर्म ना होने की वजह ये थी कि दोनों की बॉडी में कीड़े लग चुके थे, बॉडी सड़ने लगी थी और उस वक्त ऑटोप्सी रिपोर्ट में गीता और संजय के साथ जो कुछ भी हुआ था उसका सिर्फ थोड़ा सा ही सामने आया था। गीता के शरीर में बहुत सारे घाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी धारदार चीज से उसके शरीर को घोपा गया हो। इससे ज्यादा ना मैं तुम्हें बता सकती हूँ और ना तुम सुन पाओगी। अगली सुबह न्यूज़पेपर में ये खबर छापी गई। उन दोनों बच्चों की फोटो भी लगाई गई। जैसे ही दिल्ली ने यह खबर पढ़ी, दिल्ली

0: का दिल बैठ गया। और कहते हैं कि जब जब दिल्ली का दिल किसी ने दुखाया है, तब तब दिल्ली ने पूरे देश को अपनी आवाज से हिलाया है। दिल्ली इतने जोर से चिल्लाती है कि उसकी आवाज सब तक जाती है। इन बच्चों की फोटो को देखकर एक डॉक्टर का कॉल आता है पुलिस स्टेशन में, जिसमें ये बोला गया था कि सर शायद ये वो बच्चे हैं जिनको मैंने 26 अगस्त की रात में लिफ्ट दी थी, उन्हें जहां से पिक किया था, जहां उतारा था, सब चीज वो डॉक्टर बताते हैं। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि शायद वो बच्चे उस वक्त ऑल इंडिया रेडियो जा रहे थे, उनका वहां कोई प्रोग्राम था, हल्की बारिश हो रही थी और इसीलिए मैंने उन्हें लिफ्ट दी थी। ये कहानी जैसे ही बाहर आती है, वैसे ही धीरे धीरे दूसरी कहानियां भी बाहर आने लग जाती हैं। 26 अगस्त को 6:30 बजे एक आदमी जिसका नाम था भगवान दास, उसने एक येलो कलर की कार को देखा था जिसके अंदर से थोड़ा सा शोर आ रहा था।
1: क्या शोर? तो उसने क्या क्या फिर?
0: जब हम कोई अजीब सा शोर सुनते हैं तो हम जाकर एक बार जरूर देखते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है।
1: हाँ, तो क्या उसने देखा वो शोर कहाँ से आ रहा था? क्या वो गीता और संजय थे?
0: हाँ, वो पैदल चलकर आया, उसने देखा कि गाड़ी के आगे दो लोग हैं और पीछे दो बच्चे हैं, और जो लड़की है वो आगे बैठे आदमी के बालों को नोच रही है, बच्चा दूसरे से लड़ाई कर रहा है। भगवान दास और कुछ लोग भागते हुए उस गाड़ी के पास आए, और जैसे ही वो उस गाड़ी के हैंडल तक पहुंचने वाले थे, तब तक वो गाड़ी वहां से भाग गई। और ये गाड़ी विलिंगडन हॉस्पिटल की तरफ ही जा रही थी। उन्होंने इस गाड़ी का नंबर नोट किया, पुलिस को कॉल करके बताया गाड़ी कौन सी थी और उसका नंबर क्या था। धीरे धीरे करके कुछ और विटनेस सामने आए, एक व्यक्ति जिसका नाम था इंद्रजीत, वो सामने आए और उन्होंने बताया कि सर जब मैं अपने स्कूटर से घर वापस जा रहा था, तब एक गाड़ी ने मुझे बहुत स्पीड में ओवरटेक किया था। मैंने नोटिस किया कि उसके पीछे बच्चे बैठे हैं और वो बच्चे कुछ कर रहे हैं, तो देखा कि उन बच्चों में से जो लड़का है उसने अपना हाथ का इशारा अपने कंधे की ओर किया जिसमें से खून निकल रहा था। मैंने उस गाड़ी को आवाज भी दी कि क्या हो रहा है, पर वो गाड़ी बहुत स्पीड में थी, मैं उसका पीछा कर रहा था पर आगे जाकर रेड लाइट हो गया और मुझे वहां रुकना पड़ा। वो गाड़ी मुझसे आगे निकल चुकी थी, जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ मैं आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, पर तब तक ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया था और मैं उस गाड़ी का पीछा नहीं कर पाया। पर मैंने पुलिस को जाकर इन्फॉर्म किया था, उन्होंने ये कहकर मना कर दिया कि ये हमारा एरिया नहीं है, ये हमारे एरिया का केस नहीं है।
1: अगर पुलिस उस वक्त एक्शन में आ जाती तो शायद वो बच्चे आज जिंदा होते। हमारी थोड़ी सी लापरवाही की कीमत किसी को अपनी जान से चुकानी पड़ती है।
0: पर एक बार जब पुलिस की टीम गाड़ी ढूंढने निकली, वो नंबर जो भगवान दास ने रिपोर्ट की थी वो मिली ही नहीं, और इसके पीछे का कारण था कि गाड़ी के नंबर में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। गाड़ी का नंबर जो बताया था वो था HRK 8930 और पुलिस जो गाड़ी ढूंढ रही थी वो थी MRK 8930, और इसीलिए वो गाड़ी मिल ही नहीं रही थी।
1: रियली? इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, सिर्फ एक वर्ड चेंज होने से सब खत्म हो गया। अब आगे क्या हुआ?
0: आगे धीरे धीरे जैसे ही केस हाईलाइट हो रहा था, वैसे वैसे पुलिस पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। पूरा देश अब इस केस का जवाब मांग रहा था। पुलिस पर प्रेशर इतना बढ़ चुका था कि वो अब अलग अलग एंगल से अलग अलग क्रिमिनल्स के बारे में सोच रही थी। तब पुलिस का ध्यान जाता है रंगा बिल्ला पर, एक ऐसी वांटेड जोड़ी जिसने अपने क्राइम को अलग अलग लोकेशंस पर अंजाम दिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब मुंबई पुलिस से बात की तो कोई क्लू हाथ नहीं लगा। न्यूज़पेपर पर फोटो निकाली गई और पब्लिक से भी हेल्प मांगी गई।
1: इतना वक्त गुजर गया और अभी तक क्रिमिनल्स का कुछ पता ही नहीं चला। खैर, हर बार यही होता है, बुरे लोगों की किस्मत हर बार उनका ज्यादा साथ देती है।
0: हाँ, पर ज्यादा देर तक नहीं, एक वक्त के बाद किस्मत और भगवान दोनों साथ छोड़ देते हैं।
1: मतलब
0: दिल्ली के एक पार्क में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। भीड़ थी एक कार को लेकर, सभी लोग कार को लेकर लड़ रहे थे कि वो कार किसकी है जो नो पार्किंग में खड़ी हुई है। और तब पुलिस के पास कॉल गया। जब पुलिस आई तब गाड़ी के नंबर से गाड़ी के ओनर के बारे में जब पता चला तो उनका नाम था अशोक शर्मा। उनके पास कॉल किया गया और उनसे कहा गया कि आप चाबी लेकर तुरंत पार्क में आइए। हालांकि गाड़ी का कलर सिर्फ उनकी गाड़ी से मैच हो रहा था, नंबर नहीं, लेकिन इसके बाद भी वो शरीफ सा इंसान चाबी लेकर गाड़ी के पास पहुंच जाता है, और जैसे ही वो अपनी गाड़ी की चाबी उस गाड़ी में डालता है, गाड़ी का गेट खुल जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि वहां से म्यूजिक सिस्टम और कुछ दूसरी चीजें भी गायब थी। फॉरेंसिक टीम आती है, अंदर जांच की जाती है तो उन्हें अंदर फिंगरप्रिंट मिलते हैं, कुछ खून के धब्बे मिलते हैं, जली हुई सिगरेट मिलती है और अलग अलग दवाइयां मिलती हैं, साथ ही मिलती है 3 अलग अलग नंबर प्लेट्स, और एक वो थी जिसको भगवान दास ने रिपोर्ट किया था।
1: अरे, पर धीरे धीरे ये मामला तो और भी ज्यादा उलझता जा रहा था। सबूत तो मिल रहे थे पर क्रिमिनल्स नहीं।
0: हाँ, थोड़ा तो, पर अभी तो इस केस में कुछ ऐसे पन्ने खुलने बाकी थे जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं सरकार तक उलझा देने वाले थे। एक ऐसा बयान और बयान के बाद उससे मुकर जाना दोनों ही समझ से परे होने वाला था। लेकिन उससे पहले ये जानो कि इस केस में 8 सितंबर का क्या कनेक्शन है।
1: 8 सितंबर, अब इस दिन को क्या हुआ था?
0: बताती हूँ। 8 सितंबर जब गीता संजय का केस इतना पेचीदा हो रहा था, जब इतना अजीब हो रहा था, वहीं 8 सितंबर के दिन एक ट्रेन के डिब्बे में कुछ आर्मी के लोग सफर कर रहे थे। उस डिब्बे में दो लोग चढ़ते हैं और जिस डिब्बे में वो चढ़े थे वो आर्मी के लिए रिजर्व था। जब सैनिकों ने सवाल जवाब किया तब उन्हें समझ आ गया था कि ये जो कोई भी है ये यहाँ लूटपाट के इरादे से आए हैं। तब उन्होंने थोड़ा स्ट्रिक्टली बात की और जैसे ही उन दोनों लोगों को ये पता चला कि यहाँ पर कुछ सैनिक पंजाबी हैं, तो वो दोनों कहने लगे कि अरे हम भी तो पंजाबी हैं, हमसे क्यों लड़ रहे हो। और इसके बाद वो दोनों मराठी में बात करने लगे थे और उनकी खराब किस्मत ये थी कि वहाँ मौजूद कुछ सैनिक मराठी भी जानते थे और वो तुरंत समझ गए कि ये वेपन छीनने की बात कर रहे हैं। आर्मी और उन दोनों लोगों में झड़प होती है। इतने में वहाँ मौजूद जो लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे उन्हें ध्यान आया कि ये चेहरा जो मैं अभी देख रहा हूँ इसको पहले भी कहीं देखा है। जब उन्होंने याद किया तो समझ आया कि ये वो लोग हैं जिनका फोटो न्यूज़पेपर में निकला हुआ है और ये दोनों क्रिमिनल हैं।
1: अच्छा, तब क्या किया आर्मी वालों ने?
0: क्या ही करना था, आर्मी ने सीधा उन्हें पकड़ा, रस्सी से बांधा और पुलिस के हवाले कर दिया।
1: गुड, पर ये दोनों कौन थे? कोई नाम पता चला क्या इनका?
0: ये दोनों वही थे जिन पर हमारी आज की कहानी है।
1: मतलब रंगा बिल्ला?
0: हाँ, बिल्कुल सही कहा, ये दोनों कोई और नहीं, ये रंगा बिल्ला थे। इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने इनको गिरफ्तार करने के बाद एक बड़ा ही स्मार्ट मूव चला।
1: वो क्या?
0: जब इन दोनों को अरेस्ट किया गया तब इन्हें एक साथ नहीं रखा गया, इन दोनों को अलग अलग जगह पर बंद किया गया और फिर इनसे पूछताछ शुरू की गई।
1: अलग अलग रखना मतलब इसके पीछे कुछ खास वजह थी क्या?
0: हाँ, पुलिस को डाउट था कि अगर ये दोनों साथ रहते हैं तो ये अपने दिमाग लगाएंगे और एक नई कहानी बनाकर पेश कर देंगे जिससे ये केस कभी सॉल्व ही नहीं होगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग रखा गया था।
1: अब क्या हुआ?
0: एक दिन 22 सितंबर को बिल्ला ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर खुशी और शौक दोनों एक साथ लगने वाला था। बिल्ला, जिसका नाम जसबीर सिंह था, उसने कन्फेशन करने को कहा और कुछ वक्त बाद रंगा ने भी सेम कहा, उसने भी कन्फेशन दे दिया और ये कन्फेशन पुलिस के सामने नहीं मजिस्ट्रेट के सामने की गई थी जो कि एक पुख्ता सबूत में गिनी जा रही थी।
1: मतलब केस सॉल्व?
0: अभी कहाँ, अभी तो एक बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था।
1: ट्विस्ट?
0: रंगा बिल्ला, जिन्होंने खुद मजिस्ट्रेट के सामने जाकर अपना कन्फेशन दिया था, वही दोनों कुछ वक्त के बाद बदल जाते हैं और वो कहते हैं कि कन्फेशन उनसे जबरदस्ती करवाया गया है, उनसे जबरदस्ती बुलवाया गया है, हमारे पास तो कोई ऐसा हथियार था ही नहीं, ये केस तो हमने कभी किया ही नहीं, ये सब तो पुलिस ने करवाया था।
1: अब आगे क्या होने वाला था?
0: क्योंकि ये बात कहीं ना कहीं सच भी लग रही थी क्योंकि मदन चोपड़ा एक नेवी ऑफिसर थे और ये भी काफी हाईलाइटेड हो गया था। इसकी वजह से पुलिस पर केस को सॉल्व करने का एक प्रेशर बन चुका था। रंगा बिल्ला जो शुरू से क्रिमिनल हिस्ट्री रखते थे उन्हें फंसाना एक इजी टारगेट भी लग सकता था, पर कोई सॉलिड प्रूफ नहीं मिल रहा था उनके खिलाफ कि उन्होंने कोई मर्डर किया है। जो भी प्रूफ मिल रहे थे वो बस ये बताते थे कि रंगा बिल्ला ने गाड़ी की चोरी की है, बच्चों को किडनैप किया है, मर्डर का कोई सबूत उनके खिलाफ मिल ही नहीं रहा था और इसीलिए वो कन्फेशन से मुकर जाना उनके लिए दिक्कत बन रहा था।
1: तो अब क्या होने वाला था? क्या अब ये केस सॉल्व नहीं होगा?
0: रंगा बिल्ला ने इस केस को उलझाने की पूरी कोशिश की। उलझाने के लिए उन्होंने ये तक कह दिया कि ये हमने खुद से नहीं किया है, ये सब हमसे करवाया गया है एक बड़े पॉलिटिशियंस और एक बड़े ऑफिसर ने, और इन सब से आखिर में कोई फायदा नहीं हुआ। रंगा बिल्ला के खिलाफ केस चल रहा था और इस केस का फैसला आया और उन्हें ब्लैक वारंट जारी किया गया। दिल्ली के तिहाड़ जेल में 31 जनवरी 1982 में रंगा बिल्ला को फांसी दी गई।
1: मतलब अब फाइनली जस्टिस सर्व्ड। एक सेकेंड, तुमने अभी स्माइल क्यों किया? अभी और भी कुछ होना बाकी था क्या यार? मतलब रंगा बिल्ला ने और भी कुछ किया?
0: तुम्हें पता है आयुषी, 31 जैन को जब रंगा बिल्ला को फांसी दी गई थी तब बिल्ला काफी डरा हुआ था, पर रंगा बिल्कुल भी डरा नहीं था। और तो और, जब किसी को फांसी दी जाती है ना तो जेल का कानून ये कहता है कि जब भी किसी को फांसी दी जाएगी तब उसे फांसी देने के बाद 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। 2 घंटे के बाद जेल का मेडिकल एक्सपर्ट आता है, वो आकर चेक करता है कि पल्स वगैरह चल रही है या नहीं, अगर बंद है तो वो डिक्लेयर करता है कि इंसान मर गया है। पर रंगा बिल्ला के केस में जब फांसी हुई 2 घंटे के लिए उन्हें यूं ही छोड़ दिया गया। 2 घंटे बाद जब मेडिकल एक्सपर्ट ने आकर चेक किया तब बिल्ला तो मर गया था पर रंगा जिंदा था।
1: What? How? मतलब ये कैसे हो सकता है यार कि कोई 2 घंटा फांसी पे लटकने के बाद भी जिंदा? How is that can possible?
0: सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वहाँ खड़ी टीम भी ऐसे ही हैरान थी। जो भी इस केस को पढ़ता है सही हैरान होता है।
1: इसके बाद क्या हुआ?
0: इसके बाद रंगा के पैरों को पकड़कर एक सिपाही ने खींचा, तब जाकर उसकी पल्स बंद हुई और वो फाइनली डेड डिक्लेयर कर दिया गया।
1: ओह माय गॉड, उन्नति, ये केस, ये कहानी और ये नाम अब मेरे दिमाग से कभी नहीं जाने वाला।
0: आई अंडरस्टैंड एंड आई थिंक दोस्तों आपके दिमाग से भी रंगा बिल्ला अब कभी नहीं जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। अब हमारा वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, मिलते हैं एक और ऐसी ही सच्ची घटना को लेकर के। तब तक के लिए बाय बाय।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। नमस्कार दोस्तों, एक और भीगी रात, बारिश की वो धीमी फुहारे, खिड़की से टपकती बूंदें और दिल में उठती वो मीठी सी कसम। मैं हूँ आपकी सुकून, ठंडक, गर्मी, बरसात और हर मौसम और हर मिजाज की आपकी रेडियो साथी अनोखी। और आज भूले बिसरे गीत के इस खास मानसून स्पेशल में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे संगीत के सफर पर, जहां हर बूंद के साथ एक याद, एक झोंके के साथ एक तराना जुड़ा है, जो रात के सुरीले और भीगे भीगे मूड को समर्पित है। और दोस्तों, आपकी अनोखी ने तो आज के एपिसोड का नामकरण तक कर रखा है। हाँ जी, हमने नाम रखा है आज के एपिसोड का भीगी रातों के तराने, एक यादगार सफर। तो चलिए पहली बूंद के साथ सुनते हैं एक ऐसा गीत जो खुद बारिश की तरह हर दिल को छू जाता है। आज के शो का पहला सॉन्ग भीगी भीगी, हाँ जी भीगी भीगी क्या, भीगी भीगी रातों में। और ये सॉन्ग है आवाज से जिसको सजाया है आशा भोसले जी और किशोर कुमार ने। तो चलिए सुनते हैं ये नगमा। और उससे पहले आपको बता दूं कि इस नगमे को सुनते हुए इन ख्यालों में जरूर डूबिएगा। ख्याल कुछ यूं है, रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी। रात थी, बारिश थी और खामोशियां थी, उसके साथ बिताई हर शाम की याद इन बूंदों में बह रही थी। वो भीगी हुई रातें सिर्फ मौसम नहीं थी, वो अधूरे ख्वाबों का गीत था। और दिल कह उठा, क्या
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में, हल्की बरसातों में, कैसा लगता है।
0: जैसा भी लगता है, आप खुद ही एंजॉय करिए ना इस गाने के माध्यम से।

तो अभी हमने एंजॉय किया ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, और इसके बाद अब हम आपको बताएंगे कि बताएंगे नहीं, चलिए एक प्रश्न की ओर रुख करते हैं और उसके बाद में थोड़ी गहराइयों में उतरते हैं। क्या आपने कभी भीगी किसी का इंतजार किया है, या किसी के साथ बैठकर खामोशी से बारिश को महसूस किया है? बस यही एहसास बनता है ये अगला नगमा, जिसका आनंद अभी आपने लिया। और अब सुनिए एक और तराना जो बारिश में भीगी एक मासूम सी लड़की की कहानी कहता है। सॉन्ग है, सॉन्ग बताएंगे ना, उससे पहले थोड़ी सी और गहराई उतरते हैं। एक लड़की जो भीगी भी है और शायद भीगी हुई और भागी हुई भी है, कहाँ से आई कहाँ जाएगी कोई पता नहीं, पर एक बात का पूरा पता है कि इस बारिश ने उसे और भी हसीन बना दिया है। एक ऐसी लड़की जो भीगी सी है, भागी सी है, हवा में लहराती एक कहानी सी है। उसकी आंखों में कुछ अनकहे पल हैं जो किसी मुलाकात का जिक्र करना चाहते हैं। जी हाँ, और वो सॉन्ग कोई और नहीं, वो सॉन्ग है एक लड़की भीगी भागी सी, और आवाज से इसको सजाया है किशोर कुमार जी ने। आइए चलिए सुनते हैं और लुत्फ़ में खो जाते हैं इस सॉन्ग के साथ।

सजन दूर था पर सावन पास था, बदन में जैसे हर बूंद के साथ उनके होने का एहसास था, सांसों में उनकी यादें और इस मौसम का जादू। अब अगला गीत कुछ शरारत लिए, कुछ अदाएं लिए आपसे मिलना चाहता है और गुनगुनाता है।

ये वो सॉन्ग है जो बदन में सिहरन दौड़ा दे और असली सावन के जादू को याद दिला दे। मीठी सी तड़प और मिलन की दरकार के एहसास के साथ 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके से लता मंगेशकर की आवाज का सुहाना सफर। हाँ जी, तो चलिए एंजॉय करते हैं मिलकर।

श्रोताओं, अब आपको ले चलते हैं उस गीत की ओर, जो गीत ना सिर्फ अपनी ओर खींचता है बल्कि बारिश को रोमानी बना देता है। और जब हवाएं चलती हैं और बारिश के साथ पत्तों की सरसराहट होती है, तब दिल गाता है। हाँ जी, दिल गाता है। क्या गाता है? सावन का महीना पवन करे शोर। इस गाने में ना जाने कितनी बार हमारे हीरो ने, यानी सुनील दत्त साहब ने, हमारी अदाकारा के अल्फाजों को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन हम बिना सुधारे ही गा सकते हैं? गा नहीं सकते, तो साथ में एंजॉय तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फिर बढ़ते हैं इस गीत की ओर। एक ऐसा गीत जो पनघट की हंसी, झूले की टुनक, सावन का शोर जैसे दिल की धुन को साथ ले चले। पवन बोले, पेड़ गाए, ये गीत गांव के हर आंगन में छाए। शोर मूवी से किशोर दा और लता जी की आवाज में ये एवरग्रीन सॉन्ग।

अब मैं आपसे जिस गीत की बात करने वाली हूँ, उस गीत में छुपा है गांव का वो सौंदर्य, वो कच्ची सड़कें, वो पनघट, वो बारिश के संग झूमती प्रकृति जो मन के भीतर मयूरी बन नाच उठती है। और जब बात झूमने की हो तो ये आया सावन झूमके, गीत कैसे पीछे रह सकता है। झूले पत्तों पे झूमे, बच्चे गलियों में घूमे, दिल ने फिर से सपना बुना, आया सावन झूमके, प्यार हर दिल में चुपके से घूमे, के आया सावन झूमके।

0: तो अभी हमने इस गीत के माध्यम से उस पल को महसूस किया जो सावन का मौसम जैसे ही आता है, अपने साथ बचपन की यादें, पहली बारिश, भीगे पैर और वो नाचते हुए घर लौटना, सब कुछ लौटा आता है। अब एक ऐसे मस्ती भरे गीत की तरफ चलते हैं जिसमें दिल धड़कता है और कहता है, रामा रामा गजब हुई गवारे, हाल हमरा अजब हुई गवारे। हाँ जी, आज तो दिल सच में सावन बना बैठा है, ये ना जाने क्या हुई गवा है, ना जाने सावन में कौन सा जादू है, हर कोई दीवाना, हर चेहरा बावला बन बैठा है। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब की और साथ ही साथ में लता जी की आवाज में सुनते हैं ये प्यारा सा नगमा।
1: हाय राम,

0: बूंदों की ताल पे झूमे हैं अरमा, हर एक बूंद में छिपा है एक गुमनाम अंजाम। रिमझिम राग मन का साज, बारिश ने छेड़ा वो मीठा अंदाज। क्या गजब बात है, बारिश और मस्ती एक साथ आ जाए तो बस दिल भीग जाता है। और अब एक गीत जिसमें बारिश मन की हर तार को छूती है। ऐसा लगता है जैसे बूंदों की हर लय से निकले सुर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, बन जाते हैं हमारे खुश होने का कारण, जिसमें बरखा बहार के साथ आती है और बूंदे अपनी फ्रेंड रिमझिम जी के साथ, जिसको अपनी आवाज के जरिए मिलाने का काम किया है लता मंगेशकर जी ने। तो चलिए हम भी मिल लेते हैं इस प्यारे से गीत से।
1: ओ सजना

घटाएं घिरी थी जैसे यादें मुड़ी हों, सांवली सी वो शाम जिसमें उसके कहे बिना सब कह दिया था मैंने, और दिल ने बस इतना ही कहा। क्या कहा? ओ घटा सांवरी थोड़ी थोड़ी बावरी। तो बिना देरी किए चलिए एंजॉय कर लेते हैं ये वाला सॉन्ग, जिसमें आप याद करेंगे अपने उन दिनों को जब किसी के साथ में आपने एक प्यारी सी शाम बिताई होगी।

इतने सारे सॉन्ग्स तो हमने एंजॉय कर लिए जी हम मॉनसून स्पेशल वाले शो में। और मॉनसून स्पेशल शो मैंने इसलिए रखा था क्योंकि एक जो सॉन्ग है वो मेरे जहन में यूं आया था कि हमने किसी से फरमाया कि जनाब हमको थोड़ा सा वक्त चाहिए आपका, क्योंकि आजकल बारिश हो रही है तो थोड़ा सा वक्त तो बनता है ना आपके साथ में, बिल्कुल कॉफ़ी बनती है, चाय बनता है और थोड़ा घूमना शूमना भी बनता है। लेकिन जनाब ने इनकार कर दिया, और इनकार करने का कारण वही जो आमतौर पे हर एक महापुरुषों का होता है, नॉर्मल पुरुष तो ना नहीं करते हैं। हाजी तो उन्हीं में से थे वो जिनसे हमने दरकार की। लेकिन जब हमको ये आइडिया हमारे जहन में आया तो हमने कहा कि इस सॉन्ग को भी आप तक पहुंचाना जरूरी हो गया है। और इस सॉन्ग के जो बोल हैं वो कुछ यूं हैं, हाँ हाँ हाँ वही वाला सॉन्ग कि तेरी दो टकिया दी नौकरी पे मेरा लाखों का सामान जाए। वैसे सामान केवल लाखों का नहीं होता है जनाब, इतना कीमती होता है ना कि बस उसका कोई भी हम पेमेंट नहीं कर सकते। फिलहाल बढ़ते हैं इस सॉन्ग की ओर। जी हाँ, रोटी कपड़ा और मकान मूवी का ये उम्दा वाला सॉन्ग, एवरग्रीन सॉन्ग, चलिए मिलके एंजॉय करते हैं।

तो दोस्तों, आप सुन रहे थे रेडियो वेमिसली 89.6 एफएम पे अपना फेवरेट वाला शो जिसका नाम है भूले बिसरे गीत, जहाँ पे गीत तो होते हैं लेकिन उस दौर के, उस जमाने के, जो आपको अपने तक बुला ही लेते हैं और हम कहीं जाके गुम से हो जाया करते हैं। और आज का सफर यहीं पे हमको कहता है कि थोड़े से थम जाते हैं ताकि फिर से हम आपसे आके किसी नए सफर पे आपको ले चलें। आज की ये भीगी रात और ये भूले बिसरे तराने उम्मीद है आपके दिल को भी भीगो गए होंगे। मैं आरजे अनोखी अब लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन जाते जाते आज कहूंगी, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, हर फुहार में छिपा होता है एक जज्बात, और हर पुराने गाने में हमारी अधूरी बात। तो ये अधूरी बात हम कंप्लीट करेंगे, लेकिन बतौर तोहफा ये वाला सॉन्ग स्पेशली आपके लिए, जो कि बहुत बहुत बहुत बहुत आला है। और इसी के साथ, भीगी बातों के साथ, शुभ रात्रि और प्यार भरी बारिश की शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले हफ्ते इसी वक्त और एक नए चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
3: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
6: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
5: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
6: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
5: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
6: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 8881009400।
4: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: मगर मगर
1: क्या?